आकाशवाणी की विज्ञापन प्रसारण सेवा का ये जोधपुर केंद्र है। एफएम बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। आज मंगलवार है। शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की नवमी तिथि, तदनुसार 30 जून 2026। इस समय सवेरे के 5:57 होने को है। हमारी पहली सभा अब आरंभ होती है।

0: आकाशवाणी की विज्ञापन प्रसारण सेवा का ये जोधपुर केंद्र है। एफएम बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज पर इस समय सवेरे के 6 बजने को है। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से सुने हिंदी समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसी के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों के लिए दिए जाते हैं।
2: राष्ट्रपति ने समारोह में 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, 30 परम विशिष्ट सेवा पदक, 12 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 56 अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए। अति विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णेय और वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई शामिल हैं। सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, एयर मार्शल नागेश कपूर और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई शामिल हैं। परम विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में वाइस एडमिरल संजय वात्सायन, लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित शामिल हैं। उत्तम सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, एयर मार्शल मनीष खन्ना और वाइस एडमिरल तरुण सोपती शामिल हैं। ये पदक सशस्त्र बलों के उन अधिकारियों और कर्मियों को देश के प्रति उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किए गए हैं। सौम्य शरण के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से शुरू आंध्र प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज विजयनगरम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति कल अनंतपुरम में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता UCC लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि 2 जुलाई को होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में विधेयक का मसौदा पेश किया जाएगा। इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में समिति बनाई गई है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाणा का दौरा करेंगे और खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह में शामिल होंगे। वे किसानों से सीधे संवाद करेंगे। श्री चौहान वहां एक प्रदर्शनी में भी जाएंगे। इसके बाद कृषि मंत्री पूर्वोत्तर के 2 दिन के दौरे पर जाएंगे। वे गुवाहाटी में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें असम और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ से हुई फसल, गांव और बुनियादी ढांचे की क्षति तथा राहत कार्यों की समीक्षा की जाएगी। सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों के पेट्रोल पंप पर 1 जुलाई से ये प्रतिबंध लागू नहीं रहेंगे। अमेरिका और ईरान के बीच हॉर्मूज जल डमरू मध्य को लेकर विवाद पर आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता होगी। ये बातचीत हाल के सैन्य तनाव और अस्थायी युद्ध विराम के बाद हो रही है। दुनिया के लगभग 20% कच्चे तेल का परिवहन इसी जलमार्ग से होता है। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने हाल में घुसपैठ कर शिविर स्थापित करने संबंधित खबरों का खंडन किया है।

0: सेना ने कहा कि ऐसी खबरें तथ्यहीन और निराधार हैं। भारत ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित कई नागरिकों की मौत हुई है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान की ये कार्रवाई अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला है और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए खतरा है। 3 जुलाई से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर और पंजाब में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। 57 दिन की इस यात्रा से पहले यात्रियों का पहला जत्था जम्मू पहुंचने लगा है। फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में पैराग्वे ने जर्मनी को एक कड़े मुकाबले में हरा दिया। दोनों टीमें निर्धारित समय पर 1-1 गोल की बराबरी पर थी। इसके बाद पेनल्टी शूटआउट में पैराग्वे ने जर्मनी को 4-3 से हराया। वहीं ब्राजील भी राउंड ऑफ 16 में पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM बैंड 102.1 MHz पर ये आकाशवाणी का जोधपुर केंद्र है। अगला कार्यक्रम विविध भारती के मुंबई केंद्र से।

नमस्कार, प्रस्तुत है कार्यक्रम वंदनवार। आज का चिंतन भर्तृहरि के नीति शतकम के अनुसार विद्यारूपी धन सबसे श्रेष्ठ धन है, क्योंकि इसे न तो चोर चुरा सकता है, न राजा छीन सकता है, न भाइयों में इसका बंटवारा होता है और न ही ये कोई बोझ बनता है। ये ऐसा धन है जो खर्च करने पर हमेशा बढ़ता ही है। आइए अब सुने भक्ति संगीत।

आप सुन रहे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन झरोखा के अंतर्गत सुनिए आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

अब से थोड़ी देर में सुबह 6:35 से सुनेगा श्री रामचरितमानस गान, इसका 235वां भाग आप सुन सकेंगे। आज सुबह 6:45 और संध्या 6:45 से आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम संगीत सरिता। इसके अंतर्गत विविध भारती के खजाने से के अंतर्गत गायिका विदुषी डॉक्टर गंगूबाई हंगल से बातचीत सुनिएगा। सुबह 7 से भूले बिसरे गीत, 7:30 से हम है राही प्यार के, सुबह 8:15 से सुनेगा त्रिवेणी, आलेख एवं स्वर विधि जैन, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। सुबह 8:30 से चित्रलोक, सुबह 9:30 और रात्रि 9:30 से आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम आज के फनकार। इसके अंतर्गत संगीतकार जोड़ी कल्याण जी आनंद जी के कल्याण जी पर केंद्रित यह कार्यक्रम सुनेगा, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। सुबह 10 से आपको सुनवाएंगे पिटारा के अंतर्गत सेहतनामा, इसके अंतर्गत सुनेगा डॉक्टर गौरव मेहता गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट और हेप्टोलॉजिस्ट से ममता सिंह की बातचीत का दूसरा भाग, संपादन सहयोग रीमा जोशी, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। सुबह 11 और रात्रि 11 से सुनेगा कार्यक्रम रंग तरंग, दिन में 12:05 से यादों की महफिल, दोपहर 1 से आपको सुनाएंगे कार्यक्रम सुरीला सफर, त्रिवेणी सुनेगा दोपहर 2 से, दोपहर 2:30 से आपको सुनवाएंगे सदाबहार नगमे सखी सहेली, इस कार्यक्रम का वक्त होता है दोपहर 3 से, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

शाम 4 बजे से सुनेगा पिटारा के अंतर्गत सेलुलॉइड के सितारे। इसके अंतर्गत गीतकार, शायर और लेखक शकील आजमी से ममता सिंह की बातचीत का दूसरा भाग सुन सकेंगे। संपादन सहयोग काजल भद्रेगे, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। छाया गीत का पुनर्प्रसारण आप सुनते हैं शाम 5 बजे से, शाम 5:30 से तराने नए पुराने, शाम 6 बजे से हिंदी में समाचार, 6:05 संध्या सुनेंगे तराने नए पुराने का शेष भाग, शाम 6:30 पर झरोखा, शाम 6:35 से संध्या रंजन। फौजी साथियों के लिए कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा शाम 7 बजे से जयमाला। शाम 7:45 से इंद्रधनु के अंतर्गत सुनेगा पॉप एक्सप्रेस। रात 8 बजे से हवा महल के अंतर्गत सुनवाएंगे आपको नाटक उनके महबूब, लेखन विमला रैना का, निर्देशन लोचन बख्शी का। चित्रलोक सुनेगा रात 8:15 से। रात 9 बजे से आपको सुनवाएंगे

कार्यक्रम आपके लिए रात 10 बजे से सुनेगा छाया गीत, आलेख हंस और ममता सिंह का, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी, और रात 10:30 से सुनेगा ढलती जाए रात। रात 11 बजे रंग तरंग। अभी आप सुन रहे थे झरोखा के अंतर्गत कार्यक्रम।

चित्रकूट जाते हुए श्री राम के राज्याभिषेक के लिए गुरु की आज्ञा पाकर भरत जी पवित्र तीर्थों का जल ले गए थे, किंतु वहां से श्री राम के स्थान पर वो केवल उनकी पादुका लेकर ही लौट सके। अब उस पवित्र जल की समस्या थी जिसे किसी उचित स्थान पर तिरोहित करना था। चित्रकूट की सभा में भरत जी के सभी संशयों के समाधान के पश्चात अत्रि मुनि के परामर्श के अनुसार तीर्थों के पवित्र जल की स्थापना उस अगम कूप में की गई जो निकट के पर्वत के समीप ही था। छोटे भाई शत्रुघ्न, अत्रि ऋषि तथा अन्य साधु संतों समेत भरत जी उस अनादि स्थल पर पहुंचे जो कालक्रम में लोप हो गया था। इसी कारण किसी को उस कुएं का पता भी न था। सेवकों ने पवित्र जल रखने के लिए उस जलयुक्त स्थान पर एक विशेष कूप का निर्माण किया। अत्रि ऋषि ने भविष्यवाणी की कि लोग इसे भरत कूप की संज्ञा देंगे। ऋषि ने उस स्थल विशेष की महिमा श्री राम को भी सुनाई। अपने समग्र समाज सहित भरत तथा शत्रुघ्न ने चित्रकूट के उस वनखंड का विचरण करके प्रकृति की छटा का सुख प्राप्त किया।

0: सरिता।
1: मित्रों नमस्कार, संगीत सरिता में विविध भारती के खजाने से कुछ ऐसी रिकॉर्डिंग्स हम आपके लिए चुनकर ला रहे हैं जो अपने आप में अनूठी हैं, क्योंकि वो दुर्लभ हैं और अमूल्य हैं। आइए आज सुनते हैं किराना घराने की वरिष्ठ गायिका विदुषी डॉक्टर गंगूबाई हंगल से डॉक्टर बिंदु माधव पाठक की बातचीत।
2: डॉक्टर गंगूबाई हंगल जी नमस्ते।
3: नमस्ते।
2: सुना है कि आपकी माता जी कर्नाटक संगीत पद्धति की विदुषी थी, फिर भी आपको हिंदुस्तानी संगीत के प्रति कैसी प्रेरणा मिली?
3: उस वक्त ऐसे है, ज्यादा हिंदुस्तानी सुनने को मिलता था। मेरी माए कर्नाटक गाती थी, हम किसी को नहीं सुना उस वक्त।
2: अच्छा।
3: इसलिए जो ग्रामोफोन रिकॉर्ड जी आते जाते चाय के दुकान में हो या किसी के घर में हो, हम सुनते थे, वो हम सुन के थोड़ा थोड़ा गाने लगे
2: हिंदुस्तानी
3: संगीत।
2: अच्छा।
3: उस वक्त झोरा भाई, जानकी भाई और पैरा साहेब, ऐसे लोगों के हमने, मुझे याद है वो नाम इतने, वो हमने गाने लगे थोड़े बहुत सुन सुन के घर में। मुझे मेरे माँ को ऐसे लगा इसको हिंदुस्तानी संगीत पसंद है, इसको सिखाएंगे, इसलिए
2: हिंदुस्तानी संगीत
3: सिखाएंगे।
2: अच्छा।
3: बाद में वो थोड़ा इधर से धारवाड़ में हमारा जन्म है, बाद में मुझे उस हुबली ले गई, वहाँ उलगुर कृष्णाचार्य करके
2: संगीत विद्वान
3: हुए, अब्दुल करीम खान के शागिर्द थे।
2: अच्छा।
3: उसके पास एक साल तक हमने
2: शिक्षा
3: की। तो एक साल में मुझे ऐसा लगता है 50 धृत लय की वो चीजें बंदिश हमको बताए।
2: अच्छा।
3: मेरे आवाज पतला बहुत था।
2: अच्छा।
3: वो तो 3-3 मिनट में एक एक बंदिश में 2-2 ताने ऐसे कुछ वो बताए थे।
2: अच्छा।
3: हम ऐसे छोटा मोटा कहीं हमारे माँ का प्रोग्राम हम बीच में हुए, मैं भी गाते थे,
2: सर लगाते थे।
3: नहीं अलग से, क्योंकि मेरे माँ ने थोड़े बहुत शुरू में जो मुझे सिखाए स्वर के ज्ञान उनसे ही हो गया मेरे माँ से।
2: अच्छा।
3: हाँ, वो सुबह सुबह उस वक्त मुझे बहुत छोटी थी उम्र में, 9-10 साल की, 5 बजे मुझे उठाती थी।
2: अच्छा।
3: हाँ, कर्नाटक स्वर तो कर्नाटक हिंदुस्तानी तो अलग नहीं है,
2: बिल्कुल सही बात।
3: इसलिए स्वर का साधना मेरे माँ से मिल गया।
2: अच्छा।
3: हाँ, वो उनकी पद्धति से मुझे रोज वो 1-1.5 घंटा सूर्यास करवाती थी। बाद में बीच में थोड़ा कुछ वजह से बंद हुआ, बाद में सवाई गंधर्व के पास थोड़े से बड़ी हुई थी, उस वक्त से हमने
2: उच्च शिक्षा प्राप्त
3: हो पाई।
2: डॉक्टर गंगूबाई जी, आप तो किराने घराने की प्रसिद्ध गायिका हैं, क्या आप किराना घराने के विशेषता के बारे में कुछ बताएंगे?
3: किराने घराने ऐसे हैं, स्वर अच्छी तरह से लगाना, बाकी का बेसुर गाते ऐसे नहीं,
2: बिल्कुल
3: ये स्वर में ज्यादा ध्यान रखे हैं। इसलिए वो तो ऐसे बोलते हैं तंत्रवाद्यकार थे इनके पूर्वज, ऐसे कैसे भी वो ज्यादा स्वर का ध्यान रखते हैं, स्वर के ज्यादा महत्व देके स्वर एकदम आ करके नहीं लगाएंगे, उसको गोल ऐसे आ ऐसे करके लगा के एकदम स्वर में गाड़ना बोलते हैं, क्या बोलते मुझे याद नहीं,
2: मग्न हो जाना।
3: ऐसे गाने का हमारे किराने घराने की पद्धति है।
2: क्या आप गुरुकुल पद्धति में विश्वास रखती हैं?
3: हाँ जरूर, क्यों नहीं, क्योंकि हम आजकल देखते हैं सभी कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में संगीत है, फिर वो अच्छे हैं, क्योंकि प्रचार के लिए गायक बनना हो तो गुरुकुल पद्धति चाहिए, नहीं तो उनके लिए क्या होता है, किस घराने से जाना, किसके पास सीखना, ये कुछ मालूम हो जाता है उनको।
2: अच्छा।
3: गायक बनने के लिए गुरु पद्धति, मैंने तो शिक्षा पाई है, मुझे उस विश्वास उसी में है।
2: अच्छा, आप नए छात्रों के लिए क्या कहने के, कैसे रियाज करना चाहिए और रागों की बढ़त कैसी करनी चाहिए?
3: वो तो

0: किसी का आवाज पतला रहता है, किसी का बुद्धि अच्छा रहता है, आवाज नहीं रहती, वो गुरु ने बताना चाहिए किस पद्धति से वो रियाज करना। हमको तो हमारे गुरुजी ने एक एक स्वर का सुबह बैठने से तोड़ी शाम में मुल्तानी ऐसे हमको रियाज करने के लिए मुझे बताए थे। ऐसे एक एक स्वर षड्ज नीचे जितने जाता है खर्च पे उतने एक एक स्वर सांस जब तक है उस तक एक एक स्वर
1: कहना चाहिए
0: और बाद में उसका ताने के तरह एक एक श्वास में कितनी दफे ताने आते हैं। सा नी दा बा पा दा नी सा ये जो है श्वास बढ़ाते ऐसी इतनी छेद पे सात पे कितने आते हैं इतने ऐसे हमको बताए थे। और विस्तार करने में तीन स्वर सारेगा गारेगा इतनी उनके अलग अलग ढंग होता है। बाद में गांधार के बाद मध्यम, मध्यम के बाद ऐसे जितने हमारे बुद्धि काम करेगा करना गाना ये हमको सिखाए उस रास्ता ठीक बताना ये गुरु का काम है।
1: तो आप कहते हैं कि संस्थाओं में जैसे कि यूनिवर्सिटी हो या संगीत के महाविद्यालय हो वहाँ संगीत की शिक्षा यानी कि वहाँ से कोई संगीतकार नहीं
0: बहुत कम हमने तो देखे ही नहीं ऐसे क्योंकि क्या होता है स्कूल से वो थोड़ा बहुत संगीत हो तो हो जाता है और एकदम कॉलेज में आना कॉलेज में जब आते हैं 16 वर्ष तो हो जाते हैं उस वक्त कहीं ना कहीं संगीत शुरू होते हैं। इसलिए मुझे ऐसा लगता है स्कूल से आजकल हम देखते हैं स्कूल में प्रार्थना का अगर दूसरे कोई उनको पता नहीं साल में एक गायक उसमें से निकलते बहुत कुछ होगा। हाँ
1: तो आजकल आपको किस तरह के श्रोता मिलते हैं यानी कि शास्त्रीय संगीत के प्रति अभिरुचि रखने वाले या
0: वो हमारे लिए तो ऐसा नहीं होता हम जो गाते वही सुनने वाले ही हमको मिलते हैं।
1: अच्छा
0: आजकल उनको पता है गंगू भाई दूसरे कोई कुछ नहीं गाएगी वो जो सुनने वाले वही आते हैं मुझे कोई फरमाइश नहीं करते।
1: अच्छा
0: शुरू बचपन में सब कुछ गाती थी हम मराठी गजल ठुमरी हमने मुझे बाद में ऐसे लगा इसमें करने का मुझे फुर्सत नहीं मिलते।
1: अच्छा
0: ये मुझे मेरा ये है वो
1: अच्छा
0: इसलिए यही गाते चले आए हमने।
1: छात्रों के लिए आपका क्या आदेश है?
0: श्रद्धा भक्ति से जो गुरु बताते हैं एक करना फिर विश्वास से।
1: अच्छा आप इतने राग गाती हैं उनमें से आपको अत्यंत प्रिय कौन सा राग है?
0: कभी कभी एक एक राग जम जाता है ज्यादा से ज्यादा से करुणा रस सुबह का राग मुझे ज्यादा मुझे गाने के अच्छा लगता है। वो प्रोग्राम में तो सभी राग एक एक दफे हमको ऐसा लगता है ये राग मुझे इतनी नहीं फिर वो ही जम जाता है कभी कभी ऐसा हो जाता है। ज्यादा से कोमल स्वर का मुझे पसंद है।
1: क्या आप एक उनकी झलक दिखाएंगे किसी एक राग में?
0: अच्छा ये जो हम बता रहे हैं कोमल रेखा वसावली।
1: हाँ

0: धन्यवाद डॉक्टर अंगुबेली।
1: आज आपने सुनी बातचीत किराना घराने की वरिष्ठ गायिका विदुषी डॉक्टर गंगूबाई हंगल से डॉक्टर बिंदु माधव पाठक की बातचीत। आकाशवाणी धारवाड़ केंद्र पर रिकॉर्ड की गई ये बातचीत वर्ष 1990 में विविध भारती के संगीत सरिता कार्यक्रम में प्रसारित हुई। इसकी प्रस्तुतकर्ता थी छाया गांगुली। वर्ष 1913 में जन्मी गंगूबाई हंगल जीवन भर संगीत की साधना करती रही। वैसी कठोर साधना, अथक परिश्रम और कड़े रियाज ने उन्हें

इन्हें चुने शीर्षस्थ कलाकारों की पंक्ति में स्थान दिलाया। उनके अद्भुत कंठ से निकलकर सरों का जो आविष्कार होता था उसका कोई सानी नहीं। आज वो हमारे बीच नहीं है। वर्ष 2009 में वे असीम में विलीन हो गई, परंतु उनकी आवाज हम सुन सकते हैं जैसे उनसे की गई ये बातचीत अभी हमने सुनी। इसी तरह आइए सुनते हैं उनका गाया हुआ राग चंद्रकौंस। तीन ताल में निबद्ध बंदिश के बोल हैं, कब घर आओ पिया।

आप सुन रहे थे विविध भारती के खजाने से। आज की कलाकार थीं विदुषी डॉक्टर गंगूबाई हनगल। अब संगीत सरिता कार्यक्रम समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, भूले बिसरे गीत। इस कार्यक्रम के लिए कीजिए उस थोड़ा सा इंतजार।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। सभी सुनने वालों को राजेश का प्यार भरा नमस्कार। प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं मोहम्मद रफी और कमल बारोट की आवाजों में फूल बने अंगारे। इस फिल्म के गाने के साथ आनंद बख्शी ने लिखा है इसे और संगीत से संवारा है कल्याण जी आनंद जी ने।

0: तू है मेरी वाइफ।
1: यही ऑफिसर से तो रहेगा सारी लाइफ।
2: क्या था?
0: अरे मैं हूँ तेरा हस्बैंड, तू है मेरी वाइफ।

0: फांक पे कहा था वन संवार। सुन गोरी खोल जरा घूंघट का जोर, घूंघट का जोर, सुन भी दे जरा अखियां फोर। सुन गोरी खोल जरा घूंघट का जोर, घूंघट का जोर, सुन भी दे जरा अखियां फोर।
1: सुनिए
2: कहिए, सुनिए एक खुशखबरी,
3: कहिए ना।
2: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने। आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी, जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत।
4: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी,
2: गुजरे दौर की आवाजें धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में मजबूर फिल्म का गाना आनंद बख्शी है। गीतकार और संगीतकार हैं कल्याण जी आनंद जी।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा होगी।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आइए अब सुनते हैं सुमन कल्याणपुर और कमल बारोत की आवाजों में दिल भी तेरा हम भी तेरे। इस फिल्म का गाना गीतकार हैं शकील नौमानी और संगीतकार हैं कल्याण जी आनंद जी।

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है भूले बिसरे गीत। लीजिए अब सुनिए कमर जलालाबादी का लिखा और कल्याण जी आनंद जी का संगीत बद्ध किया गाना। आवाजें हैं लता मंगेशकर और साथियों की, फिल्म का नाम छलिया।

0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
1: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
1: तेरा जवाब नहीं।
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
1: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
1: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर। जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

0: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: मैं और हिमेश भाई कहीं टाउन जा रहे थे तो मेरे को हिमेश भाई बोले, सर कोई ऐसा वर्ड बताओ जो अभी तक नहीं आया हो। मैं, ऐसा कोई वर्ड नहीं है। फिर अचानक मुझे आया, हाँ सर एक वर्ड है, बर्दाश्त। तो सर ये बनाते हैं, बर्दाश्त नहीं कर सकता, दूसरी लाइन की अब दूर नहीं रह सकता। तो उन्होंने तीसरी खुद कह दी, तेरे बिन, और हमारा गाना बन गया।
2: बर्दाश्त नहीं कर सकता, अब दूर नहीं रह सकता, एक दिन तेरे बिन।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 4 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। और आज के प्रोग्राम की आखिरी पेशकश लीजिए, सुनिए आशा भोसले, उषा खन्ना और साथियों की आवाजों में छोटी बहू फिल्म से। उद्धव कुमार हैं गीतकार और संगीतकार हैं कल्याण जी आनंद जी।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बम्बई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: अब आज का भूले बिसरे गीत कार्यक्रम संपन्न हुआ। आगे दीजिए नमस्कार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। हम हैं राही प्यार के। इस कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के। सभी सुनने वालों को राजेश का प्यार भरा नमस्कार। प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में अपराध फिल्म के गाने के साथ। इंदिवर के बोल और तर्ज बनाई है कल्याण जी आनंद जी ने। हमारे सिवा तुम्हारे और कितने दीवाने हैं।

0: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
1: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
0: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
1: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं सखी सहेली।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन, अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम

विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से भी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम है राही प्यार के। लीजिए सुनिए मजो सुल्तानपुरी का लिखा और आर डी बर्मन का संगीत बद किया गाना। आवाजें हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की, फिल्म का नाम दो चोर।

0: भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: मैं और हिमेश भाई कहीं टाउन जा रहे थे तो मेरे को हिमेश भाई बोले, सर कोई ऐसा वर्ड बताओ जो अभी तक नहीं आया हो। मैं ऐसा कोई वर्ड नहीं है। फिर अचानक मुझे आया, हाँ सर एक वर्ड है, बर्दाश्त। तो सर ये बनाते हैं, बर्दाश्त नहीं कर सकता, दूसरी लाइन की अब दूर नहीं रह सकता। फिर उन्होंने तीसरी खुद कह दी, तेरे बिन, और हमारा गाना बन गया।
2: बर्दाश्त नहीं कर सकता, अब दूर नहीं रह सकता, एक दिन तेरे बिन।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 4 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: लीजिए अब सुनिए किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में धड़कन फिल्म का गाना। इसे लिखा है प्रेम धवन ने और संगीत से संवारा है रवि ने।
4: अरे अरे अरे अरे नहीं नहीं नहीं नहीं ओह मैं

ने पहली ही बार देखा गुस्सा, हसीनों का पहली ही बार देखा गुस्सा।

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है हम हैं राही प्यार के। लीजिए सुनिए लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में पिया का घर फिल्म का गाना। आनंद बख्शी हैं गीतकार और संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा रामा शेट्टी और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से भी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम है राहे प्यार के और आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश आशा भोसले किशोर कुमार और साथियों की आवाजों में परिचय फिल्म से। इसे लिखा है गुलजार ने और तर्ज आर डी बर्मन की है।

ए बिच्चू, ए मुन्नी, तुम भी गाओ। ऐसे नहीं, बोलो मैं गाऊं।

FM बैंड 102.1 MHz पर ये आकाशवाणी का जोधपुर केंद्र है। इस समय सवेरे के 8 बजने को है। कुछ ही पलों में श्रोता सुन सकेंगे समाचार प्रभात। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा करें।

0: मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने पहली जुलाई से पेट्रोल और डीजल की बिक्री और वितरण पर लगे अस्थाई प्रतिबंध हटाए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, राज्य में समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण निर्णयों की घोषणा की। दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दी। 30 लाख रुपए तक की कारों को सड़क कर और पंजीकरण शुल्क से छूट दी। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की। हमलों में 36 नागरिकों की मौत और 163 अन्य घायल। अमेरिका और ईरान होर्मुज जलडमरू मध्य पर जारी विवाद को सुलझाने के लिए आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता करेंगे। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में ब्राजील ने जापान को 2-1 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थाई प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के पेट्रोल पंपों पर पहली जुलाई से ये प्रतिबंध लागू नहीं रहेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मंत्रालय के अनुसार पश्चिम एशिया संकट के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई हैं, लेकिन सरकार ने आम लोगों को राहत देने के लिए पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमत में बढ़ोतरी नहीं की। इससे खुदरा और थोक कीमतों में अंतर आ गया है। इसी वजह से 12 जून में अस्थायी प्रतिबंध लगाए गए थे। इसके तहत एक ग्राहक या वाहन को एक दिन में अधिकतम 200 लीटर डीजल देने की सीमा तय की गई थी। इसका उद्देश्य काला बाजारी और जमाखोरी रोकना तथा सभी उपभोक्ताओं को पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना था। मंत्रालय ने कहा कि अब देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सामान्य हो गई है, इसलिए जनहित में इन अस्थायी प्रतिबंधों को वापस लेने का फैसला लिया गया है। अमन की रिपोर्ट के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता UCC लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में इसकी घोषणा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में UCC लागू करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में घोषणा की कि विधेयक की मसौदा गुरुवार को होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा। गुजरात, उत्तराखंड और असम की तर्ज पर सेवानिवृत्त सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन देसाई के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि समिति विवाह, तलाक सहित कुल 9 विषय पर अध्ययन करेगी और 4 सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया है कि अनुसूचित जनजातीय, आदिवासियों, कुर्मी और प्राचीन स्वदेशी समुदाय को इस कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा। संदीप अंदाज गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
0: सरकार ने भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 2 महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में ये निर्णय लिए गए। एक रिपोर्ट।
3: इन फैसलों का उद्देश्य भारतीय सिनेमा को वैश्विक स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना और फिल्म निर्माण के लिए बेहतर माहौल तैयार करना है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय अध्ययन समूह का गठन किया है। ये समूह भारतीय सिनेमा के सामने मौजूद अवसरों और चुनौतियों का अध्ययन कर उद्योग को मजबूत बनाने के सुझाव देगा। मंत्रालय ने राज्यों के लिए आदर्श राज्य सिनेमा विनियम भी तैयार किए हैं और उन्हें अपनाने का अनुरोध किया है। सरकार का कहना है कि इससे देश में आधुनिक, मजबूत और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी फिल्म उद्योग के विकास को बढ़ावा मिलेगा। अमन यादव की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन के आंध्र प्रदेश दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज विजयनगरम में स्थित केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति का कल अनंतपुरम में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के भी प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होने का कार्यक्रम है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाणा का दौरा करेंगे और खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह में शामिल होंगे। कृषि मंत्री किसानों से सीधे बातचीत करेंगे। श्री चौहान का वहां एक प्रदर्शनी में भी भाग लेने का कार्यक्रम है। इसके बाद कृषि मंत्री पूर्वोत्तर के 2 दिन के दौरे पर जाएंगे। वे गुवाहाटी में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें असम और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ से हुई फसल, गांवों और बुनियादी ढांचे की क्षति तथा राहत कार्यों की समीक्षा की जाएगी। श्री चौहान कल अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई और जमीनी

0: ई सर्वेक्षण करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी केंद्रीय सरकारी विभागों और संस्थानों को आज से आवारा कुत्तों के हमलों से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। सभी संबंधित विभागों से तय समय सीमा के भीतर दिशा निर्देश लागू करने को कहा गया है। यह आदेश पिछले वर्ष सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद जारी किया गया है। इसका उद्देश्य विशेष रूप से बच्चों और मरीजों के लिए सार्वजनिक स्थानों को अधिक सुरक्षित बनाना है। दिल्ली सरकार ने नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दे दी है। इसके अंतर्गत 30 लाख रुपए तक की इलेक्ट्रिक कारों पर सड़क कर और पंजीकरण शुल्क नहीं लगेगा। नीति के अनुसार पुराना वाहन स्क्रैप कर नया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर 1 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि ये नीति 1 जुलाई से अगले 4 वर्षों में चरणबद्ध ढंग से लागू की जाएगी। इसका उद्देश्य 31 मार्च 2030 तक दिल्ली को प्रदूषण मुक्त और शून्य उत्सर्जन परिवहन वाला शहर बनाना है। उन्होंने कहा कि सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों के विकास पर 8,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी।
1: पूरी की पूरी पॉलिसी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर केंद्रित है। इस पूरी ईवी पॉलिसी के अंतर्गत हमारा 7,000 करोड़ का खर्च तो मात्र इन 4 सालों में होगा और इसके अलावा 8,000 करोड़ अन्य हम लोग इस ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने में और जो साल दर साल रोड टैक्सेस जो माफ होंगे उसमें हमने कैलकुलेट किया है, तो लगभग 15,000 करोड़ का लाभ दिल्ली की जनता को इस ईवी पॉलिसी के माध्यम से होने वाला है।
0: और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मतदाताओं को गणना प्रपत्र घर घर पहुंचाने का अभियान भी आज से शुरू हो रहा है। मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि बूथ स्तरीय अधिकारी 29 जुलाई तक हर घर जाकर प्रपत्र वितरित करेंगे और भरे हुए प्रपत्र भी प्राप्त करेंगे। उन्होंने बताया कि दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दर्ज कराई जा सकेंगी। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 36 नागरिकों की मौत और 163 लोगों के घायल होने की खबर है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान की यह कार्रवाई अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला है और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए गंभीर खतरा है। मंत्रालय ने कहा कि यह पाकिस्तान के गैर जिम्मेदाराना रवैये को दर्शाता है। भारत ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की है। भारत ने अफगानिस्तान की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भी अपना समर्थन दोहराया है। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी द्वारा हाल में घुसपैठ कर शिविर स्थापित करने संबंधित खबरों का खंडन किया है। सेना ने कहा कि ऐसी खबरें तथ्यहीन और निराधार हैं। अमेरिका और ईरान के बीच होर्मूज जलडमरू मध्य को लेकर विवाद पर आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता होगी। ये बातचीत हाल के सैन्य तनाव और अस्थायी युद्ध विराम के बाद हो रही है। एक रिपोर्ट।
2: विश्व के लगभग 20% कच्चे तेल का परिवहन इसी जलमार्ग से होता है। हाल के दिनों में दोनों देशों के बीच मिसाइल हमलों के कारण हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की आवाजाही और व्यापार प्रभावित हुआ। हालांकि दोनों देशों ने कल अस्थायी युद्ध विराम पर सहमति जताई है। इस महीने हुए समझौता ज्ञापन की अलग अलग व्याख्या के कारण दोनों देशों के बीच फिर तनाव बढ़ गया था। दोनों देशों के बीच होने वाली इस वार्ता में सुरक्षित नौवहन व्यापार क्षेत्र में तनाव कम करने के उपायों पर चर्चा होने की संभावना है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: 3 जुलाई से शुरू हो रही पवित्र अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर और पंजाब में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। 57 दिन की इस यात्रा से पहले श्रद्धालुओं का पहला जत्था जम्मू पहुंचने लगा है। जम्मू में सीसीटीवी कैमरों और आधुनिक निगरानी प्रणाली को सक्रिय कर दिया गया है। सुरक्षा एजेंसियों ने तैयारियों का जायजा लेने के लिए एक मॉकड्रिल भी आयोजित की है। सुरक्षा एजेंसियों ने श्रद्धालुओं से निर्धारित मार्ग का पालन करने और सुरक्षा बलों के निर्देशों का सहयोग करने की अपील की है। झारखंड में आज हूल दिवस मनाया जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये दिवस जनजातीय क्रांतिकारियों सिद्धो कान्हो, चांद भैरव और फूलो झानो के बलिदान के स्मरण में मनाया जाता है।
3: झारखंड के साहिबगंज जिले के भोगनाडी में हुल दिवस के अवसर पर हजारों लोग संथाल हुल के अमर शहीदों सिद्धू कान्हू चांद भैरव फूलों और झानों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे 30 जून 1855 को

0: भोगना डिसे सिद्धू कानू के नेतृत्व में अंग्रेजी शासन और महाजनी प्रथा के खिलाफ संथाल हुल का बिगुल फूंका गया था। क्रांतिकारियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को कई मोर्चों पर कड़ी चुनौती दी और आंदोलन लगभग एक वर्ष तक चला। इस संघर्ष के दौरान चांद और भैरव शहीद हो गए, जबकि बाद में सिद्धू और कान्हू को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर फांसी दे दी। झारखंड में हुल दिवस स्वाभिमान, प्रतिरोध और जनजातीय अस्मिता का प्रमुख प्रतीक माना जाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और गृह मंत्री अमित शाह ने हुल दिवस के अवसर पर क्रांतिकारियों और संथाल विद्रोह के अमर वीरों तथा वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की है। मौसम विभाग ने आज देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, बिहार, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरलम और माहे के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ओडिशा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिकाल में भी कल तेज बारिश की संभावना है। दक्षिण पश्चिम मानसून के कल गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं। जम्मू कश्मीर, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, मराठवाड़ा, आंध्र प्रदेश और लक्षद्वीप में बिजली कड़कने और आंधी आने का अनुमान है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में 5 बार की चैंपियन ब्राजील ने जापान को 2-1 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। अमेरिका के ह्यूस्टन में खेले गए मुकाबले में गैब्रियल मार्टिनेली ने अतिरिक्त समय में विजयी गोल दागा। अब अंतिम 16 में ब्राजील का सामना आइवरी कोस्ट या नॉर्वे से होगा। एक अन्य मुकाबले में पराग्वे ने जर्मनी को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
2: धन्यवाद मुकेश। राजधानी दिल्ली से छपे प्रमुख समाचार पत्रों ने आज दिल्ली में 1 जुलाई से लागू होने वाली नई ईवी नीति को अपने मुख पृष्ठ पर जगह दी है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, दिल्ली की नई ईवी नीति जारी, खरीद पर बम्पर छूट मिलेगी। नवभारत टाइम्स के शब्द हैं, ईवी पॉलिसी, रोड टैक्स, रजिस्ट्रेशन जीरो। दैनिक भास्कर ने छापा है, 30 लाख रुपए तक की ई कार टैक्स फ्री, पुरानी कार स्क्रैप करने पर 1 लाख रुपए। दैनिक जागरण ने इसी खबर पर संपादकीय आलेख में लिखा है, सर्दियों के दिनों में दिल्ली सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में शामिल हो जाती है, ऐसे में आवश्यक था कि राजधानी में प्रभावी ईवी नीति हो ताकि इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को प्रोत्साहित किया जा सके। दिल्ली सरकार को ऐसे वाहन चार्जिंग पॉइंट बनाने चाहिए जो वाहनों की बैटरी को तेजी से चार्ज करने में सक्षम हो। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 10वीं कक्षा के मौजूदा सत्र के विद्यार्थियों पर त्रिभाषा नीति लागू न करने का फैसला भी कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान के बोल है, 10वीं के मौजूदा सत्र पर त्रिभाषा नीति लागू नहीं होगी। पंजाब केसरी ने लिखा है, त्रिभाषा नीति पर छात्रों को बड़ी राहत। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में राजस्थान पत्रिका ने फैजाबाद बार एसोसिएशन का फैसला छापा है। पत्र लिखता है, वकील नहीं लड़ेंगे आरोपियों का केस, संत बोले आस्था पर आघात। वीर अर्जुन लिखता है, आरोपियों का केस लड़ने वाले वकीलों पर लगेगा 5 लाख का जुर्माना। 3 जुलाई से शुरू होने वाली पवित्र श्री अमरनाथ जी यात्रा पर भी समाचार पत्रों की नजर है। दैनिक ट्रिब्यून ने बाबा बर्फानी के प्रथम दर्शन को सचित्र प्रकाशित किया है। नवभारत टाइम्स ने भी पवित्र दर्शन का मनोरम चित्र मुखपृष्ठ पर छापा है। ओडिशा में भगवान जगन्नाथ मंदिर के सामने बड़ी संख्या में आए श्रद्धालुओं की तस्वीर भी अमर उजाला ने छापी है।
1: धन्यवाद सरफिरोजी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से पेट्रोल और डीजल की बिक्री और वितरण पर लगे अस्थाई प्रतिबंध हटाए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, राज्य में समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भारतीय फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण निर्णयों की घोषणा की। दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दी। 30 लाख रुपए तक की कारों को सड़क कर और पंजीकरण शुल्क से छूट दी जाएगी। अमरीका और ईरान होर्मुज जलडमरू मध्य पर जारी विवाद को सुलझाने के लिए आज कतर की राजधानी दोहा में वार्ता करेंगे। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में ब्राजील ने जापान को 2-1 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: FM बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का जोधपुर केंद्र

कार्यक्रम का यह पहला गीत हमने लिया है फिल्म काइट से। गीत गाया है केके ने, लिखा है नासर ने, संगीत से संवारा है राजेश रोशन ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम है फिल्म संगीत। ये गीत हमने लिया है फिल्म वेल डन अब्बा से। गीत गाया है राघव और राजा हसन ने। वो लिखे हैं अशोक मिश्रा ने और संगीत से संवारा है शांतनु मोइत्रा ने।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत और आपके लिए इस कार्यक्रम का ये आखिरी गीत। ये गीत हमने लिया है फिल्म रावण से। इस गीत को गाया है सीडो कुटू ने।

श्रोता, आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत। ये आकाशवाणी का जोधपुर केंद्र है, एफएम बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय सवेरे के 8:30 होने को हैं। आप सुने कार्यक्रम नमस्कार।

0: नित नई जानकारियों और सुरीले गीतों से सजाकर एक नए दिन एक नए अंक के साथ हम हाजिर हैं और इस वक्त आपसे मुखातिब गुलनाज खान
1: और कविता पवार।

0: श्रोताओं, आज साल के छठे महीने का अंतिम दिन 30 जून के आने के साथ ही हम इस साल के आधे सफर को पूरा कर चुके हैं। अब आप विचार कीजिए कि आपके सपने, आपके काम, आपके वादे किस मुकाम पर पहुंचे हैं। अब भी 184 दिन आपके हाथ में है उन्हें पूरा करने के लिए। साल 2026 के 181वें अंक को लेकर हमारी नमस्कार की टीम हाजिर है।
1: तो दोस्तों, ट्रांसमिशन पर हमारे साथ हैं पारसपुरी गोस्वामी और चंद्राराम पटेल। कंट्रोल रूम से हमें साथ मिल रहा है प्रवीण कुमार का। और एफएम पर उद्घोषक का है मंजू लुक्कड़। और हमारे साथ हमें आपसे और आपको हमसे जोड़ते हुए पोलाश दास। और इन सभी के साथ मैं कविता पवार
0: और मैं गुलनास खान, और इस कार्यक्रम के संयोजक और प्रस्तुतकर्ता हैं राजेश लामरोड़। चलिए श्रोताओं, एक नया दिन हमारी जिंदगी के साथ शुमार हो गया है और एक नए दिन चलते हैं सफर पर आगे। आज का दिन आपका इंतजार कर रहा है, आपके सपने, आपके काम, आपके विचार, आपके इरादे, आपकी शख्सियत और भी बहुत
1: बहुत कुछ जो आपके सुबह को महकाने के प्रयास में है।

0: उफ़, इस पथरी की परेशानी ने तो परेशान कर रखा है। कहाँ कहाँ इलाज ना करवाया।
1: अब चिंता की कोई बात नहीं, गुर्दे की पथरी का सफल इलाज, बिना ऑपरेशन, बिना चीरा, बिना टाके,
2: सीमेंस आधुनिकतम लिथोट्रिप्सी मशीन से।
3: प्रोस्टेट गुर्दा रोग के इलाज हेतु
2: कमला नगर अस्पताल, पाल लिंक रोड, जोधपुर।

0: जिंदगी की राह में आगे बढ़ रहे हैं गीतों के साथ, शब्दों के साथ, और जब भी आप अपने किवाड़ से बाहर निकलते हैं तो यकीनन मुलाकात होती है। कभी आप अपने आप से मिलते हैं, कभी दोस्तों से मिलते हैं, किसी अजनबी से मिलते हैं, कभी रास्ते के गड्ढों से मिलते हैं, किसी मोड़ से गुजरते हैं, और फिर कभी कभी चालान के डर से भी आप इधर उधर चले जाते हैं। कभी आपके लिए ये भी हो जाता है कि वाहन चलाते हुए उनसे मुलाकात हो जाती है और वो चालान लेकर हमारे सामने आ जाते हैं। बहरहाल कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे मुलाकात जब होती है तो दिल कुछ कहने लगता है,
1: और दिल ये कहता है ना कि तेरे बिना कुछ नहीं भाता मुझे, और तेरे बगैर कुछ नजर नहीं आता मुझे। और जैसी आपने
0: चश्मे की बात तो नहीं कर रही कविता,
1: जो आपने बताया है कि हम हमेशा बचते हैं उन लोगों से जो हमारी जिंदगी में मुसीबत पैदा करने वाले होते हैं।
0: हाँ, है ना? कहते भी हैं,
1: और हम मिलना चाहते हैं उन लोगों से जो हमारे जीवन में खुशियां लाना पसंद।

0: जाते हैं,
1: जी बिल्कुल, हर
0: इंसान को खुशी। तो जिनके होठों पर मुस्कान होती है, हमारी निगाहें उनसे जरूर मिलती है और मिलना चाहती भी हैं, लेकिन वही किसी की पहली निगाह हमें परेशान करती है तो हम उनसे निगाहें बचाने की भी कोशिश करते हैं। सुबह सवेरे का माहौल है, हर घर का अपना मैनेजमेंट है, सभी लोग अपने अपने तरीके से जीना शुरू कर रहे हैं, कहीं अखबार खुला है, चाय की चुस्कियां हैं, तो कहीं शब्दों की सरिता गुलनाज खान और कविता बहा रही है।
1: जी, मैं तो मुस्कुरा रही हूँ फिलहाल, तो मैं मुस्कुरा ही रही हूँ ताकि कविता मेरी तरफ देखते हुए दिन की शुरुआत अच्छी करे, क्योंकि अभी अभी आपने कहा ना कि किसी चेहरे को अगर मुस्कुराते हुए देखो तो अच्छा लगता है, तो बस अब मैं मुस्कुराना ही चाहती हूँ।
0: और एक चीज जो कॉमन नजर आती है हर घर में, वो है रेडियो सेट, और उस पर बजते हुए वो गाने जो हमारी और आपकी सुबह को महकाते हैं, खूबसूरत बनाते हैं और एक नई ऊर्जा जगाते हैं।
1: जी हाँ, तो चलिए शब्दों

0: सफलता, पहली असफलता, पहली ड्राइव, पहला इम्तिहान, पहली मुलाकात अगर बहुत सुखद रही हो या बहुत दुखद रही हो तो वो ता जीवन हमारे साथ जुड़ी रहती है और उसका असर
1: पहली बार की हर बात याद रहती है और उसमें भी अगर पहला प्यार हो तो कहना ही क्या, पूरा जीवन हमारा उस मोहब्बत की खुशबू से महकता रहता है। और हाँ, जो हमारा पहला असफलता का जो हमने स्वाद चखा होता है वो भी हमारी ज़िंदगी में हर बार हमें सबक देता है कि देखो ज़रा संभल के।
0: जी, और अगर कुछ अच्छा किया है तो कुछ अच्छा ज़रूर पाओगे, है ना। ये सफलता सिखाती है। तो वहीं कुछ चीज़ें और भी होती हैं जो पहली पहली बार ज़िंदगी में शुमार होती हैं और जीवन भर वो हमारे साथ चलती हैं, और उसमें होते हैं हमारे अपने रिश्ते, कुछ देखे अनदेखे और कुछ जाने अनजाने, जिसमें से अभी हम उन रिश्तों में जी रहे हैं जो हमारे श्रोताओं के साथ हमसे जुड़ा है।
1: जी हाँ, ये रिश्ते जो हैं वो हमें इतना मजबूत बनाते हैं। आज जबकि हम बात कर रहे हैं तो कई जाने अनजाने चेहरे हमें सुन रहे हैं, तो यही हमारे रिश्ते की खूबसूरती है। और जब दिल आशना हो जाता है और किसी से आपको शनासाई हो जाती है तो फिर दिल में मोहब्बत भी जाग जाती है
0: और होठों पर एक नगमा उभर आता है।
1: गा के सुनाइए
0: पहली

गुलाल जी, जीवन में कुछ चीजें हमेशा याद रहती है, चाहे वो सुखद हो दुखद हो, है ना। और खासकर जो जिंदगी में पहली बार हुआ होता है, पहली

0: पथरी प्रोस्टेट से पाना हो छुटकारा तो विनायका हॉस्पिटल ही अपनाना, जहां सुप्रसिद्ध यूरोलॉजिस्ट एवं गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर प्रदीप शर्मा द्वारा इसका निदान पाया जा सकता है।
1: RGHS वचिरंजीवी योजना के अंतर्गत निशुल्क ऑपरेशन। पथरी मतलब विनायका हॉस्पिटल, गीता भवन रोड, जोधपुर।
2: चाहे गर्मी हो या जाड़ा, इलाज हो हर मौसम में प्यारा। इस गर्मी से घबरा कर अपनी आँखों की सर्जरी ना टाले। विजिट डॉक्टर कामदार आई हॉस्पिटल, शिप हाउस, पावटा, जोधपुर।

0: तकरीबन 25 मिनट पहले मुस्कुराते हुए चेहरे से मुलाकात हुई, फिर दिल आशना हुआ और फिर पहली पहली बार मोहब्बत हो गई। और रेडियो पर गाने सुनने का आनंद ही कुछ और होता है ना गुलनाज जी?
1: जी बिल्कुल।
0: वैसे तो हम अपने साथ गीतों का जहान लिए फिरते हैं अपने हाथ में मोबाइल के जरिए, लेकिन फिर भी एक इंतजार रहता है रेडियो पर जब गाने बजते हैं तो कि अगला गाना कौन सा होगा।
1: जी, और जब मोहब्बत हो जाती है तो उस व्यक्ति को हम उसका नाम ही नहीं उसका किरदार भी दिल में उतार लेते हैं और फिर एक दूसरे से पूछते भी हैं कि तेरे दिल में क्या है, तुम ही तुम हो। और मोहब्बत इंसान को बहुत कुछ सिखाती भी है और इस गीत में तो हमने ये भी सुना कि कुछ समझ में ही नहीं आता कि क्या करूं।
0: बिल्कुल, एक वजूद मिलता है, एक अस्तित्व मिलता है, एक पहचान मिलती है जो सारी ही इस गीत में थी कि हम कुछ भी नहीं होते लेकिन फिर भी बहुत कुछ हो जाते हैं किसी से मिलके, और मिलके चलना तो अपने आप में वैसे भी बहुत बड़ी बात है।
1: जी चलिए, तो मेल मुलाकातों का सिलसिला बना रहना चाहिए, और कौन कहता है कि मुलाकात नहीं होती, मिलते तो रोज हैं।

श्रोताओं, कार्यक्रम में अब हम एक न्यूज ब्रेक के लिए रुकते हैं। 9 बजने वाले हैं, 9:10 पर आपसे फिर मिलेंगे। नमस्कार कार्यक्रम में।

0: मिलन। ये आकाशवाणी का जोधपुर केंद्र है। 9 बजने को हैं, कुछ देर में हिंदी में प्रादेशिक समाचार रिले होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मंत्रिमंडल ने बुनियादी ढांचा निवेश में तेजी लाने के लिए राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश को मंजूरी दी। प्रदेश के राष्ट्रीय बाघ अभयारण्यों के कोर एरिया कल से पर्यटकों के लिए 3 महीने तक बंद रहेंगे। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कल से जयपुर में शुरू होगा और प्रदेश भर में उमस भरी गर्मी से जनजीवन बेहाल। 45.1 डिग्री सेल्सियस के साथ श्री गंगानगर सबसे गर्म स्थान रहा।

0: समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष NIIF में सरकार का कुल निवेश अब 60,000 करोड़ रुपए हो गया है। ये बुनियादी ढांचे और राष्ट्रीय महत्व के अन्य क्षेत्रों में केंद्र की निवेश प्रतिबद्धता को दर्शाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले सप्ताह अवसंरचना निवेश को गति देने और देश में संस्थागत पूंजी को बढ़ावा देने के लिए कोष में 30,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त निवेश की मंजूरी दी थी। वित्त मंत्रालय के अनुसार इस अतिरिक्त निवेश का उपयोग NIIF के अवसंरचना केंद्रित दूसरे कोष की स्थापना के लिए किया जाएगा। अवसंरचना कोष द्वितीय के लिए लगभग 30,000 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं और इससे परिवहन, ऊर्जा, डिजिटल और शहरी अवसंरचना तथा ई मोबिलिटी जैसे उभरते क्षेत्रों में निवेश किया जाएगा। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के पेट्रोल पंपों पर 1 जुलाई से ये प्रतिबंध लागू नहीं रहेंगे। मंत्रालय के अनुसार पश्चिम एशिया संकट के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई थी, लेकिन सरकार ने आम लोगों को राहत देने के लिए पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों में बढ़ोतरी नहीं की। इससे खुदरा और थोक कीमतों में अंतर आ गया था। इसी वजह से 12 जून से अस्थायी प्रतिबंध लगाए गए थे। इसके तहत एक ग्राहक या वाहन को एक दिन में अधिकतम 200 लीटर डीजल देने की सीमा तय की गई थी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी केंद्रीय सरकारी विभागों और संस्थानों को आवारा कुत्तों के हमलों से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों का आज से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। सभी संबंधित विभागों से तय समय सीमा के भीतर दिशा निर्देश लागू करने को कहा गया है। ये आदेश पिछले वर्ष सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद जारी किया गया है। इसका उद्देश्य विशेष रूप से बच्चों और मरीजों के लिए सार्वजनिक स्थानों को अधिक सुरक्षित बनाना है। प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान और बाघ अभयारण्य कल से पर्यटकों के लिए 3 महीने तक बंद रहेंगे। वन्य जीवों का प्रजनन काल और मॉनसून सत्र शुरू होने के कारण पर्यटन गतिविधियों में बदलाव किया गया है। अलवर के सरिस्का टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में पर्यटक नहीं जा सकेंगे। हालांकि बफर जोन में 2 रूट सैलानियों के लिए खुले रहेंगे। दूसरी ओर सवाईमाधोपुर के रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में आज वर्तमान पर्यटन सत्र का आखिरी दिन है, जिसके चलते वहां बड़ी संख्या में देशी विदेशी सैलानी पहुंच रहे हैं। और अधिक ब्यौरा दे रहे हैं हमारे सवाई माधोपुर संवाददाता।
1: बीते कई दिनों से देशी विदेशी तथा खास और आम सैलानियों की भारी भीड़ है। आज अंतिम दिन बाघों के दीदार के लिए पर्यटकों की विशेष भीड़ देखी जा रही है। गौरतलब है कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA के दिशा निर्देशों तथा मानसून के चलते कल से आगामी 3 माह के लिए प्रमुख भाग जोन नंबर 1 से 5 में पर्यटन पर पूरी तरह रोक रहेगी। हालांकि पूर्व की भांति जोन नंबर 6 से 10 में पर्यटन चालू रहेगा। अंतिम दिन बाघों के दीदार के लिए आज स्थानीय लोगों की भी विशेष भीड़ रहेगी। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाई माधोपुर।
0: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, YouTube चैनल राजस्थान AIR News और Facebook AIR News राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कल से जयपुर में शुरू होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में 2 दिन के इस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन सत्र को सूचना प्रौद्योगिकी और संचार मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ भी संबोधित करेंगे। इस वर्ष सम्मेलन की थीम विकसित भारत 2047 AI enabled data driven and secure digital governance रखी गई है। सम्मेलन में डिजिटल शासन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सुरक्षित डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे तकनीकी पहलुओं पर देश भर के विशेषज्ञ मंथन करेंगे। सम्मेलन के दूसरे दिन केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह देश भर में ई गवर्नेंस के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले विजेताओं को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करेंगे। कोटा बूंदी क्षेत्र को नशा मुक्त करने के लिए अगले 3 महीनों में विशेष अभियान चलाया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कल कोटा में जिला प्रशासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में ये निर्देश दिए। उन्होंने

0: दौरान विभिन्न विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने अपराध नियंत्रण के लिए मॉनिटरिंग सिस्टम को मजबूत करने और कैमरों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जोड़ने की बात कही। इससे पहले श्री बिरला ने श्रीनाथपुरम स्टेडियम में विभिन्न खेल सुविधाओं का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार खेल सुविधाएं विकसित हों, इसके लिए लगातार काम किया जा रहा है।
1: लेकिन यहाँ बड़ी संख्या के अंदर लोग घूमने भी आते थे और इसलिए उनके लिए भी एथलेटिक का एक रास्ता बने और इसके 900 मीटर का ये वॉकवे भी उनके लिए बनाए ताकि खिलाड़ी भी परेशान हो वॉक। और इसी स्टेडियम में सारी सुविधाएं, चाहे आप देखो शानदार रूप से बैडमिंटन हो, बास्केटबॉल हो, टेबल टेनिस हो, जिम हो, लॉन टेनिस हो, सारी सुविधाएं एक स्टेडियम की एक छत के नीचे, ताकि खिलाड़ी बहुआयामी प्रतिभा से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग ले सकें। आज जिम भी है।
0: राज्य सरकार के पंच गौरव कार्यक्रम के तहत चूरू जिले के लिए राज्य वृक्ष खेजड़ी को एक जिला एक वनस्पति के रूप में चयनित किया गया है। उपवन अधिकारी ने बताया कि जिले की विभिन्न पौधशालाओं में इस वर्ष 1.5 लाख से अधिक खेजड़ी और उसकी सह प्रजातियों के पौधे तैयार किए जा रहे हैं। इसके साथ ही वन विभाग द्वारा विभिन्न स्थानों पर खेजड़ी वाटिकाएं भी बनाई गई हैं।
2: इसके लिए चूरू वन विभाग 1.5 लाख के आसपास खेजड़ी उसकी सह प्रजातियों की कर रहा है, जिनका वितरण 5 जून से प्रारंभ हो गया है। ये वितरण आमजन व अन्य विभाग के लिए है, उचित दरों पे है, विभागीय योजनाओं के अंतर्गत। और इसके अंतर्गत हमने इसी पंच गौरव योजना के 2026 के अंतर्गत हमने 5 खेजड़ी वाटिकाएं बनाई है, जिन जो कि चूरू, तारानगर, राजगढ़, सरदारसर और रतनगढ़ में।
0: और अब मौसम। प्रदेश में उमस भरी गर्मी से जनजीवन बेहाल है। राज्य में अधिकतर स्थानों पर तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। औसत तापमान 40 डिग्री के आसपास बना हुआ है। 45.1 डिग्री सेल्सियस के साथ श्रीगंगानगर कल सबसे गर्म स्थान रहा। वहीं चूरू और बीकानेर में 42.8, बाड़मेर में 42.1 और जैसलमेर में 41.6 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड हुआ। मौसम विभाग के अनुसार जोधपुर और बीकानेर संभाग के कुछ हिस्सों में अगले 3-4 दिन अधिकतम तापमान 42 से 44 डिग्री के बीच रहने की संभावना है। इस दौरान हवा में नमी की मात्रा अधिक होने से उमस का असर बना रहेगा। इस बीच राज्य में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के आगामी दिनों में सक्रिय होने के आसार हैं। दक्षिण पूर्वी और पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में 2 जुलाई से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। इस दौरान कोटा और उदयपुर संभाग में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने जयपुर, भरतपुर, कोटा और बीकानेर संभाग में अगले 3-4 दिन गरज के साथ हल्की से मध्यम बरसात की संभावना व्यक्त की है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुनियादी ढांचा निवेश में तेजी लाने और राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश को मंजूरी दी है। प्रदेश के राष्ट्रीय बाघ अभ्यारण्यों के कोर एरिया कल से पर्यटकों के लिए 3 महीने तक बंद रहेंगे। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कल से जयपुर में होगा। और प्रदेश भर में उमस भरी गर्मी से जनजीवन बेहाल। 45.1 डिग्री सेल्सियस के साथ श्रीगंगानगर सबसे गर्म स्थान रहा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
3: प्रादेशिक समाचारों के बाद आप सभी श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं आकाशवाणी जोधपुर की प्रसारण सेवा के सूर्य नगरी चैनल और एफएम सन सिटी चैनल से। इस समय आप सुन रहे हैं हमारा दैनिक कार्यक्रम, नाम है जिसका मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार। और आज के अंक के साथ आपसे मुखातिब हैं गुलनाज खान और
4: कविता पवार। और दोस्तों, हर दिन एक अपने आप में बहुत सारी घटनाओं को साथ लेकर जन्म लेता है और शाम होते होते बहुत सारी चीज़ें उसके साथ जुड़ जाती हैं। आज के दिन की बात करें 30 तारीख की, तो इतिहास के पन्नों को पलट कर देखते हैं कि इस 30 तारीख में क्या क्या कुछ घटित हुआ जिसे हम दोहराते हैं आज के इतिहास में।
3: 1859 में इसी दिन मानवता ने अनोखे संघर्ष का सामना किया था। नियाग्रा जलप्रपात के उग्र जल से लगभग 170 फीट ऊपर

0: एक पतली रस्सी से इसे पार किया था। एक पैर पर संतुलन बनाते हुए, रस्सी पर बैठते हुए और यहाँ तक कि उस पर लेटते हुए भी आगे बढ़े थे। इस साहस को अंजाम देने वाले थे जीन फ्रांकोइस ग्रेटविट, एक फ्रांसीसी कलाबाज जो अपने सुनहरे बालों के कारण ब्लोडिन नाम से जाने जाते थे। 5 साल की उम्र में उन्होंने जिम्नास्टिक का प्रशिक्षण लेना शुरू किया था और महज 6 महीने बाद अपना पहला सार्वजनिक प्रदर्शन किया था और आज के दिन इस साहसी काम को अंजाम दिया था।
1: तो दोस्तों 1937 की बात करते हैं। आज ही के दिन दुनिया का पहला इमरजेंसी नंबर 999 लंदन में जारी किया गया था।
0: श्रोताओं, इसे दुनिया की पहली सार्वजनिक आपातकालीन टेलीफोन सेवा माना गया। बाद में यूएस और कनाडा ने 911 नंबर को स्वीकार किया था और भारत में 112 एकीकृत राष्ट्रीय आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर है।
1: अब बात करते हैं 30 जून 1938 की। तो आज का ही दिन था जब बच्चों के सबसे पसंदीदा कार्टून चरित्रों में शुमार सुपरमैन पहली बार कॉमिक्स के पन्नों पर नजर आया था और उसके बाद सुपरमैन दुनिया भर के बच्चों का पसंदीदा किरदार बन गया।
0: '47 में भारत विभाजन की घोषणा के बाद बंगाल और पंजाब के सीमांकन के लिए बाउंड्री कमीशन यानी सीमा आयोग के सदस्यों की आधिकारिक घोषणा की गई थी आज के दिन।
1: और दोस्तों 1966 में आज ही के दिन अमेरिका में बॉक्सर और एक्टर माइक टायसन का जन्म हुआ था ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में। वे इतिहास में सबसे कम उम्र के हैवीवेट चैंपियन बने।
0: और श्रोताओं, सबसे खास बात यह है कि वे आज भी सबसे कम उम्र के विश्व हैवीवेट खिताब के विजेता बने हुए हैं और WBC यानी वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल खिताब उन्होंने 20 साल की उम्र में जीता था और अपने करियर में उन्होंने तकरीबन 58 मुकाबलों में से 50 मैचों को जीता था।
1: 1966 में आज ही के दिन अमेरिका का पहला महिला संगठन नेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर विमेन का गठन किया गया था और ये आज ही के दिन वॉशिंगटन DC में हुआ और इसमें इस समय करीब 28 महिला कार्यकर्ताएं रही थी।
0: साल 1990 में पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी का विलय हुआ था आज के दिन। '97 में हांगकांग से ब्रिटिश हुकूमत खत्म हुई थी आज के दिन।
1: और सन रहा 2000 का और आज के दिन अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने अमेरिका में डिजिटल हस्ताक्षर को कानूनी मान्यता दी थी।
0: सन 2008 में रविकांत, उमाशंकर चौधरी और विमल चंद्र पांडे को संयुक्त रूप से भारतीय ज्ञानपीठ का नवलेखन पुरस्कार प्रदान किया गया था। सन 2002 में ब्राजील ने जर्मनी को 2-0 से हराकर फुटबॉल के विश्व कप पर कब्जा किया था। सन 2006 में फुटबॉल विश्व कप में जर्मनी ने अर्जेंटीना को हराया था और सन 2005 में ब्राजील ने कन्फेडरेशन फुटबॉल कप जीता था आज के दिन।
1: और सन 2007 में आज ही के दिन संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आम सहमति से शांति रक्षण विभाग के बंटवारे का निर्णय किया था और 2008 में आज ही के दिन रॉबर्ट मुगावे ने जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी।
0: और श्रोताओं, विश्व स्तर पर बात करें तो कांगो में स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है आज के दिन, जब कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य ने राजा लियोपोल्ड द्वितीय के क्रूर औपनिवेशिक शासन के दशकों बाद बेल्जियम से 1960 में स्वतंत्रता प्राप्त की थी। ग्वाटेमाला में सशस्त्र सेना दिवस मनाया जा रहा है। 18

0: 1971 में हुई लिबरल क्रांति की याद में राष्ट्रीय सशस्त्र बलों के सम्मान में ये दिन मनाया जाता है। वहीं सूडान में 1989 में किए गए तख्तापलट की याद में आज क्रांति दिवस मनाया जा रहा है, जबकि इसराइल में आज के दिन नौसेना दिवस मनाया जाता है। 1948 में आज ही के दिन हाइफा बंदरगाह पर इसराइल ने कब्जा किया था और 1993 से ये दिन मनाना शुरू हुआ था। और श्रोताओं, विश्व भर में आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई खास दिन मनाए जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय शूद्र ग्रह दिवस आज मनाया जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय संसदीयता दिवस मनाया जा रहा है और हमारे देश में होल क्रांति दिवस मनाया जा रहा है। इन पर भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये गीत।
1: हेलो
2: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ। आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
1: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
3: सर इतने कहाँ से?
1: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
3: 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
3: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
1: अरे
3: काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
3: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
3: तो पैसे गवाओगे।
5: RBI कहता है
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: गुलाब जी, इतिहास के पन्नों को टटोलें तो कई सारी ऐसे आंदोलन, कई सारी लड़ाइयां लड़ी गई, कई सारी क्रांतियां आई, लेकिन उसके पीछे का कारण अगर देखा जाए तो हर जगह एक ही सामने आया था, वो था आत्मसम्मान और अपने अस्तित्व को बनाए रखने की लड़ाई थी। और ऐसी ही एक क्रांति का जिक्र आज हम कर रहे हैं अपने इस प्रोग्राम में, जिसे हूल क्रांति दिवस के रूप में हम मनाते हैं आज ही के दिन।
1: जी श्रोताओं, भारतीय इतिहास में स्वाधीनता संग्राम की पहली लड़ाई वैसे तो सन 1857 में मानी जाती है, लेकिन इससे पहले भी झारखंड के संथाल परगना में संथाल हूल और संथाल विद्रोह के द्वारा अंग्रेजों को भारी क्षति उठानी पड़ी थी। वहाँ पर एक क्रांति ने जन्म लिया था और उसे हूल क्रांति का नाम दिया गया था। 1855 की बात है। वर्तमान साहिबगंज जिले के भटना

0: डी गांव से ये शुरू हुआ था और इस विद्रोह के मौके पर घोषणा की गई थी, करो या मरो, अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो।
1: ये विद्रोह भले ही संथाल हुल हो, परंतु संथाल परगना के सारे ही जितने भी गरीबों और शोषितों द्वारा ये शोषकों और अंग्रेजों और उसके कर्मचारियों के विरुद्ध एक स्वतंत्र आंदोलन था। और इस जन आंदोलन के नायक भगनाडीह निवासी भूमिहीन और ग्राम प्रधान चुन्नी मांडी के चार पुत्र सिद्धू, कानू, चांद, भैरव थे, और इनके साथ इनकी दो बहनें भी थी, फूलो और झानो।
0: देखिए, समाज के उत्थान के लिए अगर एक परिवार भी आगे बढ़ता है तो वो जो एक कदम है वो क्रांति का रूप ले सकता है। हुल क्रांति से हमें ये सबक मिलता है। श्रोताओं, आंदोलन को कार्य रूप देने के लिए परंपरागत शस्त्रों से लैस होकर 30 जून 1855 को तकरीबन 400 गांव के लगभग 50,000 आदिवासी लोग पहुंचे थे और आंदोलन का सूत्रपात हुआ था।
1: और ये जो विद्रोह है ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की औपनिवेशिक नीतियों, जमींदारों और बाहरी व्यापारियों जिन्हें दीकू कहा जाता था, उनके द्वारा किए जा रहे भयंकर आर्थिक शोषण और जमीन हड़पने और अत्याचार के खिलाफ था दोस्तों। और इस विद्रोह ने अंग्रेजों की नींव हिला दी और बाद में इसे दबाने के लिए अंग्रेजों द्वारा मार्शल लॉ भी लागू किया गया था, जिसमें लगभग 20,000 से ज्यादा संथाल वीर गति को प्राप्त हुए थे। और इसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों को आदिवासियों की रक्षा के लिए संथाल परगना क्षेत्र बनाना पड़ा।
0: जी, और वे जो शहीद हो गए थे वे आज भारतीय इतिहास में अपना नाम अमिट छोड़ गए हैं। और आज जो कुछ भी हमारे पास है वो किसी की मेहनत का फल है, इसे हमें हमेशा याद रखना होगा।

0: ऐसी गीतों को सुनकर एक नज़ारा ताज़ा तरीन हो जाता है दिलो दिमाग में। जब हम रात को छत पर सोकर आसमान को निहारते थे, वहाँ चांद, तारे और बहुत सारे चमकते हुए सितारे दिखते थे, और वो जो रोशनी, वो जो चमक है, वो कहीं ना कहीं एक बहुत ही सुखद एहसास जोड़ जाती थी हमारे भीतर।
1: कभी बड़ा कभी सुहावना लगता था, दिल करता था कि इन तारों के पार भी एक दुनिया होगी
0: जी,
1: कैसी होती है वो दुनिया,
0: और उसे देखने की जिज्ञासा भी होती थी। और आसमान निहारना सच में बड़ा अच्छा लगता है, बहुत ही आंखों को भाता है। पर सौर मंडल में ऐसे कई सारे पिंड तैर रहे हैं जिन्हें हम आमतौर पर देख नहीं पाते, और वो होते हैं क्षुद्र ग्रह, जिसे अंग्रेजी में एस्टेरॉयड भी कहते हैं। और ये क्षुद्र ग्रह यानी छोटे हैं, पर इनका इतिहास बहुत बड़ा है।
1: जी हाँ श्रोताओं, और इनके बारे में ही जानकारी देने के लिए आज का खास दिन मनाया जाता है, 30 जून को मनाया जाता है इंटरनेशनल एस्टेरॉयड डे। संयुक्त राष्ट्र ने क्षुद्र ग्रह के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए आज के दिन को चिन्हित किया। सन 2017 से अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस मनाने की घोषणा की थी। दरअसल श्रोताओं, 30 जून 1908 को रूस की तुंगसुका नदी के पास बहुत बड़ा विस्फोट हुआ था। इसे क्षुद्र ग्रह के चलते धरती पर हुआ अब तक का सबसे बड़ा नुकसान बताया जाता है। इस कारण क्षुद्र ग्रह के खतरे को लेकर और उसके प्रति जागरूकता के लिए 30 जून को क्षुद्र ग्रह दिवस मनाने की शुरुआत हुई थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि कई क्षुद्र ग्रहों का आकार इतना बड़ा होता है कि वे पृथ्वी को भी नष्ट कर सकते हैं। एक क्षुद्र ग्रह कंकड़ के दाने से लेकर 600 मील की चौड़ाई तक का हो सकता है।
0: इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य, क्योंकि हर दिन को मनाने का एक न एक उद्देश्य होता है, और इसका उद्देश्य है कि पृथ्वी से क्षुद्र ग्रहों के टकराने के खतरों, उनके बचाव के उपायों और अंतरिक्ष अनुसंधान के बारे में जन जागरूकता बढ़ाना है। और इसका उद्देश्य ये भी है कि क्षुद्र ग्रहों के प्रभाव से होने वाले विनाश और बचाव की तैयारियों पर चर्चा करने, ग्रह रक्षा और संभावित खतरों से निपटने के लिए नासा जैसे अंतरिक्ष संगठनों का विकसित की जा रही तकनीकों में ध्यान देना और साथ देना है, और पृथ्वी के करीब आने वाले अंतरिक्ष पिंडों की खोज करके उसकी ट्रैकिंग को बढ़ावा देना है ताकि इसके नुकसान से बचा जा सके।
1: श्रोताओं, क्षुद्र ग्रह बड़े पैमाने पर सैकड़ों किलोमीटर विस्तृत क्षेत्र से सूर्य की परिक्रमा करते हैं। क्षुद्र ग्रह से के टूटकर पृथ्वी पर गिरने से बड़ा नुकसान हो सकता है। सौरमंडल में मंगल और बृहस्पति के बीच में बहुत से ऐसे खगोलीय पिंड विचरण करते रहते हैं जो अपने आकार में ग्रहों से छोटे और उल्का पिंडों से बड़े होते हैं। ये सौर प्रणाली के निर्माण के समय बने चट्टानी पिंड होते हैं जिन्हें क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। वैसे कुछ लोग क्षुद्र ग्रह को ही उल्का पिंड भी कहते हैं, लेकिन जब कोई क्षुद्र ग्रह सूर्य का चक्कर लगाने के बाद पृथ्वी पर गिरकर बच जाता है तो उसे उल्का पिंड कहते हैं। वहीं जो क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से टकराने से पहले ही सौर ऊर्जा से जल जाते हैं उन्हें उल्कापात्र कहा जाता है, और ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। हालांकि जब अपने देश की हम बात करते हैं तो भारत में क्षुद्र ग्रह की पृथ्वी से टकराने की घटनाएं बहुत कम आमतौर पर होती हैं।
0: वैसे कहा यह भी जाता है कि क्षुद्र ग्रह आमतौर पर क्षुद्र ग्रह बेल्ट में पाए जाते हैं जो सौरमंडल में मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच पाया जाने वाला एक क्षेत्र है, और ये वो क्षेत्र है जहां क्षुद्र ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं जैसा कि आपने बताया। और इसकी खोज साल 1801 में खगोल शास्त्री गुइसे पियाजी ने की थी, और ये अंतरिक्ष वैज्ञानिकों की तरह से अब तक का खोजा गया सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है। मानव जीवन की उत्पत्ति हो, पृथ्वी के विकास के बारे में मुख्य रहस्य हो, सबके बारे में जानने में ये बड़े ही सहायक होते हैं।

0: अपना सुख एक तरफ, हर माँ बड़न रसुख एक तरफ।
1: निसंतान दंपतियारे जीवन में खुशियाँ री उम्मीद। विनायका हॉस्पिटल एंड IVF सेंटर, गीता भवन रोड, जोधपुर।
2: राज्य सरकार व केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निशुल्क ऑपरेशन, डॉक्टर कामदार आई हॉस्पिटल, शिप हाउस, पावटा, जोधपुर।
3: पथरी, प्रोस्टेट, गुर्दा रोग, मूत्र रोग व यौन रोगों के इलाज हेतु सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रकाश रांका, यूरोलॉजिस्ट व एंड्रोलॉजिस्ट, बरकतुल्ला स्टेडियम के सामने, जोधपुर। मोबाइल 9829027065।

0: जी हाँ श्रोताओं, ले चल रहे हैं हम आपको वहाँ जहाँ से एक देश का तंत्र चलता है। जी हाँ, आज हम आपको उन किताबों की ओर, उन बातों की ओर लेकर चलेंगे जहाँ से आपको संसद पर कोई जानकारी मिल सकती है। लोकतंत्रिक में संसद जनता की सर्वोच्च संस्था है। इसी के माध्यम से आम लोगों को संप्रभुता की अभिव्यक्ति मिलती है। संसद ही वो धुरी है जो देश के शासन की नींव है। संसद की इसी महत्ता को समझने के लिए हर साल 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस मनाया जाता है।
1: जी, ये हर साल आज ही के दिन विश्व स्तर पर मनाया जाता है और ये दिवस संसदों की उन प्रक्रियाओं को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है जिनके द्वारा सरकार की संसदीय प्रणालियां दुनिया भर के लोगों के रोजमर्रा के जीवन को बेहतर बनाती है और साथ ही संसद के लिए चुनौतियों का सामना करने और उनसे प्रभावी तरीके से निपटने के लिए मौका भी है। आज का ये दिन भारत के संविधान के अनुसार संघीय विधानमंडल को संसद कहते हैं और संसद ही वो धुरी है जो देश के शासन की नींव है। ये अभी अभी गुलनाज जी ने बताया।
0: जी, इससे पहले नहीं पता था आपको।
1: जी नहीं।
0: श्रोताओ, इसके अलावा ये दिन अंतर संसदीय संघ के गठन की तिथि भी है जो चिन्हित करता है कि संसदों का एक वैश्विक संगठन है ये अंतर संसदीय संघ और इसे 1889 में स्थापित किया गया था। अंतर संसदीय संघ का उद्देश्य पूरी दुनिया में शांति और सहयोग के साथ संसदीय संवाद को कायम करते हुए लोकतंत्र को मजबूत बनाना है। अपने इसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी देशों की संसद और सांसदों के बीच समन्वय और अनुभवों के आदान प्रदान को प्रोत्साहित करता है। दुनिया के सभी देशों के चुने हुए प्रतिनिधियों को एक ही छत के नीचे लाने की पहल 1870-80 के दशक में शुरू हुई थी। जून 1888 में अमेरिकी सीनेट ने अन्य देशों के साथ संबंधों को परिभाषित करने वाली कमेटी के प्रस्तावों को स्वीकार करने का फैसला किया था और इसकी प्रतिक्रिया में एक संयुक्त बैठक रखने का

0: प्रस्ताव किया गया। 31 अक्टूबर 1888 को यह बैठक हुई और इसके परिणाम काफी सकारात्मक निकले।
1: और भारतीय संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों के राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बने हैं और संसद की इसी महत्ता को समझते हुए हर साल आज ही के दिन यानी 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस मनाया जाता है।
0: साथियों 1889 में सांसदों के एक छोटे समूह के रूप में शुरू हुआ अंतर संसदीय संघ आज संसदीय कूटनीति और संवाद के माध्यम से शांति को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। वर्तमान परिदृश्य में संसदीय लोकतंत्र के लिहाज से अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस का आयोजन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आज जब हम दुनिया के कई देशों में लोकतंत्र के ऊपर नस्लीय धार्मिक उन्माद और तानाशाही खतरे को मंडराते देख रहे हैं, ऐसे में अगर दुनिया में लोकतंत्र को मजबूती से पनपाना है तो दुनिया भर की संसद को लोकतंत्र की आधारशिला के रूप में मजबूत, पारदर्शी और जवाबदेह होने की जरूरत है।

0: यकीनन एक ज़माना गुजर जाता है किसी भी व्यक्ति की ज़िंदगी में जब पारंपरिक खेल खेले हुए और उन दिनों को याद किए हुए, जब छोटी छोटी चीज़ों को भी खेल का हिस्सा बना लिया जाता था। चाहे वो मम्मी जब आटा गूंथती थी तो थोड़ा सा लोया दे लेती थी हमें,
1: जी जी
0: और
1: जी
0: उसी से
1: जी
0: ही
1: जी
0: हम कुछ खेल खेल लिया करते थे।
1: बिल्कुल। और छोटे छोटे चूल्हों में माचिस की तीलियां भर के ही अपने आप को संतुष्ट कर लिया करते थे। वो खेल अलग थे, लेकिन कुछ खेल ऐसे अनूठे होते हैं जिनके बारे में ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता।
0: बिल्कुल, खेलों की दुनिया बहुत अनोखी है और इस अनोखी दुनिया में हम हर सप्ताह अपने श्रोताओं को लेकर जाते हैं हमारे सेगमेंट के जरिए, आओ जाने खेल। और आज का जो हमारा सेगमेंट है उसमें हम एक बहुत ही खास खेल के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। खाने की चीज़ है, खेलने की चीज़ है, लेकिन उसके फायदे अगर आप देखें उस चीज़ के, तो उसमें प्रोटीन बहुत होता है, फायदा करता है। बहरहाल, चीज़ रोलिंग के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे
1: तो
0: हैं।
1: फिर गुलनाज जी, आज चलते हैं ग्लूसेस्टर की पहाड़ी पर।
0: अच्छा, नीचे खड़े
1: जी
0: रहना है पहाड़ी पर या
1: बिल्कुल,
0: ऊपर
1: नहीं
0: चढ़ना है?
1: नीचे खड़े
0: नीचे
1: रहना
0: खड़े।
1: है जी, तो सी की
0: अच्छा
1: है।
0: जी, ठीक है।
1: दक्षिण पश्चिम इंग्लैंड के ग्लूसेस्टर क्षेत्र में हर साल वसंत ऋतु में पनीर लुढ़काने का एक अनूठा आयोजन होता है, और ये आयोजन इंग्लैंड के कोने कोने से और विदेशों से भी लोगों को आकर्षित करता है। और ये जो प्रतियोगिता है वो पनीर की गेंद का पीछा करते हुए

0: की जाती है और उस पनीर के गेंद को पहाड़ी से नीचे लुढ़काते हैं और ये एक ऐसा खेल है जिसमें 9 पाउंड तक वजनी डबल ग्लौसेस्टर पनीर की एक गोल टुकड़े को पहाड़ी की चोटी से लुढ़काया जाता है और ये प्रतियोगी इस गेंद को बारी बारी से नीचे तक पहुंचाते हैं।
1: जी हाँ, सुनने में आसान लगता है लेकिन ये खेल बेहद चुनौतीपूर्ण है। खिलाड़ी अक्सर गिरते हैं।

0: है। खिलाड़ी अक्सर गिरते हैं, लुढ़कते हैं और फिर भी उठकर दौड़ते रहते हैं, और अपने आप में देखने में ये बड़ा ही अजीब भी लग सकता है। इसकी परंपरा की अगर हम बात करें तो इतिहास तकरीबन 200 साल पुराना है या उससे भी अधिक पुराना हम मान सकते हैं। हालांकि इसकी वास्तविक शुरुआत कब हुई इसका कोई निश्चित रिकॉर्ड भी उपलब्ध नहीं है। और इस खेल के कुछ नियम भी हैं, जैसे कि अभी आपने बताया कि पहाड़ी के शीर्ष से गोल चीज़ को लुढ़काया जाता है और चीज़ को लगभग 1 सेकंड की बढ़त दी जाती है, उसके बाद प्रतियोगी थी जो भी हैं उसके पीछे दौड़ते हैं।
1: और जो पहले फिनिश लाइन पार कर जाता है उसे विजेता घोषित कर दिया जाता है, और ये जो पनीर अपने घर ले भी जा सकता है।
0: जी, मतलब यहाँ पर जो है वो कोई ट्रॉफी नहीं दी जाती है, चीज पुरस्कार में दिया जाता है, ये मानकर चले हम।
1: जी बिल्कुल।
0: अच्छा, और मिल बांट कर खाते होंगे सारे प्रतियोगी?
1: बांट के ही खाया जाता होगा क्योंकि इतना सारा तो कोई एक अकेला नहीं खा सकता। और इस दौड़ में भाग लेने वाले लोग ज्यादातर अपने वहां के स्थानीय निवासी लोग होते हैं, और दुनिया के कोनों कोनों से दर्शक जरूर इसमें जुड़ते हैं, अनोखे नजारे को देखने के लिए यहाँ आते हैं। और इस प्रतियोगिता में 4 डाउनहिल रेस शामिल होती है जिसमें 1 महिलाओं के लिए और 3 पुरुषों के लिए होती है, और हर एक रेस जो है उसमें ज्यादातर 14 लोग भाग ले सकते हैं। हालांकि कुछ वर्षों में तो इसमें 40 लोगों तक की भागीदारी बढ़ा दी गई, और इसका शुभारंभ समारोह के संचालक द्वारा किया जाता है जो चिल्लाते हैं तैयार हो जाओ
0: अच्छा।
1: और स्थिर रहो, और दूसरा तैयारी करो, और चौथा होता है शुरू हो जाओ।
0: और दिलचस्प बात यह है कि जब चीज पहाड़ी के ऊपर से नीचे गिरता है तो उसकी गति कितनी तेज होगी, तकरीबन 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चीज जब नीचे गिर रहा है और उसे पकड़ने के लिए प्रतियोगी दौड़ रहे हैं, तो अपने आप में ही ये कितना रोमांच भरा खेल है, ये सोचकर ही दिल खुश भी हो रहा
1: भी होता है। और एक अनूठी बात है जिसे देखने की जिज्ञासा भी पैदा होती है, तो हर दौड़ हर साल वसंत ऋतु के अवसर पे होती है, तो अगर अवकाश है तो जरूर जाइए। और ये अजीब लेकिन मजेदार खेल है और ऐतिहासिक भी है।
0: जी, और ये खेल हमें संदेश देता है कि खेल केवल जीतने का नाम नहीं है बल्कि साहस, उत्साह और परंपराओं का भी उत्सव है। कभी कभी दुनिया के सबसे अनोखे खेल ही हमें सबसे बड़ी मुस्कान दे जाते हैं।

श्रोताओं, खेल के मैदान में आ गए हैं हम और फीफा वर्ल्ड कप 2026 में ग्रुप स्टेज के मुकाबले समाप्त हो चुके हैं और कुल 48 टीमों को 12 ग्रुप में बांटा गया था। ग्रुप चरण के समापन के बाद शीर्ष टीमें राउंड ऑफ 32 नॉकआउट चरण में पहुंच चुकी हैं और फीफा वर्ल्ड कप 2026 का ग्रुप चरण रिकॉर्डों से भरा रहा। 48 टीमों वाले इस ऐतिहासिक टूर्नामेंट में 17 दिनों के अंदर 215 गोल हुए, लाखों दर्शक स्टेडियम पहुंचे और मेसी के साथ साथ कई खिलाड़ियों ने नए रिकॉर्ड बनाए। विश्व कप 2026 के ग्रुप चरण का समापन बेहद शानदार अंदाज में हुआ। फुटबॉल के सबसे बड़े टूर्नामेंट का ये अब तक का सबसे बड़ा संस्करण है। 17 दिनों में पहले से कहीं ज्यादा देशों, खिलाड़ियों और समर्थकों को एक साथ जोड़ दिया। 16 शहरों में खेले गए 72 मैच वैश्विक जुनून, रोमांच और यादगार फुटबॉल के उत्सव में बदल गए।

0: श्रोताओं राउंड 32 के पहले मैच में कल कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हराया। इसके साथ ही कनाडा पहली बार प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। ये तीसरी बार है कि कनाडा की टीम विश्व कप में उतरी है और पहली बार नॉकआउट दौर में पहुंची है। 1986 और पिछले 2022 के फीफा वर्ल्ड कप में कनाडा टीम ग्रुप दौर से ही बाहर हो गई थी। कनाडा की आइस हॉकी तो मशहूर है, अब फुटबॉल में भी कनाडा अपना नाम कमा रहा है। और एक और मैच हुआ था कल फीफा वर्ल्ड कप 2026 के राउंड 32 का मैच, बेहद रोमांचक रहा और आखिरी दौर तक सांसें फुटबॉल देखने वालों की कभी चलती तो कभी रुकती रही। जी हां, ब्राजील ने जापान को 2-1, ब्राज़ील ने 2 गोल किए और जापान ने 1 गोल किया और 2-1 से मात देकर अगले दौर में ब्राज़ील पहुंच गया है। जापान ने 29वें मिनट में केशो सानो के गोल से बढ़त बनाई थी, लेकिन दूसरे हाफ में कैसेमिरो के हेडर और एक्स्ट्रा टाइम के आखिरी मिनटों में ऐतिहासिक गोल की बदौलत ब्राज़ील ने नाटकीय अंदाज में जीत दर्ज की और मार्टिनेली बने ब्राज़ील के हीरो। फीफा विश्व कप 2026 के राउंड 32 के एक बेहद रोमांचक और कड़े मुकाबले में रिकॉर्ड 5 बार की चैंपियन ब्राज़ील ने एशिया की सबसे मजबूत टीमों में से एक जापान को 2-1 से हरा दिया। हार की कगार पर खड़ी टीम ने जीत का सहरा अपने नाम किया और अब ब्राज़ील राउंड ऑफ 16 के मुकाबले में पहुँच गया है और उस मुकाम पर जीत का सपना सजाए ये टीम लगातार आगे बढ़ रही है। और श्रोताओं नमस्कार, कार्यक्रम में करते हैं हम खास बात। राजस्थान के यात्रियों के लिए हवाई सफर का एक नया विकल्प खुलने जा रहा है। कल यानी 1 जुलाई से जोधपुर और जयपुर एयरपोर्ट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ में जुड़ जाएगा और फिर नियमित उड़ान सेवा शुरू होने जा रही है।
1: और दोस्तों यहाँ हम करते हैं एक छोटी सी काम की बात जो आपकी पूरी दिनचर्या को आसान बना दे। तो 10 मिनट की तैयारी सुबह सुबह की आपका पूरा दिन जो है वो खुशगवार बना देती है और शाम को 1 घंटा आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है। कैसे? वो ऐसे कि बिस्तर से उठते ही 1 गिलास गुलगुला पानी पीजिए, मोबाइल बाद में, पानी पहले, ये बॉडी को गुड मॉर्निंग बोलता है और मेटाबॉलिज्म को जगाता है। और रात के कपड़े तह करके रख दिए, नहीं बस 3 मिनट लगते हैं, बिस्तर समेटिए, कमरा साफ कीजिए और मानिए बाहर का मौसम चाहे जैसा हो, साफ कमरा दिमाग को ऑल क्लियर का सिग्नल देता है। और तीसरी सबसे जरूरी बात, जो भी काम है पर्ची पर लिख लीजिए, व्हाट्सएप की लिस्ट पर नहीं। जब दिन में कंफ्यूजन हो तो ये पर्ची आपका जीपीएस बन जाएगी। और सबसे जरूरी काम ये करना है, बालकनी हो, छत हो, खिड़की हो, जहां भी सुबह की धूप मिलती है ले लीजिए, मुफ्त का विटामिन डी है और मूड का चार्जर भी है। छोटी छोटी बातें दिन भर के एहसास को सुखद बना देती है।

0: श्रोताओं ना कस्में हैं ना वादे हैं, हाँ यादें हैं, और यादों में याद कर रहे हैं आज हम सीएनआर राव को, जो रसायन वैज्ञानिक हैं और उन्होंने घन अवस्था और संरचनात्मक रसायन शास्त्र के क्षेत्र में महत्वपूर्ण शोध किए। साथ ही हम याद कर रहे हैं हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार आलोचक डॉक्टर रघुवंश सहाय वर्मा जी को, और प्रगतिवादी विचारधारा के लेखक और कवि बाबा नागार्जुन को याद कर रहे हैं, और राजस्थान के प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता, भारतीय राजनीतिज्ञ और संविधान सभा के सदस्य मुकुट बिहारी लाल भार्गव जी को याद कर रहे हैं, और भारत के प्रसिद्ध चित्रकार कृष्ण जी हवला जी आरा जी को भी हम आज याद कर रहे हैं, और भारतीय राजनीति के पितामह जिन्हें कहा जाता है, दिग्गज राजनेता, उद्योगपति, शिक्षाविद और विचारक दादा भाई नौरोजी को हम याद कर रहे हैं।
1: यूं ही तुम

ना बातें यूं ही है ना मुलाकातें यूं ही है 9:10 से अब तक के सफर में जितने सारे गाने सुने हैं उनके पीछे नाम जुड़ा है कल्याण जी आनंद जी का और आज इन्हें याद करते हैं कल्याण जी वीर जी शाह जिनका जन्म आज ही के दिन 1928 में हुआ और हिंदी सिनेमा जगत के प्रसिद्ध संगीतकार ये रहे हैं आप और हम सभी जानते हैं

0: कल्याण जी ने हेमंत कुमार के सहायक के तौर पर फिल्मी दुनिया में कदम रखा था और वर्ष 1954 में आई फिल्म नागिन के गीतों में कुछ छंद संगीतबद्ध किए थे और भारतीय फिल्मों में इलेक्ट्रॉनिक्स संगीत की शुरुआत करने का श्रेय भी कल्याण जी को ही जाता है और 1992 में संगीत के क्षेत्र में बहुमूल्य योगदान के लिए उन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री से भी सम्मानित किया था।
1: जी हाँ, और 1959 में उनके संगीत से सजी पहली फिल्म आई थी सम्राट चंद्रगुप्त, और इसके बाद जो कुछ भी है सब इतिहास है और उनके गीत हमारे दिल पर अंकित हैं।

0: श्रोतों, इस जोड़ी ने मदारी फिल्म का संगीत दिया था और सुर संसार में अपना अगला कदम रखा था और उसके बाद छलिया और छट्टा सट्टा बाजार में एक बेहतरीन तरीके से उन्होंने संगीत दिया था और बेहतरीन संगीत हमें सुनने को भी मिला था।
1: 1965 से ये नाम गजब की सुर्खियों में आया हिमालय की गोद में। इस फिल्म को जब किया तो इन्होंने शोहरत की बुलंदियों को छुआ। मनोज कुमार की फिल्म उपकार, कस्मे, वादे, प्यार, वफा, सब ये गाने कौन भूल सकता है। संगीत देकर श्रोताओं को भाव विभोर करने की कला इनमें कूट कूट कर भरी थी। पूर्व और पश्चिम फिल्म हो, दुल्हन चली, जब कोई तुम्हारा हृदय तोड़ दे, सदाबहार गीतों से इन्होंने हमेशा समा बांधा और 1970 में विजय आनंद निर्देशित फिल्म जॉनी मेरा नाम में एक गाना, नफरत करने वालों के सीने में प्यार भर दो और पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले झूठा ही सही।
0: वो बात पल भर की थी लेकिन सदियां बीत गई, आज भी मोहब्बत उनकी जी, हमारे दिलों में है।
1: बिल्कुल, तो गीत चाहे कोई भी हो, जहां नाम कल्याण जी आनंद जी आता है, उनके गीतों

0: की एक खासियत है जो श्रोताओं को हमेशा भावविभोर करती है।
1: जी हाँ, 1968 में प्रदर्शित फिल्म सरस्वती चंद्र के उनके सुरीले गीतों का अंदाज ही कुछ अलग था और इस फिल्म के लिए उन्हें बतौर सर्वश्रेष्ठ संगीतकार राष्ट्रीय पुरस्कार से भी नवाजा गया था।
0: जी, और फिल्मफेयर पुरस्कार भी इसी फिल्म को मिला था और कोरा कागज के लिए भी सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का फिल्मफेयर पुरस्कार इन्हें दिया और लगभग 250 फिल्मों में इनका संगीत सुनने को मिला।

0: श्रोताओं, अपना तन और अपना मन स्वस्थ रखिए और जुड़े रहिए आकाशवाणी जोधपुर के साथ। फिलहाल नमस्कार कार्यक्रम से गुलनाज खान और
1: कविता को दीजिए इजाजत।
0: नमस्कार।

अभी सुन रहे थे मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन कार्यक्रम नमस्कार FM बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, ये आकाशवाणी का जोधपुर केंद्र है।

0: अगला कार्यक्रम ओपन शो। ये कार्यक्रम है मुलाकातें गीत की। जुगल किशोर जोशी जी से, सेवानिवृत्त कमांडेंट सीआरपीएफ से मुलाकात, एक भेंटवार्ता संजय व्यास जी की। प्रस्तुति करता है राजेश लामरोड।
1: बहुत बहुत स्वागत दोस्तों 102.1 FM रेडियो सन सिटी पर ओपन शो प्रोग्राम के साथ। हम हाजिर हैं मंगलवार का दिन। मंगलवार के दिन सुबह 10 बजे ये प्रोग्राम लेकर हम हाजिर होते हैं। आप लोग अपने मसरूफियात में रहते हैं, काम पे जा रहे होते हैं या फिर घर के काम कर रहे होते हैं, बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं और जो बड़े हैं थोड़े से वो कॉलेज जा रहे होते हैं। इन दिनों छुट्टियाँ हैं, छुट्टियाँ खुल गई हैं तो वाकई हम ये कह सकते हैं कि गर्मियों के उत्तरार्ध का समय है। गर्मियाँ अभी गई नहीं हैं, बारिश अभी आई नहीं है, कुछ अजीब तरह का मौसम है और इस अजीब तरह के मौसम में हम जान पहचान की ठंडी बयार लेकर आए हैं, अपने मेहमान को लेकर आए हैं। आज हमारे विशेष मेहमान हैं जुगल किशोर जोशी जी, जबलू भाषा के नाम से आप विख्यात हैं। जोधपुर से बाहर जुगल किशोर जोशी और जब रिटायरमेंट के बाद पुनः जोधपुर आ गए तो फिर से जबलू भाषा होकर के आप आ गए हैं जोधपुर में। 37 सालों की सेवा आपने की है सीआर

0: पीएफ में कमांडेंट के पद से रिटायर हुए हैं, यानी काफ़ी ऊंचे स्थान पर आप पहुंचे हैं और बहुत सारे आपके अनुभव रहे हैं, बहुत सारे आपको पुरस्कार और सम्मान मिले हैं क्योंकि आपने निष्ठा और पूरी कर्मठता के साथ काम किया है। 2024 पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में आपने जो काम किया उसके लिए आपको महानिदेशक प्रशंसा पत्र से सम्मानित किया गया और इस तरह का सम्मान आपको पांचवी बार मिला था। और उसके लिए इसके अतिरिक्त महामहिम राष्ट्रपति द्वारा आपको वीरता के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक PPMG मिला हुआ है, उत्कृष्ट सेवा के लिए आपको पुलिस पदक PMMS मिला हुआ है, बहुत सारे सम्मान और पुरस्कार। तो हाजिर हूँ इस प्रोग्राम को लेकर के मैं संजय व्यास, प्रोग्राम के प्रस्तुता राजेश लामरोड और हमारे होस्ट मंजू लूकर जी के साथ में। और मेहमान जैसा कि आज हमारे स्टूडियो में है जुगल किशोर जोशी जबलू भाषा। सर बहुत बहुत स्वागत आपका।
1: थैंक यू, धन्यवाद राजेश जी।
0: बिल्कुल, हम शुरुआत करना चाहेंगे आपके द्वारा कि आप CRPF कमांडेंट के पद से रिटायर हुए और 37 बरस आपने CRPF में आपने सेवाएं दी, तो किस तरह का सफर रहा आप बताइए थोड़ा सा। कब जोधपुर से आपका निकलना हुआ और सेवानिवृत्ति के बाद फिर से जोधपुर आना हुआ, तो ये पूरा जो एक कंप्लीट सर्कल हुआ ये किस तरह का रहा?
1: राजेश जी, फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिकली नेटिव प्लेस जोधपुर से ही मैं
0: जी,
1: तो मेरी बेसिक जो स्कूल एजुकेशन कोतवाली नवचौकिया से हुई और आगे वाली स्कूल पोस्टिकल एजुकेशन से हुई 12वीं तक। उसके बाद SMK से अपने हिंदी लिटरेचर में किया PG, देन आफ्टर PG डिप्लोमा इन पर्सनल मैनेजमेंट इंडस्ट्रियल रिलेशंस वो इंदिरा गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी से किया, देन आफ्टर ज्वाइन एज ए सब इंस्पेक्टर। उस सब इंस्पेक्टर ज्वाइन किया तब ऑल इंडिया में फर्स्ट पोजिशन थी हमारी, हमने न्यूज़ पेपर छपाया। ये आनंद राज जी व्यास जो अभी डिप्टी डायरेक्टर है उसमें असिस्टेंट डायरेक्टर हुआ करते 87 की बात है, तो हमने छपाया कि जोधपुर की जोशी मिस्टर जोशी इज अवॉर्डेड द फर्स्ट रैंक फ्रॉम द डायरेक्ट अपॉइंटेड एज ए सब इंस्पेक्टर इन CRPF इन 1988। 12 मार्च 1988 को ज्वाइन किया दिल्ली जाके। उससे पहले हम यहाँ टीचर थे खारिया मीठापुर में मिलाड़ा के पास में टेम्प्रेरी टीचर। उसमें ऐसा प्रोविजन था कि जो MA फर्स्ट डिवीजन पास है उनको टेम्प्रेरी टीचर रखते हैं, तो मीन टाइम सेलेक्ट हो गए एज ए असिस्टेंट स्टेशन मास्टर साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद में, तो वहाँ ज्वाइन कर लिया। तो वहाँ ज्वाइन किया तो वहाँ 1.5 महीना ट्रेनिंग चली, 3 महीने से पहले प्रोविजन आप विड्रॉल कर सकते हैं, तो मीन टाइम यू आर सेलेक्टेड एज सब इंस्पेक्टर। उसमें टेलीग्राम का प्रोविजन था, तो टेलीग्राम आया, फादर बोले कहाँ गाँव में बकरी बांधो बेटर ज्वाइन CRPF एज ए सब इंस्पेक्टर। वहाँ उनको छोड़ के फिर दिल्ली जाके ज्वाइन किए, बिकॉज उसमें लिखा था यू आर FPL
0: बिफोर द, मतलब
1: पहले टीचर थे
0: मैं गाँव में बकरी बांधना
1: नहीं नहीं ASM में।
0: अच्छा ASM में, जी जी,
1: साउथ सेंट्रल लेवल सिकंदराबाद।
0: हाँ हाँ हाँ,
1: टीचर तो खारिया मीठापुर में थे।
0: बिल्कुल, तो बहुत सारे ऑप्शंस थे आपके पास।
1: नहीं, ऑप्शंस क्या, उससे पहले कमलाल नेहरू कॉलेज में टेम्परेरी लेक्चरर थे
0: जी। तो ये है कि ये आकस्मिक हुआ कि भई आप बहुत सारे एग्जाम्स दे रहे थे अलग
1: नंबर ऑफ एग्जाम लिखे, नंबर ऑफ एग्जाम लिखे,
0: तो ये हुआ कि एक तरह से किस्मत ने लिखा कि आपको इस क्षेत्र में जाना है, हालांकि आप किसी भी क्षेत्र में जा सकते थे जहां भी आपका होता और जो भी आपको रुचता। तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ये जो एक अर्धसैनिक बल है एक तरह का, ये यहाँ जाने के बाद आपको इस नौकरी, ये नौकरी रास आ गई क्योंकि जोधपुर से बाहर भी रहना था।
1: शुरुआत में तो थोड़ी दिक्कत रही, बहुत व्हिपिंग की है इनिशियल स्टेज पे कि कहाँ फंस गए, स्टेशन मास्टर ठीक थे, टीचर ठीक थे, क्योंकि इनिशियली ज्वाइन किया दिल्ली, देन आफ्टर 10 दिन के बाद में ज्वाइन किया वहाँ चेन्नई में वहाँ बेसिक ट्रेनिंग के लिए, और वो साल भर ट्रेनिंग तो राजेश जी मतलब ऐसा लगा कि वो जिंदगी से एक साल कम कर दें, इतना दौड़ भाग उसमें, बेसिक ट्रेनिंग तो नरक वाला हिसाब है।
0: किस तरह की ट्रेनिंग होती है, क्या बहुत मुश्किल ट्रेनिंग होती है?
1: तो फिजिकल फिटनेस, दौड़ भाग, वेपन ट्रेनिंग, लॉ, IPC CRPC, वही जो बेसिक ट्रेनिंग सभी पुलिस डिपार्टमेंट की है।
0: तो फौज की जो ट्रेनिंग होती है वो मिलती जुलती है?
1: नहीं, फौज की ट्रेनिंग
0: अलग ट्रेनिंग है, वो अलग है, ये अलग
1: पुलिस डिपार्टमेंट तो सेमी पुलिस से इसलिए।
0: बिल्कुल, तमाम तरह की ट्रेनिंग होती है और बहुत मुश्किल, मतलब जो अनुशासन होता है सुबह जल्दी उठना और शाम को काफी देर तक फिर खाना खाना, ये 24 घंटे कैसे आपके निकल जाते हैं ये पता नहीं लगता ट्रेनिंग में।
1: उस समय मैनुअली सिस्टम था, चिट्ठी का था, दोपहर में जब 12:30 बजे परेड खत्म होती है और 2 बजे क्लास शुरू होती, उसी बीच में वहाँ चेन्नई में पोस्ट ऑफिस था, 65 पिन कोड था, वो आता भैया चिट्ठी चिट्ठी जुगल किशोर जोशी, बड़ा सांस आता कि घर से चिट्ठी आई है, वो एक टाइम बीत गया वहाँ।
0: बिल्कुल, आपसे बातचीत जारी रहेगी और ओपन शो प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। हम आज बातचीत कर रहे हैं विशेष मेहमान के तौर पर आमंत्रित जुगल किशोर जोशी जी जबलू भाषा से। आप 37 सालों की सेवा पूरी करके और 30 जून, आज 30 जून का

0: दिन है, 2025 को आप रिटायर हुए थे, पूरा एक बरस हो गया आपको रिटायर हुए, तो आपको सेवानिवृत्ति की हम पुनः आपको बधाइयां देते हैं और आपके उज्जवल भविष्य की कामनाएं करते हैं। और आपने अब तक जो अपना सेवाकाल रहा है उसमें क्या क्या अनुभव खट्टे मीठे रहे वो हम बातचीत के दौरान आपसे जानेंगे, लेकिन फिलहाल अपने दोस्तों को एक गाना सुनवाते हैं। तो आपकी पसंद का रहेगा गाना, कौन सा गाना आप हमारे दोस्तों को सुनवाना चाहेंगे?
1: ओ दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले रहे, हम रह गए अकेले।
0: तो मंजू जी, हमारी होस्ट से हम पूछना चाहेंगे, तैयार हैं? और आपने इशारा कर दिया है कि तैयार हैं, गाना सुनते हैं, उसके बाद हाजिर होते हैं 102.1 FM रेडियो सन सिटी ओपन शो प्रोग्राम में, जिसमें आज हमारे विशेष अतिथि हैं जुगल किशोर जोशी जी।

0: बहुत बहुत स्वागत दोस्तों 102.1 FM रेडियो सन सिटी पर ओपन शो प्रोग्राम में। आज हमारे साथ में है जुगल किशोर जोशी जी, जबलू भाषा है, और 2025 में 30 जून आज ही के दिन आप सेवानिवृत्त हुए थे। और सेवाकाल 37 सालों के सेवाकाल में आपको बहुत सारे पदक और सम्मान मिले हैं। CRPF कमांडेंट के पद से आप रिटायर हुए और इस सेवा में आप उपनिरीक्षक के पद से आए थे। आपने बताया कि आपकी चेन्नई में ट्रेनिंग हुई थी,
1: बेसिक ट्रेनिंग।
0: जी हाँ, बेसिक ट्रेनिंग हुई थी और उसमें तमाम जो लगभग मैं कह सकता हूँ कि जो फौजी अनुशासन होता है उस तरह की ट्रेनिंग हुई थी, फौजियों की जिस तरह की होती है।

0: और चिट्ठियां आती थी तब बहुत अच्छा लगता था, ऐसा लगता था घर थोड़ा और नजदीक आ गया है। तो आपने कहा कि शुरू में मन नहीं लगता था और चिट्ठियों का इंतजार रहता था, तो बाद में आपने पूरी निष्ठा और कर्मठता के साथ में सेवाएं की। कब से आपको ऐसा लगा कि मैं इस सर्विस के लिए ही बना हूं? ट्रेनिंग हो गई, उसके बाद फिर पोस्टिंग हुई होगी आपकी, वो कहाँ हुई थी?
1: संजय जी, ऐसा ऐसा तो कुछ फीलिंग नहीं हुआ, क्योंकि धक्के में चलते गए और कंटिन्यूस काम होता गया। बेसिक ट्रेनिंग के बाद चंडीगढ़ भेज दिया, चंडीगढ़ बाद अगरतला, इतना घुमाया कि आज अगर सोचते हैं तो ये जोधपुरी साफा है ना, जो सराफा बाजार का, ये
0: जी
1: पहनना इस केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की नौकरी में आसान काम नहीं है।
0: जी जी
1: मेरी माता
0: बिल्कुल
1: जी MA MED थी, प्रिंसिपल से रिटायर हुई, उनका AG था, रिटायर हो गए, पढ़ लिए फतेहपुरा आसपास, मंडी राजमहल, मैक्सिमम राजमहल आगे चले
0: आपने
1: गए।
0: पूरा भारतवर्ष एक
1: हम
0: तरह
1: तो कहाँ
0: से
1: नहीं गए, आप
0: घुमाए।
1: कुछ जगह बताओ तो मैं बता दूंगा जगह है,
0: जी
1: आप
0: जी
1: कोई जगह बोलो बता देंगे जगह है।
0: हाँ, लेकिन आपको जगह घूमने का मौका भी मिलता था?
1: हाँ घूम तो कोई दिक्कत, 2001 से तो गजेटेड ऑफिसर बन गया, कोई दिक्कत ही नहीं
0: जी, तो
1: उसमें।
0: कौन सी जगह आपको अभी भी बिल्कुल अपने मन के करीब लगती है, आपको लगता है कि इस जगह बार बार जाया जाना चाहिए?
1: दिल्ली,
0: दिल्ली।
1: मैं बहुत टाइम रहा SPG में, 15 साल में।
0: हाँ दिल्ली, लेकिन बहुत सारे लोग दिल्ली को प्रदूषण और इन
1: हाँ
0: सारी
1: है,
0: वजहों से कम पसंद करते हैं,
1: लेकिन
0: आपको दिल्ली शहर बहुत अच्छा
1: वेस्ट
0: लगता है।
1: बंगाल, कलकत्ता इटसेल्फ,
0: हाँ कोलकाता का एक अलग ही
1: मैं तो
0: चार्म
1: आपसे भी
0: है।
1: पर्सनल सबमिशन को गंगा सागर एक बार जाके आए
0: जी
1: और
0: जी
1: उनकी हेल्प ले, हमारे जोधपुर के जो बीकानेर के हैं,
0: हाँ
1: दे आर
0: हाँ
1: वेरी वेल मेच्योर्ड एंड वेल, आई मीन कनेक्टेड विद अथॉरिटी ऑफ सो कॉल्ड गंगा सागर,
0: अच्छा अच्छा
1: तो कोई
0: वाह,
1: इतनी असुविधा कम होगी।
0: क्योंकि ये तीर्थ है जो जोधपुर क्या बल्कि पूरे राजस्थान और पूरे भारतवर्ष के लोग जाते ही जाते हैं, सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार, वो कहते
1: लिटरली
0: हैं
1: ये
0: ना।
1: बहुत वाकई में बहुत टफ काम है।
0: हाँ हाँ
1: अगर
0: हाँ
1: आपको, मैं आपको बाई दे बताऊँ, वेस्ट बंगाल हावड़ा से ही टोटल 102 किलोमीटर तक का बाई रोड है, उसके बाद में एक बहुत बड़ा शिप जिसमें 500 आदमी बैठ सकते हैं, उसका किराया आप सरप्राइज करेंगे, 9 रुपये किराया उसका, और वो 50 मिनट तक रन करता है,
0: अच्छा
1: 500
0: अच्छा
1: आदमी, गाड़ी घोड़ा
0: काफी तेल
1: मोटरसाइकिलें,
0: डीजल जलता
1: हाँ वो
0: होगा
1: सरकारी है ना इसलिए।
0: सरकारी। तो वहाँ एक चीज़ आपने शुरू से देखी होंगी जब आप रहे होंगे कि कोलकाता में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो काफी चीप रहा है, ऐसा बताया
1: कॉस्ट पे
0: जाता है ना।
1: हाँ
0: जी, और ट्रामे भी चलती थी आप जब थे तब
1: यस,
0: कोलकाता में। ये एक बहुत अनुभव विशिष्ट तरह का होगा कि आपके, आप जा रहे हैं सड़क से गुजर रहे हैं और आपके पास से ट्रेन जैसी कोई चीज
1: एक
0: निकल
1: डब्बा
0: गई,
1: ट्राम
0: एक
1: का अगर
0: डब्बा।
1: आपने लीटर देखो, एक डब्बा होगा, और लोग अपना
0: हाँ
1: आप टू बी यूज्ड हो गए लोग वहां पे, जैसे
0: अच्छा
1: यहाँ नहीं है मोटरसाइकिल जाओ तो रोड बंद है तो लोग बोलेंगे अभी मैं आया तो बोला इधर चले जाओ भाई साहब,
0: अच्छा अच्छा
1: बड़ा
0: अच्छा
1: सेट डील है ना जोधपुर सिटी में, तो वैसे ही वहाँ सेट डील है, तो अपना आप लोग साइड में हो जाते, कहीं विसल देने की जरूरत ही नहीं उसको,
0: अच्छा अच्छा
1: वो सिटी के
0: जैसे
1: बीच में चल रही है वो।
0: बीच में चल रही है, बिल्कुल बाकायदा उसका ट्रैक बना हुआ होगा, उसी पे वो चलती होगी, उसकी स्पीड लेकिन मैनेज हो
1: बहुत
0: सकती
1: स्लो, बहुत
0: होगी
1: स्लो, 15
0: बहुत।
1: 20 20 बजे
0: बिल्कुल।
1: उतर चढ़ते हैं लोग, एक डब्बा है बेसिकली, 50 आदमी आते हैं तो,
0: आप
1: लेकिन
0: जितनी भी जगह गए वहाँ जोधपुर का भोजन आपने मिस किया होगा, तो जैसे दिल्ली का आपने जिक्र किया, तो दिल्ली में जो मिठाइयाँ और जो स्नैक्स, खास करके मिर्ची बड़े और समोसे, समोसे तो मिल जाते हैं लेकिन मिर्ची बड़े उस क्वालिटी के नहीं मिलते होंगे,
1: कोई शक
0: तो वो
1: नहीं।
0: आपने कैसे मेकअप किया, उसकी क्षतिपूर्ति आपने कैसे की?
1: मैं संजय जी एक बात बताऊं, शायद आप इतना फैमिलियर नहीं होंगे कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि जिस दिन घर छोड़ते उस दिन से मैसिंग सिस्टम है, और
0: ओके
1: 2000 के बाद में अफसर बनने के बाद तो घर पे ही कुक किया तो कोई दिक्कत ही नहीं,
0: जी।
1: इतने दिन मिसेज साथ फिर कुक आ जाए तो वो बना दे जैसा आप चाहो वैसे बना देता, कोई दिक्कत नहीं, ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज समझो,
0: बिल्कुल,
1: नहीं
0: तो
1: तो
0: आप
1: यहाँ
0: अपनी
1: तो
0: पसंद की चीजें कह के बनवा सकते थे
1: कोई दिक्कत
0: जी।
1: नहीं। बाकी तो सारी उम्र नॉन वेज रहे तो कोई वेज रहे
0: जी जी
1: तो कोई दिक्कत नहीं, बड़ी ऑड मैन आउट रहे लोगों के बीच में, क्योंकि
0: हाँ
1: 99% आदमी हमारे फोर्स में शराबी कबाबी और मीट मच्छी वाले हैं, तो बोले बड़े, इवन तो मुझे अभी याद है 2008 में अमित कुमार IPS थे, अभी IG कश्मीर है, कहीं घूम गए रात को पेट्रोलिंग में 11:30 बजे, तो रात को आए तो मेंबर ऑफ राज्यसभा था एक होटल में, बोला डिनर करेंगे 10 बजे, क्या शाम को 8 बजे निकले, तो निकल गया तो फटाफट मीटिंग लगा, मैं SP साहब, वो राज्यसभा MP और एक DSP हेडक्वार्टर चौधरी साहब अकबर एहसान, एहसान चौधरी वो मेरे पास में फटाफट मीटिंग आ गई, तो मैं थोड़ा ऐसे बोला अरे चौधरी महंगा साहब, मैं तो ऐसे जो बेचारा इतने गोली की तरह हाथों हाथ वो पनीर की सब्जी और दाल बना बुलाया, आई एम सरप्राइज एंड शॉक, कह रहे जोशी मैं भूल गया, मैं कोई बात नहीं सर, मैं शुरू उन्होंने शुरू कर दिया, मैं शुरू नहीं किया, क्या हुआ, मैं सर मैं तो काम नहीं है इसका, वो 4 प्लेट लगे रख दी, वो उधर पुलवामा की बहुत बड़ी फेमस है उधर का मीट पता नहीं पर्टिकुलर टाइप का, तो हमारा कोई कोर्स कोई काम ही नहीं, मैं बैठ रहा चुपचाप शुरू, मैं चुप रहा, मैं क्या बोलता, ओ जोशी आई गॉट द पॉइंट, आता बोला उसको ऐसे को सबीर अहमद,
0: बिल्कुल
1: सबीर अहमद वो मतलब हार्डली इतना परफेक्ट है, सोचो मतलब 7-8 मिनट में पनीर की सब्जी कहीं से सेटिंग करके लेकर दाल शुरू करो बस।
0: बिल्कुल, ये आपकी जो

0: सर्विसेज हैं, इस तरह की जो सर्विसेज होती हैं उनमें कमांड जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और वो कमांड ट्रेवल करती है बिजली की गति से। तो जैसे ही पता लगा कि भाई आपको ये चीज़ सूट नहीं हो रही है, आप नहीं खाते हैं, तो उन्होंने बिल्कुल उसी बिजली की चपलता के साथ में जो आपकी पसंद की चीज़ है वो सामने पेश कर
1: नहीं,
0: दी।
1: ये मैं जस्ट आपकी नॉलेज के लिए संजय बताऊं कि जहाँ बेल्ट फोर्स है ना, चाहे CRP हो, लोकल पुलिस हो, आर्मी
0: जी
1: हो, वहाँ सीनियर अफसर बोलना और वो गोली की तरह काम होना, दिस इज द
0: बिल्कुल,
1: फैक्ट।
0: ये अनुशासन जरूरी भी
1: ये जरूरी है। अगर
0: बिल्कुल
1: SP साहब बोल लिए जी थोड़ा ऐसा करें, दौड़ के गोली की तरह वो दौड़ के काम करेगा। डायरेक्टर आए भी आए वहाँ पे किश्तवाड़ में, कोई प्रोग्राम था, 3 घंटे रुके, चॉपर्स आए, 3 घंटे रुके वो, और 3 घंटे बोला अचानक हो गया मुझे जेल का विजिट करना है, तो DSP हेडक्वार्टर को बोला फटाफट, वो गोली की तरह गया वहाँ जाके, हाथों हाथ फोन के अपने लेके आ जाओ सर, तो हम लेके गए CRP वाले और SP साहब। तो ये है, नहीं तो कैसे होगा, वो डॉक्टर आने वाला तो अपनी मर्जी से काम करेगा।
0: तो ये रहा कि आपकी जो सर्विस है उसमें अधिकांश लोग थे वो सामिश भोजी थे और वो पूरी तरह से शाकाहारी नहीं थे
1: नॉन वेज में
0: जी।
1: से
0: और कई ऐसी जगहें हैं जहाँ पर, जैसे हमारे यहाँ जोधपुर में या राजस्थान में, शाकाहार एक बहुत आम दृश्य होता है। आप अगर शाकाहारी हैं तो आपको कोई दिक्कत भी नहीं होती और आपको कुछ भी असहज महसूस नहीं होता। राजस्थान में कहीं भी जाएंगे तो शाकाहारी होना मतलब ये है कि बहुत सारे ऐसे होटल, ढाबे या रेस्टोरेंट हैं जो केवल मांसाहार परोसने के नाम पर तो चल ही नहीं सकते यहाँ। लेकिन बहुत सारी ऐसी जगह भी है, जैसे आपने पुलवामा का जिक्र किया, उसी तरह जैसे पश्चिम बंगाल का मैं जिक्र करूँ तो हर भोजन में मछली वो शौकीन लोग हैं। तो ऐसी कौन कौन सी जगह हैं जहाँ पर आपको शाकाहारी होने में दिक्कत तो नहीं हुई, क्योंकि आप चूँकि सर्विसेज से
1: हमारा तो
0: थे,
1: मैस
0: हाँ मैस सिस्टम
1: संजय साथ
0: था,
1: चलता है।
0: बट ये आपने देखा कि शाकाहार वहाँ बहुत दुर्लभ दृश्य है, ऐसा कौन सा आपने स्थान पाया
1: जे एंड के
0: जे एंड
1: पर्टिकुलरली
0: के में?
1: और नॉर्थ ईस्ट में,
0: नॉर्थ ईस्ट में तो यही स्थिति
1: अगरतला
0: है।
1: में, नागालैंड में, नागालैंड में तो लिटरली वेरी वेरी डिफिकल्ट। मैं नाम भूल गया उसके, SP का IG बन के रिटायर हुआ, लोकल LPS से था, फिर IPS कन्वर्ट हो गया, तो बड़ा उस समय 92-93 में वो सिस्टम था, कैश पेमेंट का सिस्टम था। तो दो
0: अच्छा
1: डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से, दीमापुर से, स्टेट कैपिटल तो कोहिमा से दीमापुर 60 किलोमीटर दूर है, दीमापुर से जूनो भुट्टो और ट्वेंसांग, दो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, वहाँ पे पेमेंट कैश चलता था। तो हमारे पास चॉपर था CRP के पास, तो चॉपर में DSP हेडक्वार्टर हम बैठ के जाके वो पैसा दे के आते कैश, तो वो सुबह जाते हो, उन्होंने खाने की व्यवस्था करी थी वहाँ भी, वो नॉन वेज का था कचरा साहब। मैं सर हमारे मैस में एक प्लाटून पोस्ट थी 30 आदमी की, मैं हम वहाँ खाना बनवा लेंगे। बोला हमारा तो पुलिस का वो तो उल्टा स्टाफ है ना, तो फिर उन्होंने कहा हमने प्लाटून पोस्ट पर खाना खाया, आधा घंटा चौपड़ लेट हुआ, कोई बात नहीं, ये
0: जी।
1: बात
0: तो जुगल किशोर जोशी साहब, बातचीत बहुत सारी करनी है आपसे
1: है।
0: और आपके सम्मान और पदकों पर भी हम बात करेंगे कि इस सेवा में आपको विशिष्ट और निष्ठावान कार्यों के लिए आपको कई बार सम्मानित किया गया। लेकिन वक्त हो चला एक और गीत सुनने का, तो आपकी पसंद का गाना जो आप हमारे श्रोता दोस्तों को सुनवाना चाहते हैं वो कौन सा है? जो

0: उफ़, इस पथरी की परेशानी ने तो परेशान कर रखा है, कहाँ कहाँ इलाज ना करवाया।
1: अब चिंता की कोई बात नहीं, गुर्दे की पथरी का सफल इलाज, बिना ऑपरेशन, बिना चीरा, बिना टाके,
2: सीमेंस आधुनिकतम लिथोट्रिप्सी मशीन से।
3: प्रोस्टेट गुर्दा रोग के इलाज हेतु
2: कमला नगर अस्पताल, पाल लिंक रोड, जोधपुर।
4: अपने खेत, बगीचे, घर, टेरेस या ऑफिस को बनाइए हरा भरा, पौधे उगाइए, पर्यावरण बचाइए।
5: आज ही पधारें लालजी नर्सरी, रानो जी का बाग, खोखरिया, बिरा मंडो।
4: लालजी नर्सरी गूगल पर सर्च कीजिए।
6: लालजी नर्सरिया, कुछ समय हरियाली में बिताओ।
7: चाहे गर्मी हो या जाड़ा, इलाज हो हर मौसम में प्यारा। इस गर्मी से घबराकर अपनी आँखों की सर्जरी ना टाले। विजिट डॉक्टर कामदार आई हॉस्पिटल, शिप हाउस, पावटा, जोधपुर।
8: बहुत बहुत स्वागत दोस्तों, 102.1 FM रेडियो सन सिटी पर ओपन शो प्रोग्राम के साथ हाजिर हूं मैं संजय व्यास। और विशेष मेहमान के तौर पर आज इस प्रोग्राम में हमने आमंत्रित किया है जोगिल किशोर जोशी बबलू जबलू भाषा को। 37 साल की सेवा के बाद आप CRPF कमांडेंट के पद से रिटायर हुए हैं। रिटायरमेंट के बाद आप जोधपुर पुनः वापस आ गए हैं, यहीं बस गए। तो सर, रिटायरमेंट के बाद आपके मन में ये बिल्कुल क्लेरिटी थी कि जोधपुर ही बसना है, या फिर आपके मन में सेवा काल के दौरान कभी ये आया कि इस शहर में जैसे जयपुर हुआ, दिल्ली हुआ, वहाँ भी रहा जा सकता है, बसा जा सकता है, या बिल्कुल क्लेरिटी थी शुरू से ही कि जोधपुर ही वापस आना है?
9: सपने में नहीं सोच सकते जोधपुर का नाम, सपने में नहीं सोच सकते। जोधपुर में भी सिटी में
8: जोधपुर के सपने आ सकते हैं, लेकिन जोधपुर के अलावा कोई सपने में नहीं आ सकता।
9: मैं तो बहुत बड़ा डिसएडवांटेज मेरे लिए कि मैं एक वनवास बिता गया 37 साल।
8: जोधपुर आना बीच बीच में हर साल में 2-3 बार तो होता रहा।
9: 6 बार आते, छुट्टी आते,
8: 5-6 बार
9: लोग आते हैं हमारे पोस्टिंग पे।
8: बिल्कुल,
9: बहुत आते हैं।
8: तो जैसे जोधपुर तो बहुत अच्छा लगता ही है, और जोधपुर के आदमी को जोधपुर के अलावा और किसी चीज की अपेक्षा या सोच विचार नहीं होता है। लेकिन चूंकि पूरा भारतवर्ष आप घूम चुके हैं, अलग अलग स्थानों पर बहुत समय भी आपने दिया है, तो जोधपुर के अतिरिक्त बहुत सारी अच्छी सुंदर जगहें, अच्छे सुंदर लोग आपको मिलते रहे होंगे, तो कुछ ऐसा बताइए जो आपके मन में बस गया हो कि हाँ, ये वहाँ का प्रवास जो है, दिल्ली का तो आपने जिक्र कर दिया, लेकिन बहुत सारी ऐसी थोड़ी सी कम छोटी जगहें, दिल्ली से के मुकाबले छोटी जगह भी होंगी, वहाँ के लोगों से भी आपकी दोस्तियाँ हुई होंगी, जो आज जैसे भूतनाथ मित्र मंडली आपकी है, वैसे ही मित्र मंडली में कोई दूसरी जगह का दोस्त भी हो सकता है, आज भी आपके संपर्क में हो और निरंतर दोस्ती रही हो उनसे, ऐसे कई लोग भी होंगे।
9: हाँ, झारखंड में रांची में पोस्टिंग रही मेरी,
8: रांची वहाँ पे बहुत सुंदर जगह है
9: रांची।
8: जी,
9: थोड़ा बैकवर्ड एरिया है, बट इट्स ओके।
8: जी।

0: उसका नक्सल का ज्यादा इफेक्ट है
1: जी,
0: तो लोग अच्छे पुलिस वाले अच्छे हमारे।
1: अब तो नक्सलवाद ऑलमोस्ट पूरे भारतवर्ष से समाप्त ही हो गया।
0: दो डिस्ट्रिक्ट बच गए उसके, लातेहार और सरायकेला।
1: इसमें भी सर, इसमें थोड़ा सा मैं पुनः जो है, चूंकि बात जिक्र आ गया, तो सीआरपीएफ की बहुत बड़ी भूमिका रही है नक्सलवाद को समाप्त करने।
0: सीआरपीएफ काम करी, आप
1: सारा काम उसी ने किया है,
0: लोकल पुलिस का नाम है।
1: और अभी माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी ने भी कहा कि नक्सलवाद जो है वो भारत के लिए अब वो विगत की वस्तु हो गई है, विगत की चीज हो गई है।
0: उन्होंने 31 मार्च 2026 डेडलाइन दिया था, वो 2 महीने 31 मई को खत्म हो गया। अब रेट अभी पहले आउट ऑफ 865 डिस्ट्रिक्ट में 197 था, वो कम करके अभी ऑलमोस्ट 37-38 डिस्ट्रिक्ट, जिसमें मैक्सिमम 4-5 डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र के, कुछ छत्तीसगढ़ के और झारखंड के, सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट
1: गढ़चिरौली ये महाराष्ट्र के हो गए डिस्ट्रिक्ट, और छत्तीसगढ़ के कुछ एक पहले से बिल्कुल। और आपने जिक्र किया रांची
0: सरायकेला और
1: मतलब आसपास के इलाके, रांची तो अपने आप में राजधानी हो गया जी, लेकिन शुरुआत इसकी जो नक्सलवाद की हुई थी वो तो हुई थी पश्चिम बंगाल से, और उसके बाद ये इसका प्रसार होता गया, और सीआरपीएफ ने इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, और सीआरपीएफ के बहुत सारे जवानों को शहीद होना पड़ा है इस कॉज के लिए। आपकी भी पोस्टिंग नक्सलवाद प्रभावित इलाकों में रही?
0: नहीं, क्या
1: जी रह क्या है, किस जगह पर आपका रहना हुआ?
0: लातेहार मेरा, पलामू मेरा और गढ़वा डिस्ट्रिक्ट मेरा, जो नाम ही सुना होगा आपने।
1: बिल्कुल, गढ़वा का नाम सुना है, जो बिल्कुल बिहार के बॉर्डर पे शायद उत्तर प्रदेश का जगह है।
0: अर्लियर इज द पार्ट ऑफ द बिहार, बट डिविजन हो गया बिहार झारखंड का। गढ़वा डिस्ट्रिक्ट, पलामू डिस्ट्रिक्ट और लातेहार डिस्ट्रिक्ट
1: जी,
0: तीनों डिस्ट्रिक्ट सेपरेट है, तीनों मोस्ट डोमिनेटेड फॉर द सो कॉल्ड नक्सलवाद की तरफ से
1: जी। हमारे तो जिस वक्त आपकी पोस्टिंग हुई उस वक्त क्या नक्सलवाद
0: पीक पॉइंट पे,
1: पीक पॉइंट पे था? अच्छा, समाप्त नहीं हो रहा था, तो कई बार एनकाउंटर्स मुठभेड़ें भी होती रही हैं जी, वो अनुभव
0: कुछ शेयर कीजिए। मतलब बहुत जगह पे हमने बॉर्डर आउट, जैसे अभी बुड्ढा पहाड़ खाली करवाया, अगर इसमें गढ़वा डिस्ट्रिक्ट में एक बुड्ढा पहाड़ बहुत बड़ा डोमिनेटेड है इनका, लंबे टाइम से, बहुत टाइम से सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन अब के हमेशा ने पक्का ठान लिया कि इसको खाली करवाना, तो जैसे जैसे फोर्स गई बगैर कोई लॉजिस्टिक सपोर्ट के फोर्स को वहाँ स्टे कर दिया, जो हमने जमीन ले ली वो टेक ओवर कर गया, नहीं तो पहले क्या करती ऑपरेशन करके आती वापस आती, बंदे आ जाते अपना काम जमा लेते, ना वो स्टेटिक चेंज की स्ट्रेटेजी और जाके बैठ गई फोर्स वहाँ पे,
1: पोस्ट जो है वो परमानेंटली जो जगह ली उससे आगे ही गई,
0: आगे गई
1: ताकि वो पुनः क्लेम नहीं कर सके।
0: अब उसमें देखिए कितनी दिक्कत स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की, जस्ट एक एग्जाम्पल बताएं आपको कि उसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का भी इन्वॉल्वमेंट, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट का भी इन्वॉल्वमेंट और पानी वालों का भी इन्वॉल्वमेंट, लेकिन सीआरपी ने सबको दरकिनार करके अपनी जेसीबी लगवाई, रोड खुदवाई, फॉरेस्ट वालों से रिक्वेस्ट कर आगे रोड बनवाई, पोस्ट ऊपर तक पहुंचे, चौपर स्टेट गवर्नमेंट से मांगा कर दे और बुड्ढा पहाड़ पे विजय प्राप्त कर दी। अभी बुड्ढा पहाड़ नॉर्मल हो गया, वहाँ हमने बहुत बड़े भारत सरकार ने पैसा एसआरई फंड से दिया, स्कूलिंग खोल दी, वो कर दी सीआरपी की, अभी कंपनी के पास जो डायरेक्ट डीएसपी भर्ती बेचारे स्कूल भी ले रहे हैं, वहाँ पे अपनी ड्यूटी ड्यूटी कराए, स्कूल चला रहे, मतलब मुख्य धारा वहाँ तक पहुँच गई। कलेक्टर वहाँ यामिन थी मैडम, वो आती थी आर्या आईएएस ऑफिसर आंध्रा की, वहाँ तक आते बोला हमने सोचा भी नहीं था, मैं कभी आप चौपर से आई होगी, क्या चौपर उड़ के चली जाती, फिर अब देखो उतर के कार से आई आप, फिर हमने लंच कराया हमारे कैंपस में, वो लगा मतलब स्वर्ग में हूँ, सोची नहीं होगी उसे, तो वो कितना 42 किलोमीटर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से, लेकिन पूरा डोमिनेटेड एरिया उसका, कभी ऐसे जो ऊपर नहीं गया कभी बंडरिया का।
1: ऐसे इलाकों में काम करने में सीआरपीएफ, देखिए जब जीतते हैं और विजय प्राप्त करते हैं तब तो बहुत अच्छा लगता है, और उस वक्त सीआरपीएफ की चौकी के अंदर जाने में एक अच्छा एहसास होता है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने में सीआरपीएफ को बहुत परिश्रम और बलिदान देना पड़ता है, तो चुनौतियाँ किस तरह की रहती होंगी?
0: चुनौतियाँ ये है, मतलब लोकल पुलिस पूरा असिस्ट नहीं करती है वहाँ की।
1: अच्छा,
0: वो सब कहीं कहीं मिक्सअप है,
1: आप उस इलाके को, वहाँ के टेरेन को और भूगोल को उतना अच्छे से जानते नहीं है?
0: नहीं, वो तो आजकल ऐप आ गए लोगों के पास में, सीआरपी बहुत एडवांस आईटी से भी हो गई, वो सब ठीक है, बट पुलिस का ऐप भी साथ में चाहिए, कर करा के बन, इट्स वेरी डिफिकल्टी टू रीच द डेस्टिनेशन।
1: और भाषा की समस्या भी होती होगी?
0: भाषा तो हमारे पास है हर जगह के, ये एक बहुत बड़ा सीआरपी का बहुत बड़ा एक एडवांटेज है। हाँ। कि मैं तो पर्टिकुलर मैं ज्यादा नहीं बोलता, लेकिन आदमी को देख के पहचानते हैं, वो बोलेगा तो पता लगे तो उस डिस्ट्रिक्ट का है, क्योंकि 37 साल में आइडिया हो गया चीजों का।
1: हाँ,
0: हाँ, कितनी भी चतुराई करेगा, हम तो वहाँ मगर नेटिव प्लेस होगा वहाँ के, हाँ आप रहे वहाँ, मैं भाई तू बोलता है इस हिसाब से पता लग जाता है, तो वो सभी जगह के ऑलमोस्ट, तो भारत दर्शन है ना केंद्रीय पुलिस बल में, लोग कहाँ कहाँ से, क्योंकि एक बटालियन में जहाँ कमांड करते हैं वहाँ 1352 आदमी डेफिशिएंसी वगैरह करके 1250 रहते हैं, जगह जगह का आदमी है। अगर आपकी मिसेज को चाहिए सिंदूर तो वो भी वेस्ट बंगाल का, वहीं से घर मिल जाएगा, वो जाएगा छुट्टी लेके आ जाएगा। दिस इज अ सिंपल एग्जांपल।
1: ये बहुत अच्छा है कि आपस में कैमरेडरी है, आपस में।

0: भ्रातृत्ववाद है कि हम एक दूसरे की मदद करें।
1: जम के
0: आप भी जब जोधपुर आते होंगे
1: मावे
0: तब
1: कचौड़ लेके जाते
0: मावे
1: हैं
0: की कचौड़ी।
1: वो तो
0: बिल्कुल, ये बहुत मजेदार बात आपने बताई है। और जोशी जी, अब एक गाने का वक्त हो गया, तो गाना सुनते हैं आपकी पसंद का, उसके बाद लौट के हाजिर होंगे 102.1 FM। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे दोस्त बहुत रोचकता के साथ, बहुत एक तरह से उत्सुकता के साथ हमारी इस बातचीत को सुन रहे होंगे। बहुत मज़ेदार बातचीत चल रही है, आप भी बने रहिएगा हमारे साथ। हम लौट के हाजिर होते हैं इस गीत के बाद 102.1 FM रेडियो सन सिटी पर, ओपन शो प्रोग्राम में।

0: उफ, इस पथरी की परेशानी ने तो परेशान कर रखा है, कहाँ कहाँ इलाज ना करवाया।
1: अब चिंता की कोई बात नहीं, गुर्दे की पथरी का सफल इलाज, बिना ऑपरेशन, बिना चीरा, बिना टाके,
2: सीमेंस आधुनिकतम लिथोट्रिप्सी मशीन से।
3: प्रोस्टेट गुर्दा रोग के इलाज हेतु
2: कमला नगर अस्पताल, पाल लिंक रोड, जोधपुर।
4: अपने खेत, बगीचे, घर, टेरेस या ऑफिस को बनाइए हरा भरा, पौधे उगाइए, पर्यावरण बचाइए।
5: आज ही पधारें लालजी नर्सरी, रानोजी का बाग, खोखरिया, बिरामंडो।
4: लालजी नर्सरी गूगल पर सर्च कीजिए।
6: लालजी नर्सरिया, कुछ समय हरियाली में बिताओ।
7: चाहे गर्मी हो या जाड़ा, इलाज हो हर मौसम में प्यारा। इस गर्मी से घबराकर अपनी आँखों की सर्जरी ना टाले। विजिट डॉक्टर कामदार आई हॉस्पिटल, शिप हाउस, पावटा, जोधपुर।

0: पुनः बहुत बहुत स्वागत दोस्तों आपका 102.1 FM रेडियो सन सिटी पर ओपन शो प्रोग्राम। आज इस प्रोग्राम में हमारे विशेष अतिथि हैं जुगल किशोर जोशी जबलू भाषा। CRPF के बारे में बात चल रही है, आप CRPF कमांडेंट के पद से रिटायर हुए हैं। सर, CRPF के बारे में जो धारणाएं हैं कि जिस इलाके में जाती हैं वहां पर एनकाउंटर्स या फिर खून खराबा, लेकिन CRPF लोगों की मदद भी करती है, इस एस्पेक्ट को आप किस तरह से बताना चाहेंगे?
1: फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपकी बात से संजय सिंह 200% सहमत हूँ, क्योंकि CRPF में वसुदेव कुटुंबकम की भावना बहुत ज़्यादा कूट कूट के भरी है। अपना मैस का खाना नहीं खाएंगे, लेकिन कुछ सामने अगर सफर कर रहे हैं तो उसको पहले खाना दे देंगे, हमारा बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं।
0: अच्छा
1: जी, विल एक्सटेंड ऑल असिस्टेंस टू द नेक्स्ट पार्टी अगर कोई हमारे सामने सफर कर रहा है तो।
0: बिल्कुल, जैसे कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे आप नक्सलियों के साथ मुठभेड़ कर रहे हैं तो उनकी फैमिलीज को सपोर्ट करना या फिर उनके लिए स्कूल वगैरह की व्यवस्था करना,
1: वो तो सिविक एक्शन प्रोग्राम में आता है, ये चीज तो सिविक एक्शन प्रोग्राम दे
0: जी।
1: MHA का ये सेंट्रल SOP है उसकी।
0: हाँ, कि या फिर किसी नक्सली को आपने पकड़ लिया तो उसको अच्छे से ट्रीट करना वगैरह, ये सब काम तो करते ही होंगे आप।
1: अच्छे से ट्रीट करिए, फिर लाते हैं इंटरोगेशन सेंटर, वो तो जो ड्रिल है
0: वो तो जरूरी,
1: फिर उसकी वॉमिटिंग करवाते हैं, क्या है क्या नहीं, उसको ग्रिल करते हैं, वो जो प्रोसीजर है वो पूरा फॉलो करते हैं। मैं इंटरसेप्ट करूंगा एक बात में, वो गैलेंट्री मेडल के बारे में बताना चाहूंगा
0: जी, वो मैं पूछूंगा आपसे, लेकिन मैं मदद वाली बात को थोड़ा सा और आपसे जानना चाहूंगा कि किस तरह से CRPF ने ह्यूमैनिटेरियन वर्क्स को भी आगे बढ़ाया, एक्सटेंड किया है, ताकि लोग समझ सकें कि हमारी जो फोर्सेज होती हैं वो गन्स एंड रोजेज वाले, उस पर एक हाथ में अगर गन है तो दूसरे हाथ में वो गुलाब भी रखती है।
1: ठीक है संजय,
0: तो ये थोड़ा सा आप बताइए।
1: ये MHA का एक सीएपी एक्शन प्रोग्राम होता है, उसमें एवरी आफ्टर 3 मंथ्स कोई 5 लाख रुपए मिलता है, तो उस प्रोग्राम के तहत कभी स्टेशनरी आइटम बांट दिए, कभी मेडिकल कैंप लगा दिया, कभी कंबल दे दिए, कभी खाने का कुछ आइटम, इसके पास डिपेंड ऑन द लोकेशन,
0: जिस इलाके में आप काम कर रहे हैं उस इलाके में दूसरे लोग जो सफर करते हैं उनके लिए थोड़ी सी असिस्टेंस।
1: बाकी हमारा कैंप तो रोजाना खुला है मेडिकल के लिए और किसी प्रकार की असिस्टेंस के लिए, इवन तो अगर कोई प्रेगनेंट लेडी आ जाएगी, साहब हमको तो मिल नहीं रही शायद, तो उसको हस्बैंड भर्ती कर देंगे, उसको चाहिए तो गाड़ी भी देके आगे भेज देंगे डिस्टर्ब एरिया में, ये इतना एक्सटेंड करते हैं।
0: बिल्कुल,
1: गांव भी गोद ले लेते हैं और लोग आते हैं, हॉस्पिटल तो रेगुलर आते हैं गाँव वाले, वो खबर भी देते हैं, हम ये सोचते हैं कि अगर वो आएगा तो कुछ खबर लाएगा, क्या मूवमेंट है नक्सल का, क्या है क्या नहीं, ये एडवांटेज है।
0: तो जो हम बात कर रहे हैं कि आपने एग्जेम्पलरी जो वर्क किया है 37 सालों में, उसमें आपको बहुत सारे पदकों और सम्मानों से आपको नवाजा गया है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, सबसे पहली बार आपको किस तरह का सम्मान मिला था और तब कैसा महसूस हुआ था आपको?
1: ये मैं आपको बताया कि मैं एनलिस्टेड एज ए डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर आफ्टर कंप्लीशन माय एमए पीजी इन हिंदी लिटरेचर एंड सो कॉल्ड पीजी डिप्लोमा इन पर्सनल मैनेजमेंट। ज्वाइन करने के 2.5 साल के बाद में मेरी पोस्टिंग हो गई JNK में, तो JNK में वहाँ सिस्टम था, हर जगह भाई भतीजावाद है ना, एक नाइट में पेट्रोलिंग लगती थी।
0: कब की बात है, 90 के आसपास?
1: 92 की बात है।
0: 92 यानी उस वक्त जो कश्मीरी पंडितों का पलायन हो चुका था या हो रहा था?
1: हो रहा था वो,
0: और इंसर्जेंसी या मैं कहूंगा कि पीक पे थी उस वक्त,
1: पीक पॉइंट पे
0: जी।
1: तो 92 में नाइट पेट्रोलिंग चलती थी CRPF की।
0: अच्छा,
1: वो SOG टाइप जिसको बोलते हैं ना, नाइट में, तो नाइट में चलती थी, तो अलॉटमेंट आता IG ऑफिस, उसमें पूरे कश्मीर का CRPF का IG DD गुप्ता, मध्य प्रदेश के अंडा तुगी साहब की DG बन गए द्वारकादास गुप्ता IPS, वो DD गुप्ता IG हुआ करते, थोड़ा शौकीन पीने भी लाने के, तो शाम को होते ऐसे लॉटरी निकलती, 8-10 ग्रुप थे SOG के, उसमें एक में मैं इंचार्ज था, तो जे जूनियर ग्रुप तो बोला आप, वो कंटिन्यूस ड्यूटी आती, तो नाइट में सर्दी तो बहुत पीक पॉइंट में, नाइट में 10 बजे जाओ उसमें 6 बजे तक आओ।
0: जी जी बिल्कुल,
1: सुबह 6 बजे तक आओ,
0: हाँ
1: वापस आओ, तो वो कंटिन्यू चलती रही।
0: बिल्कुल,
1: तो उसी लाइन ऑफ सी एक बार एक उसको माना हुआ हिजबुल मुजाहिदीन का डिप्टी चीफ था मेराजद्दीन,
0: Okay.
1: उसके बारे में इनपुट मिला था कि एक पर्टिकुलर, अगर आपने कश्मीर देखा हो तो रैनाबाड़ी जो गुलाब जो डल झील है उसकी एक साइड में रैनाबाड़ी और इस साइड में बुलवर्ड लेक है, तो ऐसा इनपुट मिला कि सुबह 4 बजे वहां से आता है सब्जियों के बारे में उसे आता। अच्छा, फिर
0: ये इनपुट जो मिलते थे वो लोकल लोग ही, जो
1: लोकल लोग कैट होते थे हमारे पास, उनके आदमी होते थे।
0: अच्छा अच्छा,
1: कैट उसको हम छिपा के,
0: आपको कुछ इनाम वगैरह देना होता होगा?
1: नहीं, वो हमारे पास था, उसके इनाम देते, इसको टेलर था, उसको टेलर शॉप का, उसको उसी बेस पे बिट पे उसको छोड़ दिया गया, उसको टेलर शॉप सेट करके दिया गया।
0: अच्छा अच्छा ओके,
1: तो उसकी खबर थी, तो अब खबर थी तो वो बोला सर ये पिनवर्ड खबर है, और वो मेरी गाड़ी में था, मैं जूनियर ग्रुप का इंचार्ज था, मेरी गाड़ी में था जिप्सी में, 92 की बात है 27 अप्रैल की, तो वो DD गुप्ता अब उसमें ऐसी एक बोस टाइप के भाई 10 बजे गए, क्योंकि वो 20-25 दिन से नॉर्मल प्रोविजन ऐसा था कि एक हफ्ते में ड्यूटी चेंज होगी, बट वो कोई सुनने वाला नहीं हुआ, वो 20-25 दिन हो गए या समझो।

0: देखिए इसमें अच्छी कि मुझे वो कंटिन्यूस ड्यूटी मिलती रही रात को, और एक बार वो अर्ली मॉर्निंग 4 बजे आ गया जिसके हमने 1% भी अपेक्षा नहीं की। भाई ये रूटीन इनपुट देते हैं, पता नहीं अपने फायदे के लिए क्या कुछ मिल जाए। तो अब जोश जी रात को 9 बजे बाहर निकले और सुबह 7 बजे वो कंट्रोल वोट करा कि ना ओके है इस प्रकार से, ये चेक किया इस प्रकार, ये बंदे इनको पूछा रजिस्टर साथ रखता है, ये सही है सब इंस्पेक्टर, ये इतने पानी ये छप्पू आया चेक किया उनमें कोई नहीं मिला। एक बार वो सुबह ओरिजिनल आदमी आ गया मेराज दिन, अलियास दीना कमल, अलियास सद्दाम हुसैन उसको बोलते थे, वो जे एंड के गया, उसका फादर एसएसओ था जे एंड के पुलिस में।
1: अच्छा अच्छा।
0: अब वो आ गया, वो बंदा आ गया, तो जो सीट नहीं ले रहे सपोज करो नॉर्मली जो ड्रिल थी उसी हिसाब से, तो उसने मतलब गाड़ी के आगे सीट पे सब आ गया, ऐसा किया।
1: किसने कहा?
0: वो कैट मेरे पास इन्फॉर्मर जो बैठा था,
1: जी जी
0: मेरा ड्राइवर, मैं कैट और कैट की अतरी लगी उसके पास, उसका एक बंदा और एक प्रोडक्शन साथ में।

0: मैं कैट और कैट की अदगरी लगी उसके पास उसके एक बंदा और एक प्रोडक्शन साथ में, पांच आदमी जिप्सी मेडल और पीछे एक प्रोडक्शन पूरी गाड़ी, पांच आदमी, दो जिप्सी सेट था बुल्लर लेक पे शंकराचार्य मंदिर के क्रॉसिंग पे
1: जी।
0: और हम लोग मानसिक रूप से इतने तैयार नहीं क्योंकि ये रोजाना काम होगा ना बेसिकली, कोई इनपुट हो दो चार दिन पाँच दिन हो तो आज महीने डेट में 40-41 दिन था उस दिन आए नहीं वो, तो हम भी थोड़ा विलुप्त हो गए। मैं गाड़ी
1: लगता है कि हाँ अब नहीं आएगा,
0: वो बोला आ गया तो फिर अपने आप मानसिक रूप से तैयार करो, अगर इसमें कोर्स ऑफ एक्शन लेता हो तो सुबह 9 बजे जोशी जेल में।
1: और दूसरा ये कि नींद भी होती है तो तुरंत मानसिक रूप से सक्रिय होने में थोड़ा समय लगता है।
0: दाग भाई वो आएगा तो कोर्स ऑफ एक्शन करना, तो वो जैसे ही उसने बोला आ गया सर, वो आ गया जो बंदा आया था वो आ गया सर। अच्छा इसने बोला और मैंने सेकंड गेट से गेट खोला मेरे जिप्सी का, ऐसे लॉक सिस्टम खोल के खोला, मेरे पास मेरी AK-47 थी क्योंकि वो AK-47 का जमाना था उसमें सब छोड़ था। मेरे जैसे ही खोला उसको पता लग गया कि इस जिप्सी को पता लग गया, वो वापस पानी के अंदर हो गया। तो मुझे और शक पूरा डबल हो गया, मैं कहना इट इज ओके यही आदमी है। अब वो दूसरी गाड़ी वाले सो रहे हैं पीछे, केवल मैं जाग रहा हूँ, कैट जाग रहा है, कैट का वो जो प्रोडक्शन वाला जाग रहा है, ड्राइवर जाग रहा है, चार आदमी। कैट का तो कोई मतलब, कैट के आदमी पास वाला जा नहीं सकता, उसकी चैन बनी हुई,
1: उसका तो काम पूरा हो गया, उसने इन्फॉर्मेशन दे दी, दे दी। उसका कोई काम नहीं।
0: अब वो MP कैडर का था द्वारका दास गुप्ता, आप देखना हिस्ट्री में, DD गुप्ता IPS, बहुत शौकीन था और तुगले के आदमी था जो जी कितने दिन मांगे। एक बार मैंने बोला था, मैं सर 3 वीक हो गए सर, काइंडली प्लीज अगर कोई चेंज का प्रोविजन, कोई दिक्कत है क्या नौकरी कर रहा, मैंने नहीं सर प्लीज चले जाएंगे, एनी वो कंटिन्यूस रहा। फिर वो एक बार सुबह 4 बजे वो आ गया सुबह और जोशी जी को बता दिया कि वो हाजरा फुटबॉल का खिलाड़ी था वो। अच्छा। हाजरा गजल बहुत अच्छी गाता था, सुना था कभी बैठे बैठे। हाजरा बोला सर ये आ गया आदमी, ये आदमी है जिसके लिए मैं बोला था, ऐसा बताया था नीचे था जोशी AK-47 साथ में थी, गेट खोला केवल जोशी,
1: तो वो तो पानी के अंदर चला गया था।
0: नहीं वो बेसिकली सीढ़ी सिस्टम है, 4-5 सीढ़ी चढ़ के ऊपर आओ, पानी नीचे है, रोड ऊपर चल रही है। वो उसने क्या किया, सर्दी टाइम था, वो पानी का बोट में चला गया वापस, वो बोट चला गया, उस बोट में 2 आदमी थे, एक वो हिजबुल मुजाहिदीन डिप्टी चीफ महराजदीन और एक डिस्ट्रिक्ट की सबीर हुसैन बारामूला डिस्ट्रिक्ट का, वो दोनों HM के थे। और वो केवल वो चूंकि नीचे तो डिस्ट्रिक्ट चीफ था, उसको पता नहीं वो नीचे नहीं आया, इस जो मेन आदमी था हिजबुल मुजाहिदीन के डिप्टी चीफ महराजदीन इलियास दीना कबल इलियास सदाम हुसैन, उसने देख लिया इसको। और जैसे ही मैंने गेट खोला उसको पता लग गया आ गया, उसके पास पिस्टल थी। मैं उठ के रोड के इस साइड में गाड़ी थी, रोड है उसके बाद में 4 स्टेप्स और नीचे इस टाइप से, तो अब अगर काम नहीं करते तो हमारा काम हो जाए और नौकरी तो सबको करनी मीडियम क्लास में। उतना नीचे गया उसको थंप पकाया, जो प्रोसेसर है उसका, वो साला बैठ के चप्पल लगा के 10 मीटर आगे चला।
1: आपने आवाज़ दी उसको,
0: हाँ रुको रुको रुको, उसको बोला स्टॉप करो। हाँ। रुका नहीं, वो जो हमारी डील है उसका, रुको भाई रुको, नहीं रुका नहीं रुका, तो वो एक डरा के हिसाब से,
1: नहीं रुकने के हिसाब आपको गोली चलाने का अधिकार है फिर।
0: हाँ तो 200% है, वो तो पिन पॉइंट पता लग गया ना
1: जी,
0: वो तो पिन पॉइंट नहीं, उसमें भी प्रोजन ऐसे हेड पे नहीं मार सकते।
1: अच्छा अच्छा,
0: पूरे 99% अगले को पुआ का देना उसको, पहले थम्स कॉल करो, आपका आदमी सुनाई दिए, ड्राइवर ने सुना, कैट ने सुना, इन्फॉर्मर सुना, और फिर भी नहीं रुका, फिर उसने पिस्टल चला दी, गोली चला दी। ये तो हमारे BP जैकेट पहना होता, कोई बात नहीं साइड से निकली, लेकिन ये ओपन एनकाउंटर था। फिर मैंने वापस फायर किया तो उसके पैर में फायर किया तो वो वही इंजर्ड हो गया।
1: अच्छा, निशाना आपका सटीक था?
0: सटीक पैर पे मारने वाले बोलकर इतने 10 मीटर दूर, ये भाई साहब मनीष जी खड़े इतना दूर।
1: हाँ हाँ हाँ,
0: मैं सीढ़ी पे आ गया ना, मैं सीढ़ी पे आ गया, सीढ़ी से इतना दूर था
1: तो उसके पास तो पिस्टल तब भी थी, और भी गोलियां होंगी उसके पास।
0: पिस्टल में 10 राउंड ही होते हैं मैक्सिमम।
1: अच्छा 10 राउंड उसने,
0: हमारे AK-47 30 राउंड, वो पिस्टल की गोली का मार है 15 मीटर के अंदर मार सकती है, नहीं तो फिर इंजर्ड कर देगी।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन हमें मार से चिंता ज्यादा, अगर ये कुछ काम नहीं हो तो मुश्किल हो जाएगा। वो हड़बड़ाहट था उसका, वो ट्रेंड आदमी नहीं है, हम तो साल भर ट्रेनिंग आदमी है, हमने गोली चलाई तो पैर में लगी, लगी वो नीचे बैठ गया। और वो उसमें सिस्टम है सिंगल और ऑटोमेटिक का, वो इतनी हड़बड़ाहट थी सिंगल ऑटोमेटिक लग गया, वो दर दर दर गोली चली गई, वो एक गोली लगी पैर के हिसाब से और थोड़ी गोली हल्का सा एंगल ऊंचा होगा, ऑन द स्पॉट डेथ हो गई उसकी।
1: ओहो, लेकिन ये मतलब जो चूक हुई इसका, हाँ,
0: चूक नहीं मतलब वो डेथ हुई, वो कैंप पे लाया था क्योंकि डॉक्टर अमृत सिंह एस बिस्ट डॉक्टर था, उससे कहना हो इज क्लिनिकल डेड, क्लिनिकल डेड, तो उसको आप डेड बॉडी लाए कैसे क्योंकि वो तो 15 मीटर दूर है वहां से।
1: बिल्कुल,
0: तो फिर एक दूसरा चप, तब तक दूसरी गाड़ी वाले आ गए, हलचल दी फायरिंग हुई तब दूसरी गाड़ी वाले आ गए, फिर एक दूसरा चप्पू लिया। अच्छा, जो उस गाड़ी में बैठा, उस चप्पू में बैठा एक दूसरा आदमी था डिस्ट्रिक्ट बशीर अहमद, वो क्या किया वो देखा मरना मारने का मैटर हो गया, वो डाई लगा के पता नहीं कहाँ चला गया। अब वो इंजर्ड आदमी बैठा है किसमें, चप्पू में, जो यासिर जो क्या नाम था हिजबुल डिप्टी चीफ महराजदीन
1: जी,
0: महराजदीन इंजर्ड होकर बैठा। अब हमें पता नहीं, तब गए उसके बाद चप्पू ले गया, मैं आया ड्राइवर 2 आदमी गए।

0: मैं और मेरे ड्राइवर गए उस पर। जब गया अब पता नहीं साला वो नाटक कर रहा है क्या कर रहा है, तो जब नजदीक गया उसको तो मूवमेंट ही नहीं कर रहा है, तब ड्राइवर ने बोला देख चेक करते, बोला सर ये तो इंजर्ड है सर। उसको अपने सबूम शिफ्ट किया, देखा उसके अंदर 2,98,000 कैश मिला उसका।
1: अच्छा
0: कैश मिला वो और एक पिस्टल मिली उसके पास, जो उसकी पिस्टल थी वो और एक हिजबुल मुजाहिदीन का कुछ लिटरेचर
2: जी।
0: 3 मिले अपने मिलाए और गाड़ी ला के 28 पर हुआ हमारा कॉल, PCR हुआ करता, उसको फ़ोन किया आई साहब 4:15 बजे सुबह अर्ली मॉर्निंग आ गए, वो हमारा जॉइंट JPCR बना हुआ था उसमें
1: जी,
0: CRP का IG लोकल पुलिस कश्मीर, SSP कश्मीर सब आ गए, ये अपने क्या नाम थे उस SSP कश्मीर हुआ करते आंध्रा के राव साहब वो DG बन के रिटायर हुए, वो उसमें SSP कश्मीर थे, STPO कोठीबाग ये अपने जो NSA रहे वो थे, बहुत पुराने 92 की बात है। एनी आओ वो डिक्लेयर हो गया, फिर डॉक्टर को बुलाया चेक करो क्या है क्या नहीं, तो मैं सकता हूँ ये 5 मिनट पहले डेथ हो गया लाने के बाद, तो फिर चेक करो भाई ये पुष्टि करो इज द सेम पर्सन अदरवाइज, क्योंकि अब तो मुश्किल हो गया डेथ हो गया, तो बोले नहीं इज द सेम पर्सन चेक किया, तो फिर उसी दिन रात को 11,000 रुपये कैश रिवार्ड और पूरे ग्रुप को
1: वो आपको मिला,
0: वो ग्रुप को मिला, ग्रुप चैट को मिला।
1: हाँ
0: वो मेरा तो लिखा प्रमोशन के एक हमारा डॉक्टर सी सुब्रमण्यम IPS हुआ करता DG CRP उस समय
1: जी,
0: तो माय केस विल बी रिकमेंडेड बाय IGP कश्मीर कश्मीर सेक्टर मिस्टर DD गुप्ता, स्ट्रॉन्गली रिकमेंडेड फॉर आउट ऑफ प्रमोशन एज ए अनक्वालिफाइड कोटा एज ए पोस्ट ऑफ इंस्पेक्टर
1: जी।
0: तो वो DG का रिमार्क था, मुझे अभी हृदय से याद है कि योर केस इज कंसिडर बट रिजेक्टेड एंड कंसिडर टू प्रेजिडेंट पुलिस बेल फॉर गारंटी, सो सेंड साइटेशन अगेन टू दिस क्वार्टर बाय फर्स्ट अवेलेबल अप्रोच, ये वर्ड उसका लिख के आया
1: जी,
0: नहीं तो मैं DIG से रिटायर होता उन टाइम अगर मुझे जम मिल जाता
1: बिल्कुल,
0: लेकिन संजोग की बात है। तो फिर भेजा, अब उसमें भी बड़ा लोचा पड़ गया क्योंकि फिर तो लंबा प्रोसेस हो गया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो वहाँ डाकू बैठे PCR में डॉक्टर फिर उनको अनरेगुलर मीन से बोतल वगैरह दी, तब उन्होंने हिंदी वर्सन इंग्लिश वर्सन दिया, उर्दू वर्सन चलता नहीं हमेशा में, उसमें रिपोर्ट चाहिए पूरी हिंदी इंग्लिश वर्सन चाहिए, वो ले जाके दी सब पेश की, तब साल भर में हो गए 93 में अवार्डेड PMG। ये बात
1: बिल्कुल बहुत सारे
0: और ड्राइवर जो साथ था उसको DG कमेंडेशन डिस्क मिला, वो साथ चला था ना मेरे
1: जी। इसके अलावा और भी आपको एग्जाम्पलरी वर्क के लिए
0: SPG में मिलते रहे, SPG में 9 साल काम किया वहाँ पे डॉक्टर SPG की तरफ से नंबर ऑफ टाइम 3 times अवार्डेड एप्रिसिएशन लेटर ऑफ डिग्री
1: जी। तो वो एक चीज जो रिजेक्ट हुई उसका क्या ये भी कारण था कि चूंकि वो आदमी जिंदा नहीं बचा?
0: नहीं वो
1: रिजेक्ट था कि वो शायद आपको एक बार गोली लगा के घायल करना था लेकिन वो गलती से क्या ऑटोमेटिक मोड पे चला गया?
0: नहीं, वो कुछ नहीं, वो तो जो हुआ सब ठीक हुआ,
1: सब
0: लेकिन
1: हुआ।
0: वो बोला ऐसा प्रयोजन है कि इसकी बेसिक 5 ईयर सर्विस होनी चाहिए, मेरी 2.5 साल लगी थी
1: तकनीकी कारणों पे,
0: तकनीकी कारणों से, ऐसा कुछ नहीं।
1: तो जोशी साहब अब एक गाना सुनने का और वक्त आ गया है, और ये बहुत आपका जो सेवा काल रहा बहुत मजेदार चुनौतीपूर्ण और अपने आप में मैं कहूंगा कि अनुभवों से समृद्ध रहा, और थोड़ी सी और बातचीत हम करेंगे, एक गाना आपकी पसंद का और हो जाए, उसके बाद 102.1 FM पर रेडियो सन सिटी ओपन शो प्रोग्राम का सिलसिला और जारी रहेगा।

0: बहुत बहुत स्वागत दोस्तों, अमन 02.1 FM रेडियो सन सिटी पर ओपन शो प्रोग्राम में आज विशेष मेहमान है हमारे जबलू भाषा जुगल किशोर जोशी जी। 37 वर्षों की सीआरपीएफ की सर्विस, सीआरपीएफ कमांडेंट के पद से आप रिटायर हुए, बहुत सारे पदक और सम्मान आपको मिले और स्पेशल सेवाएं आपने एसपीजी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप और आरएएफ रैपिड एक्शन फोर्स के तौर पर भी आपने दी। तो इस तरह से आपका कार्यकाल बहुत अनुभवों से भरा हुआ समृद्ध रहा। और अब सेवानिवृत्ति के बाद अब आप क्या करते हैं, आपकी क्या इच्छाएं हैं या फिर किस तरह से आप समय व्यतीत करते हैं?
1: नहीं, अभी देखो बेसिकली काम तो सुबह अर्ली मॉर्निंग भूतनाथ जाते हैं, 2 घंटे
0: हमेशा आपका भूतनाथ जाने का है
1: वो तो पहला काम। उसके बाद में माता जी मेरी अभी हैं, तो मेरे दोनों भाई चूंकि हाउसिंग बोर्ड रहते हैं तो मैं तो फिर वो एक्सक्लूसिवली मीन्स फॉर द कहीं दाएं बाएं हिल भी नहीं सकते। अभी बोल के आया हूँ तो काम वाली आएगी 1 घंटा, चाची जी को बोल के आया हूँ तब ऐसे इस टाइप से।
0: बिल्कुल, तो वहाँ पर
1: 83 अराउंड है वो।
0: बिल्कुल स्वस्थ हैं और हमारी शुभकामनाएं हैं कि स्वस्थ रहें। और आपने भी जो एक सक्रिय सेवा काल निभाया उसके बाद अब आप रिलैक्स करने के लिए थोड़ा सा चले जाते हैं, भगवान और जंगल दोनों मतलब प्राकृतिक जो आवास है उसके बीच में आप भगवान, और वहाँ मित्र मंडली है जो काम करती है
1: जबरदस्त।
0: तो वो मित्र मंडली किस तरह की है बताइए थोड़ा उसके बारे में।
1: मतलब सब अपने ही प्रेमी आदमी है जिसमें मनीष जी भी है शामिल है। और मतलब संडे तो स्पेशल डे है, संडे शनिवार
0: रोज आप जाते हैं लेकिन रविवार का दिन विशेष होता है।
1: रविवार को तो को जो दाएं बाएं छूट जाए वो भी आने का ट्राई करता है किसी कॉस्ट पे, किसी भी कॉस्ट पे।
0: रविवार को क्या ऐसा होता है जो
1: सब आदमी असेंबल होते हैं ना, तो जिसकी कोई अगर किसी की बर्थडे, किसी की इमरजेंसी, किसी कुछ, तो उसी बात लोग सब असेंबल होते हैं तो गेट टूगेदर हो जाता है, मिलना हो जाता है हमसे।
0: बिल्कुल,
1: उसमें मैंने संजय जी बताऊँ आपको 30 साल से लेके 90 साल तक के एक्सपीरियंस वाले आदमी वहाँ पे। मेरे तो सबमिशन है, जब भी आप मुझे पता नहीं कहाँ का ड्राप है, कहाँ का लोकेशन आपका रहने का, कभी टाइम मिले तो संडे के दिन आप जरूर पता रहे।
0: जी जी,
1: क्योंकि मनोज पहले आए तो मनोज भी आता है वहाँ, आनंद जोशी आता है, राम जी व्यास आते हैं।
0: बिल्कुल,
1: ये रेगुलर फीचर वहाँ पे है।
0: तो ये एक ऐसी मंडली है जो अब आपको ऐसा लग रहा है कि रिटायरमेंट के बाद में ये पर्पज ऐसा है जिसके लिए आप हर सुबह इंतजार करते हैं कि अब वहाँ पे जाना है। और चूंकि आप आश्रय जो है वो उनका है, यानी आप जो गेस्ट होते हैं वो भगवान के होते हैं उस वक्त, भूतनाथ।

0: उसको मंदिर मनाते पहले जाके।
1: हाँ, महादेव जी को मनाना, और महादेव जी को मनाना ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, आशुतोष कहते हैं उनको, बहुत जल्दी वो प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे स्तोत्र हैं, श्लोक हैं, कुछ ऐसे पाठ हैं जो महादेव जी को विशेष प्रिय हैं। रुद्री पाठ जो है वो ऐसा है जो महादेव जी को बहुत पसंद है, तो इसका भी आप अभ्यास करते हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए। और कुछ अगर आप
0: रुद्री का पंक्तियां, तो संजय जी मैं सबमिशन करूंगा, रुद्री तो सबसे अधिक प्रिय है। और जो महादेव मंदिर में जाके रुद्री के 5वें अध्याय के 16 श्लोक जो लघु रुद्री, उसका भी मतलब 1.5 मिनट लगता है, उसका भी चैंटिंग कर ले तो भगवान तो उससे खुश हो जाते हैं।
1: आप अगर कुछ आप सुना सकें उसमें से,
0: 5वें अध्याय का जो लघु रुद्री है उसका एक दो मैं एग्जाम्पल। हरि ओम माम नमस्ते हे रुद्रमण्य भवतोत इकवे नमः व्याहु व्यामुद्रे नमः याते रुद्र शिवा तनु रघो रापापकाशिनी दयानस्तनवा संत मयागिरी संता विचाकसी ही यामि कुंगिरी संत हस्त विवर्षत्वे शिवांगिरी तथा कुरु माही गोम सिंह पुरुषम जगत शिवे नवसात्वा समदाम सी यथा न सर्व सुमना सत अतिवोषते देव विशक अहिंस सर्वाजम बहन सर्वास यातु धननी धराची ही परस्व। ये 16 श्लोक है,
1: बिल्कुल
0: 16 श्लोक अगर ठाकुर जी बोल दो, 2 मिनट का टाइम है, तो इसी में भगवान राज्य हो जाते हैं। लघु रुद्री बोलते हैं इसको।
1: कुछ हद तक प्रसन्न हमने अभी कर ही दिया है भगवान शिव को, तो हम पर भी विशेष कृपा हमारे इस कार्यक्रम पर रहेगी। और आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुगल किशोर जोशी साहब।
0: धन्यवाद,
1: बहुत अच्छा लगा और बहुत ही समृद्ध भरा पूरा वार्तालाप आपसे रहा, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत
0: बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी, आपका कंपोजिशन ऑफ वर्ड, आपकी मतलब प्रेजेंटेशन और ओवरऑल पर्सनालिटी, और आई हैव नो वर्ड्स।
1: बिल्कुल, हम बहुत सम्मानित हुए।
0: WOW
1: बिल्कुल, थैंक यू। 102.1 FM रेडियो सन सिटी पर ओपन शो प्रोग्राम में आज इतना ही, इजाजत दीजिए, अगले हफ्ते फिर से मुलाकात होगी।
2: श्रोता अभी सुन रहे थे कार्यक्रम ओपन शो। इस कार्यक्रम में आज आपने भेंट वार्ता सुनी जुगल किशोर जोशी जी की संजय व्यास जी से, प्रस्तुतिकर्ता थी राजेश लामरोड। ये आकाशवाणी का जोधपुर केंद्र है, FM बैंड 102.1 MHz पर।

ये आकाशवाणी का जोधपुर केंद्र है। अगला कार्यक्रम मन का रेडियो, पर उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा कॉमर्शियल ब्रेक।

0: गर्मी हो या जाड़ा, इलाज हो हर मौसम में प्यारा। इस गर्मी से घबराकर अपनी आंखों की सर्जरी ना टाले। विजिट डॉक्टर कामदार आई हॉस्पिटल, शिप हाउस, पावटा, जोधपुर।
1: अपने खेत, बगीचे, घर, टेरेस या ऑफिस को बनाइए हरा भरा, पौधे उगाइए, पर्यावरण बचाइए।
2: आज ही पधारे लालजी नर्सरी, प्राणोजी का बाग, खोखरिया, बिरामंडो।
1: लालजी नर्सरी गूगल पर सर्च कीजिए।
3: लालजी नर्सरिया, कुछ समय हरियाली में बिताओ।
4: दोस्तों, कार्यक्रम है मन का रेडियो, और जैसे आप सभी जानते हैं, मन बड़ा चंचल होता है। दिमाग और मन का संतुलन बनाए रखना थोड़ा कठिन है, मगर ज़रूरी भी।

श्रोता हम आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन का रेडियो और हम बात कर रहे थे मन की चंचलता की, बातें करेंगे मन पर और विवेक की। बस उससे पहले लीजिए सुनते हैं एक और प्यारा सा नगमा।

दोस्तों, जब इंसान की आमदनी कम थी तो जरूरतें भी उसी के अनुरूप सीमित थी। थोड़ा संघर्ष था, थोड़ी मेहनत थी, मगर जीवन में संतोष था। आज के इस युग में इक्वेशन ही बदल गई है। आमदनी बढ़ गई है, उसी के अनुरूप जरूरतें असीमित हो गई है। संघर्ष है, मेहनत थोड़ा कम, मगर आंतरिक असंतोष छाया है।

0: पथरी प्रोस्टेट से पाना हो छुटकारा तो विनायका हॉस्पिटल ही अपनाना, जहां सुप्रसिद्ध यूरोलॉजिस्ट एवं गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर प्रदीप शर्मा द्वारा इसका निदान पाया जा सकता है।
1: RGHS वचिरंजीवी योजना के अंतर्गत निःशुल्क ऑपरेशन। पथरी मतलब विनायका हॉस्पिटल, गीता भवन रोड, जोधपुर।
2: पथरी प्रोस्टेट गुर्दा रोग, मूत्र रोग व यौन रोगों के इलाज हेतु सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रकाश रांका, यूरोलॉजिस्ट व एंड्रोलॉजिस्ट, बरकतुल्लाह स्टेडियम के सामने, जोधपुर। मोबाइल 9829027065।
3: दोस्तों, इस बात को गहराई में उतारने की जरूरत है कि आप अपनी नीड्स और वांट्स में अंतर समझें।

एक छोटा सा उदाहरण दूंगी। अगर आपको जोरों की प्यास लगी है तो आप क्या करेंगे? कुछ होंगे जो कहेंगे स्वच्छ ठंडा जल, यही काफी है प्यास बुझाने को, और कुछ ऐसा नहीं कहेंगे। तो जो लोग ऐसा नहीं कहते हैं उनमें अपनी वॉन्ट्स को उजागर कर रहे हैं। और जरूरत क्या थी, नीड क्या थी? प्यास बुझाने के लिए ठंडा शीतल स्वच्छ जल, बस इतना ही तो चाहिए। तो समझिए छोटा सा फर्क आपकी नीड्स और आपकी वॉन्ट्स में।

दोस्तों, इस गीत से पहले हम बात कर रहे थे अपने नीड्स और वांट्स के. छोटा सा फर्क है पर बुनियादी फर्क है, उसे समझने की और जीवन में उतारने की जरूरत है. प्यास तो ठंडे पानी से भी बुझ जाती है, पर आप चाहें तो उसे ना बुझाएं सिर्फ ठंडे पानी से. आप चाहें तो यूज कर सकते हैं कार्बोनेटेड कोई भी पे जो आजकल बाजार में ईजिली अवेलेबल है. चाहें तो एक सिंपल सी नींबू की पाने से या किसी सोडा से भी सिंपल से

किसी नींबू के सोडा से भी आप अपनी इस इच्छा को पूरी कर सकते हैं। अब आपको ये सोचना है कि आप करना क्या चाहते हैं जीवन में। संतोष पाना है, जीवन में शांति का एहसास लेना है, तो फोकस रखें अपनी नीड्स पर, ज़रूरतों को पूरा करें, इच्छाओं को थोड़ा सा बांध के रखें, कस के रखें।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन का रेडियो। अगला गीत सुनने से पहले लीजिए लेते हैं एक छोटा सा विराम।
1: दुनिया का सारा सुख एक तरफ, हर माँ बड़न रो सुख एक तरफ,
2: निसंतान दंपत्यारे जीवन में खुशियारी उम्मीद, विनायका हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर, गीता भवन रोड, जोधपुर।

0: चाहे गर्मी हो या जाड़ा, इलाज हो हर मौसम में प्यारा। इस गर्मी से घबराकर अपनी आंखों की सर्जरी ना टाले। विजिट डॉक्टर कामदार आई हॉस्पिटल, शिप हाउस, पावटा, जोधपुर।
1: पथरी, प्रोस्टेट, गुर्दा रोग, मूत्र रोग व यौन रोगों के इलाज हेतु सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रकाश रांका, यूरोलॉजिस्ट व एंड्रोलॉजिस्ट, बरकतुल्लाह स्टेडियम के सामने, जोधपुर। मोबाइल 9829027065।
2: दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है। कार्यक्रम है मन का रेडियो और आपने ट्यून किया है एफएम सेंसिटी, एफएम बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज पर।

दोस्तों, बाजार में मोहित करने को, भटकाने को कई सामान, कई वस्तुएं उपलब्ध हैं, और अब तो ऑनलाइन सर्विसेज और फ्री के विज्ञापन हमें भटका ही देते हैं। जब आपको कुछ फैसिनेट करे, कुछ अट्रैक्ट करे, तो बस संभल जाना कि अब आप गिरफ्त में आने वाले हैं। तो ये आपको सोचना है कि आप अपने आप को कैसे रोकें, क्योंकि यहाँ पे आपको अपने विवेक का पलड़ा भारी करना है और मन की चंचलता को कंट्रोल में लाना है।

तो से एक बार फिर से आपको उदाहरण याद दिलाऊंगी प्यास बुझाने का. प्यास तो शीतल जल से भी बुझ जाती, और आप चाहें जितना पैसा खर्च करें, कैसी भी कार्बोनेटेड ड्रिंक ले, हेल्थ ड्रिंक ले, सोचना यही है कि उसका प्रभाव आपके स्वास्थ्य और आपके पॉकेट पर कितना पड़ता है. यही फर्क है हमारी नीड्स और हमारी वांट्स में. समझाना यही चाहती थी या अपनी बात यही बताना चाहती थी कि अपनी वांट्स को थोड़ा सा कर्टेल करें, थोड़ा सा कंट्रोल करें, ज़रूरतों पे फोकस करें, ताकि हमारे जीवन में हमेशा संतोष बना रह सके. विवेक से काम लें, मन की चंचलता को थोड़ा सा नियंत्रित रखें.

कार्यक्रम से विदा लेने से पहले एक छोटा सा संदेश। फिर से वही बात दोहराऊंगी, विवेक का इस्तेमाल करें, हर बार मन की चंचलता को हावी न होने दें। उसी से आपके जीवन में असंतोष घटेगा और संतोष आपके जीवन में आएगा। जीवन में चाहे कितनी ही कमियां क्यों ना हो, चाहे कितना ही संघर्ष क्यों ना हो, पर खुशियां आपको हमेशा घेरे रखेगी।

श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मन का रेडियो। ये आकाशवाणी का जोधपुर केंद्र है, एफएम बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय दोपहर के 12 बजने को है। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी समाचार। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा करें।

0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कृषि क्षेत्र के विकास के बिना विकसित भारत का सपना पूरा नहीं हो सकता। हरियाणा के हिसार में खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि सरकार एक मोबाइल ऐप विकसित करने पर काम कर रही है जो मिट्टी और उसमें आवश्यक उर्वरक की मात्रा के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। उन्होंने किसानों को जैविक खेती अपनाने की भी सलाह दी।
1: हम संतुलित खाद डालें, संतुलित कीटनाशक जितनी जरूरत है जिन तत्वों की आवश्यकता वही डालें। अत्यधिक केमिकल फर्टिलाइजर के उपयोग से हमारी धरती बीमार हो रही है, हमारी मिट्टी खराब हो रही है और उसमें उत्पादित जो फल सब्जी और अनाज है उसके कारण कई तरह की बीमारियां मानव शरीर में भी घर कर रही है। अलनीनो का प्रभाव यहां भी है, बारिश नहीं हो रही है, तो इस प्राकृतिक संतुलन को हमको बना के रखना पड़ेगा ताकि हमारी धरती सुरक्षित रहे तो हम भी सुरक्षित रहेंगे।
0: श्री चौहान बाद में पूर्वोत्तर जाएंगे। वे गुवाहाटी में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे जिसमें असम और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ से हुई फसल, गांवों और बुनियादी ढांचे की क्षति तथा राहत कार्यों की समीक्षा की जाएगी। कल श्री चौहान अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई और जमीनी सर्वेक्षण करेंगे। वे प्रभावित किसानों और स्थानीय लोगों से मुलाकात कर राहत कार्यों का जायजा लेंगे। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सेना को शक्ति किसी एक व्यक्ति से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, उनके परिवारों और देश के नागरिकों के अटूट विश्वास से मिलती है। जनरल द्विवेदी ने आज नई दिल्ली में सेना प्रमुख के पद से इस्तीफा देते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि 4 दशकों से अधिक समय तक भारतीय सेना में सेवा करना उनके लिए सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है।
2: 4 दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ।
0: नए सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को जिम्मेदारी सौंपते हुए जनरल द्विवेदी

ने विश्वास व्यक्त किया कि जनरल सेठ के नेतृत्व में भारतीय सेना अपनी गौरवशाली परंपराओं, व्यावसायिकता और दृढ़ संकल्प को कायम रखते हुए और भी ऊंचाइयों को छुएगी। यूरो बैंक ने ग्रीस से भारत में सीमा पार धन हस्तांतरण के लिए यूपीआई सेवा शुरू की है। ये पहल बैंक और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के रणनीतिक सहयोग का हिस्सा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यूरो बैंक में सेवाओं का उद्घाटन भारत के डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के वैश्विक स्तर में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। भारत ने अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 36 नागरिकों की मौत और 163 लोगों के घायल होने की खबर है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान की यह कार्रवाई अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला है और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता के लिए गंभीर खतरा है। विश्व के कई नेता और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भी पाकिस्तानी सैन्य हवाई हमलों की निंदा की है। तालिबान के उप प्रवक्ता हमदुल्ला फितरन ने बताया कि हवाई हमलों में 36 नागरिक मारे गए हैं और 163 अन्य घायल हो गए हैं, साथ ही 3 आवासीय मकान पूरी तरह से नष्ट हो गए। हिंसा पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुतेरेश ने शत्रुता को तत्काल समाप्त करने का आह्वान किया, सभी पक्षों से नागरिकों की सुरक्षा करने का आग्रह किया। भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भारत ने अपना मानवीय सहायता अभियान

0: 163 अन्य घायल हो गए हैं, साथ ही 3 आवासीय मकान पूरी तरह से नष्ट हो गए। हिंसा पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुतेरेश ने शत्रुता को तत्काल समाप्त करने का आह्वान किया, सभी पक्षों से नागरिकों की सुरक्षा करने का आग्रह किया। भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भारत ने अपना मानवीय सहायता अभियान पेट्रोल बेच रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में IOCL ने कहा कि ये दावा फर्जी है और निगम ने ऐसा कोई नोटिस जारी नहीं किया है। घरेलू शेयर बाजार के आज के कारोबार में ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 38 अंक गिरकर 76,690 और निफ्टी 13 अंक गिरकर 23,933 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आपने ट्यून किया है देश का सबसे लोकप्रिय चैनल विविध भारती। कुछ ही पलों में कार्यक्रम सुनेंगे यादों की महफिल।

यादों के महफिल कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं विधाता फिल्म का ये गाना, लता मंगेशकर की आवाज में। आनंद बख्शी के बोल हैं, कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: यादों की महफिल कार्यक्रम में आइए अब आपको सुनवाते हैं अलका याग्निक और किशोर कुमार का गाया हुआ पिघलता आसमान फिल्म का गाना। इंदिवर के बोलों को संगीत से सवारा है कल्याण जी आनंद जी ने।

जिनके बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है।

0: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविद भारती पर।
2: यादों की महफिल कार्यक्रम में अब जो गाना आपको सुनवाने जा रहे हैं वो आशा भोसले और शब्बीर कुमार ने गाया है, वर्मा मलिक ने लिखा है और कल्याण जी आनंद जी ने धुन तैयार की है। फिल्म का नाम है राज तिलक।

0: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
1: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
0: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: एक टुकड़ा धूप का।
0: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
1: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
0: 30 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: यादों की महफिल कार्यक्रम में अब सुनते हैं एमजी हशमत का लिखा गीत, कल्याण जी आनंद जी का संगीत, संकोच फिल्म का नाम है और आवाज है सुलक्षणा पंडित।

0: ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
1: 30 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: यादों की महफिल कार्यक्रम में अब सुनते हैं एमजी हशमत का लिखा गीत, कल्याण जी आनंद जी का संगीत, संकोच फिल्म का नाम है और आवाज है सुलक्षणा पंडित की।

गुलशन बावरा का लिखा एक गीत आपने सुना रफू चक्कर फिल्म से, कंचन और शैलेंद्र सिंह की आवाजें थी। आइए अब आपको सुनवाते हैं अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाजों में घुंघरू फिल्म का ये गाना।

लीजिए सुनिए इंदिवर का लिखा और कल्याण जी आनंद जी का संगीतबद्ध किया हुआ कलाकार फिल्म का गाना, आवाजें सुरेश वाडकर और साधना सरगम।

राजेंद्र कृष्ण का लिखा गीत, कल्याण जी आनंद जी का संगीत, प्रोफेसर प्यारे लाल फिल्म का ये गाना आपने सुना आशा भोसले की आवाज में। और अब आपको सुनवा रहे हैं इंदिवर के बोल, कल्याण जी आनंद जी की धुन, मुकेश और कंचन की आवाजें। फिल्म का नाम है पाप और पुण्य।

नमस्कार, शुभ दोपहर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम सुरीला सफर में। आप सभी को राजुल का प्यार भरा नमस्कार। आज की इबारत पढ़कर बहुत सारे संदेश आए हैं। अगर आपने अभी ये इबारत नहीं पढ़ी है तो फेसबुक पेज पर हमने जो इबारत पोस्ट की है वो आपके लिए एक बार पढ़ देते हैं। रिमझिम में भीगी समंदर की लहरें, उठे झूमके और घड़ी भर को ठहरे। बड़ी दूर से देख आवाज देती, कभी पांव में डोर बनकर लिपटती। किनारे पे आए, मिले, लौट जाए, कभी रेत पर लिखे नामों को छूकर। उधर जा निकलती जहां पत्थरों पर धड़कते हैं दो तिल एक ही ताल पर। गले उनसे मिलकर, उन्हें प्यार देकर, कोई गीत गाती और फिर लौट जाती। तो आपको बताना है कि कौन से शब्द हैं आज के और उन शब्दों पर कौन से गाने सुनवाए जाएंगे। बहुत सारे संदेशों में इन शब्दों का भी जिक्र है और गीतों की भी बात हुई है। तो देखते हैं कि आज कौन कौन से गाने लिस्ट से मैच हो रहे हैं आपकी लिस्ट से। इस मैचिंग के लिए बहुत सारे संदेशों का से गुजरना होगा। और एक संदेश है, कहीं समंदर की लहरों की बातें हैं, कहीं समंदर के कुछ जो एक व्यंजनात्मक रूप से लिखी गई समंदर के बारे में कुछ पंक्तियां हैं। समंदर को जीवन से भी जोड़कर देखा गया है और समंदर के किनारे टहलने की भी कई अनुभव साझा किए गए हैं। बहरहाल ये जो संदेश है इसमें लहरों को सुरीला सफर से सजाया गया है, काव्यात्मक रूप से इस बारे में बात की गई है। समंदर की लहरें केवल पानी का उठना

और गिरना नहीं बल्कि प्रकृति की सबसे उत्कृष्ट लय और ऊर्जा का नृत्य है। लहरों की अनवरत ध्वनि और निरंतरता किसी ध्यान जैसी अनुभूति देती है। लहरों में एक अद्भुत विरोधाभास होता है, ये जितनी प्रचंड और शक्तिशाली हो सकती हैं उतनी ही कोमल और शांत भी। जीवन में ठहराव नहीं निरंतरता का प्रतीक है ये लहरें। समुद्र का ये अनुशासन ही उसकी असली सुंदरता है। वाह क्या बात है। और एक और संदेश में कहा गया है कि शाद और अवसाद में अवसर दर्शाती और साजे दिलों की हसरतों तरंगों भरी दास्ता बयान करती इश्किया इबारत निसंदेह प्रेमी युगल के प्रेम विवाह के लिए संजीवनी स्वरूप है। लहरों के राजहंस रूपी प्रेमी किनारे रेत पर इंतजार करती प्रेयसी को लुभाने में कामयाब होगी। इश्किया लबोलुआब से सराबोर संगीत में सुरीला सफर का इंतजार रहेगा। तो भाई इंतजार खत्म हो गया है और हमें उम्मीद है कि आप अपने रेडियो के करीब ही हैं, चाहे मोबाइल पर सुन रहे हों। एक और संदेश में कहा है कि समंदर की लहरों के माध्यम से प्रेमियों के दिलों के धड़कने और उनके आपसी जुड़ाव को दर्शाया गया है। समुंदर की लहरों को इस तरह पेश किया गया है जैसे वे इंसानों की तरह आवाज देती हैं, प्यार करती हैं और गीत गाती हैं। यादों की अमिटता, रेत पर लिखे नामों को लहरों का छूना उस प्रेम और यादों की पवित्रता को दर्शाता है जिन्हें समंदर रूपी प्रकृति सहेज कर रखती है। लहरों का किनारे पर आना, मिलना और फिर लौट जाना जीवन और प्रेम में आने वाले मिलन और वियोग के प्राकृतिक चक्र है, चक्र का प्रतीक है। वह क्या बात है। और एक और संदेश में शब्दों के का जिक्र किया गया है, उन शब्दों का। माय प्लेलिस्ट इज लॉन्गर टुडे होपिंग टू हैव मोर चांसेस। छूकर मेरे मन को रुक जा रात ठहर जा रहे चंदा, इस तरह के कुछ गीत इन्होंने साझा किए हैं। एक और हमारी श्रोता है जिन्होंने कहीं से ये गजल हमें भेजी है, रेत पर लिख के मेरा नाम मिटाया ना करो, और बहुत खूबसूरत गजल है। हमें अच्छा लगेगा अगर आप अपनी बात लिखकर भेजें तो बहुत अच्छा लगता है। एक और श्रोता कह रहे हैं कि आज आप अपने साथ लहरें लाई हैं या फिर लहरों के संग आने वाली हैं और हम सब लहरों के साथ कहीं बहुत दूर हम सबको लहरों के साथ कहीं बहुत दूर ले जाने वाली हैं, जहां हो सुकून के कुछ पल और हम जी सकें अपने मन के हिसाब से, जहां कोई रोकने टोकने वाला भी ना हो, जो ना करना चाहे वो काम भी ना हो, बस साथ हो सिर्फ लहरें, फिर तो उनके साथ गुनगुनाना अपने आप ही हो जाएगा, नहीं भी आता होगा तो भी। क्या बात है भाई, ये बात तो है ही कि गीत संगीत और जब मन जहां साथ हो या अपने मन की बात हो तो फिर कितना खूबसूरत वक्त गुजरता है, ये तो हम सभी जानते हैं। तो चलिए हम गीतों की शुरुआत करते हैं। रिमझिम शब्द को लेकर बहुत सारे गीतों के कयास आए हैं, तो चलिए एक झलक उन सभी की सुन लेते हैं।

का है और किन कलाकारों पर फिल्माया गया है। और जो सबसे पहला रिमझिम का गीत था उसे एक फीमेल वॉइस में भी आपने सुना होगा, तो बताइए कि वो किसकी आवाज में आपने सुना है। गायिका का नाम आपको बताना है जो सबसे पहला गीत आपने रिमझिम का सुना था।

नए साथी से मिला जाती हैं उनकी कई यादें याद दिलाकर। एक और संदेश में तो रिमझिम के तराने से लेकर बहुत सारे गीतों का जिक्र हो गया है। पिछली रात से रिमझिम के तराने लेकर आई बरसात के आगमन से हमारे दिल के समंदर में भीगी भीगी ठंडी ठंडी लहर सी दौड़ रही है। घड़ी घड़ी मोरा दिल धड़के, हाय धड़के क्यों धड़के, आज सुरीले सफर के मिलन की बेला में। जैसे दो दिल धड़क रहे हैं और आवाज एक है सांसों के तार पर, देश की सुरीली धड़कन के ताल पर। जब गीत गाया समंदर की लहरों ने, तब लहरों की तरह यादें टकरा हैं, तूफान उठाती हैं। रेत पर लिखे नाम भले ही मिट जाएं, दिल पर एक अमिट छाप छोड़ जाते हैं, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। और एक और संदेश में कहा गया है कि विविध भारती के सुरीले सफर में आज समंदर की लहरों के साथ खेलते हैं, ऐसे गीतों का लुत्फ उठाते हैं जिसमें नायक नायिकाएं बेखौफ समंदर किनारे बेतहाशा दौड़ते लहरों के साथ मस्ती करते हैं। कभी रेत पर ताजमहल बनाते हैं तो कभी उसे मिटाकर फिर समंदर के उथले पानी में एक दूसरे को भिगोते लोटपोट हो जा रहे हैं। चलिए इसी से सवाल निकल आया, हमें बताइए कि क्या आपने कभी समंदर की सैर की है, किसी समंदर के किनारे घूमे हैं या वहां से सीपियां इकट्ठी की हैं। अगर ऐसा किया हो तो हमें जरूर बताएं, और कहां गए हैं। अलग अलग तटों पर हमारे देश के अलग अलग समुद्री तट हैं जहाँ का पानी और जहाँ के समुद्री किनारे अलग अलग होते हैं, तो हमें जरूर बताएं कि आपका वो अनुभव कैसा रहा और कहाँ गए थे आप। और अब ये जो गाना हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, बताइए पर्दे पर कौन गा रहा है और संगीत किनका है।

बड़ा खूबसूरत तराना छेड़ देता है ये गीत। शैलेंद्र का लिखा, सचिन देव बर्मन का संगीतबद्ध किया हुआ, बिल्कुल सही नाम हमारे श्रोताओं का आया। बहुत बहुत शुक्रिया काला बाजार, देवानंद, वहीदा रहमान और रिमझिम गिरे सावन बरसात का जो गाना हमने आपको सुनाया था, सबसे पहला गाना मंजिल फिल्म का लता मंगेशकर की आवाज में। वाह क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह से प्रॉम्प्ट जो जवाब आते हैं ना, उनमें बहुत कार्यक्रम की को एक गति मिल जाती है और इस गति के साथ जो संदेश आते हैं वो तो बिल्कुल सोने में सुहागा हो जाते हैं। जैसे हमारे एक श्रोता कह रहे हैं कि आज की भारत में एक अजीब सी तड़प भी है और अपनापन भी, लहरों के माध्यम से प्रेम मिलन विरह और प्रकृति के अद्भुत तालमेल को बयां किया गया है। शब्दों का चयन इतना कोमल और संगीतमय है कि पढ़ते ही मन शांत और रूहानी एहसास से भर जाता है। आंखों के सामने बारिश की बूंदों के बीच नाचती झूमती लहरों का दृश्य सजीव हो उठता है। लहरों का उठना ठहरना और फिर लौट जाना प्रकृति के शाश्वत नियम को दिखाता है। और एक और संदेश में कहा गया है कि कुछ लहरें समंदर से नहीं यादों से उठती हैं, वे जब भी दिल के किनारे आती हैं अपने दूर

हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी और एफएम सन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलो हर्ज पर और एफएम एंड 102.1 मेगाहर्ज पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम नारी वाटिका।

0: छुट्टियां बीती फिर स्कूल का पैगाम आया
1: नए सपनों ने आंखों में अपना घर बनाया
0: कंधों पर बस्ता होठों पर प्यारी सी मुस्कान
1: चलो फिर से लिखे मिलकर अपने भविष्य की नई उड़ान
0: नारी वाटिका सुनने वाली सभी सखियों को अपनी रेडियो सखी मधु बनर्जी और
1: समीना का
0: प्यार भरा नमस्कार
1: सखियों गर्मियों की छुट्टी के बाद स्कूल खुल गए हैं तो आज नारी वाटिका में बातें होंगी स्कूल और बच्चों की क्योंकि हम महिलाओं का जीवन बच्चों के इर्द गिर्द ही तो घूमता है ना

0: टन टन टन ये सिर्फ स्कूल की पहली घंटी नहीं होती बल्कि हर माँ की सुबह की शुरुआत होती है छुट्टियों की मस्ती के बाद जब स्कूल खुलते हैं तो सबसे पहले बदलती है एक माँ की दिनचर्या
1: हाँ समीना अलार्म अब थोड़ा जल्दी बजता है रसोई में चूल्हा थोड़ी जल्दी जलता है और टिफिन में सिर्फ खाना नहीं माँ का प्यार भी पैक होकर जाता है नई किताबों पर कवर चढ़ाना कॉपियों पर नाम लिखना यूनिफॉर्म प्रेस करना जूतों को चमकाना और बार बार यही पूछना कि बेटा सारी कॉपी रख तो लेना
0: हाँ बिल्कुल सही कहा बच्चा चाहे पहली बार जा रहा हो स्कूल में तू या फिर 10वीं में पढ़ता हो माँ की चिंता कभी कम नहीं होती।

0: उसे बस यही फिक्र रहती है कि बच्चा समय पर पहुंचे, अच्छे से पढ़े, टिफिन पूरा खाए और मुस्कुराता हुआ घर लौट आए।
1: बिल्कुल सही कह रही हो, छुट्टियों के दौरान जब बच्चे देर तक सोते थे ना, तो उन्हें हमें अब समय पर उठाना है, उनकी पसंद का नाश्ता बनाना है, पानी की बोतल भरनी है, होमवर्क की कॉपियां देखनी है और सबसे जरूरी उनके चेहरे पर मुस्कान बनाए रखनी है। एक माँ है ना, वो जानती है समीना कि स्कूल सिर्फ पढ़ाई की जगह नहीं बल्कि सपनों की पहली सीढ़ी है, इसलिए वो हर छोटी बड़ी तैयारी में पूरा दिन लगा देती है।
0: बिल्कुल सही कहा मधु, बच्चे जब स्कूल बस में बैठकर हाथ हिलाते हैं तो माँ के चेहरे पर भी मुस्कान होती है, लेकिन मन में ढेर सारी दुआएं भी तो होती है, मेरा बच्चा सुरक्षित रहे, खुश रहे, कुछ नया सीखे और अच्छा इंसान बने।
1: सखियों, स्कूल की पहली घंटी बच्चों के लिए नई कक्षा की शुरुआत होती है, लेकिन माँ के लिए ये फिर से शुरू होने वाला एक नया सफर, जिम्मेदारियों का, उम्मीदों का और सपनों का।
0: बिल्कुल, हर सुबह माँ अपने बच्चों को स्कूल के लिए विदा करती है, लेकिन उसके साथ सपने, अपनी दुआएं, अपना विश्वास, वो भी तो साथ में भेजती है ना।
1: तो इस नए सत्र में आइए उन सभी मम्मियों को, माताओं को सलाम करें जो बिना किसी छुट्टी के, बिना किसी शिकायत के हर दिन अपने बच्चों के भविष्य को संवारने में जुटी रहती हैं, क्योंकि हर सफल बच्चे के पीछे ना समीना एक माँ की अनगिनत सुबहें और अनकही मेहनत जो छुपी होती है।
0: बिल्कुल, और यही कहती है कि हर समय जब हमें स्कूल जाने के लिए तैयार होना है और जो स्कूल की घंटी बज चुकी है टन टन टन, तो वो हमें बुला रही है।

0: शिक्षा मेरा अधिकार है।
1: से क्यों, घंटी भी बज गई है और स्कूल भी खुल गए हैं। नन्हे कदम जो है वो स्कूल की ओर बढ़ भी चले हैं।
2: बिल्कुल
1: समीना, जिंदगी में कुछ पल ऐसे होते हैं ना जो हमेशा याद रह जाते हैं। उन्हीं में से एक है बच्चे का पहली बार स्कूल जाना।
2: बिल्कुल
1: छोटे छोटे कदमों से कंधे पर छोटा सा बस्ता लिए, दिल में ढेर सारे सवाल और डर लिए, थोड़ा सा डर लिए, जब वो बढ़ता है ना स्कूल की ओर, वो यादें जिंदगी भर रहती हैं।
2: बिल्कुल कुछ हमारे साथ भी ऐसी यादें जुड़ी हुई, और हमारे बच्चों की यादें भी हमारे मन में आज तक है। तो सिर्फ बच्चा ही नहीं डरता मधु, कई बार माँ की आंखें भी नम हो जाती है। बच्चे की उंगलियां जब पहली बार माँ का हाथ छोड़ती है ना, तो सिर्फ स्कूल का पहला दिन ही नहीं होता बल्कि आत्मनिर्भरता की पहली सीढ़ी भी होती है।
1: हाँ बिल्कुल सही कह रही हूँ। अक्सर बच्चे जो हैं वो नए माहौल, नए चेहरों और माँ से कुछ घंटों की जो दूरी होगी ना, उससे घबरा जाते हैं।
2: बिल्कुल
1: ऐसे में सबसे जरूरी है कि उनके डर को समझा जाए, उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जाए, थोड़ा प्यार से समझाया जाए।
2: बिल्कुल बच्चों से हमें ये नहीं कहना चाहिए कि रोइए मत, क्योंकि ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, बल्कि बच्चों से हमें ये कहना चाहिए कि डर लगना बिल्कुल सामान्य है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ। माँ के इन शब्दों में बच्चे का सबसे बड़ा आत्मविश्वास छिपा होता है।
1: बिल्कुल सही कह रही हूँ। स्कूल शुरू होने से पहले ना बच्चे को एक बार स्कूल ले जाकर दिखाया भी जा सकता है, उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें बतानी चाहिए कि उसको एहसास हो कि वो यहाँ पे नए दोस्त मिलेंगे, नई कहानियां होंगी और बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, तो उत्साह बना रहेगा।
2: बिल्कुल, और जब मदर टीचर को जब बच्चा देखता है ना, तो उससे भी उसका अटैचमेंट बढ़ जाता है और वो उनसे भी अपनी माँ की तरह ही कुछ बातें करना सीख जाता है।
1: बिल्कुल।
2: और एक बात, पहले दिन अगर बच्चा रोता भी है ना, तो उसे उसकी कमजोरी मत समझिए, है ना, ये उसके मन के भाव होते हैं, तो हमें धैर्य रखने की जरूरत है। बच्चा है वो तो रोएगा ही, प्यार दीजिए, कुछ दिनों में वही बच्चा खुशी खुशी स्कूल जाने लगेगा।
1: इसके लिए जरूरी है कि जब बच्चा शुरुआती दौर में स्कूल जाए ना, तो उसकी छोटी छोटी बातों को हम सुने, उसने क्या महसूस किया, उसको आज कैसा लगा, क्या खेला, वो सब हमें सुनना चाहिए।
2: बिल्कुल, और बच्चे का आत्मविश्वास डांट से नहीं, विश्वास से बढ़ता है, तो स्कूल का अनुभव जितना सुखद होगा, सीखने की उसकी यात्रा उतनी ज्यादा आनंददायक होती चली जाएगी।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बच्चे को स्कूल तक छोड़ना ही काफी नहीं है सखियों, उसके मन में भरोसा भी छोड़कर आना होता है।
2: क्योंकि स्कूल की पहली घंटी शिक्षा की शुरुआत करती है, लेकिन माँ पिता का विश्वास बच्चे के उज्जवल भविष्य की नींव भी रखता है।

0: कंधों पर आगे हैं नए बस्ते और आंखों में नए सपने।
1: बिल्कुल
0: लेकिन समीना, इन सपनों से भी पहले सपने कौन देखता है? माँ की आंखें।
1: बिल्कुल, और तैयारी में जुट जाती है माँ। और हम अक्सर समझते हैं कि स्कूल की तैयारी का मतलब सिर्फ किताबें, कॉपियां, यूनिफॉर्म और टिफिन है, लेकिन असली तैयारी तो बच्चे के मन की होती है। छुट्टियों की आजादी से निकलकर फिर से अनुशासन में लौटना, नए दोस्तों से मिलना, नई क्लास, नए शिक्षक, यह सब बच्चे के मन में उत्साह के साथ थोड़ी सी घबराहट भी लेकर के आता है।
0: और ये जो घबराहट है ना, यही माँ की सबसे बड़ी जिम्मेदारी शुरू होती है। वो सिर्फ बच्चे का बैग तैयार नहीं करती, बल्कि उसके मन में भरोसा भी भरती है, समझाती है कि नई शुरुआत हमेशा नए अवसर लेकर आती है।
1: बिल्कुल सही कहा मधु। और कई छोटे बच्चे तो पहले दिन स्कूल जाने से डरते हैं, कोई माँ का हाथ छोड़ना नहीं चाहता, कोई नई क्लास को लेकर के परेशान होता है। ऐसे समय में माँ की एक मुस्कान, एक प्यार भरी झप्पी और एक छोटा सा वादा बच्चे का पूरा डर दूर कर देते
0: माँ
1: हैं।
0: बच्चे से ये नहीं कहती समीना कि डरना मत, बल्कि जो तुमने कहा ना पहले, कि कहती है मैं हमेशा साथ रहती, यही उसको विश्वास जो है वो उसको आत्मविश्वासी बनाता है बच्चे को।
1: बिल्कुल। और एक बात और ये कि बच्चे की तुलना दूसरों से करने के बजाय उसकी अपनी छोटी छोटी उपलब्धियों की तारीफ करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हर बच्चा अपनी अलग पहचान और अपनी अलग गति से आगे बढ़ता है।
0: हाँ बिल्कुल सही कहा, नए सत्र की शुरुआत केवल अच्छे अंक लाने का लक्ष्य नहीं होनी चाहिए, अच्छे संस्कार, अच्छी आदतें और सीखने की खुशी भी तो उतनी ही जरूरी है।
1: हाँ, माँ अगर हर दिन बच्चे से ये पूछे कि आज स्कूल में क्या नया सीखा, आज किस बात से खुशी मिली, तो बच्चा जो है वो पढ़ाई को बोझ नहीं बल्कि एक खूबसूरत सफर समझने लगता है।
0: बिल्कुल, हर सुबह जब माँ अपने बच्चे का टिफिन पैक करती है तो उसके साथ अपनी दुआएं भी तो रख देती है, और जब शाम को बच्चा लौटता है ना समीना, तो सबसे पहले उसके चेहरे की मुस्कान पड़ती है कि खुश है या नहीं।
1: तो बस इस सत्र में आइए हम बच्चों पर सिर्फ अच्छे अंक लाने का दबाव ना डालें, बल्कि उन्हें ये भी भरोसा दें कि वो जैसे हैं वैसे ही हमारे लिए अनमोल हैं।
0: क्योंकि किताबें जो है वो ज्ञान देती हैं, शिक्षक दिशा देते हैं, लेकिन उड़ान भरने का हौसला अक्सर माँ की बातों से मिलता है सखियों। तो आइए नए सत्र के साथ नए सपनों को भी प्यार, विश्वास और मुस्कान के साथ उड़ान दें।
1: और खोल दें हमारे नन्हों के छोटे छोटे पंख।

0: अपने खेत, बगीचे, घर, टेरेस या ऑफिस को बनाइए हरा भरा, पौधे उगाइए, पर्यावरण बचाइए।
1: आज ही पधारे लालजी नर्सरी, प्राणो जी का बाग, खोखरिया, वीरामंडो।
0: लालजी नर्सरी गूगल पर सर्च कीजिए।
2: लालजी नर्सरिया, कुछ समय हरियाली में बिताओ।

0: सखियों, जूतों की चमक और किताबों की वो सौंधी सी खुशबू वापस लौट आई है, लेकिन मधु मम्मियों के माथे पर एक छोटा सा सवालिया निशान भी आ गया।
1: हाँ, वो सबके चेहरों पर नजर आ रहा है।
0: बिल्कुल, रोज सुबह टिफिन में क्या बनेगा ये सवाल, और दूसरा ये कि बच्चों का स्कूल बैग कैसे सेट करें।
1: हाँ, छोटे बच्चों के स्कूल बैग को सेट करना भी तो समीना एक बहुत ही बड़ी टेंशन का काम है।
0: बिल्कुल, और उनको टिफिन में क्या देना है ये भी सबसे बड़ी समस्या तो नहीं कह सकते हम, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन उसके लिए भी बहुत दिमाग लगाना पड़ता है।
1: बिल्कुल, कुछ चीज ऐसी हो जो बच्चे खा भी लेना।
0: हाँ बिल्कुल,
1: और स्कूल बैग भी ये है कि भाई वो बच्चे पढ़ लें, अच्छे से पढ़ लें, लेकिन कुछ ऐसा है नहीं हो कि छूट जाए बैग जमाते टाइम।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: वो भी जरूरी है, और बैग बहुत ज्यादा वजनदार भी ना हो जाए।
0: हाँ, बच्चों की जो है कैपेसिटी है उसके अनुसार बैग होना चाहिए, कौन सी चीज कब जरूरत पड़ रही है उसका भी हमें ख्याल रखना चाहिए।
1: एक तो उनका टाइम टेबल डेली देखना चाहिए कि उनका आज किस क्लास है, कौन सा पीरियड है।
0: हाँ,
1: उस विषय की कॉपी जो है वो अपन बैग में कॉपी किताबें जरूर जमाएं, ऐसा ना हो कि वो छूट जाए।
0: तो सबसे पहले बात करते हैं उस साथी की जो साल भर बच्चों की पीठ पर रहने वाला है, यानी स्कूल का बैग। अक्सर हम देखते हैं कि बच्चे अपनी क्षमता से ज्यादा भारी बैग उठाकर झुककर के चल रहे होते हैं, तो इस बार हमें इन बातों का ख्याल रखना है जैसा कि आपने बताया कि सबसे पहले बैग का चुनाव किस तरह का करें। बैग को चुनना भी सबसे बड़ा टास्क होता है ना। बैग हमेशा चौड़े और गद्देदार स्ट्रैप्स वाला ही चुने ताकि बच्चों के कंधों पर सीधा दबाव ना पड़े।
1: और वो शायद कंधों पर चुभेगा भी नहीं।
0: हाँ,
1: तो वो सही रहेगा। और वजन का भी ध्यान रखना जरूरी है। भारी किताबें जो होती है ना हमेशा बैग के पीछे की तरफ रखें, पीठ के पास ना रखें, और हल्की कॉपियों को थोड़ा आगे रखें। इससे जो बैग बैलेंस बना के रखेगा और बच्चे की पीठ पर अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा।
0: बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया कि टाइम टेबल के हिसाब से सारी किताबें जो है वो बैग में रखनी है, तो बच्चों को आदत डालें कि वो हमेशा अपना, सिर्फ हम ही नहीं जो बड़े बच्चे हैं उनको भी हमें थोड़ी सी आदत अब पहले से डलवानी पड़ेगी कि वो अपनी जो डायरी है उसको अच्छे से देख लें कि कब कौन सी बुक की जरूरत है, कब कौन सी डायरी की जरूरत है, कौन से सामान की जरूरत है, उसके अकॉर्डिंग रात को ही ये सारा काम करके।
1: हाँ, सुबह यदि करेंगे तो हौचपच हो जाएगा, व्यवस्थित सा हो जाएगा। और सबसे बड़ी एक बात है कि जो गैर जरूरी सामान है उसको निकालते रहें, वो निकालना भी बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: पानी की बोतल जो है उसको भी ध्यान रखना चाहिए कि वो लीक ना हो जाए।
0: बिल्कुल, तो इस तरह से पानी की बोतल में भी ये देखें कि वो साफ होने वाली हो। कई बोतलों की बनावट कुछ ऐसी होती है कि उसको सही तरीके से हम साफ नहीं कर पाते।
1: बिल्कुल,
0: तो साफ सफाई और हाइजीन का भी पूरा ध्यान रखना है। साथ ही साथ में इस मौसम, क्योंकि अभी गर्मी का मौसम है, तो बच्चों को ठंडा पानी मिल सके, और वो उसके साथ ही कुछ ऐसी छोटी बोतल्स भी हम उनको दें कि वो पानी के अलावा बहुत सी जो लिक्विड जूस वगैरह है वो भी उसमें
1: उसकी कमी पूरी होती रहे। बिल्कुल, पानी की गर्मी में भी पानी की कमी पूरी हो जाए। और अभी जून का महीना जा चुका है, जुलाई के महीने तक तो इसकी जरूरत पड़ने ही वाली है।
0: बिल्कुल, तो ये जो स्कूल की मस्ती भरे दिन है वो और भी मस्ती भरे हो जाएंगे अगर उनकी जो व्यवस्थित चीजें हैं उनको हम और भी ज्यादा व्यवस्थित करके भेजेंगे।

0: हाँ तो मधु याद आ गई ना अपनी भी स्कूल की मस्ती।
1: हाँ बिल्कुल, और स्कूल की मस्ती में वो जो लंच बॉक्स का जो टाइम होता है ना, लंच बॉक्स खोलने का, वो लंच टाइम में हम बॉक्स खोलते हैं, वो जो डब्बा है ना,
0: हाँ।
1: वो भी याद आ रहा है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो आधी छुट्टी जब होती थी जिसको हम लंच टाइम कहते हैं, उसमें जब डब्बा खोलते हैं ना तो बच्चों के चेहरे खिल जाते हैं, लंच बॉक्स और टिफिन की जो खुशबू है वो पूरे रूम में जो क्लासरूम होता है उसमें भर जाती है।
0: और लास्ट वाला जो फोर्थ लंच लंच पीरियड से पहले वाला जो पीरियड होता है, कभी कभी डब्बा उसमें भी खुलना शुरू हो जाता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, चोरी छुपे टेबल के नीचे।
0: और
1: पेट भरने के लिए नहीं, मतलब ऐसा लगता है कि एनर्जी की, हमारी एनर्जी खत्म हो गई है, अब लंच खाएंगे तभी एनर्जी आएगी।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारी एनर्जी का पावर हाउस होता है ये जो डब्बा होता है।
1: बिल्कुल।
0: तो इसका सबसे पहली बात की इसका मटेरियल क्या होना चाहिए। हम मस्ती की बातें तो बहुत सारी कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ में हम ये भी तो ध्यान रखें कि हम जो बच्चों के लिए टिफिन बॉक्स खरीद रहे हैं उसका मटेरियल क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले हम कहेंगे प्लास्टिक को बाय बाय।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि हमेशा अच्छी क्वालिटी का स्टेनलेस स्टील का जो है टिफिन वो आप ले रहे हो तो वो सबसे अच्छा है, और ये सुरक्षित भी है और साफ करने में भी आसान होता है। अगर कभी बच्चे अगर इसको सही तरीके से नहीं रख पा रहे हैं या अगर कहीं से लीक होने का भी इसमें डर नहीं रहता।
1: हाँ, और ये नुकसान नहीं करता है।
0: बिल्कुल,
1: प्लास्टिक नुकसान करता है, और ये सबसे बड़ी बात ये भी है कि टिफिन तो हमने चयन कर लिया लेकिन उसमें रखें क्या। तो सखियों, छोटे जो बच्चे हैं ना उनको ऐसा खाना दिया जाना चाहिए टिफिन में जिसको वो आसानी से खा सके और उनके हाथ जो है वो ज्यादा गंदे ना हो।
0: बिल्कुल।
1: जैसे रोटी सब्जी को रोल बनाकर हम उसको दे सकते हैं, रोटी के बीच में सब्जी को डाल के उसका रोल बना दें, और सूजी से छोटे छोटे उत्पम बना लें और स्टफ्ड पराठे बना दें, तो बच्चों को खाने में इजी होगा, आसानी रहेगी।
0: और इसके साथ हम उनको फ्रूट्स जरूर दें क्योंकि वो भी उनके लिए सेहत के लिए, कई बार बच्चे होते हैं वो आधा ही लंच खाते हैं या फिर तो कुछ ऐसा हो जो उनके लिए हेल्दी सा हो और वो खा करके उसका उनका पेट भरा रहे। और सबसे बड़ी बात कि टिफिन का डेकोरेशन टिफिन ऐसा हो कि वो रंग बिरंगा जब होता है ना टिफिन में, सारी वेराइटीज अलग अलग तरीके से नजर आती है तो बच्चों को देख करके खाने का मन करता है। तो हम जो जैसा कि मैंने बताया अलग अलग स्लाइस में काट करके फलों को रख सकते हैं, और जब टिफिन

0: रंगा दिखेगा ना तो बच्चा उसे पूरा खत्म करके ही लौटेगा।
1: हाँ, कहीं ककड़ी रख दी, कहीं अनार रख दिया, कहीं सेब रख दिया, तो ऐसे रंग बिरंगा होगा तो वो अच्छा लगेगा।
0: बिल्कुल, और जब मम्मी देखेगी कि हाँ टिफिन पूरा खत्म है तो मम्मी भी खुश।
1: और सखियों, एक और बात है कि यदि हफ्ते में एक दिन कम से कम हम बच्चों की पसंद का हेल्दी बनाएं, लेकिन बच्चों की पसंद का कुछ बना दें और साथ में एक लव नोट रख दें,
0: अच्छा
1: जैसे हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू बेटा, आई लव यू बेटा, ऐसा कोई स्टिकर लगा दें या रख दें ना पर्ची, तो यकीन मानो वो बच्चा जब उसको खोलेगा तो उसका दिन बन जाएगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही। तो स्कूल की शुरुआत जो है वो एक तनाव नहीं बल्कि एक खूबसूरत उत्सव बन सकता है। बच्चों को नए सेशन के लिए खूब सारा उत्साह दिया जाना चाहिए, साथ बैठ करके उनका बैग जमाना चाहिए और प्यार के स्वाद से भरा हम टिफिन भी उनके साथ सजा
1: हाँ,
0: सकते हैं।
1: तो जब टिफिन बनेगा तो उस डब्बे को बच्चे खोलेंगे तो उसकी खुशबू को महसूस भी करेंगे और उसके स्वाद को लेकर ललचा भी जाएंगे और टिफिन जो डब्बा है वो खाली भी हो जाएगा।

0: तो मधु जो हमारी जो सखियां हैं वो बच्चों का डब्बा भी उतने ही प्यार से पैक करती है, और वो वही जो सखियां हैं वो ऑफिस की पीपीटी को भी बहुत अच्छे से संभालती है और घर में मटर पनीर की ग्रेवी को भी। लेकिन सबसे बड़ा मिशन इम्पॉसिबल तब शुरू होता है जब शाम को थकी हारी माँ जब घर लौटती है ना, क्योंकि वो वर्किंग वूमन है और जब वो काम करके शाम को घर पे आती है तो सामने से बच्चा आकर के गले लगता है और आकर के कहता है, मम्मी कल मेरा मैथ्स का एग्जाम है।
1: बस समीना वहीं पर तो दिल धड़ की जो धड़कन है ना वो बढ़ जाती है, एकदम से धड़क उठता है दिल कि अरे बाप रे, ऑफिस का टारगेट भी कल पूरा करना है और बच्चे का रिपोर्ट कार्ड भी खराब ना हो ये भी देखना है। तो
0: बिल्कुल
1: ये जो है ना, ये हमारी सखियों के लिए, हम कामकाजी महिलाओं के लिए बहुत बड़ा संतुलन का विषय है।
0: बिल्कुल
1: समझ में ही नहीं आता कि हम कूल वर्किंग मॉम बने तो बने कैसे, और
0: बिल्कुल
1: एक अलग सा जो गिल्ट है ना उसमें ही हम जीते रहते हैं।
0: बिल्कुल। तो भाई ये कहना भी आसान नहीं लगता कि भाई मधु के हाँ बहुत इजीली हो जाएगा, ये सारी चीजें करना मुश्किल है, पर कुछ ऐसी जादुई टिप्स भी हैं जिनको करके, जिनको अपना करके हम अपनी लाइफ को थोड़ा सा आसान बना सकती हैं।
1: हाँ सखियों, क्वांटिटी जो होती है ना उस पर नहीं, क्वालिटी पर यदि ध्यान दिया जाए तो हम काफी कुछ कर सकते हैं। जैसे यदि ऑफिस से आकर 3 घंटे बच्चे से सिर खपा कर डांटे, उससे बेहतर है कि मोबाइल को साइलेंट करें और 30 से 40 मिनट, मतलब करीब करीब आधा पौन घंटा बच्चे की पढ़ाई को दे दें।
0: हाँ
1: उसको हम दिन में अपना होमवर्क करना खुद सिखाएं और
0: हम्म,
1: बोलेंगे अपना होमवर्क खुद से कर ले, जो उसको नहीं आ रहा है वो हमारे से करे वो, और उसको खुद को सेल्फ स्टडी की यदि आदत

0: डाल दे तो ये 30 से जो 40 मिनट है ना, ये सफिशियंट टाइम होगा जब हम अपना 100% फोकस उसके ऊपर देंगे. फोन नहीं होगा, इधर उधर ध्यान नहीं रहेगा, मन लगाकर बच्चा भी पढ़ेगा और हम पढ़ाएंगे, थोड़ा सा काम जो है वो इजी हो जाएगा.
1: बिल्कुल. और इसके साथ ही बच्चों को थोड़ा सा खेलने के लिए समय भी दें, क्योंकि होता यह है कि अगर बच्चा स्कूल से आया है और आते ही हमने उसको होमवर्क के लिए बैठा दिया, या कई वर्किंग वुमेन्स हैं जो दोपहर में लौट आती हैं, सुबह जल्दी जाती हैं, दोपहर में अगर वो लौट आती हैं तो उनको भी ये लगता है कि अब बच्चों को होमवर्क दे दिया जाए या जो होमवर्क है वो करवा दिया जाए, तो ये नहीं होना चाहिए. बच्चे को थोड़ा सा रेस्ट चाहिए, तो उनको स्पून फीडिंग भी नहीं कराएं. जैसा कि आपने बताया कि बच्चे को खुद से कुछ करने की आदत भी दें. अगर आपका बच्चा सो नहीं रहा है दोपहर में या वो कुछ करना चाहता है, तो आपको उसको कुछ क्रिएटिव करने के लिए देना
0: है. बिल्कुल, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए,
1: अप्रिशिएट भी करना है. तो ये उसको चैप्टर रीड करने के लिए बोल सकते हैं, है ना. और उसको ये कहें कि जब तक मम्मा ये काम कर रही है आपको ये काम करना है, उससे बच्चे में जिम्मेदारी की भावना भी आएगी.
0: हाँ बिल्कुल. और एक बात और है कि जो वर्किंग डेज होते हैं उसमें हम होमवर्क को चेक करना नहीं डाले. हाँ. कि हम बिजी हैं तो कम से कम इतना समय दें कि एक बार उसकी कॉपीज पर नजर डाल लें या डायरी पर नजर डाल लें कि उसका वो जो डेली का होमवर्क है हम रोज चेक कर लें.
1: बिल्कुल, बिल्कुल.
0: भारी भरकम जो टॉपिक्स होते हैं ना, कई टॉपिक्स बच्चे को मुश्किल लगते हैं या कोई सब्जेक्ट उसको मुश्किल लगता है, उसको हम अपने छुट्टी के दिन के लिए बचा कर सकते हैं. हाँ. यदि हमारी रविवार को छुट्टी होती है तो हम उस दिन उस टॉपिक को उसको समझा सकते हैं पास बिठा करके और सुकून से उसको पढ़ा सकते हैं. तो थोड़ा सा बच्चे का वो टॉपिक भी अच्छा हो जाएगा और उसका उसमें इंटरेस्ट भी बढ़ जाएगा.
1: बिल्कुल, बिल्कुल. और सबसे जरूरी बात कि सुपर मॉम बनने के चक्कर में खुद को, जैसा कि कहा कि गिल्ट हो जाता है कि हम अपने बच्चे के लिए समय नहीं निकाल पा रहे, तो खुद को गिल्ट ट्रिप पर नहीं रखें. और ये सोचें कि बच्चे, अगर कई बार ऐसा होता है कि आप कहीं बहुत ज्यादा बिजी हैं या बच्चा उतना कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा है, तो उस साल के या उस सेशन के जो आपके बच्चे के मार्क्स हैं वही उसके लिए जीवन में सबसे बड़ा लक्ष्य नहीं है. अगर एक बार थोड़े से मार्क्स कम भी आ गए तो कोई बात नहीं, बच्चे को शुरुआत से उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए उसको अच्छे से समझाएं.
0: हाँ,
1: ताकि वो मजबूत, नींव से, जड़ से मजबूत बन सके.
0: बिल्कुल, नींव मजबूत होगी और हमारी जो मेहनत है ना.
1: हाँ.
0: जो हम घर पे कर रहे हैं, उसको पढ़ा रहे हैं, ऑफिस भी जा रहे हैं, वो मेहनत हमारा स्ट्रगल देखकर बच्चा जो है ना वो खुद भी खुद मेहनत करना सीख रहा है.
1: बिल्कुल.
0: ये भी हमें समझना चाहिए, क्योंकि हम जो है ना वो उसके रोल मॉडल है समीना.
1: बिल्कुल. तो उड़ान बड़ी चीज है, रोज उड़ान भरो,
0: मगर उतना ही जहां से जमीन साफ दिखाई दे.
1: बिल्कुल.
2: सवेरा हो गया है, चिड़ियां घोंसलों से निकल रही हैं, स्कूल की घंटी बज गई है, बच्चे सब स्कूल जा रहे हैं, हम भी तैयार हैं, स्कूल चले हम, मिलकर स्कूल चले हम.

0: सखियों, अलग अलग उम्र के जो बच्चे हैं वो स्कूल चल दिए, कोई प्ले ग्रुप में चला गया, कोई बड़ी क्लास में जा रहा है, और समीना कुछ बच्चे जो हैं वो 12वीं पास आउट करके कॉलेज की ओर कदम रख रहे हैं। तो बच्चा चाहे छोटा हो या बड़ा, जब भी वो स्कूल जाता है ना, तो स्कूल या कॉलेज के लिए जाता है, तो पेरेंट्स के दिल में एक चिंता रहती है कि क्या मेरा बच्चा सुरक्षित होगा।
1: हाँ बिल्कुल, क्योंकि इस उत्साह के पीछे माँ और पिता के मन में थोड़ी सी ये टेंशन भी होती है कि माहौल कैसा होगा, वहाँ के लोग कैसे होंगे। और जब सबसे ज़्यादा असमंजस की स्थिति तब आती है जब बच्चा अपना शहर छोड़ करके बाहर जा रहा होता है।
0: बिल्कुल,
1: तो उस समय उसकी पैकिंग, उसको सारी चीज़ें सिखाना, कैसे कैसे वहाँ पर रहना है, किस तरह के लोग होंगे, ये सारी कशमकश हमारे मन में चल रही होती है।
0: इसमें भी है ना, देखो ना, सबसे बड़ी बात स्कूल में तो बुलिंग का डर, और कॉलेज का यदि बच्चा है, स्कूल पास आउट करके पहली बार कॉलेज जा रहा है, तो एक रैगिंग का डर बच्चों के अंदर होता है।
1: बिल्कुल, हालांकि अब उन पर, इन सारी चीजों पर बहुत लगाम लग गई है, लेकिन बच्चे तो बच्चे ही हैं, वो अपनी शरारतें कहाँ छोड़ेंगे। तो अगर बच्चे इस तरह के नए माहौल में अगर शुरुआत में ही तनाव में आ जाएंगे तो उनके लिए आगे की जो पढ़ाई है वो थोड़ा सा मुश्किल हो
0: तो
1: जाती है।
0: इसमें है ना, हम पेरेंट्स भी बच्चों की मदद कर सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: हमें ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों के बीच में यदि आपसी कोई नोकझोंक हो रही है तो वो ठीक हो जाएगी, लेकिन यदि वो नोकझोंक बुलिंग या रैगिंग का रूप ले, तो हमें है ना ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे के कोमल मन पर बहुत गहरे घाव छूट जाएंगे,
1: बिल्कुल
0: और जो कई वर्ष तक नहीं भरेंगे। तो उस समय हमें ध्यान रखने की जरूरत है, अलर्ट होने की जरूरत है।
1: बिल्कुल, तो इसके बारे में हमें अलर्ट भी होना है और खुल करके घर में बातचीत करनी पड़ेगी, बच्चों से भी इस बारे में बात करनी पड़ेगी। तो सबसे पहला सवाल ये कि हमें इसको समझना कैसे पड़ेगा।
0: हाँ, मतलब ये समझ में कैसे आए, पेरेंट्स को ये लगता है कि बच्चा जो है वो बुलिंग या रैगिंग का शिकार हो रहा है, तो इसके लिए क्या है कि बच्चे क्या होता है समीना, अक्सर डर या शर्म में रहते हैं, तो वो हमें बताते नहीं हैं, इसके लिए हमें वो चुप हो जाते हैं अक्सर।
1: बिल्कुल, तो अगर उनके व्यवहार में कुछ बदलाव आने लगे या माता पिता को ये लगे कि बच्चा कुछ गुमसुम है, कुछ उदास है या कुछ बातों को छुपा रहा है, तो वहीं से उस पर एक
0: अलर्ट होने
1: पैनी पैनी
0: बिल्कुल
1: नजर रखने की जरूरत
0: बिल्कुल
1: है।
0: है। जो बच्चा हंसता खेलता रहता हो वो एकदम से चिड़चिड़ा हो जाए, ये भी बहुत मतलब सिम्टम है कि वो परेशान है।
1: बिल्कुल,
0: यदि बच्चा सुबह सुबह पेट दर्द का बहाना बना ले, सिर दर्द का बहाना बना ले, और स्कूल बस को मिस करने की कोशिश करे हमेशा कि बस जो है वो मेरी मिस हो जाए।
1: हाँ बिल्कुल, बहाने बना रहा है या उसकी नींद या भूख में कमी आ गई हो, सो नहीं पा रहा है, खाना नहीं ढंग से खा पा रहा है, रात में अचानक डर के उठ बैठता है, या फिर ठीक से खाना नहीं खाता है, या किताबें पेंसिल या जो भी उसकी जो जरूरी सामान है वो खो देता है, तो
0: हाँ,
1: इसके बारे में भी पेरेंट्स को देखने की
0: एक
1: जरूरत।
0: चीज और भी देखनी चाहिए कि यदि बच्चे के कपड़ों पर किसी तरह के निशान है या कहीं से कपड़ा फट रहा है, तो उससे सवाल किया जाए कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या वो गिर गया था, तो वो सब डिटेल में पूछने की जरूरत है। लेकिन बहुत जरूरी है कि हम इमोशनल जो बॉन्ड है ना समीना, वो बच्चों के साथ बनाए।
1: बिल्कुल,
0: यदि
1: सवाल करें लेकिन बहुत ही प्यार से।
0: तब बच्चे कहेंगे कि जिंदगी में कोई गम ही नहीं।

0: सखियों, अभी हम बात कर रहे थे बुलिंग और रैगिंग की। तो समीना, कई बार ऐसा होता है ना कि अपन बच्चों को समझ नहीं पाते, अपन बात कर रहे थे, तो जब भी हमें लगे ना इसकी हमें समझ नहीं आ रहा बच्चे का व्यवहार, तो हमें कुछ चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए जिससे वो इजीली हमें ये बात कह सकें।
1: बिल्कुल
0: वो जैसे 3 पॉइंट है, सुनो, समझो और सिखाओ। हम कह सकते हैं कि जब भी बच्चा बच्चे के साथ हम रात को सोएं, बात करें, तो उससे पढ़ाई की बात करना ही ज़रूरी नहीं है, उससे ये भी बोलें कि आज उसे किस बात में मज़ा आया या किस चीज़ ने उसे परेशान किया, और साथ ही भरोसा भी दिलाएं कि पूरी दुनिया चाहे इधर की उधर हो जाए, लेकिन पेरेंट्स जो हैं वो हमेशा उसके साथ खड़े हैं।
1: बिल्कुल। और ये बात जो है वो उसमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी भर देगी। और दूसरी बात, जैसा कि आपने कहा कि बच्चों को सिखाएं, तो बच्चों को सिखाएं कि गलत के सामने झुकना नहीं है। हम बहुत सारी बातें बताते हैं, लेकिन कई बार हम ये बताना भूल जाते हैं कि, या जोर दे करके नहीं बताते कि गलत के सामने झुकना नहीं है। अगर कोई उन्हें बिना वजह परेशान करता है, तो साफ साफ और कड़क आवाज में वो कह सकते हैं कि बंद करो, ये जो काम कर रहे हो बिल्कुल मुझे पसंद नहीं है।
0: बिल्कुल,
1: बिल्कुल
0: ना कहना भी बहुत जरूरी
1: ना
0: है।
1: कहना, और आंखों में आंखें डाल करके, और ये बोलना कि हमें जो ये आप काम कर रहे हो ये बिल्कुल पसंद नहीं है, या मैं इसकी शिकायत आगे कर दूंगा, तो ये गलत नहीं है। इससे उस बच्चे को अपने को डिफेंड करने की
0: हाँ
1: आदत आएगी, वो
0: बिल्कुल,
1: सीखेगा।
0: इससे ना आधी समस्या जो है ना वो वहीं खत्म हो जाएगी।
1: बिल्कुल
0: और शिकायत कर कोई कमजोरी नहीं होती है कि हम किसी की शिकायत कर रहे हैं तो वो हम कमजोर हैं, नहीं। हमें बच्चों को ये समझाना जरूरी है कि जब हमारे साथ कुछ गलत हो और हमारे मना करने से ना रुके, तो हमें टीचर या प्रिंसिपल से शिकायत कर लेनी चाहिए। हर चुगली जो है वो कमजोरी नहीं होती, बल्कि अपने अधिकारों के लिए हमें ही खड़ा होना पड़ता है।
1: बिल्कुल कॉलेज जाने वाले बड़े बच्चों के लिए यहाँ पे हम ये कहना चाहेंगे कि जो रैगिंग जो है, जैसा कि मैंने बताया, कानूनी अपराध है, अब उस पर लगाम भी लग चुकी है, तो ये कोई इंट्रोडक्शन नहीं है। कॉलेज में एंटी रैगिंग सेल अब बन चुकी है, और
0: बिल्कुल
1: सरकार की हेल्पलाइन नंबर्स भी हैं। डरे बिना अगर आप आवाज़ उठाते हो, तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप जो है आप अपने आप को उन सारी चीजों से तो बचाओगे, दूसरों के साथ भी अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो उसमें भी आप उनका सपोर्ट करोगे।
0: हाँ बिल्कुल सखियों, हम ये कहना चाहेंगे कि जो बच्चे हैं ना वो नन्हे पौधे हैं, वो बहुत नाजुक हैं, और उन्हें सिर्फ धूप और पानी की जरूरत नहीं है, उन्हें हमारे विश्वास की बाउंड्री चाहिए। अपने बच्चों के दोस्त बनिए, उन्हें हौसला दीजिए। जब वो घर से बाहर निकले ना, तो सिर को गर्व से ऊंचा करें, डर से झुका हुआ नहीं।
1: बिल्कुल।

0: सखियों, हम बात कर रहे हैं बच्चों की, और बच्चों के साथ जुड़ा होता है बचपन। तो समीना, हमें भी तो अपना बचपन याद आता है ना। शाम होते ही गली में गूंजती थी बच्चों की हंसी, मिट्टी की खुशबू, और वो साइकिल की जो किराए पे साइकिल लाई जाती थी ना, उसकी रफ्तार
1: बिल्कुल
0: और माँ की आवाज की बस अब घर आ जाओ खाना तैयार है। आज वही शाम है, लेकिन न गली में बच्चों की चहल पहल है, न खेल का शोर। अब बच्चों की दुनिया जो मोबाइल के छोटे से स्क्रीन में सिमट रही है।
1: बिल्कुल सच कहा मधु। आज बच्चों की उंगलियां गेंद और खिलौनों को पकड़ने के बजाय मोबाइल की स्क्रीन पर दौड़ती हुई नजर आती है। खेल का मैदान खाली होता जा रहा है और आंखों की चमक स्क्रीन की रोशनी में कहीं खोती हुई सी नजर आ रही है।
0: लेकिन क्या सिर्फ बच्चों को ही दोष देना ठीक है समीना?
1: बिल्कुल नहीं।
0: हाँ, कई बार हम बड़ी ही व्यस्तता में उन्हें मोबाइल थमा देते हैं,
1: हाँ
0: और हम चाहते हैं कि जो मोबाइल है वो उनसे बात करे, मोबाइल को देखे और हम फ्री रहें। तो
1: बिल्कुल
0: धीरे धीरे वही मोबाइल उनका सबसे करीबी दोस्त बन जाता है।
1: बिल्कुल सही कहा। बच्चों को मोबाइल से दूर करने का सबसे अच्छा तरीका मोबाइल छीनना नहीं है, बल्कि उन्हें अपना समय देना है। जब माँ और पापा उनके साथ बैठकर बातें करते हैं, कहानी सुनाते हैं, पार्क में ले जाते हैं या उनके साथ में खेलते हैं, तो बच्चे स्क्रीन से ज्यादा रिश्तों से जुड़ते हैं।
0: याद रखिए, बचपन जो है वो किताबों और खेल के बीच सबसे खूबसूरती से खेलता है।
1: बिल्कुल
0: पढ़ाई जरूरी है, लेकिन उतना ही जरूरी है मिट्टी में दौड़ना, हारना जीतना, दोस्तों के साथ हंसना और खुलकर जीना।
1: बिल्कुल, अगर हम चाहते हैं कि बच्चे अपने स्क्रीन टाइम को कम करें, तो हमें भी अपने हाथों से मोबाइल को थोड़ा सा दूर
0: बिल्कुल
1: रखना होगा,
0: जरूरी है।
1: क्योंकि बच्चे हमारी बातें कम और हमारे व्यवहार से ज्यादा सीखते हैं।
0: हर दिन एक छोटा सा नियम बनाइए, कुछ समय पढ़ाई के लिए, कुछ समय खेल के लिए, और कुछ समय पूरे परिवार के साथ बैठकर जब किसी के हाथ में मोबाइल ना हो। यकीन मानिए, यही पल बच्चों की सबसे सुंदर यादें बनाएंगे।
1: बिल्कुल बिल्कुल सखियों, बचपन दोबारा नहीं आता, इसलिए बच्चों को सिर्फ अच्छी शिक्षा ही नहीं, खूबसूरत बचपन भी दीजिए, क्योंकि किताबें उन्हें सफल बनाएगी, खेल उन्हें मजबूत बनाएंगे और परिवार का साथ उन्हें अच्छा इंसान बनाएगा।

0: क्यों, रट्टा तो मारते रहते हैं और बचपन जो है वो रट्टा मारने का ही नाम है। लेकिन समीना, बचपन बहुत छोटा होता है ना, बहुत जल्दी गुजर जाता है,
1: बिल्कुल
0: लेकिन उसकी जो यादें हैं ना वो जीवन भर साथ रहती हैं। इसीलिए बच्चों को केवल अच्छी शिक्षा नहीं बल्कि प्यार, विश्वास और खुलकर जीने का मौका देना चाहिए।
1: बिल्कुल, याद रखिए हर बच्चा अलग है, उसकी गति अलग है, उसकी अपनी प्रतिभा अलग है, उसे तुलना नहीं प्रोत्साहन दीजिए, डांट नहीं संवाद चाहिए, और सबसे बढ़कर चाहिए अपनों का साथ।
0: आप अपने बच्चों के साथ मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और उनके सपनों को उड़ान देते रहिए।

0: हाँ तो मधु, छोटे छोटे तमाशे जैसे पानी पताशे, तो जिंदगी में तमाशे हैं वो चलते रहेंगे, और साथ ही साथ में हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके हंसगुल्ले इसी तरह चलते रहें, यही हमारी दुआ है। और अब वक्त हो चला है सखियों आपसे विदा लेने का। चलते चलते आपको बता दें कि हमारी आवाज़ को आप तक पहुँचाया कंसोल पर बैठे हमारे साथी राजेंद्र चौधरी ने,
1: ट्रांसमीटर पर हमारे साथी रहे विक्रम सिंह भाटी, पीके सेन, कंट्रोल रूम से हमारा साथ दिया दिलीप सिंह परमार ने। तो अब अपनी सखी मधु बैनर्जी और
0: समीना को दीजिए इजाजत।
1: नमस्कार।

ये आकाशवाणी का जोधपुर केंद्र है। दिन के 2:15 होने को है। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से दोपहर समाचार रिले किए जाएंगे। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम यूरो बैंक ने यूनान से भारत के लिए यूपीआई के माध्यम से धन भुगतान की सेवा शुरू की वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इसे भारत के डिजिटल भुगतान विस्तार में मील का पत्थर बताया दिल्ली सहित चार राज्यों में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू पाकिस्तान के ग्रे सूची निगरानी की आलोचना के बाद भारत ने वित्तीय कार्यवाही कार्य बल के लिए अपना समर्थन दोहराया ईरान के दोहा में बैठक से इंकार के बाद अमेरिका ईरान के बीच शांति वार्ता पर अनिश्चितता बरकरार उत्तर प्रदेश बिहार मध्य महाराष्ट्र कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में अगले दो दिन तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान और जर्मनी पैराग्वे से पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हारकर फीफा विश्व कप से बाहर मोरक्को ने नीदरलैंड को हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया अब समाचार विस्तार से यूरो बैंक ने यूनान से भारत में सीमा पार धन भुगतान के लिए यूपीआई सेवा शुरू की है ये पहल बैंक और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के रणनीतिक सहयोग का हिस्सा है एक रिपोर्ट
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यूरो बैंक में सेवाओं का उद्घाटन भारत के डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के वैश्विक विस्तार में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर है उन्होंने कहा कि यूनान में यूपीआई के शुरू होने से ग्राहक तुरंत सुरक्षित और निर्बाध रूप से धन हस्तांतरण कर सकते हैं इससे लेन देन लागत पारंपरिक हस्तांतरण लागत के मुकाबले काफी कम हो गई है श्री गोयल ने यूपीआई की बढ़ती वैश्विक स्वीकृति की सराहना की उन्होंने कहा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस दृष्टिकोण में विश्वास को भी दर्शाता है जिसके तहत प्रौद्योगिकी आधारित समाधान विकसित किए जा रहे हैं समाचार कक्ष से निखिल कुमार
0: दिल्ली सहित चार राज्यों में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है दिल्ली में घर घर जाकर मतदाताओं को मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करने का कार्य शुरू किया जा रहा है इस प्रक्रिया के अंतर्गत 13,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी बीएलओ अगले महीने की 29 तारीख तक हर घर जाकर सभी मौजूदा मतदाताओं को पूर्व मुद्रित गणना प्रपत्रों की दो प्रतियां वितरित करेंगे ताकि मतदाता सूची का सत्यापन और अद्यतन किया जा सके कल संवाद मतदाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती हैं अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी उन्होंने बताया कि मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन गणना प्रपत्र भर सकते हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली के सभी पात्र मतदाताओं से इस संशोधन प्रक्रिया में भाग लेने की की है कर्नाटक में ब्लॉक स्तर के अधिकारी बीएलओ विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के अंतर्गत घरों का दौरा कर रहे हैं इस कार्य के लिए राज्य भर के सभी 31 जिला निर्वाचन कार्यालयों में 59,000 से अधिक बूथ स्तर के अधिकारी तैनात किए गए हैं 4 अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी 224 मतदाता पंजीकरण अधिकारी 336 सहायक मतदाता पंजीकरण अधिकारी और 7,556 बीएलओ पर्यवेक्षक भी पुनरीक्षण प्रक्रिया में शामिल हैं। झारखंड में आज से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के तहत बूथ स्तरीय अधिकारी घर घर जाकर गणना

0: पत्र वितरित करेंगे। एक रिपोर्ट। बूथ लेवल अधिकारी 29 जुलाई तक घर घर जाकर मतदाताओं को आंशिक रूप से भरे हुए इन्यूमरेशन फॉर्म उपलब्ध कराएंगे और सत्यापन करेंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि अभियान का उद्देश्य मतदाता सूची को पूरी तरह शुद्ध, पारदर्शी और त्रुटि रहित बनाना है, ताकि कोई भी पात्र भारतीय मतदाता सूची से वंचित न रहे और कोई भी अपात्र व्यक्ति सूची में शामिल न हो। श्री कुमार ने मतदाताओं से अपील की कि फॉर्म प्राप्त होने पर आवश्यक जानकारी भरकर हस्ताक्षर सहित शीघ्र BLO को वापस करें, ताकि उनका नाम 5 अगस्त को प्रकाशित होने वाली प्रारूप मतदाता सूची में शामिल किया जा सके। आज राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने खूंटी जिले के तोरपा विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र संख्या 84, 87 और 89 का निरीक्षण कर BLO और BLA2 के साथ बैठक की और विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की तैयारियों और कार्य योजना की समीक्षा की। विशेष गहन पुनरीक्षण SIR 2026 अभियान को गति देने के लिए #झारखंडSIR के साथ सोशल मीडिया जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से महवेश रहमान की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं कनकलता।
1: मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स के उपायुक्त अभिलाष बरनवाल ने बताया कि 1021 बूथ स्तरीय अधिकारी BLO जिले के सभी 1021 मतदान केंद्रों पर 29 जुलाई तक घरों का दौरा करेंगे और उन मतदाताओं को पहले से भरे हुए स्वगणना प्रपत्र वितरित करेंगे जिनके नाम 2025 की मतदाता सूची में पहले से ही शामिल हैं। इस बीच केरलम में जनगणना 2027 के लिए स्वगणना प्रक्रिया आज समाप्त हो रही है। राज्य में रहने वाले सभी लोग आधी रात तक पोर्टल पर अपना विवरण दर्ज कर सकते हैं। आगे की जानकारी एकत्र करने के लिए जनगणना कर्मी कल से घरों का दौरा करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज आंध्र प्रदेश के केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में भाग लेने के लिए विशाखापट्टनम पहुंची। उनका स्वागत INS देगा में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल S. अब्दुल नजीर ने किया। इस अवसर पर कई जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज कहा कि सरकार ने देश में स्वास्थ्य सेवा, अवसंरचना और कुशल चिकित्सा मानव संसाधन दोनों को मजबूत करने पर समान रूप से जोर दिया है। नई दिल्ली में इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज के 10वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि ILBS जैसे संस्थान देश के स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करने में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं।
2: ILBS ने नहीं सिर्फ देश में बल्कि दुनिया में अपना नाम स्थापित किया है। ऐसे समय में 10th कॉन्वोकेशन हो रहा है ये सेलिब्रेट करने की। स्टूडेंट्स जिनको आज डिग्री मिल रही है उनके लिए भी ये सेलिब्रेशन का मौका है, पर उनके सेलिब्रेशन है उनकी सैक्रिफाइस, उनका डिसिप्लिन, उस सब के कारण आज वो इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि उनको ये डिग्रियां हासिल हो रही हैं। इसलिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कृषि क्षेत्र के विकास के बिना विकसित भारत का सपना पूरा नहीं हो सकता। हरियाणा के हिसार में खेत बचाओ अभियान के समापन समारोह को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि सरकार एक मोबाइल ऐप विकसित करने पर काम कर रही है जो मिट्टी और उसमें आवश्यक उर्वरक की मात्रा के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। उन्होंने किसानों को जैविक खेती अपनाने की भी सलाह दी।
3: हम संतुलित खाद डालें, संतुलित कीटनाशक जितनी जरूरत है जिन तत्वों की आवश्यकता वही डालें। अत्यधिक केमिकल फर्टिलाइजर के उपयोग से हमारी धरती बीमार हो रही है, हमारी मिट्टी खराब हो रही है और उसमें उत्पादित जो फल, सब्जी और अनाज है उसके कारण कई तरह की बीमारियां मानव शरीर में भी घर कर रही है। अलनीनो का प्रभाव यहां भी है, बारिश नहीं हो रही है, तो इस प्राकृतिक संतुलन को हमको बना के रखना पड़ेगा ताकि हमारी धरती सुरक्षित रहे तो हम भी सुरक्षित रहेंगे।
1: ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन RGVVS 2026 का आयोजन किया है। ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के ग्रामीण परिवर्तन के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए किया गया जिसका समापन हाल ही में हुआ है। इसके अंतर्गत केंद्र राज्य के मजबूत सहयोग, समुदाय आधारित विकास और प्रौद्योगिकी आधारित शासन के माध्यम से विकसित ग्राम विकसित भारत के दृष्टिकोण को गति देने की साझा प्रतिबद्धता को ध्यान में रखा गया। सरकार ने GST अपीलीय न्यायाधिकरण के सामने अपील करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई तक बढ़ा दी है। वित्त मंत्रालय के अनुसार पिछले वर्ष सितंबर में जारी अधिसूचना में अपील दायर करने की अंतिम तिथि इस वर्ष 30 जून निर्धारित की गई थी। विभिन्न हितधारकों ने GST अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील दायर करने की भारी संख्या के कारण आई तकनीकी बाधा का हवाला दिया था।
0: से

0: सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सेना को शक्ति किसी एक व्यक्ति से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, उनके परिवारों और देश के नागरिकों के अटूट विश्वास से मिलती है। जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना ने पिछले दो वर्ष में हर मोर्चे पर अपनी तत्परता, संतुलन और सतर्कता को लगातार बनाए रखा है।
1: चार दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ।
0: जनरल द्विवेदी आज नई दिल्ली में सेना प्रमुख के पद से सेवानिवृत्त हो गए हैं। नए सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को जिम्मेदारी सौंपते हुए जनरल द्विवेदी ने विश्वास व्यक्त किया कि जनरल सेठ के नेतृत्व में भारतीय सेना अपनी गौरवशाली परंपराओं, व्यावसायिकता और दृढ़ संकल्प को कायम रखते हुए और भी ऊंचाइयों को छुएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। भारत ने वित्तीय कार्रवाई कार्यबल को आतंकवाद को धन मुहैया कराने और धन शोधन के खिलाफ वैश्विक लड़ाई का अविभाज्य अंग बताते हुए इसके लिए अपना पुरजोर समर्थन फिर से व्यक्त किया है। संगठन की ग्रे लिस्ट में शामिल किए जाने के बाद पाकिस्तान ने FATF की आलोचना की थी, जिसके बाद भारत ने FATF के प्रति अपना समर्थन दोहराया। संयुक्त राष्ट्र में आतंकरोधी सप्ताह से अलग एक समारोह में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि FATF की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने का प्रयास जायज चिंताओं के बजाय जांच के दायरे में आने का भय अधिक दर्शाता है। पश्चिम एशिया में तनाव कम करने के लिए चल रहे कूटनीतिक प्रयासों में बाधा आ रही है। दोहा में होने वाली अगले चरण की वार्ता को लेकर अमरीका और ईरान विरोधाभासी बयान दे रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा दोहा में नई वार्ता आयोजित किए जाने के संकेत के बाद अमेरिका ईरान संबंधों के भविष्य को लेकर अनिश्चितता बढ़ गई है। हालांकि ईरान ने इस दावे को दृढ़तापूर्वक अस्वीकार करते हुए कहा कि फिलहाल अमेरिका के साथ किसी भी प्रकार की बातचीत की योजना नहीं है। ईरान के अधिकारियों का कहना है कि अभी उनका ध्यान 14 सूत्री समझौता ज्ञापन को लागू करने पर है, जिसके बाद वे किसी व्यापक या अंतिम समझौते पर चर्चा करने पर विचार करेंगे। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन ने भी यह स्पष्ट किया है कि ईरान अपने वादों को तभी पूरा करेगा जब अमेरिका भी अपनी जिम्मेदारियां निभाएगा। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
0: भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत भूकंप प्रभावित वेनेजुएला को मानवीय सहायता प्रदान कर रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत ने आपदा से प्रभावित लोगों के लिए चिकित्सा सहायता और आपातकालीन सहायता पर विशेष ध्यान देते हुए राहत कार्यों का विस्तार किया है। मंत्रालय ने कहा है कि भारतीय बचाव और चिकित्सा दल वेनेजुएला के अधिकारियों के साथ मिलकर आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले दो दिन के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में बहुत तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। सिक्किम, असम, मेघालय, केरलम और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में भी आज इसी तरह की स्थिति रहने की संभावना है। विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़ और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में अगले दो से तीन दिन के दौरान कई स्थानों पर गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने तटीय कर्नाटक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में कल तक छिटपुट स्थानों पर तेज सतही हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस के अवसर पर सभी निर्वाचित अधिकारियों और विश्व के लोकतांत्रिक संस्थानों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिड़ला ने कहा कि संसद जनता की आकांक्षाओं, अधिकारों और विश्वास की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है, जहां विचारों का मंथन होता है, नीतियां बनती हैं और राष्ट्र के भविष्य की दिशा तय होती है। झारखंड में आज हूल दिवस मनाया जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि यह दिवस जनजातीय क्रांतिकारियों सिद्धो कान्हो, चांद भैरव और फूलो झानो के बलिदान के स्मरण में मनाया जाता है।
3: झारखंड के साहिबगंज जिले के भोगनाडी में हूल दिवस के अवसर पर हजारों लोग संथाल हूल के अमर शहीदों सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो और झानो को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। 30 जून 1855 को भोगनाडी से सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में अंग्रेजी शासन और महाजनी प्रथा के खिलाफ संथाल हूल का बिगुल फूका गया था। क्रांतिकारियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को कई मोर्चों पर कड़ी चुनौती दी और आंदोलन लगभग एक वर्ष तक चला। इस संघर्ष के दौरान चांद और भैरव शहीद हो गए जबकि

0: में सिद्धू और कान्हू को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर फांसी दे दी। झारखंड में हूल दिवस स्वाभिमान प्रतिरोध और जनजातीय अस्मिता का प्रमुख प्रतीक माना जाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
1: जर्मनी फुटबॉल फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 32 से बाहर हो गया है। बोस्टन में खेले गए मैच में पैराग्वे ने उलटफेर करते हुए जर्मनी को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराया। विश्व कप में पेनल्टी शूटआउट में जर्मनी की यह पहली हार है। मोरक्को और ब्राजील भी अंतिम 16 में पहुंच गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। यूरो बैंक ने यूनान से भारत के लिए यूपीआई के माध्यम से धन भुगतान की सेवा शुरू की। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इसे भारत के डिजिटल भुगतान विस्तार में मील का पत्थर बताया। दिल्ली सहित 4 राज्यों में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू। पाकिस्तान के गृह सूची निगरानी की आलोचना के बाद भारत ने वित्तीय कार्यवाही कार्य बल के लिए अपना समर्थन दोहराया। उत्तर प्रदेश बिहार मध्य महाराष्ट्र कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में अगले 2 दिन तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये है विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनिए कार्यक्रम सदाबहार नगमे। कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुनते हैं महल फिल्म का गाना किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में। आनंद बख्शी का लिखा गीत है, कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

0: फिल्म तपस्या का ये गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार और आरती मुखर्जी का गाया हुआ, एमजी हशमत के बोल थे और रविंद्र जैन का संगीत था।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है।

0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
1: आइए अब आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर की आवाज में मेरा साया फिल्म का ये सदाबहार नगमा। राजा मेहंदी अली खान के बोलों को संगीत से सवारा है मदन मोहन ने।

0: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
1: खून से है क्यों भीगा जिसम ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
0: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: एक टुकड़ा धूप का।
0: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
1: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
0: 30 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

वासना फिल्म का ये गाना आपने सुना मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर का गाया हुआ, साहिल लुधियानवी के बोल थे और चित्रगुप्त का संगीत था। और अब आज के सदाबहार नगमे कार्यक्रम

इस गीत के साथ ही अब आज का सदा बहार नगमे कार्यक्रम समाप्त करने की दीजिए राजुल को इजाजत। सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती।

0: सखी सहेली
1: सभी सखी सहेलियों और सखाओं को राजुल का नमस्कार और साथ में है सोनाली, आपको भी नमस्कार।
2: राजुल जी आप
3: इस कार्यक्रम के प्रायोजक है देव दर्शन धूप अगरबत्ती धूप स्टिक कोन्स एवं हवन सामग्री।

0: सर्वोत्तम क्वालिटी, देव दर्शन धूप, अगरबत्ती, कॉर्न व हवन सामग्री।
1: बस जैसे ही परेशान देखती है कि अरे सोनाली परेशान हो रही, तुरंत आ जाती है। वैसे एक बात बताएं कि हमारे वो मित्र जो कि हमसे दूर हैं, जहाँ पे अभी बारिश नहीं शुरू हुई है, उनके लिए ये चीज बड़ी ही सुन के उनको बहुत वो होता है कि यहाँ तो बहुत तेज गर्मी पड़ रही है और बारिश तो हो नहीं रही है, तो उनको ये बात सुन के बड़ा ही अजीब सा लगता है। लेकिन भाई जहाँ बारिश हो रही है और जहाँ बारिश नहीं हो रही है, वहां पर भी बारिश शुरू हो जाए हम तो यही कहेंगे।
2: बस इंतजार करना जरूरी है, क्योंकि इंतजार का फल मीठा होता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मीठा होता है। और इसके साथ ही साथ एक बात ये है कि आज जो हम लोग बातें करने वाले हैं ना, उसमें जो बातें हैं वो बिल्कुल रिमझिम की तरह बरसती हुई एकदम शांत कर देने वाली बातें हैं। जैसे कि हम आज बात करेंगे बुजुर्गों के अकेलेपन के बारे में।
2: अकेलापन जो है ना, ये एक ऐसी अवस्था है जो बहुत परेशान कर देती है, पर जो घर वाले हैं उनकी थोड़ी जिम्मेदारी है कि उनके जीवन में सुकून के पल आए, तो उनसे मिलजुल करना बहुत जरूरी है, उन्हें अपने साथ शामिल करना बहुत जरूरी है। तो बुजुर्गों का अकेलापन ये एक विषय है। साथ ही जैसे मैंने बच्चों का जिक्र किया, तो बातें हल्की फुल्की, तो इसमें छोटे बच्चों की शरारतें, तो छोटे बच्चे जो इतने शरारती होते हैं, तो बहुत सारे हमारे श्रोताओं ने इस विषय पर कमेंट्स लिखे भी है, पर उन्होंने आमतौर पर बच्चे शरारती होते हैं इस बारे में लिखा है। पर आपके घर में भी अगर शरारती बच्चे हैं तो उन्होंने क्या शरारती

0: किए। कभी कभी ऐसा था ना राजुल जी कि उन्होंने किसी कुर्सी में है ना अपना सिर फंसा लिया है,
1: हाँ।
0: या फिर उन्होंने जो सीढ़ी के बगल में जो ग्रिल लगी होती है उसमें अपना पैर फंसा लिया है, या फिर बहुत सारी कोल्ड क्रीम है वो सर में लगा ली है, लिपस्टिक मम्मी
1: एक
0: के
1: एक संदेश मन ने ऐसा पढ़ा था कि उसने खूब सारी कोल्ड क्रीम पोत ली थी।
0: तो ऐसी शरारतें होती है, कभी कभी हम परेशान भी हो जाते
1: अरे
0: हैं।
1: कुछ बच्चे तो वो जो रसोई के बर्तनों से खेलते हैं,
0: हाँ
1: और उसके बाद पता चला कि बर्तन तो आप ढूंढ रहे हैं उस समय चिमटा ढूंढ रहे हैं या कुछ ढूंढ रहे हैं, और वो
0: तो
1: पता चला कि खिलौने की बास्केट में पड़ा हुआ है।
0: और कभी कभी बच्चे ऐसी शरारतें करते हैं जो हमें तकलीफ में ले जाते हैं, जैसे कि पैसा निगल लिया है,
1: हाँ
0: सिक्का निगल लेते हैं। तो इस तरह की शरारतें आपके घर में क्या हुई है वो हमें लिखकर भेजिए। साथ ही उद्यमी महिला के बारे में हम जानकारी देते हैं हर मंगलवार को, तो आज हमने चुना है अदिति गुप्ता को। और साथ ही मुहावरों की दुनिया, इसमें पानी पानी होना।
1: ऊपर से पानी पानी हो रहा है आसमान, और हम पानी पानी होने की बात करेंगे जब स्थितियां ऐसी हो जाती हैं। और आज हम छोटे बच्चों की शरारतों के बारे में भी बात कर रहे हैं, तो मतलब कई बार स्थितियां ऐसी भी हो जाती हैं कि उनकी शरारतों के सामने वो कुछ ऐसी बातें कह देते हैं कि हम पानी पानी हो जाते हैं,
0: माता पिता पानी पानी हो जाते हैं, यानी यूं कह लीजिए राजुल जी कि वो हमारी पोल खोल देते हैं,
1: पोल खोल देते हैं। सही बात है। वैसे ये सब जो बातें होती है ना, इनके बीच में अगर थोड़ा थोड़ा गीत भी चलता रहे
0: तो मजा आ जाता है,
1: मजा आ जाता है।
0: सुनते हैं गीत।
2: अरे अरे ए, ए, ए, ए, ए, ए, ए, ए, ए,

0: भाई सोनाली अपनी सवारी तो चल दी है और चलते चलते पहुंच गई है वहां पर जहां पर हम उद्यमी महिला के बारे में बताते हैं।
1: यानी झारखंड पहुंच गए आप।
0: हाँ
1: तो झारखंड से है अदिति गुप्ता जो भारत की उन प्रेरणादायक महिलाओं में से एक है जिन्होंने महामारी से जुड़ी हुई झिझक और गलत धारणाओं को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए। इन्हें मेंस्ट्रुअल पीरियड्स कहते हैं, महामारी कहते हैं, मासिक धर्म कहते हैं। इस बारे में लोग खुलकर नहीं बात करते,
0: टैबू है ये एक, और इस बारे में ज्यादातर लोग खामोश रहना। एक जमाना था जब नहीं बताया जाता था, कहते भी नहीं थे। उन्होंने ही महिलाओं और किशोरियों के मासिक धर्म और स्वच्छता जागरूकता पर काम किया और इसे शिक्षा और संवाद का विषय बताया। मतलब ये शर्माने की, घबराने की, मुंह छिपाने की या सबसे कोने में बैठकर की बात नहीं है, बल्कि ये अपने शरीर के प्रति जागृत रहने की, सचेत रहने की और इससे जुड़ी जितनी सतर्कताएं हैं उन्हें इस्तेमाल में लाने की चीज है, ये बताने वाली है अदिति गुप्ता। बाकी बहुत बड़ा काम है
1: और ये तो बहुत नेचुरल प्रोसेस है ना। और महिलाओं को, यानी बच्चियों को, ये हम उस बारे में डरा देते हैं या कुछ बुरा बुरा कह देते हैं, बल्कि उन्हें इस बारे में बताना चाहिए कि जब पीरियड्स आते हैं तभी कोई महिला माँ बन सकती है। तो ये प्रकृति का दिया हुआ उपहार है, बल्कि हम उसे कहते हैं अभिशाप समझ बैठते हैं कि अरे ये क्या हमारे नसीब में है। पर उसे बहुत अच्छे से, बहुत प्यारे अंदाज के साथ अगर हम बच्चियों को समझाएं तो ये बहुत वरदान साबित तो हो ही चुका है और उसे हम बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं
0: और शरीर की एक आवश्यक क्रिया है
1: जी। तो अदिति गुप्ता का जन्म झारखंड में हुआ था। बचपन से ही उन्होंने देखा कि कई लड़कियां मासिक धर्म को लेकर सही जानकारी के अभाव और सामाजिक संकोच का सामना करती है और इस विषय पर घर और समाज में खुलकर बात नहीं की जाती, जिसके कारण कई सारी लड़कियों में डर और भ्रम पैदा हो जाता था।
0: और अपने जीवन के इन्हीं अनुभवों से अदिति को ये समझ में आया कि केवल चुप रहने से समस्या खत्म नहीं होती, बल्कि सही जानकारी से और इस बारे में बात करके, इस बारे में जानकारी पहुंचा कर ही बदलाव लाया जा सकता है। वैसे उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और बाद में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन से डिजाइन की शिक्षा प्राप्त की,
1: लेकिन उनकी रुचि केवल करियर बनाने तक सीमित नहीं रही राजुल जी, बल्कि वे समाज की वास्तविक समस्याओं को समझकर उनका समाधान खोजने में विश्वास रखती थी और इसी के मद्देनजर उन्होंने मेंस्ट्रुपीडिया नामक कॉमिक बुक की शुरुआत की।
0: अपने पति तुरहिन पाल के साथ मिलकर उन्होंने मेंस्ट्रुपीडिया की शुरुआत की थी और इसका उद्देश्य था कि लड़कियों को मासिक धर्म के बारे में सरल भाषा में वैज्ञानिक और सही जानकारी मिल सके।
1: अब सरल भाषा बच्चों के लिए, यानी छोटी बच्चियों के लिए कॉमिक से बढ़कर क्या
0: होगी, ये बहुत अच्छी पहल है
1: जी। तो उन्होंने कॉमिक बुक, चित्रों और आसान तरीके से समझाने वाली सामग्री का उपयोग किया ताकि किशोरियां बिना डर बिना झिझक के इस विषय को समझ सके।
0: और इनके प्रयासों से कई परिवारों और स्कूलों में इस विषय पर बातचीत को बढ़ावा मिला। अदिति ने यह संदेश दिया कि स्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर जानकारी छिपाने के बजाय जागरूकता फैलानी चाहिए
1: जी। और उनका काम केवल महिलाओं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उन्होंने समाज को ये सोचने के लिए प्रेरित किया कि किसी भी समस्या को समझने और हल करने के लिए संवाद का होना कितना जरूरी है।
0: बिल्कुल। और अदिति गुप्ता को उनके सामाजिक कार्यों के लिए कई मंचों पर सम्मान मिला। उन्हें कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों में अंडर 30 की सूची में स्थान मिला और वो बीबीसी की प्रभावशाली महिलाओं की सूची में भी शामिल रही।
1: और अदिति गुप्ता का जीवन बताता है कि समाज में परिवर्तन लाने के लिए किसी बड़े पद की आवश्यकता नहीं होती, एक छोटी सी समस्या को गंभीरता से समझकर सही दिशा में प्रयास करके बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। और अदिति गुप्ता ने एक ऐसे विषय पर आवाज उठाई है राजुल जी, जिस पर लोग चुप रहते थे, उनकी सोच ने चुप्पी को जागरूकता में बदल दिया।
0: और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जागरूकता आई तो कम

0: से कम बच्चियों में ये एक विश्वास आया, क्योंकि बहुत सारे घरों में अभी भी ये होता है कि इन दिनों ये छूना नहीं है या दूर रहना है, या बहुत सारे घरों में अगर बेटे भी हैं तो ये बताया जाता है कि अभी ये गंदी हो गई है
1: या चिड़िया ने छू लिया।
0: हाँ, तो इस तरह की बातें सुन के बच्चों बेटों के मन में पहले से बात आती है कि ये गंदी होती है, ये गंदी, मैं गंदा नहीं होता हूँ,
1: ये गंदी।
0: तो एक चीज वो जो वैषम्य पैदा होता है
1: बेटे और,
0: हाँ, वो भी एक उन्होंने दूर करने की कोशिश की है, तो ये बहुत बड़ी बात है और इस विषय पर बातचीत होने लगी है। अब देखो ना, हमारे कार्यक्रम में एक ब्रेक लेने का वक्त हो गया है,
1: तो लेते हैं ब्रेक।

0: तो सोनाली पूरा हुआ अंतराल और हम लौट आए हैं। विषय हम लोग बहुत गंभीर था जिस पर बात कर रहे थे
1: जी।
0: मासिक धर्म की बात कर रहे थे तो आप कुछ कह रही थी इसके बारे में।
1: जी राजुल जी, ऐसा है ना कि इसके पीछे भी जैसे पुराने जमाने में आपने जैसे कहा कि महिलाओं को दूर बिठाया जाता था या फिर घर में छूना नहीं है, तो उस जमाने में काम भी महिलाएं बहुत भारी भरकम किया करती थी। जैसे कुएं से पानी निकाल कर लाना है, फिर चक्की से आटा पीसना है, फिर खेतों में काम करना है, तो उस वक्त महिलाओं को थोड़ा आराम की जरूरत होती थी, इसलिए उस जमाने में इस तरह से उन्हें अलग बिठाया जाता था। पर अब हम हल्का फुल्का काम करने लग गए, फिर भी हम उन्हीं बातों को, उन्हीं रूढ़ी वादी बातों को लेकर चले। और तो और स्वच्छता के प्रति भी हम जागरूक नहीं है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि उन दिनों में नहाना नहीं है, पर कितनी गलत बात है। उस वक्त स्वच्छता का, हाइजीन का तो बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। तो हमें रोज नहाना चाहिए, नहाना चाहिए, स्वच्छता का कपड़े बदलना चाहिए और जो पैड्स वगैरह है उसे भी समय समय पर बदलना।
0: और अब तो इसके विषय में सरकार की तरफ से भी, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी बहुत पहल हो रही है, मुफ्त में पैड्स गांव में दिए जाते हैं। और एक बात और है, ये भी कहा जाता है, जब कई बार कोसते भी देखा है, पढ़े लिखे बच्चियों को भी इस बात को कोसते हुए देखा है कि अरे ये क्या है, तो ये वो समय होता है जब कहा जाता है कि स्त्री सबसे ज्यादा उसके अंदर जो शक्ति कहा जाता है ना, तो शक्ति उसके अंदर सबसे ज्यादा इस समय होती है। और इस बारे में कई अगर हम गौर से देखें तो बहुत सारे हमें उदाहरण और कई सारी ऐसी रीतियां भी मिल जाएंगी जो इस बात को बिल्कुल प्रूव करती है, प्रमाणित करती है कि भाई ये बहुत खास समय होता है। तो इस खास समय को खास तरीके से बिताने के लिए अलग बिठाया जाता था, ना कि इसलिए क्योंकि गंदे हो जाते हैं। तो गंदगी की यहाँ पर सिर्फ तभी तक रहती है जब तक हम नहाते नहीं है या कुछ भी दूसरी तरह की गंदगी से अपने आप को साफ करने की कोशिश करते हैं, तब गंदगी नहीं रहती। जब हमें कहीं पर आराम करने के लिए छोड़ा जाता है या अच्छे से खाने के लिए कहा जाता है, बहुत जगह ये भी होता है,
1: उस वक्त हमें पौष्टिक आहार लेना चाहिए, बहुत आराम करना चाहिए। इस तरह से हम देखभाल कर सकते हैं अपने घर वाली, जो घर की जो महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, उन्हें इस तरह से आराम दिया जा सकता है, ना कि उन्हें घृणा की दृष्टि से देखा जाए और उन्हें इस तरह से व्यवहार किया जाए कि अरे दूर रहो, छुओ ना, बल्कि उन्हें बहुत आराम और बहुत प्यार से उस वक्त अगर संभाले तो ये दिन भी बहुत आसानी से निकल जाते हैं।
0: और साथ ही साथ अगर हम गीत सुनते हुए ऐसी गंभीर विषयों पर बातचीत करते हैं
1: तो कार्यक्रम में मजा आ जाएगा।

0: चांद कहाँ खोया है ये ढूंढने भी कुछ बच्चे बहुत जिद करते हैं जब अमावस्या होती है या जिन रातों में चांद नहीं निकलता। तो कई बार ऐसा भी होता था कि जैसे मेरे घर के पड़ोस में एक छोटा बच्चा था, तो वो ये बात कहता था कि आप तो कहते हो कि रोज चांद निकलता है, रोज सूरज और चांद तो रोज आते हैं, देखो तुम्हें भी जैसे हम लोग बच्चों को बताने के लिए कहते थे ना कि देखो भाई सूरज चांद रोज समय पे आ जाते हैं, तुम्हें
1: तुम
0: भी सब
1: समय से
0: काम।
1: जाया करो ट्यूशन
0: हाँ,
1: स्कूल।
0: तो उसने कहा कहाँ आते हैं, देखिए चांद तो आ जाया ही नहीं है। तो भाई हमने कहा ये हाजिर जवाबी बच्चों की तो बिल्कुल पानी पानी कर देती है।
1: ये जो बच्चे होते हैं हमें बहुत बार शर्मसार कर जाते हैं। ये आज बच्चों की शरारतों के बारे में हम बातें कर रहे हैं, बातें हल्की फुल्की में। तो इसमें एक सखी ने हमारे लिखा है कि मेरे बेटे ने 4 साल का था तब एक कप में मिस्त्री लोग काम कर रहे थे, केरोसिन तेल रखा था, वहां पहुंच गया उसके पास और उसने केरोसिन तेल पी लिया पानी
0: अरे
1: समझ।
0: बाप रे।
1: फिर उसको हम लोग को अस्पताल लेकर भागना पड़ा, 2 दिन अस्पताल में भर्ती रहा, फिर ठीक हो गया। यानी देखिए कितने परेशान हो जाते हैं ना माता पिता दादा दादी जब इस तरह से बच्चे ये कर देते हैं। और एक लिखते हैं कि छोटे बच्चों की शरारतें, छोटे बच्चों की शरण में हमारे जीवन में खुशियां भर देती है, उनकी शरारती जब याद आती है तो आप ही चेहरा खिल उठता है। मेरा नाती 2 साल का है, वो सारी छोटी छोटी चीजें छोटी जगह पर छिपा देता है, उसे याद भी रहता है कि कौन सी चीज उसने कहाँ रखी है। पूछो तो बताता है कि जब मैं गुस्सा करती हूँ तो मुझसे कहता है कि नानी मैं पुलिस बोल रहा हूँ, प्रिंस नाम है, और मुझे डांट लगाओगे तो आपको जेल में बंद कर दूंगा।
0: अरे
1: मैं कहती हूँ तुम नानी कहकर किसे बुलाओगे, तो कहता है मैं पहले दरवाजा खोलूंगा फिर आपको नानी कहकर बुलाऊंगा फिर बंद कर दूंगा। बहुत ही लटके झटके से बोलता है, बच्चे तो बच्चे होते हैं, घर भरा भरा रहता है। हमें सुन के ही इतनी हंसी आ रही है
0: हाँ, तो
1: तो
0: इनके
1: और
0: मतलब
1: जो
0: इन्हें तो डांटना भी मुश्किल हो जाता होगा। एक संदेश में बताया है कि हमारे पड़ोस में रहने वाले दंपति का बेटा अंशु भी बहुत शरारती है। अभी वो 3 वर्ष का है, उसने अभी साइकिल चलाना सीखा है और उसके दादाजी ने छोटी सी सुंदर साइकिल खरीद कर दी है। कुछ दिन पूर्व वो अपने मम्मी पापा के साथ नाना नानी के घर गया था, तो अपनी साइकिल की चाबी अपनी दादी के तकिए के नीचे छुपा कर गया था और दादी को बोल कर गया था कि दादी ध्यान रखिएगा कहीं दादाजी उसकी साइकिल लेकर ऑफिस ना चले जाए।
1: कितनी मासूमियत है कि उन्हें ऐसा लगा कि इतने लंबे चौड़े इतने ऊंचे दादाजी इतनी छोटी सी ट्राइसिकल कैसे
0: हाँ हाँ और
1: चलाएंगे।
0: कितना ये भाव भी होता है ना बच्चों में कि ये मेरी चीज है,
1: हाँ
0: ये पता नहीं।

0: ये ले लेंगे।
1: नहीं, और उन्हें ऐसा लगता है ना कि पापा के पास में बाइक है या कार है, या फिर मम्मी के पास तो पूरा किचन है, उनकी सारी चीजें मम्मी की, तो जो मेरी साइकिल है या मेरे खिलौने हैं ये मेरे हैं।
0: बिल्कुल।
1: एक साथी ने लिखा है कि मेरा बेटा जब छोटा था तो पूरा दिन उधम मचा कर रखता था। छोटे बच्चों की शरारतें घर आंगन में हंसी खुशियां बिखेर देती है, और उनकी मासूम हरकतें, नटखट बातें और भोली मुस्कान सभी का मन मोह लेती है। कभी वो खिलौना बिखेर देते हैं तो कभी नई नई बातें सीख कर सबको चौंका देते हैं। उनकी शरारतों में मासूमियत छिपी होती है, इसलिए उन्हें प्यार और सही मार्गदर्शन के साथ समझना चाहिए।
2: और एक हमारे साथी ने एक बड़ी खतरनाक समस्या की तरफ इशारा किया है कि भाई आजकल तो छोटे बच्चों में भी इंटरनेट ने अपने गिरफ्त में ले लिया है, और इसके चलते अपनों के आज्ञाओं का उल्लंघन सार्वजनिक रूप से ही देखा जा रहा है, और उनके शैतानी भरी शरारत से ना ही उनकी आंखों पर ही चश्मे चढ़े हुए हैं और हम लोग अपने अपने आंखों पर चश्मे चढ़ाए हुए हैं। जाने कैसा ये आश्चर्य है जो उनके द्वारा किए जाने वाली शरारतें ही अब स्क्रीन पर ही देखा जा सकता है। मतलब वो वही शरारतें कर रहे हैं जो वो देख रहे हैं।
1: वही एक साथी लिखते हैं कि बच्चों की शरारत बेहद पसंद आती है, तो कभी हंसी भी आ जाती है, तो कभी कभी नाक में दम भी हो जाता है, तो कभी माहौल एकदम खुशनुमा हो जाता है। हमारे घर में कई छोटे बच्चे थे, एक बार VCR के अंदर उन लोगों ने न्यूज़पेपर के छोटे छोटे टुकड़े करके उसमें डाल दिए। अब VCR चलना बंद हो गया। जब मैकेनिक को बुलाया तो उसने इतने सारे कागज निकाले, पूछने पर किसी ने भी नहीं बताया कि किसने काम किया था।
2: सच में ये शरारतें तो खत्म होने का मतलब
1: नाम नहीं लेती,
2: और लगता है कि चलती भी रहे, बाद में याद करके कितनी हंसी आती है। अच्छा, अब एक मुस्कुराहट और सज जाएगी अगर हम एक गीत सुन लें।
1: सुनते हैं गीत।
3: ओ मेरी, ओ मेरी।

0: सर्वोत्तम क्वालिटी, देव दर्शन धूप, अगरबत्ती, कॉर्न व हवन सामग्री।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे देव दर्शन धूप, अगरबत्ती, धूप स्टिक, कॉर्न्स एवं हवन सामग्री।
2: अपने खेत, बगीचे, घर, टेरेस या ऑफिस को बनाइए हरा भरा, पौधे उगाइए, पर्यावरण बचाइए।
3: आज ही पधारें लालजी नर्सरी, राणोजी का बाग, खोखरिया, बीरा मंडो।
2: लालजी नर्सरी गूगल पर सर्च कीजिए।
4: लालजी नर्सरी, आप कुछ समय हरियाली में बिताओ।

0: सोनाली, ब्रेक पूरा हुआ और हम लौट आए हैं ब्रेक के बाद.
1: कार्यक्रम है सखी सहेली. और एक साथी ने लिखा है कि बचपन में मैंने भी एक शरारत की थी. 1960 के आसपास हमारे घर बिजली का कनेक्शन आया था और उन दिनों कुतूहल वश वायर से जुड़े होल्डर में लैंप लगाकर वायर को सीधा प्लग में डालकर स्विच ऑन करके जो स्पार्क हुआ उससे मेरी उंगली को झटका लगा. पर चीखने के बाद मेरे बड़े भैया ने स्विच ऑफ कर मुझे छुड़ा तो लिया, लेकिन उंगली पर स्पार्क के निशान के साथ काली पड़ गई थी उंगली, और ऊपर से डांट के साथ मार भी पड़ी थी. वो भी झटका अलग से लगा था. साथ ही एक साथी ने लिखा है कि खुद को ट्रंक के अंदर, वुलन कपड़े का जो ट्रंक होता है उस सारे कपड़े निकाले और खुद को ट्रंक के अंदर बंद कर
0: दिया. ये बहुत खतरनाक शरारत होती है जो बच्चे करते हैं, क्योंकि कई बार इससे उनकी जान को भी खतरा हो सकता है, चोट भी बहुत गहरी लग सकती है. एक बड़ी मासूम सी शरारत हमारे एक और साथी ने साझा की है कि सर्दियों के दिन में हमारे घर में परिवार और बच्चे आए थे. वो देख रही थी कि सभी बॉडी लोशन और क्रीम का प्रयोग अपने शरीर पे करते हैं. उसने अपने टेडी बियर को पूरा कोल्ड क्रीम निकाल कर टेडी लगा दिया, और बहुत बहुत ज्यादा लगा देने पर उससे संभाला नहीं तो उसने उसे बेड के नीचे छुपा दिया. घर में महक आ रही थी और जहां फर्श पर भी गिरा तो पैर में चिपक रहा था. तो बच्ची की बड़ी बहन ने बताया कि इसने कुछ किया है, तो पूरे बेड पर उसने फैला दिया था. जब उसकी माँ ने डांटा तो बोली कि टेडी को ठंड लग रही थी तो इसलिए उसे मालिश कर रही थी, जैसे नानी मुझे करती है तो मैं टेडी को कर रही थी. तो फिर उसे समझाया गया कि भाई तुम टैडी को मत करो, तुम बच्ची हो, तुम्हारी मालिश होगी, तुम नाना नानी की कर दिया.
1: कितना कितना मासूमियत भरा सवाल था और जवाब भी बड़ा ही मासूमियत भरा था. एक ने लिखा है कि एक बच्चा बहुत देर से एक घर की बेल बजाने की कोशिश कर रहा था लेकिन पहुंच नहीं पा रहा था, तो हमने सोचा कि उसकी मदद कर दे. हमने बेल बजा दिया. फिर बच्चों को वॉशरूम जाना था तो बोला अंकल अब भागो, वो घर का मालिक आ जाएगा तो हमें बहुत डांट देगा. यानी उन्हें ऐसा लगा कि किसी उसे जाना है अंदर, तो बच्चा तो शरारत कर रहा था. उसके बाद में एक ने लिखा है कि मेरे बहन के छोटे बेटे ने उनके घर के बोरिंग यानी बोरवेल में पाना, पंचिश और ना जाने सारे औजार उसमें डाल दिए थे और सारे नए खरीदने पड़े.
0: क्या क्या तो गजब गजब शरारते हैं. और बच्चों की ये जो मासूम शरारते होती हैं इन पर बिगड़ते भी हैं हम कई बार, लेकिन अगर इन्हें अगर इससे कोई नुकसान नहीं हो रहा है तो उन्हें ये शरारत करने देनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं शरारतों से उनके दिमाग का भी विकास होता है, उनके व्यक्तित्व का भी विकास होता है, और वो मिलजुल कर या किसी कठिन समय में अपने आप को कैसे निकालना है ये भी सीखते हैं. तो बस नजर रखनी पड़ती है बच्चों पे कि क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं. जैसे कुछ बच्चे होते हैं कि एक बच्चा था, नया खिलौना जैसे ही उसको मिला तो वो तुरंत उसका सब ऊर्जा बराबर कर देता था. उसको बहुत शौक था मोटर कार का, हेलीकॉप्टर

0: का, तो बस वो देखते ही तुरंत उसको उसको चाहिए पेचकस, पेचकस से उसने तुरंत खोला वोला और सब अलग. तो भाई लोग कहते थे कि क्या करना है तुम्हें, तो कहता था मैं कोशिश कर रहा हूँ मैकेनिक बनने की, और बाद में आगे चल के वो वास्तव में
1: बहुत बड़ा
0: इंजीनियर बना
1: जी.
0: तो भाई ये कुछ
1: उन्हें रोकी टोकी मत कि आपको लगता है कि इतना महंगा खिलौना खरीदा और इसने तो दूसरे दिन तोड़ दिया, पर क्या पता उसकी जो क्रिएटिविटी है उससे उसे एक दिन बहुत बड़ा इंसान बना दे. साथ ही जो बच्चे ना क्रेयॉन होते ना उससे दीवारें गंदी करते हैं, तो बहुत सारे लोग डांटते हैं, पर उन्हें डांटे ना एक छोटा सा कोना उन्हें दे दे, क्योंकि क्या होता है ना जो क्रेयॉन उंगलियों में पकड़ते तो उनके उंगलियों के मसल मजबूत होते हैं, तो उन्हें गोदने दीजिए. ऐसा नहीं है कि पूरा ही घर गंदा मत करने दीजिए, पर उन्हें कह दीजिए कि ये जो है ना ये कोना तुम्हारा है, जहाँ जो या फिर व्हाइट बोर्ड आते हैं ब्लैक बोर्ड आते हैं
0: वो लगा सकते
1: हैं, वो लगा सकते हैं, या फिर ऐसे
0: कागज लगा दे, एक जो बड़े बड़े चार्ट पेपर्स आते हैं वो लगा दे और कहें कभी कभी कोई कोई आए तो दिखाया भी कि देखिए भाई ये इसने बनाया है, देखिए कितना सुंदर बनाया. बच्चों की अगर इस तरह से तारीफ भी करते रहे कि गोदने वाले बच्चे, ये गोदने वाली शरारतें बहुत होती है,
1: बहुत होती,
0: तो बस ये कह दिया जाए कि भाई देखो तो कितने सुंदर सुंदर इसने कलर्स देखा आपने कैसा इस्तेमाल किया, तो बच्चे को लगता है कि हाँ कुछ बड़ा काम किया, और अगली बार जब वो गोदना शुरू करता है तो उसका ध्यान उन रंगों पर भी जाता है, कहीं ना कहीं उसके अंदर की वो रचनात्मकता विकसित हो रही है.
1: पर एक बात और है कि अगर उसने कुछ गलत शरारत की है, जैसे कि कैंची से काट दिया है, खुद के बाल ही काट देते हैं, कभी कभी कभी तो पलकों के बाल भी काटने से नहीं चूकते हैं बच्चे,
0: या छोटे भाई बहनों के काट देते हैं,
1: तो उसकी ना बहुत बार बार लोगों को बता बता के तारीफ ना करे, तो उन्हें लगता है मैंने तो बहुत बड़ा तीर मार दिया. तब उन्हें समझाए कि भाई अगर ये आंख में लग जाती तो आंख हमेशा के लिए चली जाती. तो ये इन बातों का हमें बस ध्यान रखना चाहिए.
0: मतलब ऐसे चुभने वाली चीजें बच्चों की पहुंच से दूर ही रहे तो अच्छा है, नरम नरम से खेल, अच्छे अच्छे खिलौने, ये सब देकर बच्चों का बचपन ऐसा ही बना रहे जैसे कि
1: गाने में है.

0: सोनाली देखिए शरारतों की बात चल रही है तो कैसे कैसे कच्चे चिट्ठे खुल रहे हैं। हमारी एक सखी बता रही है कि मेरा बेटा जब 6 साल का था तो एक दिन अकेले खेलते हुए किचन के स्लैब के नीचे छुप गया और सो गया। कुछ देर बाद जब उसके दादा दादी उसको ढूंढने लगे तो वो सोने के कारण रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। वो घबरा गए। मैं दूसरे शहर में थी, मुझे पता चला तो मैंने सीसीटीवी कैमरा की रिकॉर्डिंग में चेक किया तो पता लगा जनाब कहाँ छुपे थे। मैंने तुरंत उसके दादाजी को कॉल किया, जब वो वहां गए तो पता चला कि सो रहा है आराम से। खैर जान में जान आई,
1: यानी दादाजी नाना जी रहे तो उसका भी कितना फायदा है ना।
0: बिल्कुल, मतलब बच्चों की शरारतों के बीच में एक अंकुश भी रहता है, वैसे दादा दादी को भी अच्छा लगता है, अकेलापन नहीं लगता।
1: यानी परिवार में पुल का काम करते हैं ना, ब्रिज का काम करते हैं कि पेरेंट्स और बच्चों के बीच में जो दादा दादी ब्रिज का काम करते हैं कि उनकी बदौलत पूरा परिवार जुड़ा रहता है।
0: मूल से सूद ज्यादा प्यारा होता है कहा भी जाता है, तो भाई वो बच्चों को प्यार भी देते हैं, भरपूर प्यार भी देते हैं और जो अनुभव होता है ना उनका अपने बच्चों को पालकर वो भी काम आता है,
1: बहुत काम आता है। पर अभी परिस्थितियां थोड़ी बिकट होने लगती है। एक साथी लिखते हैं कि बुजुर्ग दादा दादी नाना नानी के साथ हम बहुत समय बिताते थे, अभी बच्चों में शायद वैसा समय नहीं है और न ही उतने शौक है उनसे कहानी सुनने के, किस्से सुनने के। सब कुछ तो उनको फोन में और टीवी में मिल जाता है, दादा दादी के साथ समय बिताना पसंद भी नहीं आता उन्हें। इसका नतीजा ये होता है कि अधिकतर बुजुर्ग अकेलेपन में ही समय बिताते हैं, जबकि बुजुर्गों के पास तो सजीव अनुभव और ज्ञान होता है, संस्कार देने की काबिलियत होती है और सोशल मीडिया अब टीवी से जुड़ गए हैं। उस जमाने में कहां था सोशल मीडिया और टीवी।
0: बिल्कुल,
1: तो ये एक थोड़ी सी समस्या है, परेशानी है, ये
0: परेशानी है। और इस बारे में हमारी एक सखी लिख रही हैं कि आजकल के समय में ये बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि परिवार बहुत छोटे हो गए हैं। हमारे घर में ये समस्या नहीं है, हमारा संयुक्त परिवार है, 13-14 लोग अभी साथ में हैं, तो बड़े बुजुर्गों को अकेलेपन की भावना नहीं आती है, चहल पहल हमेशा रहती है। मुझे लगता है कि एकल परिवार भी एक कारण है अकेलेपन का,
1: बहुत ही बड़ा कारण है अकेलेपन का एकल परिवार। और सच मुझे ना पुराने जमाने की बात की जाए ना राजुल जी, तो उस वक्त प्राइवेसी नाम की ऐसी चीज ही नहीं हुआ करती थी जो आजकल लोगों को चाहिए। लोगों को बस लगता है कि हमें बस हमारा स्पेशल यानी बेडरूम, उसमें अटैच टॉयलेट बाथरूम उनका हो, उसमें किसी को डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, बच्चों को भी सब प्राइवेसी की जरूरत है। पर पुराने जमाने में सब एक दूसरे की चीजें इस्तेमाल करते थे, एक घर में रहते थे, लड़ते झगड़ते भी थे पर फिर एक हो जाते थे, तो एक बहुत सुंदर दिखता था ऐसा घर। पर अभी ये थोड़ा सा इसकी कमी नजर आ रही है। एक साथ लिखते हैं कि बुजुर्ग अगर घर में है तो ये बात का सबसे हमें ध्यान रखना चाहिए कि उनके पास थोड़ी थोड़ी देर जाकर समय देना चाहिए, बैठना चाहिए, उनकी जरूरत का ध्यान रखना चाहिए, सिर्फ हमारी सेवा और समय ही नहीं उन्हें हमारा थोड़ा सा प्यार भी दे देना चाहिए तो वे बड़े खुश हो जाते हैं।
0: हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि जब रेडियो पर आपके कार्यक्रम सुनते हैं तो अकेलापन नहीं लगता, हार्ड कॉपी में किताब पढ़ते हैं जिससे मन के तूफान शांत होते हैं, सोशल मीडिया कम वापरता हूँ, कसरत करके तंदुरुस्त जीवन जीने का प्रयास है, डॉक्टर ने रिपोर्ट्स देखकर कहा खाओ पियो और मौज करो, सादा जीवन, किसी को मदद करने से भी अकेलापन महसूस नहीं होता।
1: क्या बात है। एक साथ ही लिखते हैं एकल परिवारों में बुजुर्गों का अकेलेपन की समस्या बहुत ज्यादा है। बुजुर्गों का अकेलापन केवल एक भावनात्मक समस्या नहीं है बल्कि उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को भी गंभीर रूप से प्रभावित करता है। इसके कारण उनमें डिप्रेशन और याददाश्त कमजोर होने की जैसी समस्याएं बढ़ सकती है। इसके उनके इस खालीपन को दूर करने के लिए बातचीत, जुड़ाव और नियमित दिनचर्या बहुत जरूरी है। दो प्यार के बोल, सुविधापूर्ण उनकी दिनचर्या, इस उम्र में उनके अकेलापन दूर करने के लिए मेल मिलाप बहुत जरूरी है जो आजकल बेहद कम हो गया है।
0: और ये एक हमारे श्रोता ने अंग्रेजी में संदेश भेजा है। आई एम अ सीनियर सिटीजन रिटायर्ड फ्रॉम बैंक एंड

0: Started a new journey in radio as RJ on community radio. Enjoying a lot. I love radio since my childhood. विविध भारती साथ हो तो बोर होने का सवाल ही नहीं है.
1: क्या बात है
0: भाई. इस तारीफ के लिए शुक्रिया. विविध भारती के साथ बने रहने के लिए शुक्रिया. और एक बात और इनके संदेश से पता लगती है कि अगर बुजुर्ग कोई अपना शौक डेवलप कर लेते हैं उस समय भी, ये सोचकर नहीं कि ये जिंदगी का अवसान है, बल्कि ये एक नया पड़ाव है, एक नई यात्रा है
1: जी.
0: और अगर वो एक कोई शौक अपना शुरू कर लेते हैं तो उससे निश्चित रूप से उन्हें अकेलापन कम महसूस होगा. ये तो सही बात है. एक हमारे पढ़ रही थी तो भी एक संदेश में शायद ये भी कहा गया है कि आजकल बच्चों के पास समय नहीं होता. सही

0: तो अभी एक संदेश में शायद ये भी कहा गया है कि आजकल बच्चों के पास समय नहीं होता. सही बात है, समय नहीं होता. बड़े जब होने लगते हैं तो कम समय रहता
1: है. पर अगर ऐसा है ना कि बच्चे नहीं बात कर रहे हैं तो बुजुर्ग खुद भी जाके बोल सकते हैं कि कैसे हो बेटा, क्या हाल चाल है, पढ़ाई में ध्यान लगाओ. नहीं तो ऐसा लगता ना कि अरे वो बात नहीं कर रहे, वो नहीं जा रहे. तो पहल दोनों तरफ से होनी चाहिए.
0: दोनों तरफ से होनी चाहिए. और अगर मान लीजिए कि बच्चे बहुत ज्यादा व्यस्त हैं, तो अगर बच्चे को उस समय उसको जो चाहिए, मान लीजिए कि बहुत व्यस्त है, पढ़ाई कर रहा है या किसी प्रोजेक्ट में अपने बिजी है, और आप सिर्फ इतनी सहायता कर रहे हैं कि मान लीजिए प्रोजेक्ट बनाने में उसको कुछ काटने की जरूरत है, आप काट कर उसे वो पकड़ा देते हैं, वही बहुत बड़ी बात हो जाती है.
1: उन्हें भी अच्छा लगेगा और हमें भी अच्छा लगता है.
0: और हमें गीत सुनना भी बहुत अच्छा लगता है.
1: सुनते हैं गीत.

0: भाई देखो, हमारे एक श्रोता ने अपनी दिनचर्या साझा करके बताया है कि सुबह पूजा पाठ, फिर शिवालय, फिर भोजन, फिर 1 बजे सुरीला सफर, फिर सखी सहेली, फिर 5 बजे फिर आराम, और फिर 5 बजे 5 किलोमीटर वॉकिंग, फिर भोजन, फिर टीवी प्रोग्राम, फिर 5 या 6 घंटे नींद। यही है 70 साल के बुजुर्ग की दिनचर्या।
1: क्या बात है, ये तो किसी 17 साल के जो है ना युवा को भी शर्म आएगी, इतनी परफेक्ट दिनचर्या है आपकी।
0: सही बात है।
1: वैसे पानी पानी मुहावरे का मतलब है शर्म से पानी पानी होना। तो हमारे एक साथी ने लिखा है कि पानी पानी होना, इस मुहावरे से एक बात याद आ गई। तब मेरा बेटा बहुत छोटा था और उसे लेकर मैं एक परिचित के घर गई। बातचीत के बाद मेरी परिचित चाय बनाने के लिए उठी तो मैंने बोल दिया मैं चाय नहीं पीती, और मेरे बेटे से पूछा दूध पियोगे, तब भी मैंने मना कर दिया क्योंकि मेरा बेटा भी दूध नहीं पीता था। लेकिन जैसे ही मैंने मना किया, मेरा बेटा तुरंत बोल पड़ा कि मुझे खूब गर्म दूध दीजिएगा।

0: आंटी सुनिए ना, मेरी मम्मा चाय नहीं कॉफी पीती है। इसलिए मम्मा के लिए कॉफी बना दीजिए। मुझे उस समय बहुत शर्माई और शर्म से पानी पानी हो गई।
1: ये सही बात है, बच्चे पोल खोल देते हैं,
0: पोल खोल।
1: एक बच्चे ने कहा कि जब उसके पिताजी ने कहा कि भाई हम घर पर नहीं है, जाओ क्या दो अंकल आए, क्या दो घर पे नहीं है, तो उसने जाके कहा पिताजी ने कहा है कि वो घर पर नहीं है। अब मतलब पिताजी बिल्कुल पानी पानी, वो झक मार के फिर बाहर निकले और मिले अपने मित्र से, क्योंकि बच्चे ने बता दिया था कि पिताजी ने कहा है कि हम घर पे नहीं है।
0: एक बार एक व्यक्ति थे, उनके मित्र आए थे, तो उन्हें अंदर से आने में थोड़ा टाइम लग रहा था, उनकी छोटी सी बेटी थी। तो अब क्या बात करें बच्चे से, तो उन्हें पूछा कि बेटा तुम्हारे पापा क्या काम करते हैं, मतलब नाम पूछा क्या नाम है आपका, फिर आपके पापा क्या काम करते हैं, तो उन्होंने बताया कि मेरे पापा तो घर में झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, कपड़े धोते हैं।
1: सब पोल खोल दी
0: अंदर से पापा ने सुना, अरे मैं तो वो पानी पानी हो गए शर्म से।
1: अच्छा वो बच्चा भी बेचारा क्या करे, उसने काम का मतलब यही समझा कि हम, माँ कहती होगी कि हम काम कर रहे हैं, तो काम का मतलब झाड़ू लगाना। तो कभी कभी अगर पिताजी ने झाड़ू लगा भी दी तो उसने कह दिया कि ये भी काम करते हैं, ये भी काम करते हैं, मतलब वो तो बड़ा ही कर रहा था।
0: और एक बार ऐसे हुआ कि बैठे हुए थे लोग, तो छोटी बच्ची भी थी साथ में, तो उसकी मम्मी बोले कि चलो टाइम हो रहा है हम घर जा रहे हैं, तो बोले नहीं नहीं मम्मी रुको रुको, अंदर से कप प्लेट की आवाजें आ रही है, शायद चाय बनने वाली।
1: सच में ये स्थिति जो है बड़ी खतरनाक होती है, उस समय माँ बाप को समझ में नहीं आता कि देखें रुके क्या करें। और कभी कभी ये भी कहना पड़ता है भाई बड़ा शरारती है, जैसे कह दे कि कई बार ऐसा होता है कि माए कहती हैं बच्चा खाता ही नहीं, कुछ नहीं खाता, और इधर बच्चे ने जैसे ही नाश्ते की प्लेट आई और उसने खाना शुरू किया,
0: सब खा लिया।
1: तो ऐसे में एक बात, बच्चे हैं ये तो बच्चे हैं, और हो सकता है कि सामने प्लेट में जो हो वो उन्हें पसंद आ रहा हो इसलिए वो खा रहे हो, तो घर में ऐसा रूल बनाए ना कि बहुत सी बार ऐसा होता ना कि बच्चे हम बाहर जाके नहीं खाने देते बच्चों को, तो ऐसा रूल अगर आपने बनाया है कि बाहर जाके किसी के यहाँ खाना मत, तो बच्चे का मन फिर मचलेगा,
0: जिसके लिए हम खूब मना करते हैं।
1: हाँ खूब मना करते हैं, बल्कि इसके बजाय ये कर दें कि भाई अगर बच्चे को कोई चीज पसंद आ रही है, जैसे अगर बच्चे ने, छोटे बच्चे ने मान लीजिए, एक मैंने देखा था कि एक बच्चे घर गया, बच्चे छोटी बच्ची थी उनके साथ, और उन्होंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लाकर उसमें रखे और उन्होंने कहा कि खाओ। अब जगह ऐसी थी कि जो माँ गई थी तो उसको लगा कि नहीं खाना चाहिए, तो वो उसने एक ले लिया और कुतरना शुरू कर दिया। बच्ची ने एक किशमिश उठाई, माँ ने देखा, फिर दूसरी किशमिश उठाई, माँ ने देखा, फिर तीसरी किशमिश उठाने वाली थी तो उसे लगा कि टोकना चाहिए, फिर उसे लगा कि अगर हम टोकेंगे तो बच्ची को गलत मैसेज जाएगा, तो उसने क्या किया कि कहा कि अच्छा तुम्हें किशमिश अच्छी लग रही है, और दो चार किशमिश बीन कर उसको अलग से दे दी, बच्ची अपना वो खाती रही, और इस तरह से उसको भी पानी पानी नहीं होना पड़ा और बच्ची की भी शरारत या जो बाल स्वभाव है वो पूरा हो गया।
0: और जैसे पानी पानी होने की बात है, इसके तो कई उदाहरण है कि कई बार ऐसा होता है ना कि किसी को कुछ चीज खाने की मनाही होती है, और भाई इच्छा तो होती है, अब मिठाई खाने की मनाही है, घर वाले कहने की भाई डायबिटीज है खाओ मत मीठा खाओ, अब बहुत ललचाया हलवाई के यहाँ जाके खा लिया, घर वालों ने किसी ने देख लिया
1: तो पानी पानी हो गए।
0: तो ऐसे लज्जित होना स्वाभाविक सी बात है, पर लज्जित हो गए है ना तो उसके बाद में अपराध बोध से ग्रसित नहीं होना है, उसे वही छोड़ देना है कि ठीक है ना, गलती हो जाती है, बड़े हैं बूढ़े हैं कोई भी उम्र के लोग हैं, अगर गलती हो गई है तो उसको हंस के स्वीकार कर ले, उसका दिल पर बोझ ना रखे, जिंदगी को हल्के में लेना चाहिए।
1: और देखो हमारे एक श्रोता ने बड़ा प्यारा सा संदेश हमारे साथ साझा किया है कि वो जो विविध भारती के कार्यक्रम होते हैं जिनमें वो अपने संदेश साझा करते हैं, जैसे सखी सहेली या सुरीला सफर, तो उसमें वो अपनी और अपनी धर्म पत्नी के प्रेम के बारे में अगर कभी कुछ संदेश देते हैं तो वो पढ़कर पत्नी पानी पानी हो जाती है शर्म से, वो तो ऑफिस में देते हैं, पत्नी वहां घर में पानी पानी हो जाती है। तो भाई लेकिन ये कितनी सुंदर यादें स्मृतियां आप लोग साथ साथ संजो रहे हैं
0: सचमुच, और ये यादें हैं ना, ये बहुत सुंदर यादों को हमें संजो कर भी रखना चाहिए कि ये पल ये क्षण जो है फिर से नहीं आएंगे,
1: जो बीत गया वो बीत गया, लेकिन हम ये समय नहीं बीतने देंगे, हम गाना सुनेंगे।
0: बिल्कुल सुनते हैं गीत।

0: तो भाई बड़ी रोचक रोचक बातें हो गई. हम लोगों ने काफी किस्से सुन लिए और उन पानी पानी होने वाली स्थितियों के बारे में भी जान लिया जो कई बार एकदम ऐसा कर देती हैं कि समझ में नहीं आता इधर जाएं कि उधर जाएं, क्या करें कैसे करें.
1: तो बहुत मजा आया. सारे श्रोताओं को दिल से धन्यवाद. इतने सुंदर सुंदर कमेंट्स लिख कर भेजे. तो विविध भारती से जुड़े रहिए और हमें दीजिए इजाजत. तो आप सभी को सोनाली पाठक
0: और राजुल का
1: नमस्कार. सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक.
2: सखी सहेली.

एक जानी मानी शायर, एक जानी मानी गीतकार। वो कहते हैं, खुद को इतना भी मत बचाया कर, बारिश हो तो भीग जाया कर। दर्द हीरा है, दर्द मोती है।

0: शकील आजमी जो कहते हैं परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। कई मशहूर फिल्मों के गाने उन्होंने लिखे। आर्टिकल 15
1: आना अभी जाना इंतजारी है तेरी।
0: फिल्म मुल्क
2: सब सखियों का पिया प्यारा सब में है और सब सुनारा।
0: और फिल्म थप्पड़
1: एक टुकड़ा धूप का अंदर गरम सा है।
0: जाने माने शायर शकील आजमी से बातें की हैं ममता सिंह ने। ये है इस कार्यक्रम का दूसरा भाग।
1: बेखबर
3: दोस्तों नमस्कार, रेडियो सखी ममता सिंह की ओर से आज शायरी की दुनिया, गीतकारी की दुनिया और अदब की दुनिया की खास शख्सियत की आमद है विविध भारती के स्टूडियो में, जिन्हें हमने बड़े एहतराम से विविध भारती के स्टूडियो में आमंत्रित किया है। उनका हम इस्तकबाल कर रहे हैं। वो शायर हैं, गीतकार हैं, शकील आजमी साहब। परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमी बैठ के क्या आसमान देखता है। घटाएं उठती हैं, बरसात होने लगती है जब आंख भर के फलक को किसान देखता है। यही वो शहर जो मेरे लबों से बोलता था, यही वो शहर जो मेरे लबों से बोलता था, यही वो शहर जो मेरी जबां देखता है। शकील आजमी साहब, विविध भारती के स्टूडियो में आपका हम बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। नमस्कार।
4: नमस्कार, बहुत शुक्रिया ममता जी और बहुत शुक्रिया विविध भारती।
3: इन आपके ही चंद अल्फाज के साथ हमने आपका स्वागत किया, तो हमें बताइए कि ये जो अनुभव सिन्हा जी देर से मिले लेकिन मिले तो दुरुस्त मिले।
4: हाँ,
3: बहुत सारी फिल्मों की आमद हुई आपकी फिल्में दुनिया में, आर्टिकल 15, भीड़ और इन सब में गाने लिखे, थप्पड़ के सारे गाने आपने लिखे।
4: हाँ, मुल्क के सारे गाने।
3: तो मुल्क के हाँ। तो मैं चाहती हूँ कि मुल्क फिल्म का गाना फिर आर्टिकल 15 का क्रमवारा आप बताएं और रचना प्रक्रिया बताएं।
4: मुल्क का गाना आप सुनाए पिया समाए।
3: जी,
4: बहुत अच्छा गाना है,
3: बहुत पसंदीदा कव्वाली।
4: हाँ,
3: कव्वाली है।
4: यस यस,
3: कव्वाली की शक्ल में है ये गाना। और हम आपको बताएं कि विविध भारती
4: उसमें हमारा पूरा हिंदुस्तान है उस गाने
3: जी में। बिल्कुल। हाँ। पूरी फिल्म बड़ी बेहतरीन है। हाँ। इसमें अनुभव सिन्हा जी को बधाई जाती है सबकी ओर से, विविध भारती परिवार की ओर से।
4: मैं समझता हूँ कि जो मुल्क फिल्म है
3: जी,
4: ये आर्टिकल 15 है, ये ऐसी फिल्म है जो हमारे हिंदी सिनेमा में जो ऐसी फिल्में बनी हैं जो याद की जाएंगी।
3: बिल्कुल, जिनका जिक्र किया जाए,
4: जिक्र
3: ये
4: किया
3: दर्ज
4: जाए।
3: होती है आज के समय।
4: हाँ, वो ऐसी फिल्मों में ये फिल्में हमेशा जिंदा रहेंगी, जैसे थप्पड़ है, मुल्क है, आर्टिकल 15 है। और मेरी खुशनसीबी है कि मैं इन फिल्मों का हिस्सा हूँ।
3: शकील साहब, ये मुल्क फिल्म की बेहद मकबूल कव्वाली और विविध भारती से एक प्रोग्राम होता है सुबह चित्रलोक, पहले ये भारत की गूंज के नाम से प्रसारित होता था, इसमें अक्सर हम विविध भारती से प्रसारित किया करते थे और उसमें आपका नाम लेते हुए बड़ा फक्र महसूस होता था कि शकील आजमी ऐसे शायर गीतकार हैं जिन्हें हम निजी तौर पर भी जानते हैं। तो यहाँ पर हम चाहते हैं कि बात अनुभव सिन्हा जी की चलिए, तो आर्टिकल 15, भीड़, कई फिल्में हैं आपके खाते में, तो क्रमवार इनका जिक्र करें, रचना प्रक्रिया बताएं इन गानों का। आर्टिकल 15 इंतजारी, जिसे आयुष्मान खुराना ने गाया भी है।
4: जी हाँ जी, इंतजारी सुनवा सकते हैं
3: जी।
4: बिल्कुल।
3: तो
4: आर्टिकल 15 से,
3: तो कैसे वो गाना बना, वो बनने की क्या कहानी?
4: उस गाने की कहानी ये है कि

0: कोई दिलचस्प बात हो तो
1: हाँ, दिलचस्प बात है। अनुभव सिन्हा साहब ने मुझे ये कहा, कहने लगे यार सिचुएशन मैं नहीं बता रहा हूँ, आप यूं समझ लीजिए कि वो गुलजार साहब का वो एक गीत था, मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास
0: पड़ा है इजाजत फिल्म
1: लौटा दो। हाँ, तो इसका उल्टा गाना चाहिए मुझे।
0: अरे क्या बात है।
1: हाँ, उल्टा मतलब कि
0: सामान देना है।
1: हाँ, वो कह रहे लौटा दो।
0: हाँ,
1: और मुझे ऐसा चाहिए कि ले जाओ।
0: हाँ,
1: ठीक है,
0: संचय करना।
1: हाँ,
0: है यहाँ पर।
1: हाँ, तो उसमें जो गाना है। हाँ, वो मैंने लिखा है कि मोहब्बत में जो दो लोगों के आपसी जो मोमेंट्स होते हैं, है ना, हंसी है, गम है, रोना है, मुस्कुराना है ना, साथ में कुछ कहीं खा रहे हैं, कहीं चाय पी रहे हैं, कहीं आइसक्रीम खा रहे हैं, और कहीं किचन में थोड़ा झगड़ लिए हैं, तो ये सारे जितने भी मोमेंट्स हो सकते हैं, तो अब हम बिछड़ गए हैं और मैं इसको अकेला जी रहा हूँ।
0: अच्छा, क्या बात है, ये सारा कुछ एक गाने में आना।
1: हाँ, तुम तो बिछड़ गए हो और खुश हो।
0: हाँ,
1: लेकिन मैं वहां से निकल नहीं पा रहा हूँ। वो साझा जो चीजें हैं हमारी, मैं उसको अकेला जी रहा हूँ और मैं दुखी हो रहा हूँ, तो तुम एक काम करो, ये आओ और इसको ले जाओ। तो ये मैंने एक मतलब स्टोरी बोर्ड बनाया और इसको मैंने शायरी में लिखा और वो इस तरह से गाना बना इंतजारी
0: जी।
1: हाँ,
0: तो वो शायरी कैसे बनी वो बताइए, मतलब वो शेर अगर याद है तो।
1: हाँ, इसी तरह से बनी वो कि आना आ भी जाना इंतजारी है तेरी।
0: क्या बात है, वाह।
1: ले जा जो रिश्तों की रेजगारी है तेरी।
0: वाह वाह, बहुत सुंदर
1: है ना।
0: तो
1: अच्छा, पहले इसमें ले जा जो रिश्तों की रेजगारी है तेरी। हाँ, ये लाइन पहले नहीं थी। हाँ, उसमें कुछ खुमारी।
0: हाँ,
1: राइमिंग की लाइन थी।
0: हाँ,
1: तो अनुभव सिन्हा साहब ने कहा कि शकील भाई ये इंतजारी लफ्ज बड़ा यूनिक है, इंतजार होता है, इंतजारी लोग नहीं लिखते हैं। तो हमारे बचपन में हम गांव में सुनते थे, अरे हम तुहरी इंतजारी देखत रहे हैं, है ना, इंतजारी कर नहीं रहे थे, इंतजारी देखत रहे हैं, पुराने लोग बोलते थे। तो अब हमारा जो मुल्क है ना, वो बहुत विशाल, बहुत बड़ा मुल्क है,
0: रंगी है,
1: और बहुत मतलब भाषाएं बहुत हैं, तो कोई भी शब्द कुछ अलग से आता है तो वो कानों को भला लगता है,
0: बिल्कुल,
1: है ना, कुछ नया लगता है। तो मैंने इंतजारी जानबूझ के, और बोले ये इंतजारी और रेजगारी बड़े कमाल, अरे इंतजारी बड़ा कमाल लग रहा है, ये खुमारी जो है इसको चेंज करो यार, कुछ नया लफ्ज ले आओ। तब उसकी जगह पे ये आया, आना आ भी जाना, ये ट्यून पे लिखा हुआ गाना
0: जी।
1: और अनुराग साइकिया ने म्यूजिक किया है इसका। आना आ भी जाना इंतजारी है तेरी, ले जा जो रिश्तों की रेजगारी है तेरी, वो जो हम रोए साथ थे वो सब आके लेके जा। तो वो उसका उल्टा गाना था जो गुलजार साहब का था, ये उसके बरक्स था। तो ये सारा मैंने एक स्टोरी बोर्ड बना लिया कि इसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं, और फिर मैंने इसको लिखा और गाना इस तरह से बना।

0: जो गाना हम सुनते हैं बहुत एंजॉय करते हैं हम स्टूडियो में बैठकर और हमारे श्रोता स्टूडियो के बाहर, लेकिन उस गाने के बनने के पीछे कहानियां होती हैं और कई बार मुश्किलात भी होती हैं कि आप जैसे बता रहे हैं कि अनुभव सिन्हा जी आपको दृश्य बता रहे हैं और आप लिख रहे हैं फिर चेंजेस, तो एक कितना आसान नहीं होता है सफर। तो फिल्म मुल्क में जो कव्वाली है बड़ी हिट, पिया समय हम सबका पसंदीदा कव्वाली हम सबकी, इस गाने की बनने की क्या कहानी थी?
1: ये तो बहुत ही मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने, और वो तो चले गए शूटिंग करने। मेरे साथ अक्सर होता है यही, उनकी फिर उनके गानों को लेके कि हाँ हाँ कर लेंगे, और ऐसा फिर वो शूटिंग पे चले जाते हैं और फिर जब जरूरत होती है तब कहते जल्दी करो गाना चाहिए। तो अब वो शूटिंग कर रहे हैं उधर लखनऊ के पास मलियाबाद वगैरह में, और
0: अभी गाना लिख दो जल्दी।
1: और हम जो हैं, मैं और अनुराग साइकिया ने ये इसका किया था म्यूजिक वो, और
0: थप्पड़ में भी अनुराग साइकिया का संगीत था। हाँ, आर्टिकल 15 में भी
1: थप्पड़ सोलो था
0: और मुल्क में,
1: और मुल्क में एक ही गाना था उनका ये, बाकी प्रसाद साष्ठे ने दो गाने किए थे
0: जी जी। हाँ,
1: तो हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है, वो रूट पता नहीं चल रहा है कि जाना किधर है।
0: यहाँ पर अनुभव सिन्हा जी का भरोसा भी आप पर अटूट है।
1: हाँ,
0: कि वो गाना देकर चले गए हैं।
1: हाँ, अब मैं फोन कर रहा हूँ कि इसमें लिखना क्या है। अब वो क्योंकि उधर बिजी है शूटिंग में, ध्यान उधर लगा हुआ है, कह रहे मैं बताता हूँ। अब हम इंतजार कर रहे हैं, फिर उनका फोन आया, कह रहे हैं मैंने आपको एक वीडियो भेजा है वो देख लीजिए आप, सुन लीजिए। मैंने कहा सर आप बताइए ना कि उसमें क्या है और आप क्या चाहते हैं। उन्होंने कहा कि साइंस ये कहती है कि जब सारे रंगों को हम मिलाते हैं तो सफेद रंग बनता है, सारे रंगों को मिलाने से सफेद रंग
0: जी,
1: बनता है
0: जी।
1: मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है सर?
0: बिल्कुल सही बात है, सफेद रंग तो अपने आप में सफेद रंग है, उसको कोई भी रंग मिलाएंगे तो वो तो दूसरा हो जाएगा।
1: तो, हाँ, तो बोले नहीं ऐसे ही होता है, यही थॉट है। और ये गाना मुझे देशभक्ति इसमें होनी चाहिए और कौमी एकजहती होनी चाहिए,
0: जी जी जी।
1: ठीक है, पूरा देश एक साथ चलना चाहिए इस गाने में। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने उसको लिखा। मुश्किल गाना था बहुत
0: जी।
1: मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
0: बेहतरीन फिल्म थी,
1: डिफिकल्ट सिचुएशन।

0: जी।
1: तो मैंने लिखा उसमें कि पिया समाये पिया समाये, जिया में मोरे पिया समाये, ये हुक है। उससे पहले लाइन आती है, सात रंग हैं सातों पिया के,
0: सात रंग हैं सातों पिया के।
1: हाँ, सात रंग होते हैं
0: जी।
1: अब मुझे सफेद पर खेलना है और उसको ऐसा बनाना है उसमें पूरा देश एक साथ जुड़ना चाहिए।
0: जी जी।
1: ठीक है, सारे समुदाय जो है वो एक साथ जुड़ने चाहिए, तो वो सारे जो है एक साथ जुड़ने चाहिए। तो अच्छा, अभी इसमें जो पिया है ये वो भी पिया है जो मतलब जो जमीन पे है, है ना, और वो भी पिया है जो खुदा है, ईश्वर है, भगवान है,
0: खुदा है,
1: हाँ, और महबूब भी है हमारा। ठीक है, डबल मीनिंग है। इस तरह के बहुत सारे लागा चुनरी में दाग और फलाना, वो
0: छुपाऊं कैसे,
1: है ना, घर जाऊं, घर जाने का मतलब वो मरने के बाद की जिंदगी,
0: बिल्कुल,
1: है ना,
0: बिल्कुल, दो अर्थी।
1: तो हाँ, तो ये दो अर्थी ये भी मैंने इसको करके आगे बढ़ाया। सात रंग हैं सातों पिया के, देख सखी कभी तू भी लगा के,
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया।
1: तो ये दूसरे वाले को वो कटाक्ष कर रही है कि तू भी कभी लगा के देख, तुझे भी वो सब पिया के ही लगेंगे,
0: रंग दिखाई,
1: हाँ, अलग अलग मत देख, हम सब एक हैं। सात रंग हैं सातों पिया के, देख सखी कभी तू भी लगा के, सातों से मिलके भई मैं उजली,
0: वाह क्या बात है,
1: सातों से मिलके
0: भाई
1: में उजली,
0: वा वा।
1: कोई हरा कोई गेरुआ बताए,
0: क्या बात,
1: पिया समाये जिया में मोरे पिया समाये। अभी देखने वालों की नजर है कि कोई मुझे हरा बता रहा है, कोई गेरुआ बता रहा है, लेकिन मैं तो सातों से मिलके उजली हो गई हूँ।
0: जी जी।
1: और तू भी लगा के देख कभी। तो ये बड़ा ही मतलब टेढ़ा गाना था और ऐसा वो सटीक आया है, ऐसा कि एक लाइन भी चेंज नहीं हुई, बड़े खुश हुए, बोले आगे बढ़ो।
0: तो ये जो फिल्म है वो एक संदेश देती है, ये गाना भी संदेश देता है, सब एकजुटता का संदेश है, और बेहतरीन फिल्म का बेहतरीन गाना ये सुनवाते हैं हम।

0: शकील साहब, अभी आपकी जर्नी के बारे में बहुत सारी बातें करनी है। अब यहाँ हम आते हैं आपकी फिल्म धोखा में, फिल्म धोखा।
1: हाँ,
0: एम एम करीम साहब ने गाया है और कंपोज भी किया है गाना, इसके बारे में एकदम संक्षेप में बताएं।
1: क्योंकि मतलब आप भट्ट साहब के दरवाजे पर पहुंची हैं।
0: पहुंच गए, दस्तक दे रहे हैं। और महेश भट्ट साहब के साथ आपने बहुत सारा काम किया है और आपकी फिल्मी दुनिया में उनका बहुत बड़ा योगदान, कह ले योगदान भी है, और काफी दोस्ती मित्रता है।
1: हाँ, प्यार रहा बहुत उनका भट्ट साहब का उस जमाने में। तो ये फिल्म उनकी जो बेटी
0: पूजा भट्ट
1: उन्होंने डायरेक्ट की थी। और ये गाना जो है एम एम करीम साहब के साथ मुझे काम करने का मौका मिला, मेरे पसंदीदा कंपोजर हैं वो। और उनको हिंदी नहीं आती ठीक से, है ना, तो भट्ट साहब के ऑफिस में उन्होंने मुझे धुन दी, ट्यून बताई हारमोनियम प्ले करके। मैंने उसको तब वो छोटे वाले जो टेप चलते थे मैंने रिकॉर्ड किया उसमें।
0: हाँ।
1: और वहीं बैठ के मैंने गाना लिखा वो। और गाना लिखा जब उन्होंने उसको गाना शुरू किया, कहीं कहीं अटके लेकिन फिर वो रवा हो गया।
0: हाँ।
1: जब उनके मीटर में पूरी तरह से रवा हो गया वो गाना
0: जी।
1: तो मुस्कुराहट उनके चेहरे की बढ़ती गई।
0: क्या बात है।
1: हाँ, वो जो हाँ। ट्यून में पूरी तरह से वो गाना, तो वो गाना जो है वो पूजा को भी बहुत पसंद था, बहुत खुश थी उस गाने से वो। लेकिन इससे पहले भट्ट साहब के यहाँ मेरी पहली जो फिल्म थी वो थी जहर। हाँ,
0: जिसका गाना बहुत मशहूर हुआ था, फिल्म का गाना, इनकी आवाज, श्रेया घोषाल की आवाज में जो गाना था, अगर तुम मिल जाओ, बहुत बहुत मशहूर हुआ था।
1: जी जी। तो ये गाना दरअसल पाकिस्तानी गाना था, ये उसको यहाँ पर अनु

0: मलिक साहब ने रिक्रिएट किया था, और रेशमा की आवाज में भी आपको मिल जाएगा वो गाना
1: जी।
0: कई लोगों ने गाया हुआ है, पुराना गाना है। और ये फिल्म मोहित सूरी की भी पहली फिल्म थी, मोहित सूरी थे इसके डायरेक्टर, वो भी मतलब उनके भट्ट साहब के भांजे होते हैं
1: जी।
0: और ये फिल्म बड़ी कामयाब रही, इसके सारे गाने सुपरहिट हुए और सारे गामा म्यूजिक कंपनी ने इसके गाने रिलीज किए थे, और हमें जो है वो पहली बार आउटस्टैंडिंग म्यूजिक सेल नाम से हमें ट्रॉफी बांटी गई। उसका एक फंक्शन हुआ, एक तकरीब हुई उसकी, और बड़े खुश थे वो लोग, क्योंकि म्यूजिक बहुत बड़ा हिट था और फिल्म भी हिट हो गई थी, सिल्वर जुबली का भी उसका ट्रॉफी मिला था हम लोगों को। तो उसमें गाना था वो के ने गाया था, वो आए बेखबर आए बेखबर
1: जी जी हाँ।
0: तो वो भी बहुत बेहतरीन गाना था। और एक गाना वो था जाने जा तुझसे बिछड़ के मैं जाऊं कहां, वो भी बहुत, सारे गाने ही बहुत हिट हुए थे उसके, और बड़ी कामयाब फिल्म रही वो। तो वो पहली फिल्म थी मेरी भट्ट साहब के यहाँ
1: जी। जी तो यहाँ पर कौन सा गाना सुनवाया श्रोताओं को?
0: आई बेखबर
1: सुनते हैं हाँ। ये गाना

0: रूप कुमार राठौड़ के साथ आपने और भी काम किया है, और भी गाने उन्होंने गाए हैं, वो उनके बारे में?
1: हमारी शुरुआत ही साथ में हुई थी
0: जी।
1: रूप कुमार राठौड़ साहब के बारे में मैं बताऊं, जब मैं यहाँ नया नया आया था तो जो कामयाब म्यूजिक डायरेक्टर थे, बड़े म्यूजिक डायरेक्टर थे, वो पकड़ में नहीं आ रहे थे। रूप कुमार राठौड़ साहब से मेरी मुलाकात हुई
0: जी,
1: तो वो गजल सिंगर होते थे
0: जी जी,
1: और प्लेबैक सिंगर भी होते थे
0: जी, बिल्कुल
1: है ना। फिल्मों में उन्होंने कम गाया, लेकिन एज ए गजल सिंगर उनको ज्यादा
0: नाम शोहरत
1: और इज्जत है उनकी। लेकिन कुछ गाने भी उन्होंने गाए हैं और उसमें से कई गाने बड़े हिट हैं, जैसे ऐ जाते हुए लम्हों
0: जी, जी, जी।
1: संदेशे आते हैं, या वीर जारा का गाना है, है ना। इस तरह के कई गाने हैं जो उनके बड़े हिट हैं। तो जब मैं आया तो मेरी मुलाकात हुई तो वो मेरी गजलें सुनते थे और उसमें से चूज करते थे और गजलों को कंपोज करते थे। लेकिन वो गजल का टाइम भी जा रहा था। जब मैं आया हूँ उससे पहले गजल का एक बड़ा दौर आया था, जिसमें जगजीत जी की गजलें और पंकज उदास साहब की गजलें, हरिहरन साहब, रूप कुमार राठौड़ साहब, मतलब नए गजल सिंगर भी आते थे, उनके एल्बम भी खूब चल रहे थे
0: जी, जी।
1: लेकिन जब मैं आया हूँ तो ये दौर खत्म हो रहा था
0: जी, जी।
1: गजल का मार्केट डाउन हो रहा था जब मैं आया था। तो मेरे सामने ही वो रूप भाई ने कैफी आजमी साहब का एल्बम किया मेरे सामने, मीर तकी मीर का एल्बम किया मेरे सामने, तो मेरी वो गजलें कंपोज करते थे। अच्छा, मेरे पास कोई बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर नामी नहीं था, तो मैंने सोचा कि रूप भाई इतने अच्छे कंपोजर हैं, तो ये अगर फिल्म के गाने कंपोज करें और मैं लिखूं तो उसमें क्या प्रॉब्लम है, और उनका नाम भी है। तो मैंने उनसे कहा कि आप फिल्म के गाने क्यों नहीं करते? उन्होंने कहा भाई मैं इसलिए नहीं करता कि लोगों को पता चलेगा दूसरे म्यूजिक डायरेक्टरों को, तो जो गाने वो गवा रहे हैं वो भी बंद कर देंगे। ठीक है, ऐसा होता है हर प्रोफेशन में। तो थोड़े दिन तक तो वो इस बात पर टिके रहे, और मैं उनके अंदर वो म्यूजिक कंपोजर को, जो फिल्म का म्यूजिक कंपोजर होता है, उसको मैं जगा चुका था, मगर
0: जी, जी।
1: है ना, कहीं ना कहीं उनके भीतर भी था वो, क्योंकि हर म्यूजिशियन का वो सपना होता है
0: जी, जी।
1: वो म्यूजिक डायरेक्टर बनने का। तो एक दिन उन्होंने कहा चलो ठीक है यार, लाओ मुखड़े कंपोज करता हूँ। तो मैंने लिखने शुरू किए, उन्होंने कंपोज करने शुरू किए, और हमारा आज भी 500 गानों का बैंक है, जो हमारे गाने रूप कुमार राठौड़ साहब के बैंक में मेरे लिखे हुए
0: दर्ज है।
1: हाँ,
0: और
1: 400-500 गाने होंगे।
0: बहुत सारे नॉन फिल्म एल्बम भी हैं आपके नाम, एक जोगिया हमें याद आ रहा है।
1: हाँ, हाँ, हाँ,
0: जोगिया मन, तो वो कैसे बना वो गाना?
1: जोगिया मन तो अभी बात का है, वो एक नया कंपोजर है और बहुत अच्छा सुरीला है, हरीश सगाने
0: जी,
1: उनके साथ किया था मैंने, बहुत अच्छा लड़का है। और हरीश सगने के साथ हमने एक फिल्म की थी, विक्रम भट्ट साहब की एक फिल्म थी, उन्होंने मुझे फोन किया कि शकील भाई मैं फिल्म शुरू कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ आप गाने लिखें। तो मैं गया उनके यहाँ, तो उन्होंने मुझे हरीश सगने से मिलवाया
0: जी, जी।
1: और उनकी एक फिल्म आई थी 1921 जिसमें जरीन खान थी हीरोइन, और वो फिल्म भी बहुत अच्छी चली, हिट हुई पिक्चर, और उसके सारे गाने आप सुनेंगे बहुत अच्छे गाने।
0: थोड़ा सा हम पीछे की ओर चलते हैं, 2004 में जब आपकी पहली फिल्म आई थी,

0: वो फिल्म कैसे मिली आपको? पहली फिल्म तक आप कैसे गए? वो तेरा नाम था?
1: वो तेरा नाम था बिल्कुल।
0: तो यहाँ मतलब फिल्मी दुनिया में आपका प्रवेश कैसे हुआ? हम तो एंटर कर चुके हैं, लेकिन आप हमारे श्रोताओं को बताइए कि शायरी की दुनिया से फिल्मी दुनिया में एंट्री कैसे हुई आपकी?
1: ये बात तब की है, 2000 का जो सन है उससे पहले की बात है।
0: अच्छा,
1: तब मैं सूरत में रहता था।
0: जी जी।
1: और सूरत से मैं बॉम्बे आता जाता था, पैसे जब तक होते थे यहाँ रहता था, पैसे खत्म होते थे फिर सूरत चला जाता था।
0: अच्छा।
1: फिर पैसे इकट्ठा करता था फिर आता था। तो इस आने जाने में मेरी मुलाकात दिलीप सेन समीर सेन से हुई।
0: हाँ,
1: दिलीप सेन से हुई और दिलीप सेन के साथ मेरा स्ट्रगल शुरू हुआ। तो दिलीप सेन एक फिल्म कर रहे थे, उसके गाने रिकॉर्ड कर रहे थे सहारा स्टूडियो में, जुल्मी, जुल्मी फिल्म थी अक्षय कुमार।
0: जी जी जी।
1: तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई यहाँ सहारा में आ जाओ और अपनी किताब लेके आना।
0: वहाँ तनवीर खान भी के
1: हाँ। तो मैं वहीं आ रहा हूँ। तनवीर खान साहब तक आ रहा हूँ मैं। तो मैं सूरत से अपनी एक किताब, मेरी पहली किताब छप चुकी थी धूप दरिया, तो वो 96 में छपी थी वो किताब। तो ये 96 से 2000 के बीच की बात है। तो मैं वो किताब लेके आया
0: जी।
1: और सहारा स्टूडियो में मैं बैठा था मिलने के लिए। तो तनवीर खान साहब की नजर उस किताब पर पड़ी
0: जी।
1: उन्होंने कहा मैं देख सकता हूँ? मैंने कहा बिल्कुल देखिए। तो उन्होंने दो चार पेज इधर उधर पलटे और वो किताब जो थी उसका इंतसाब माँ के नाम था।
0: अच्छा।
1: हाँ, तो एक शेर जो है वो कैप्शन के तौर पर नीचे था कि अब भी सोते में ऐसा लगता है,
0: अब भी सोते में ऐसा लगता है, क्या बात है,
1: सर के नीचे तेरी हथेली है।
0: ओ क्या बात है।
1: ठीक है। तो ये शेर और कुछ शेर उनको बड़े पसंद आए। उन्होंने कहा यार ये किताब मुझे चाहिए। मैंने कहा ये तो मैं दिलीप सेन जी के लिए लाया हूँ, आप मुझे एड्रेस दे दें तो मैं सूरत जाऊंगा आपको भेज दूंगा। अच्छा, मैं उनको नहीं पहचानता था, वो मुझे नहीं पहचानते थे, जबकि तनवीर भाई ने बहुत सारे फिल्मों के डायलॉग, बड़ी कामयाब फिल्मों के डायलॉग लिख चुके थे। इस फिल्म के डायलॉग राइटर भी वही थे। तो मैंने वो किताब उनको सूरत जाके भेजी और वो किताब पढ़ के इतने इम्प्रेस हुए, वो किताब वो मेरी शायरी दोस्ती का जरिया बनी।
0: ओ, क्या बात है।
1: तो हमारी दोस्ती हो गई। फिर उन्होंने मुझे कहा कि अगर आपको फिल्मों में काम करना है तो आपको बॉम्बे आना पड़ेगा, मुंबई में रहना पड़ेगा आपको। अब मैं डरता था कि मैं कहाँ रहूंगा, क्या करूंगा, कैसे सरवाइव करूंगा, इसलिए मैं लेट हो रहा था मुंबई आने में। लेकिन फिर मैंने सोचा यार एक ना एक दिन तो ये कदम उठाना ही पड़ेगा, तो आज ही क्यों ना उठाया जाए। और इनसे मुझे बड़ी उम्मीदें थी तनवीर साहब से, क्योंकि ये बड़ी फिल्मों के डायलॉग राइटर होते थे।
0: जी जी।
1: तो एक जरिया था। तो मैं सूरत से मुंबई आ गया 2001 फरवरी में
0: जी।
1: और फिर तनवीर भाई के साथ घूमना फिरना, उनके सेट पे जाना, शूटिंग में जाना, ये सब मीटिंग में उनके साथ जाना, ये सब हो रहा था। उसी जमाने में रूप भाई से मुलाकात मेरी थी
0: जी।
1: तो ये दो लोग थे जिनसे मेरी उम्मीदें जुड़ी थी। तो रूप भाई मेरे गाने कंपोज कर रहे थे। अच्छा, दोनों से एक दूसरे के बारे में मैं बात करता था। मैं इनसे कहता था भाई रूप भाई को सुन लीजिए, मेरे गाने उन्होंने कंपोज किए हैं। अरे मैं सुन के क्या करूंगा, मैं ना डायरेक्टर हूं ना प्रोड्यूसर हूं। तब वो डायरेक्टर नहीं बने थे, बाद में डायरेक्टर भी बने। तो ये जो फिल्म थी वो तेरा नाम था, इसके वो डायलॉग लिख रहे थे और इस फिल्म के डायरेक्टर थे कुकू कोहली जी और इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे बहुत बड़े आदमी, अलग बिजनेस से रेमंड के मालिक विजयपत सिंघानिया साहब, उन्होंने ये फिल्म प्रोड्यूस की थी। तो बड़े लोग बना रहे थे पिक्चर, अमरीश पुरी साहब का इसमें बहुत बड़ा किरदार था। फिल्म उन्हीं की थी सच पूछो तो, बाकी दो लड़के और दो लड़कियां थी उसमें। तो उन्होंने कहा कि भाई रूप भाई को फोन करो, उनको बुलाओ, मैं सेटिंग कराता हूँ कुकू जी के साथ, फिल्म कर रहा हूँ मैं। तो मैंने फोन किया रूप भाई को, तो उन्होंने कहा कि मैं तो स्विट्जरलैंड या ऑस्ट्रेलिया में कहीं थे वो, मैं तो यहाँ हूँ। अरे मैंने कहा कि भाई ये सेटिंग करनी थी तो कब आएंगे, तो कुछ 15-15 दिन बताया कि बाद आऊंगा। तो खैर जब तक वो आते तब तक उस फिल्म के कई गाने दिलीप सेन समीर सेन जी ने रिकॉर्ड कर लिए थे और वो गाने लिखे थे निदा फाजली साहब ने। अब जब रूप भाई आए तो हमारी सेटिंग शुरू हुई। तो तो उनके पास एक गजल थी।

0: कतील सिपाही साहब की, जिसकी झनकार में दिल का आराम था वो तेरा नाम था।
1: क्या बात है।
0: तो वो तेरा नाम था इसी गजल से लिया गया था।
1: ओ अच्छा, क्या बात है भाई, अच्छी दिलचस्प कहानी।
0: हाँ मतलब पहले से कुछ नाम भरे रहा हो पिक्चर का, लेकिन जब ये गाना रिकॉर्ड हुआ ये गजल, तो वो तेरा नाम था कतील सिपाही साहब की गजल से लिया गया। ये नहीं कि गजल बाद में, गाना बाद में बना
1: जी,
0: पहले जो है गाना आया उसी में से नाम निकाला गया। जैसे मदहोशी थी उसका नाम मुमकिन था।
1: अच्छा।
0: हाँ, मदहोशी के डायरेक्टर तनवीर खान साहब थे, राइटर डायरेक्टर, उसका नाम मुमकिन था। जब हमने ये गाना रिकॉर्ड किया मदहोशी, तो इंदर कुमार साहब थे उसके प्रोड्यूसर, उनकी वाइफ थी और उनके साले, तो इंदर कुमार साहब ने कहा कि यार इसका नाम बदल दो, मदहोशी कर दो, ये जो गाना रिकॉर्ड किए हो ये टाइटल सॉन्ग बन जाएगा। तो इस तरह से मुमकिन हटा के मुमकिन नाम से उसका प्रचार भी शुरू हो गया था। बाद में वो मुमकिन हटा के मदहोशी किया गया। तो इस तरह से वो टाइटल आया वो तेरा नाम था। फिर उसमें मेरे दो गाने लिए गए, और उसमें कतील सिपाही साहब का भी गाना है, निदा फाजली साहब का है, मतलब दो बड़े शायर और गीतकारों के साथ मेरी शुरुआत हुई फिल्म में। उसमें एक गाना था जो मेरी जिंदगी का पहला गाना, वो ये था कि सुबह हो रही है, भोपाल का माहौल है, 1947 मुल्क आजाद हुआ है और भोपाल जो है वो मध्य प्रदेश की राजधानी बनाया जा रहा है। ये उस टाइम की कहानी थी, और समद खान कोई वहां के बड़े क्लासिकल सिंगर थे। तो सुबह हो रही है और पूरा उस जमाने की एक्टिविटी थी वो सब हो रहा है, और समद खान वो छत पे रियाज कर रहे हैं अपने महल के, और उनकी बेटी जो फिल्म की हीरोइन है वो कहीं वादियों में गा रही है। तो ये सिचुएशन थी
1: जी,
0: और फिल्म इसी गाने से शुरू होती है। तो वो मैंने लिखा था, मुझे पसंद है वो जी, जो राइटिंग है, और वो गाना इतना मतलब अलका जी ने गाया उसको, और उनको इतना अच्छा लगा, उन्होंने अपनी माता जी को फोन करके बुलाया और उनको सुनाया कि देखो आज भी ऐसे गाने लिखे जाते हैं। फिर वो गाना रिकॉर्डेड रूप भाई ने ले जाके लता जी को सुनाया, है ना दीदी, मैंने ये मेरी पहली फिल्म शुरू हुई है ये गाना रिकॉर्ड किया मैंने। तो उन्होंने गाना सुना लता जी ने, तो डांटा उन्होंने प्यार से
1: कि मुझे,
0: अरे ये गाना तो मेरा था, तूने मुझसे क्यों नहीं गवाया।
1: बड़ा कॉम्प्लीमेंट था।
0: हाँ, तो ये गाने में जो एक तो कंपोजिशन और दूसरे जो इसके लिरिक्स हैं के पूरे साहित्यिक, उसका मैं मुखड़ा सुनाता हूँ आपको
1: जी।
0: सुबह हुई दिन निकल रहा है, सुबह हुई दिन निकल रहा है, नदी के तट पर नहा के सूरज सुनहरे कपड़े बदल रहा है।
1: क्या बात है,
0: सुबह हुई दिन निकल रहा है।
1: बहुत
0: आपके उदयपुर के रेडियो स्टेशन पर ये सुबह इसी गाने से होती है, डेली ये गाना बजता है।
1: हम यहाँ पर कौन सा गाना सुनवाए,
0: मदहोशी का टाइटल सॉन्ग सुना दे, मदहोशी है मदहोशी है।

0: शकील साहब, एक बहुत जरूरी सी बात है और आपके करियर में भी बहुत ये उम्दा बात है, खास बात है, अपने श्रोताओं को बता दें कि आपने कहीं बहुत सारी जगहों पर, आपके बारे में पता है कि बहुत ऊंचे दर्जे की तालीम नहीं ली, स्कूल में जाने का मौका नहीं मिला आपको, लेकिन एक ऐसी तालीम है जो आपके भीतर आपने खुद से ली होगी। राम के वनवास पर आपकी बहुत सारी नज़्में हैं, जिस पर किताब भी आई है और जिसका आप अक्सर जिक्र करते हैं, तो ये कहाँ से आइडिया आया, कहाँ से खोज की आपने, इतने बड़े फलक पर आपने कैसे कुछ कोशिश की, बताइए।
1: मेरी उर्दू में 8 किताबें हैं
0: जी।
1: मैं साहित्य से, उर्दू साहित्य से ही फिल्मों में और मंचों पर आया। 20 साल तक मैंने सिर्फ साहित्य लिखा, साहित्य के मैगजीन में छपता रहा, मैं बाद में इधर आया फिल्मों की तरफ और मंचों की तरफ। तो ये जो काम है मेरा, ये मैं जंगल पर लिख रहा था, जंगल पर लिख रहा था, और लिखते लिखते उसी दरमियान उर्मिला का जो किरदार है वो कहीं से मेरी जिंदगी में आया। उर्मिला जो लक्ष्मण की बीवी है, लक्ष्मण की जो पत्नी
0: जी,
1: है
0: जी।
1: उस किरदार ने मुझको झकझोर के रख दिया, मुझे हिला दिया उस किरदार ने, उसके बलिदान ने, उसके कुर्बानी ने,
0: कि वनवास होता है लक्ष्मण को 14।
1: हाँ, और अहिल्या, ये दो ऐसे किरदार हैं जिन्होंने मुझे बहुत परेशान किया, बहुत बेचैन किया मुझे। और उसी जमाने में जब मैं अहिल्या के दर्द से दो चार था, उसको जी रहा था, और जब ये नज्म हुई उर्मिला, जब ये नज्म मैं लिख चुका, तो मुझे लगा कि यार जो रामायण है
0: जी,
1: वो पूरी घटना जो है वो जंगल में है, वनवास जो राम जी का है 14 बरस का, तो क्यों ना रामायण के किरदारों पर नज्में लिखी जाए। तो मेरी जो रामायण है वो वाल्मीकि जी से लेके अब तक जितनी भी रामायणें लिखी गई हैं, तुलसीदास की जी, हाँ, तो और भी हमारे दूसरे लोगों ने लिखी हैं, मैथिली शरण गुप्त जी का काम है इस उर्मिला पे,
0: उर्मिला सखी वे मुझसे कह जाते,
1: हाँ हाँ,
0: बहुत बढ़िया।
1: तो सभी ने मतलब कहानी के माध्यम से कहानी कही है, मैंने एक नया रास्ता निकाला, पात्रों के जरिए से, किरदारों के जरिए से मैंने रामायण कही है, मैंने

0: कहानी, तो मैंने तकरीबन सभी किरदारों पर नज़में लिखी, एक के बाद एक जीता गया और लिखता गया। इस तरह से वो पूरी एक अलग सी रामायण हुई। और पहले मैंने उसका नाम सोचा था जंगल यात्रा, उस किताब का, क्योंकि जंगल पे काम कर रहा था ना, तो उस किताब का एक बड़ा हिस्सा जंगल भी है, रामायण और जंगल दोनों है उसमें, तो वो मेरे लेखन क्षेत्र में आता था, मेरा जो टॉपिक था जंगल उसमें वो वनवास आता था वो। तो जब ये रामायण उसमें शामिल हो गया तब मैंने सोचा कि यार क्यों ना इसका नाम वनवास रख दिया जाए, उससे बेहतर क्या नाम हो सकता है, अगर जंगल पर किताब है रामायण पर किताब है, तो वो जो है इस तरह से उसका नाम वनवास रखा गया। और वो किताब इतनी सराही गई है, उर्दू में उसको कई अवार्ड मिले, और उर्दू के जितने भी बड़े क्रिटिक्स और पोएट हैं उर्दू साहित्य में, तकरीबन सभी ने उस किताब पर आर्टिकल्स लिखे हैं, लेख लिखे हैं, मजामीन लिखे हैं। तो किताब पर किताब का आ जाना बहुत बड़ी बात होती है, मतलब उस किताब पर इतने आर्टिकल लिखे गए कि वो अलग से एक किताब आई है, उसको प्रोफेसर कौसर मजहरी साहब हैं जो जामिया मिल्लिया यूनिवर्सिटी में हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं उर्दू के, उन्होंने वो किताब कंपाइल की है।
1: क्या बात है।
0: हाँ, तो इस तरह से उस किताब पर किताब आई, और सिर्फ हिंदुस्तान नहीं पाकिस्तान के राइटरों को भी उस किताब ने बहुत इम्प्रेस किया। वहां पर एक बड़े राइटर थे, अभी उनकी डेथ हुई है, जो फिल्म के भी राइटर थे, साहित्य के भी थे और मंचों के भी थे, जिस तरह हमारे यहाँ जावेद साहब है, गुलजार साहब है, इस तरह का वो नाम थे, अमजद इस्लाम अमजद साहब, अभी इंतकाल हुआ उनका, उन्होंने इस पर आर्टिकल लिखा है। और किस तरह से, मतलब हिंदू मैथोलॉजी और रामायण को लेके जो उनकी मालूमात थी वो भी कमाल है, वो जो लिखा है उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है। ये किताब हिंदी में जब आई तो पिछले 3 सालों से बेस्ट सेलर है, कविता की सबसे ज्यादा बिकने वाली किताबों में एक है ये।
1: क्या बात है।
0: पिछले 3 साल से लगातार, और अभी को दैनिक जागरण ने बेस्ट सेलर अवार्ड दिया गृह मंत्री अमित शाह जी के हाथ से मुझे।
1: क्या बात है।
0: तो हाँ, बहुत शुक्रिया,
1: और बहुत बढ़िया बात कही है। और आपके मुशायरों का जिक्र तो हुआ, शुरुआती मुशायरों का, लेकिन बाद के मुशायरों में हमने खुद देखा है, मेरी खुशनसीबी है कि हमने आपको खुद देखा है, और कलिंगा फेस्टिवल में देखा, प्रयागराज में हमने आंखों से देखा था जहां अनुभव सिन्हा जी भी उपस्थित थे, और आपकी जो शायरी थी वो आपके खजाने से निकल रही थी और पूरा हॉल खचाखच भरा था। ऐसे तमाम अनुभव है, तमाम वाक्यात हैं जिनकी बातें हम आपसे और फिर कभी करेंगे। आज तो बस इतना हम कहना चाहते हैं, धुआं धुआं है फजा, रोशनी बहुत कम है, सभी से प्यार करो, जिंदगी बहुत कम है। आपके अल्फाज हैं, आप क्या कहेंगे, आप विविध भारती के श्रोताओं को क्या पैगाम देंगे, क्या कहेंगे चलते चलते?
0: मैं यही कहूंगा कि अभी आपने जो सुनाया है, सभी से प्यार करो, जिंदगी बहुत कम है, तो प्यार बहुत जरूरी है, और दुनिया में कुछ भी हो जाए, ये जो मोहब्बत का जज्बा है ये हमेशा बड़ा रहेगा, बड़ा था, बड़ा है, बड़ा रहेगा। तो मोहब्बत कीजिए, सबसे पहले तो खुद से मोहब्बत कीजिए।
1: कुछ शायर में एक शायर से हम उम्मीद करते हैं शायरी में ही कुछ बोले शेर के साथ
0: जी,
1: कोई अशार।
0: मैं अभी इधर एक नई गजल कही है मैंने, उसके 2-3 शेर सुना देता हूँ, और उसमें एक शेर है खास तौर से उसके लिए मैं ये शेर सुना रहा हूँ कि उसमें ये भी एक शेर है, सीख है कि भाई ठीक है ऊंच नीच होती है, कुछ हमारे अलग अलग सोच होती है, लेकिन उस सब को हटा के आगे की तरफ बढ़ते रहो।
1: क्या बात है।
0: मोहब्बत करते रहो। कि आबाद मेरी बाहों का घेरा नहीं हुआ, आबाद मेरी बाहों का घेरा नहीं हुआ।
1: क्या बात है।
0: मैं हो गया हूँ उसका, वो मेरा नहीं हुआ।
1: वाह वाह वाह।
0: मैं हो गया हूँ उसका, वो मेरा नहीं हुआ। वो शेर ये है जो मैं कह रहा हूँ कि ठीक है वो आप आगे बढ़े। सांपों को मैंने रहने दिया उनके हाल पर।
1: क्या बात है।
0: सांपों को मैंने रहने दिया
1: उनके हाल पर।
0: उनके हाल पर मंत्र भी सीख कर मैं सपेरा नहीं हुआ।
1: वाह वाह वाह।
0: ठीक है, मैंने उनसे बदला नहीं लिया, मैंने मंत्र आता था मुझे, लेकिन ठीक है यार, तुम्हारे रास्ते मैं अपने रास्ते। इसका एक शेर आखिरी खास तौर से कि देखिए ज्ञान जो है ना
1: जी,
0: शायरी में ज्ञान की बहुत जरूरत नहीं होती, लेकिन जब आपके पास ज्ञान भी होता है अलग अलग, तो

0: वो शेर में आता है रचना के तौर पर, रचनात्मक तौर पर आता है, तखलीकी तौर पर, तो वो बहुत असर करता है। तो एक महाभारत का एक इल्म है, एक ज्ञान है जो इस शेर में आता है, मैं सुनाता हूँ। ये जिंदगी भी एक महाभारत का युद्ध है।
1: क्या बात है, ये जिंदगी भी एक महाभारत का युद्ध है, वाह।
0: ये सीख है हम सबके लिए, ये जिंदगी भी एक महाभारत का युद्ध है
1: जी।
0: लड़ते रहो शकील, अंधेरा नहीं हुआ।
1: क्या बात है, वाह वाह वाह। तो अब अपने श्रोताओं से, हमारा तो दिल नहीं कर रहा है कि हम इजाजत लें, और लग रहा है कि आपसे गुफ्तगू जारी रहे, और बहुत सारी अभी बातें हैं जो बाकी हैं आपसे पड़ताल करनी। आजमगढ़ जैसे छोटे से शहर से आप मुंबई जैसे महानगर में आकर और इतना नाम रोशन किया है, शायरी की दुनिया में, फिल्मों की दुनिया में आपने नाम रोशन किया है, इसके लिए आपको पूरे विविध भारतीय परिवार की ओर से बहुत बहुत मुबारकबाद हम दे रहे हैं, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया शकील साहब। नमस्कार।
2: जानी मानी शायर और गीतकार शकील आजमी से ममता सिंह की बातचीत का दूसरा और आखिरी भाग अभी आपने सुना। रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन रीमा जोशी, और प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
3: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा होगी।
2: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध।

अभी आप सुन रहे थे पिटारा विविध भारती केंद्र से। ये आकाशवाणी जोधपुर का FM सन सिटी चैनल है, FM बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 5 बजे हैं, आइए सुनते हैं हमारे सूर्य नगरी चैनल से युवाओं का कार्यक्रम युववाणी।

0: हाय, गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि मैं जिस तरीके से एकदम खुश दिख रही हूँ और हंसकर आपसे हेलो हाय गुड इवनिंग बोल रही हूँ, वैसे ही आप भी खुश होंगे, आपके चेहरे पर मुस्कान होगी. और नहीं होगी तो हम किस लिए हैं? हम दो रेडियो बडीज आपके साथ जुड़ चुके हैं आज की शाम में. आज की इस शाम को और भी प्यारा और खूबसूरत बनाने के लिए मैं आपकी आज की रेडियो दोस्त और होस्ट विनीता, और मेरे साथ है
1: दोस्तों, मैं हूं अदिति मारिया. तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज है मंगलवार, और मंगलवार को होता है हमारा स्पेशल अंताक्षरी शो. तो आपको अगर अंताक्षरी खेलने
0: जी.
1: में इंटरेस्ट है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं.
0: बिल्कुल. और जुड़ने के लिए आपको एक नंबर डायल करना है जो कि हम अभी नहीं बताएंगे आपको. बताएंगे, कोई बात नहीं, टेंशन मत लीजिए. लेकिन ये जो कॉफी वाला गाना है, ये चलाने के बाद और आपके हाथ में आई होप कि चाय या कॉफी जरूर होगी क्योंकि शाम का वक्त है,
1: बिल्कुल.
0: तो क्यों
1: और
0: ना उनमें चार चांद लगा दे ये गाना चलाकर. सुनते हैं ये गाना.

0: तो वैसे इतनी गर्मी है, लेकिन मतलब लोग सोचते हैं ना कि इतनी गर्मी में चाय और कॉफी कौन पीता है. जो राजस्थानी नहीं है वो तो सोचते हैं कि चाय और कॉफी
1: हाँ,
0: कौन
1: वो फिर
0: पीता है.
1: अवॉइड कर सकते हैं, पर हम
0: हाँ
1: राजस्थानी तो बिल्कुल अवॉइड नहीं कर
0: बिल्कुल.
1: सकते।
0: हमसे पूछिए, हम तो भरी धूप में जो है कप
1: मिर्ची
0: लेकर
1: बड़ा
0: मिर्ची बड़ा, चाय, समोसे,
1: सब सब
0: पकौड़े,
1: खा सकते हैं
0: बस आप खिलाइए, चाय
1: हम
0: बना के पिलाइए बस. वैसे अदिति, तुम्हें
1: हाँ
0: चाय या कॉफी में से क्या पसंद है?
1: चाय ज्यादा पसंद है, पर ऐसा नहीं है कि कॉफी नहीं पीती, कॉफी भी पीती हूँ, पर चाय।
0: अरे यार, तुमने मुझे नहीं पिलाई चाय.
1: चलो पिला दूंगी, ऐसा क्या है
0: चलो कोई बात नहीं.

0: तुम पिला देना. फिलहाल जो है हम नंबर बता देते हैं कि हमसे जुड़ने के लिए इनको नंबर डायल करने हैं जो कि है
1: 02912553300 और हमारा दूसरा नंबर है 02912554300.
0: देर किस बात की, चाय तो पी ही रहे हैं और अंताक्षरी गेम अगर साथ में हो जाए तो नेकी और पूछ चार चांद लग जाएंगे आज के प्रोग्राम में.
1: हाँ.
0: तो जल्दी से जल्दी नंबर डायल कीजिए, फोन उठाइए और बात कीजिए हम दो रेडियो बडीज के साथ. फिलहाल हम आपको ले चलते हैं इस अगले प्यारे से म्यूजिकल ट्रैक की ओर.

0: क्या बात है, इस प्यार इसी म्यूजिकल ट्रैक के बीच ही अदिति हमारे जो आज के पहले लिसनर है वो हमसे जुड़ चुके हैं. बात करते हैं इनसे. हेलो.
1: हेलो.
0: हाँ जी नमस्ते.
1: हाँ जी नमस्ते, मेरा नाम ओम प्रकाश भाभी है.
0: जी, ओम प्रकाश जी, स्वागत है आज की यूथ अंताक्षरी में आपका. क्या करते हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: जी मैं पता मगर दोस्तों से बोलो, संजय गांधी बोला नहीं, गुल्लाम मशीन
0: अच्छा
1: का काम करता हूँ मैं.
0: अच्छा. चलिए
1: ओम
0: प्रकाश जी, आप बड़े ही जल्दी में लग रहे हैं, तो जल्दी जल्दी जो है अपनी प्यारी सी आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा पेश कर दीजिए हमारी ऑडियंस के लिए. जी आपकी पसंद का कोई भी गाना.
1: मेरा दिल दिल से सीधा है, मेरा दिल दिल से सीधा है, एक दिल जुबा है, दिल जुबा है, हाँ दिल जुबा है, हाँ यही तो.
0: क्या बात है, मेरा दिल जिस दिल पे फिदा है. क्या खूब गाना गाया आपने, और बहुत बहुत शुक्रिया आप हमसे जुड़े. नेक्स्ट टाइम फिर से जुड़िएगा. जी जी बिल्कुल बिल्कुल. और लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा जल्दी में हैं, इसीलिए हम आपको जो है सुनाते हैं यही एक ट्रैक, ये सुनते जाइए आप.

0: इसी बीच जो है हमारे अगले लिसनर भी हमसे जुड़ चुके हैं। हेलो हेलो
1: हेलो
0: हेलो जी,
1: हेलो।
0: आपको आवाज आ रही है हमारी?
1: हाँ
0: हेलो,
1: हेलो, नमस्ते।
0: हाँ जी नमस्ते, क्या नाम है आपका?
1: रमेश,
0: रमेश जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: मैं जैसलमेर से। हेलो
0: हेलो जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: मैं जैसलमेर से।
0: ओहो, जैसलमेर से बात कर रहे हैं आप, क्या करते हैं रमेश जी आप?
1: मैं

0: ट्वेल्थ में पढ़ाई करता हूँ।
1: अच्छा चलिए गाने सुनते हैं आप। ठीक है फिर आपकी पसंद का कोई प्यारा सा गाना सुना दीजिए।
2: लख समझा नहीं पाता।
1: सुनाइए।
2: दिल समझा नहीं।

0: विनीता, देखो एक और कॉल आ चुका है हमारे पास,
1: क्या बात है,
0: देखते हैं कौन हमसे बात करना चाह रहे हैं। हेलो जी, नमस्ते।
2: नमस्कार। नमस्कार,
0: आप कहाँ से बोल रहे हैं और आपका नाम क्या है?
2: मैं इकरामुद्दीन बोल रहा हूँ, ज्योति नगर चांदना बाकर से।
0: जी, तो जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा आज ये अंताक्षरी का कार्यक्रम है, तो आपका जो भी पसंदीदा गाना है वो आप गा के सुनाइए हमें।
2: आज मेरे को देशभक्ति गाने का थोड़ा मन हो रहा था, तो इसलिए सारे जहां से।
1: क्या बात है।
2: हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अज्जा, हम बुलबुले हैं इसकी,
1: ये गुलशन हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। क्या बात है, क्या बात है,
0: बड़ा ही सुरीला गाते हैं आप।
2: हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा।
1: वाकई इकरामुद्दीन जी, आपने ये जो गाना गा के ना सबको ये संदेश दे दिया है कि देश के लिए प्रेम जो है एक दिन में सीमित नहीं है, देश के लिए तो प्रेम हमेशा होना चाहिए, साल के 365 दिन रहना चाहिए देश के लिए प्रेम।
2: 15 अगस्त की नहीं बात है
1: जी,
2: 365 दिन देश के लिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा इकरामुद्दीन जी, सेकंड राउंड में खेलेंगे यूथ अंताक्षरी?
2: जी जी,
1: ठीक है। अगला ये गाना सुनिए आप, इसमें से हम आपको एक शब्द देंगे, उस पर आपको गाना है, ठीक है?
2: कोशिश करता हूँ मैडम।
1: ओके, सुनिए गाना।

0: जी इकरमुद्दीन जी,
1: जी
0: आपका शब्द है दिल।
1: दिल
0: जी
1: दिल दिया है जान
0: वाह वाह वाह वाह,
1: देंगे ए वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए।
0: क्या बात है, क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करके, आपका गाना सुनकर बहुत अच्छा लगा। और
1: थैंक
0: नेक्स्ट टाइम फिर से आप जुड़िएगा हमसे, और अभी जो है ले चलते हैं अगले ट्रैक की। और

0: देखो विनीता, अब अगला हमारे पास कॉल आ चुका है, तो देखते हैं कौन हमसे बात करना चाह रहे हैं। हेलो जी, आपका नाम अब और कहाँ से आप बात कर रहे हैं?
1: जोधपुर से सर,
0: अच्छा, जोधपुर से। आपका नाम?
1: इकबाल नाम है मेरा,
0: अच्छा, इकबाल जी। तब म्यूजिक के काफी इंटरेस्ट लेते हैं म्यूजिक में आप?
1: रखते हैं ना सर।
0: हाँ, तो जैसा कि आपको पता है, आज अंताक्षरी है हमारा प्रोग्राम, तो आपका पसंदीदा कोई भी सॉन्ग गीत आप सुना सकते हैं।
1: मिले ना फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली, मिले ना
0: थोड़ा सा
1: फूल,
0: तेज गा पाएंगे आप?
1: थोड़ा
0: थोड़ा सा
2: सा, थोड़ा सा जो है ना तेज गाइए, आपकी आवाज थोड़ी धीमे आ रही है। मैं
1: मिले ना फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली, मिले ना फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली, मिले ना फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली।
2: क्या बात है इकबाल जी, चाहे दोस्ती मिलनी चाहिए, चाहे फूल मिले दोस्ती में या फिर कांटे मिले, बस दोस्त होने
1: वो तो
2: चाहिए
1: सही है,
2: जीवन
1: दोस्त
2: में।
1: होना
2: बिल्कुल
1: चाहिए
2: बिल्कुल,
1: जरूर।
2: बहुत बहुत धन्यवाद आप हमसे जुड़े। नेक्स्ट टाइम फिर से यूथ अंताक्षरी में जुड़िएगा। अभी हम आपको ले चलते हैं इस ट्रैक की ओर।

0: क्या बात है, इस सॉन्ग के बीच ही हमारे अगले लिसनर अब जुड़ चुके हैं. हेलो. डिस्कनेक्ट हो चुके हैं. कोई बात नहीं, फिर से जुड़ेंगे हमारे साथ. लेकिन हम आपको बता दें कि यूथ अंताक्षरी चल रही है और हमसे जुड़ सकते हैं. हमारा जो यूथ है जिनकी उम्र 30 वर्ष से कम है वो हमसे जुड़ सकते हैं. और हमसे जुड़ने के लिए इनको करना बस एक नंबर डायल है जो कि है,
1: बिल्कुल जो नंबर है वो है 02912553300 और हमारे दूसरे नंबर है 02912554300. तो दोस्तों हमको इस नंबर पे कांटेक्ट करिए, अपने दोस्तों को अपने फैमिली को भी बोलिए.
0: बिल्कुल. और गाने का शौक रखने वाले तो बिल्कुल सबसे पहले कॉल कीजिए, हम आप ही का वेट कर रहे हैं.
1: ये अच्छा मौका है आपकी स्किल्स और डेवलप करने का.
0: और हम दो रेडियो बडीज आपके साथ जुड़े हुए हैं, अदिति एंड विनीता. स्टे ट्यून्ड विद अस.

0: क्या बात है, जगा ले तू, जगा ले जज्बा। और हमारे अगले लिसनर में भी आज की यूथ अंताक्षरी में शामिल होने का जज्बा आ चुका है, बात करते हैं इनसे। हेलो,
1: हेलो,
0: हाँ जी नमस्ते,
1: नमस्ते। मेरा
0: क्या नाम है आपका?
1: नाम दिलीप,
0: दिलीप जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: न्यू पावर हाउस जोधपुर।
0: अच्छा, जोधपुर से बात कर रहे हैं, क्या करते हैं आप?
1: जी मैम, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हूँ।
0: ओके, चलो गाने सुनते हैं आप।
1: जी बिल्कुल।
0: चलिए फिर, आपकी आवाज़ में अभी तो अब जो है आप बहुत ही धीरे धीरे बात कर रहे हैं, लेकिन आई होप कि जब गाना गाए तो थोड़ा सा तेज गाएं, जो हमें
1: ओके
0: सुनने में
1: ओके
0: थोड़ा
1: सुन।
0: इजी
1: हाँ
0: रहे।
1: हाँ
0: सुनाइए आपकी पसंद का कोई गाना।
1: ओ सजनी रे, कैसे कटे दिन रात, कैसे हो तुझसे बात, तेरी याद सताए
0: क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, दूसरे राउंड में खेलेंगे अंताक्षरी,
1: रे। जी,
0: ठीक है। आपको जो है ये गाना सुनना है ध्यान से, इसमें से आपको शब्द देंगे, उस पर आपको गाना है,
1: ओके
0: ठीक है? गाना सुनिए।

0: दिलीप जी,
1: हाँ जी
0: जी आपने गाना सुना?
1: बिल्कुल।
0: हाँ, तो आपके लिए जो शब्द है वो है आंखें।
1: ये आंखें देख
0: क्या बात है,
1: कर
0: क्या
1: हम
0: बात है।
1: सारी दुनिया भूल जाते, तुम्हें पाने की धुन में हर तमन्ना भूल जाते
0: वाह।
1: हैं। ये आंखें देख कर हम सारी दुनिया भूल
0: बिल्कुल, फिलहाल हम जो है अंताक्षरी भूल चुके हैं आपकी आवाज सुनकर। बहुत ही प्यारा गाते हैं आप, और आपने नया गाना भी गाया और पुराना गाना भी गाया।
2: कितना अच्छे से अडेप्ट होते हैं हमारे लिसनर्स, वो इससे हम पता कर पाते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, और म्यूजिक का टेस्ट भी काफी बहुत अच्छा है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। अभी जो है हम आपको सुनाते हैं ये ट्रैक।

0: Hello. हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं. हेलो
1: अच्छा हाँ ठीक।
0: हेलो.
1: हेलो
0: हाँ जी नमस्ते.
1: नमस्कार मैडम,
0: क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम अशोक खेमानी मैडम,
0: अशोक जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: चौपास में आसिम रोड से बोल रहे
0: अच्छा
1: हैं।
0: अच्छा अच्छा क्या करते हैं आप?
1: मेरा रेडीमेड का होलसेल का काम है।
0: अच्छा, तो सर गाने तो बहुत सुनते होंगे आप.
1: जी।
0: चलिए फिर आप जो है अपनी पसंद का एक प्यारा सा नगमा सुना दीजिए.
1: मैडम वो तो सुना दूंगा, पहले अपना आपका शुभ नाम बताइए।
0: जी मेरा नाम विनीता.
1: विनीता जी, पहले कविता जी और जौहर भाई वगैरह आया करते थे, मैं
0: जी
1: तब तब से आपका श्रोता हूँ।
0: जी जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए.
1: जी धन्यवाद। हाँ जी, मेरे को फिल्म मेरा साया का गीत सुनना है,
0: बिल्कुल बिल्कुल सर सुनाइए.
1: नैनों में बजरा छाए बिजली
0: जी
1: की चमके आए। थैंक
0: जी जी जी
1: यू। मेरे को नंबर 8 कैसे याद आ गया बेंचो, 5 साल के बाद में लगा है।

0: हेलो
1: राजेश जी।
0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
4: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
4: 2 लाख
5: क्या हुआ पापा?
4: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
2: अरे
4: काट दिया।
5: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
4: फ्रॉड?
5: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
4: तो पैसे गवाओगे,
6: RBI कहता है।
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
8: हमारी प्लेलिस्ट में बस ऐसे गाने चला दो और हाँ। बस अकेले छोड़ दो, हम खुद वाइब कर लेंगे, हम खुद मजे ले लेंगे।
9: और प्लेलिस्ट जो हम बना के देते हैं ना हमारे लिसनर्स के लिए, वो बेस्ट होती है।
8: बिल्कुल,
9: कोई मतलब जुड़ा हो हमसे
8: तो। अगर दूसरा इंसान हमारे साथ हो ना हो उससे फर्क ही नहीं पड़ता है, बस अपनी प्लेलिस्ट चलाओ और अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करो, बस
9: वाइब में खो जाओ
8: खो जाओ।
9: और अगर अभी भी चाय कॉफी पी रहे तो आप उसको एंजॉय कर।
8: बिल्कुल। और अभी जो है यूथ अंताक्षरी तो चल ही रही है और हम तो बेसब्री से आपके इंतजार में बैठे हैं। और हमारे नंबर एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं, हमारे नंबर है
9: जो नंबर है जिस पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं वो है 02912553300। और हमारे दूसरे नंबर है 02912554300।
8: क्या बात है, अदिति ने नंबर बताया नहीं कि हमने हमारे अगले लिसनर हमसे जुड़ने के लिए रेडी हैं। बात करते हैं इनसे। हेलो।
10: हेलो जी, नमस्कार जी, गुड इवनिंग।
8: नमस्ते, गुड इवनिंग, क्या नाम है आपका?
10: मेरा नाम सोमवाल भाटिया जी।
8: जी क्या करते हैं आप?
10: सर हम रिटायर्ड पर्सन हैं जी।
8: अच्छा, चलिए अपनी आवाज में एक आपकी पसंद का कोई प्यारा सा गीत सुना दीजिए।
10: चल सन्यासी मंदिर में तेरा चिंता मेरी चूड़िया दोनों साथ बजाएंगे।

0: क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा गाते हैं आप।
1: सन्यासी मंदिर।
0: चलिए हम ले चलते हैं फिलहाल आपको इस अगले ट्रैक की ओर।

0: विनीता हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं,
1: हाँ
0: आइए उनसे बात करते हैं।
1: बिल्कुल।
0: हेलो हेलो, शायद कोई प्रॉब्लम है और वो कनेक्ट नहीं कर पाए। हेलो
2: हेलो
0: जी, नमस्ते,
2: जी नमस्ते मैडम,
0: आपका नाम?
2: मेरा नाम अमर सिंह।
0: अच्छा जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं?
2: शास्त्री नगर से। हाँ
0: अच्छा, तो आप रेडियो सुनते हैं?
2: जी मैडम।
0: बिल्कुल, तो जैसा कि आपको पता है कि आज अंताक्षरी है, तो आपको अपना पसंदीदा गीत आपको सुनाना होगा। थोड़ा सा आप रेडियो से दूर हो जाइए और जो भी आपका पसंदीदा गीत है वो हमें सुनाइए।
2: मैडम, जरा मेरी नजर से तू खुद को देख भी, है चांद में दीदार पर ना तुझ में एक भी, जो भी है सब मेरा

0: जो भी है सब तेरा तेरे हवाले कर दिया।
1: क्या बात है, क्या बात है। और हमने हवाले कर दिया है अगला राउंड आपके नाम। बहुत बहुत प्यारा गाते हैं आप। नेक्स्ट राउंड में खेलेंगे अंताक्षरी?
0: जी मैडम।
1: ठीक है, अगले राउंड में जो है आप ये गाना सुनिए, इसमें से आपको एक शब्द देंगे, उस पर आपको गाना है। ठीक है
0: जी मैडम।
1: जी।

0: हेलो।
1: हेलो।
0: हाँ जी, आपका शब्द है नैना।
1: नैना।
0: जी, इससे जुड़ा एक गीत आपको गाना है।
2: और थोड़ा सा आप जो है ना रेडियो से दूर रहिए, क्योंकि आवाज जो है डबल डबल आ रही है, तो आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही हमारे पास।
1: मैडम क्या शब्द गया मैडम?
2: नैना।
1: तेरे नैना मेरे नैनों से मीठी मीठी बातें करते हैं, जब नैना बातें करते हैं दिल मुलाकातें करते हैं।
0: क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूबसूरत गाते हैं आप। और नेक्स्ट टाइम फिर से हमसे जुड़िएगा यूथ अंताक्षरी में। फिलहाल हम ले चलते हैं आपको इसी ट्रैक की ओर।

0: हेलो
1: जी नमस्ते,
0: मैडम, विनय बोल रहा हूँ जोधपुर से।
1: स्वागत है आपका कार्यक्रम युवानी में। आप कहाँ से बोल रहे हैं
0: जोधपुर से बोल रहा हूँ मैडम।
1: जी? तो आप क्या करते हैं?
0: मैडम मेरी दुकान है मैडम।
1: अच्छा, तो आप रेडियो भी सुनते ही होंगे फिर।
0: यस मैडम, अभी चल रहा है मैडम।
1: अच्छा, तो जैसा कि आप जानते हैं आज हमारा युवानी का स्पेशल अंताक्षरी कार्यक्रम है, तो आप
0: हाँ ठीक
1: अपना पसंदीदा गीत जो है वो हमें सुना दीजिए।
0: है मैडम। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है।
1: आगे
0: आगे मैडम पूरा नहीं आ रहा।
2: वैसे गाना काफी अच्छा चूज किया आपने,
1: बिल्कुल, और कोशिश भी अच्छी थी।
2: और सच में पल दो पल के ही हैं हम लोग यहाँ पर, और बस खुश खुश होकर और हंसी मजाक

0: में पल दो पल के ही हैं हम लोग यहाँ पर, और बस खुश खुश होकर और हंसी मजाक में और ऐसे ही जिंदगी काटनी है हमें, हंसकर खुलकर जीना है. और इसी गाने को लेकर हम जो है आपको नेक्स्ट राउंड में लेते हैं. तो नेक्स्ट राउंड में खेलेंगे यूथ अंताक्षरी.
1: यस मैम.
0: ठीक है, अगला गाना सुनिए आप. इसमें से आपको एक शब्द देंगे, उस पर आपको गाना है. ठीक है
1: ओके मैम.
0: जी, सुनिए.

0: हेलो.
1: हाँ मैम,
0: हाँ, तो जैसा कि आपने गाना सुना, इसमें से हम आपको शब्द देते हैं, वो है पिया.
1: पिया. पिया मिलन की रुत आई.
0: सुनाइए.
1: दूसरा मैडम कोई ऑप्शन.
0: आप जो है अब दिल दिल शब्द से गाएंगे.
1: ठीक है मैडम. हाँ मैडम. दिल दीवाना दिल
0: क्या बात
1: सजमाने माने ना,
0: यही पगला है,
1: है
0: समझा नहीं से,
1: समझाने से तेरा
0: समझे ना. क्या बात है, बहुत प्यारा गाना गाया आपने. बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए. आप सुन रहे हैं यूथ अंताक्षरी, और अब आपको ले चलते हैं इस ट्रैक की ओर.

0: क्या बात है, ऐसे प्यारे प्यारे से गाने चल जाए ना बैकग्राउंड में, तो फिर और तो क्या ही चाहिए, बस गाने चल जाए और वाइब करें हम, और उस पे अपना मूड जैसा भी हो ना ठीक हो ही जाता है.
1: बिल्कुल. और मंडे के बाद जो ट्यूसडे है वर्किंग डे हो जाता है, तो काफी स्ट्रेसफुल भी हो सकता है लोगों के लिए. तो ऐसे में ऐसी प्लेलिस्ट जो है हमारी
0: रखनी चाहिए.
1: बिल्कुल. और ये मूड लाइट कर देती है, आपको स्ट्रेस फ्री कर देती है, और आपको थोड़ा डांसिंग मूड में भी ले आती है.
0: बिल्कुल दोस्तों. और आप मैं देख रही हूँ अदिति के पास बैठी हूँ कि ये गाने को कैसे इंजॉय कर रही थी, और अभी जो कितनी खिली खिली लग रही है, और आई होप कि आप भी खिले खिले हो गए होंगे, खुशी होगी आपको भी, आपके चेहरे पर स्माइल होगी. और इसी स्माइल के साथ ही हमसे जो है अगले लिसनर जुड़ चुके हैं. हेलो हेलो हेलो.
2: हाँ मैडम.
0: जी नमस्ते.
2: नमस्ते मैडम.
0: क्या नाम है आपका?
2: मैं वेलाराम प्रजापत बोल रहा हूँ, पाली से.
0: अच्छा, पाली से बोल रहे हैं आप.
2: हाँ मैडम.
0: क्या करते हैं?
2: हम सिलाई का काम करते हैं.
0: अच्छा अच्छा, प्रजापत जी, फिर तो आपके पास जो है हमेशा रेडियो चलता होगा या फिर गाने चलते ही रहते होंगे.
2: काफी टाइम से है, बहुत चल रहे.
0: अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए फिर आपकी पसंद का.
2: आपकी आवाज बहुत मधुर है मैडम, सुनने में मजा आता है, रेडियो सुनने में बहुत

0: बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया. अभी जो है हमें सुनने का मौका चाहिए, और आप जो है अपनी आवाज में सुनाइए एक प्यारा सा गीत.
1: हाँ बोले सुनो. बोलो.
0: जी जी
1: मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती. रंग लाल लाल बहादुर से इतनी ज्यादा मतलब
2: काफी अच्छा आपने कोशिश करी और काफी अच्छा गाते भी हैं आप, और आपने वापस देशभक्ति की जो है भावना हम सब में जगा दी.
0: बिल्कुल.
2: तो जैसा कि आप जानते हैं ये हमारा अंताक्षरी का जो है, इसमें आपको अगर सेकंड राउंड में जाना है तो आपको हम एक गाना देंगे और उसमें से एक शब्द देंगे और आपको उस शब्द पे गाना गाना है.
1: ओके मैडम. ओके
2: ठीक है, तो चलिए आप सुनिए ये गाना.
1: हाँ मैडम. Got a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little

0: हेलो
1: हेलो।
0: जी, आपका शब्द है
2: कसम
1: कसम कसम तेरी कसम। इतनी है मैडम।
2: कोई बात नहीं, चलिए। बहुत अच्छी कोशिश की आपने और अच्छा गाते भी हैं
1: मैडम
2: आप।
1: काफी सालों से आकाशवाणी में मैं बात करता हूँ। पहले वो
2: जी
1: बोलते थे, वो उसकी भी आवाज अच्छी लगती थी। काकू की आता, काकू आते थे।
2: जी जी जी जी क्या बात है। अच्छा, आप जो है काफी टाइम से हमसे जुड़े हुए हैं, तो आप जो है अपनी पसंद का एक गाना सुनाइए, एक और।
1: और सुनाओ। हाँ
2: जी
1: सुनाओ। ये
2: हाँ,
1: दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, तोड़ेंगे तुम मगर साथ न छोड़ेंगे। तेरी
2: क्या बात है, क्या बात है।
1: तेरी
2: बिल्कुल बिल्कुल, हम
1: से
2: आपका साथ बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे और ऐसे ही जो है आपको हमारी प्लेलिस्ट से खुश करते जाएंगे और हमारी ढेर सारी बातों से आपको खुश करते जाएंगे। ऐसे ही हंसते रहिए आप, हेल्दी रहिए आप, और ले चलते हैं आपको अगले ट्रैक की ओर।

0: दोस्तों, इसी के साथ हमारी आज की युवानी म्यूजिकल अंताक्षरी स्पेशल यही समाप्त होता है। और विनीता, जैसे कि जो अंताक्षरी होती है ना, वो उसका एक अलग ही मजा होता है। एक गाने से दूसरा गाना, एक याद से दूसरी याद, और इसी तरह संगीत हमें एक दूसरे से जोड़ता चला जाता है। हमें पूरी उम्मीद है कि आपने भी घर पर हमारे साथ गाने गुनगुनाए होंगे और इस म्यूजिकल सफर का पूरा लुफ्त उठाया होगा।
1: बिल्कुल, और अभी भी बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं हमसे बात करने के लिए, लेकिन जो समय है वो उसमें हम पाबंद है, हम नहीं ले सकते आपके कॉल। लेकिन नेक्स्ट ऐसी ही प्यारी सी शाम में हम फिर से जुड़ेंगे। महीने के पहले तीसरे और पांचवें मंगलवार को यूथ अंताक्षरी होता है, आप उस वक्त हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। आज दीजिए हमें इजाजत। हम दो रेडियो बडीज आपके साथ जुड़े हुए थे, मैं विनीता और मेरे साथ थी
0: मैं अदिति मौर्या। आज प्रस्तुति थी राजेश लामरोड़ द्वारा और संयोजन था मनीष सोलंकी का।
1: आज कंसोल पर हमारे साथ थे विनीता जैन। दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे हमारे सूर्य नगरी चैनल से युवाओं का कार्यक्रम युववाणी। ये आकाशवाणी जोधपुर का एफएम सन सिटी चैनल है। शाम के 6 बजे हैं, आइए अब सुनते हैं हिंदी में समाचार। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से इसे हम रिले करेंगे।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत ने 26 से अधिक देशों के साथ प्रवासन और आवागमन संबंधी 28 साझेदारी समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि अवैध प्रवासन, मानव तस्करी, धोखाधड़ी करने वाले बिचौलियों और शोषण जैसी चुनौतियों से निपटना सभी देशों की साझा जिम्मेदारी है। आज नई दिल्ली में मानव संसाधन आवागमन मंच को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि सुरक्षित और कानूनी प्रवासन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता ई माइग्रेट प्लेटफॉर्म से साफ दिखाई देती है। उन्होंने बताया कि इस मंच के शुरू होने के बाद से अब तक 50 लाख से अधिक आव्रजन मंजूरियां जारी की जा चुकी हैं। यूरो बैंक ने ग्रीस से भारत में धन भेजने के लिए यूपीआई सेवा शुरू की है। ये पहल यूरो बैंक और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के रणनीतिक सहयोग का हिस्सा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि मजबूत अर्थव्यवस्था से ही देश की रक्षा क्षमता मजबूत होती है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि रसायन, इलेक्ट्रॉनिकी, जहाज निर्माण और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में मजबूत आधार के कारण गुजरात जल्द ही रक्षा विनिर्माण का वैश्विक केंद्र बनेगा। वे आज वडोदरा में वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय

0: सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे। जनरल धीरज सेठ ने आज देश के 31वें सेना प्रमुख के रूप में पदभार संभाल लिया है। उन्होंने जनरल उपेंद्र द्विवेदी का स्थान लिया है। करीब 4 दशक की सैन्य सेवा के दौरान जनरल द्विवेदी ने परिचालन, रणनीति, क्षमता विकास और संस्थागत कार्यों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई हैं। जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना ने पिछले 2 वर्षों में हर मोर्चे पर अपनी तत्परता, संतुलन और सतर्कता को लगातार बनाए रखा है।
1: 4 दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवारजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ।
0: भारतीय तटरक्षक बल के जहाज सचेत ने कर्नाटक के मंगलुरु तट के पास समुद्र में खोज और बचाव अभियान चलाकर मछली पकड़ने वाली भारतीय नौका मंजू माता के 6 मछुआरों को बचाया है। तटरक्षक बल ने सोशल मीडिया पर बताया कि कल खराब मौसम के कारण नौका क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें पानी भरने लगा। इसके बाद रिमोट से संचालित लाइफ बॉय की मदद से सभी 6 मछुआरों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। दिल्ली और 4 राज्यों कर्नाटक, झारखंड, मेघालय तथा महाराष्ट्र में मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। घर घर जाकर मतदाताओं को मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करने का कार्य किया जा रहा है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत 13,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी 29 जुलाई तक घर घर जाकर सभी मौजूदा मतदाताओं को पूर्व मुद्रित गणना प्रपत्रों की 2 प्रतियां वितरित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में विद्यार्थियों से शिक्षा को न्यायसंगत और समावेशी समाज के निर्माण के साधन के रूप में उपयोग करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि शिक्षित युवाओं को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र में अफगानिस्तान के स्थायी मिशन ने पक्तिया, पक्तिका और कुनार प्रांतों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। मिशन ने पाकिस्तान से अफगान क्षेत्रों में सैन्य कार्रवाई तुरंत रोकने और अंतर्राष्ट्रीय कानून के कथित उल्लंघन के लिए जवाबदेही तय करने की मांग की है। तालिबान के उपप्रवक्ता हमदुल्ला फितरत के अनुसार 28 जून की रात को हुए इन हवाई हमलों में 36 लोगों की मौत हुई और 163 अन्य घायल हुए। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में आज आइवरी कोस्ट का सामना नॉर्वे से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 10:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं रात 2:30 बजे फ्रांस और स्वीडन आमने सामने होंगे। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में बहुत तेज वर्षा की चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी जोधपुर का FM सन सिटी चैनल है, FM बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। आइए अब सुनते हैं गुड इवनिंग जोधपुर।

सुहानी शाम की शुरुआत ढेर सारे प्यार और खुशियों के साथ। आप सबका स्वागत है गुड इवनिंग जोधपुर में। मैं स्नेह जुड़ चुकी हूँ आपके साथ। आ जाइए रेडियो सेट के करीब, ढलता दिन ठंडक देता, हाथ में गर्म चाय का प्याला और गुड इवनिंग जोधपुर का ये पहला प्यारा सा गीत आपकी नजर।

0: सारे कार्यक्रम बड़े अच्छे लगते हैं, बड़े ध्यान से हम लोग सुनते हैं,
1: सारा कुछ उसमें शामिल होता है।
2: ये जरूर लोग सुनना पसंद करते हैं,
3: वो बेहतरीन प्रोग्राम है।
2: संगीत तो संगीत होता है।
4: FM Sun City।

प्यारा सा गीत सुना आपने, चाहत के दो पल भी मिल जाएं दुनिया में ये भी कम है क्या। जी हाँ बिल्कुल, तकदीर में क्या लिखा आगे ये तो हम सब नहीं जानते, मगर हाँ तकदीर के आगे हम अपने अच्छे कर्म से तकदीर को बदल भी सकते हैं। मीठा बोलो, मिल के चलो, सबसे करो स्नेह, कितने दिन का जीवन है, कितने दिन की देह, सफर की हद है वहां तक के कुछ निशान कहें, चले चलो के जहां तक ये आसमान रहे।

0: पथरी प्रोस्टेट से पाना हो छुटकारा तो विनायका हॉस्पिटल ही अपनाना, जहां सुप्रसिद्ध यूरोलॉजिस्ट एवं गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर प्रदीप शर्मा द्वारा इसका निदान पाया जा सकता है।
1: RGHS चिरंजीवी योजना के अंतर्गत निःशुल्क ऑपरेशन। पथरी मतलब विनायका हॉस्पिटल, गीता भवन रोड, जोधपुर।
2: जिंदगी तभी खूबसूरत होती है जब जिंदगी को खूबसूरत बनाने वाला साथ हो। जी हाँ, हमारा और आपका साथ और ये प्यारी सी शाम। आइए सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

कितनी तन्हा हूँ मैं, कितना अकेलापन, ऐसे में कौन मेरे साथ रहे। मेरा मोबाइल और मेरे मोबाइल में मेरा फेवरेट रेडियो सन सिटी। कोई मिल गया हमेशा मेरे साथ, मेरा अपना चैनल रेडियो सन सिटी। सुनते रहिए 102.1 FM रेडियो सन सिटी। इट्स माय

जो बातें सुनता है, जो बातें करता है, जो अपने कहता है, जो अपनी सुनाता है, जो गाता है, गुनगुनाता है, आपका अपना FM Sun City।

दोस्तों, दिल से निकली बातें और दिल को छू लेने वाले नगमे, यही तो है हमारे इस खूबसूरत सफ़र की पहचान। तो बने रहिए, क्योंकि अभी जज्बातों का कारवां बाकी है। कहते हैं हर इंसान अपनी ज़िंदगी में ऐसी कहानी लेके चलता है जो किसी को भी बताई नहीं जाती। अक्सर उसकी आँखें, उसकी खामोशी और उसकी मुस्कान बहुत कुछ बयां करती है। तो आइए कुछ पल अपने लिए निकालते हैं, कुछ बातें दिल की करते हैं।

कुछ गीत सिर्फ सुने ही नहीं जाते, महसूस भी किए जाते हैं, और वो हमारे दिल की उन बातों को कह जाते हैं जिन्हें हम अक्सर कह नहीं पाते।

0: बच्चा सारा सुख एक तरफ, हर माँ बड़न रुसुख एक तरफ।
1: निसंतान दंपत्यारे जीवन में खुशियाँ री उम्मीद, विनायका हॉस्पिटल एंड IVF सेंटर, गीता भवन रोड, जोधपुर।
2: अपने खेत, बगीचे, घर, टेरेस या ऑफिस को बनाइए हरा भरा, पौधे उगाइए, पर्यावरण बचाइए।
3: आज ही पधारे लालजी नर्सरी, रानो जी का बाग, खोखरिया, बिरामंडो।
2: लालजी नर्सरी गूगल पर सर्च कीजिए।
4: लालजी नर्सरी, आप कुछ समय हरियाली में बिताओ।

बातें सुनता है, जो बातें करता है, जो अपनी कहता है, जो अपनी सुनाता है, जो गाता है, गुनगुनाता है, आपका अपना FM सुनते।

0: हेलो।
1: हेलो,
0: कौन बोल रहा है?
1: कौन बोल रहा है?
0: बेटे अपना नाम तो बताओ।
1: बेटे अपना नाम तो बताओ।
0: घर में कोई है?
1: घर में कोई है?
0: अरे कौन बोल रहा है तू?
1: अरे कौन बोल रहा है तू?
2: टोटल टाइम।

मीठी बोली और अपनायत का शहर जोधपुर और इसकी धड़कन गुड इवनिंग जोधपुर। प्यारे प्यारे गीतों के साथ मैं स्नेह आपके साथ। एक प्यारी सी बात कही गई है, अगर आप अभी हमसे मिले हैं तो आइए साथ चलिए, और अगर पहले से यहाँ हैं तो हम साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं। आइए सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

0: अरे FM सन सिटी ट्यून कर।
1: FM सन सिटी।

कभी कभी रुककर उन चीजों को भी थैंक यू कहना जरूरी है जो इतनी सहजता से हमारी जिंदगी का हिस्सा बनी हुई हैं कि हम उन्हें नोटिस करना ही भूल जाते हैं। आज आपका दिन किन छोटी छोटी चीजों की वजह से आसान बना सोचिएगा।

0: आकाशवाणी के खजाने में खूबसूरत हर जमाने के गीत, आकाशवाणी के प्रोग्राम पेश करने वालों की बेमिसाल आवाजें।
1: नमस्कार।
2: दिल ये चाहे हवाओं से खेलो,
1: अपना शहर अपनी शान,
3: मेरा फेवरेट।

0: सन सिटी
1: जो बातें सुनता है जो बातें करता है
0: FM सन सिटी
2: जोधपुर FM हार्ट बीट ऑफ जोधपुर नए अंदाज में
3: जो दिन भर घर घर में गूंजती है
4: ट्यून कीजिए FM

0: शालीनता है जिसकी शान,
1: यहाँ पे सब शांति शांति है।
0: सौम्यता है इसकी पहचान,
1: ये शहर है अमन का, यहाँ की फिजा है निराली।
0: FM सन सिटी, सन सिटी, सन सिटी।

एफएम सन सिटी चैनल में स्वागत आप सभी का एक बार फिर। कहते हैं ना कि रिश्ता सिर्फ साथ निभाने के लिए ही नहीं होता, बल्कि एक दूसरे को निखारने के लिए भी होता है। आगे बढ़ने के लिए हौसला देना, बेहतर इंसान बनने में साथ देना, एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करना, यही तो है असली प्यार। खुशियों की गुल्लक में जमा की गई हर मुस्कुराहट मुश्किल समय में हिम्मत रखने का हौसला देती है।

0: सारे कार्यक्रम बड़े अच्छे लगते हैं, बड़े ध्यान से हम लोग सुनते हैं,
1: सारा कुछ उसमें शामिल होता है।
2: ये जरूर लोग सुनना पसंद करते हैं,
3: वो बेहतरीन प्रोग्राम है।
2: संगीत तो संगीत होता
4: है। FM Sun City।

कभी कभी खुशी सिर्फ एक गर्म चाय का कप, रेडियो पे आपकी पसंद का गाना, किताब के पन्नों की खुशबू और एक प्यारी सी शाम।

जहाँ रिश्ता मजबूत होगा वहाँ बिन बोले महसूस होगा। जी हाँ, जैसे मेरा और आपका रिश्ता रेडियो सेट से जुड़ा हुआ प्यारे प्यारे गीतों के साथ।

गुड इवनिंग जोधपुर में आज का सफर बस इतना ही प्यारे प्यारे गीतों के साथ नमस्ते स्नेह का फिर होगी मुलाकात अच्छे रहिए खुश रहिए मस्त रहिए

अभी आप सुन रहे थे गुड इवनिंग जोधपुर, ये आकाशवाणी जोधपुर का FM सन सिटी चैनल है। शाम के 7 बजे हैं, आइए अब सुनते हैं राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के विविध भारती केंद्र से जय माला।

जय माला कार्यक्रम सुनने वाले सभी साथियों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। पहला गीत मोहम्मद अजीज, कविता कृष्णमूर्ति और साथियों की आवाजों में है। गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और फिल्म का नाम है कर्मा।

0: लीजिए सुनिए भारतीय सेना गीत, गीतकार संगीतकार और गायक कलाकार हैं कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: सेना।
1: अभी आप सुन रहे थे भारतीय सेना गीत। गीतकार, संगीतकार और गायक कलाकार थे कैलाश खेर।
2: एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम।

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

इल्जाम इस फिल्म का गीत सुनिए आशा भोसले और अमित कुमार की आवाजों में। गीतकार हैं अनजान, संगीत है बप्पी लहरी का।

जवानी इस फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं आशा भोसले और अमित कुमार की आवाजों में। गीतकार हैं गुलशन बावरा, संगीतकार हैं राहुल देवबर्मन।

साथियों, जयमाला कार्यक्रम में अब वक्त है एक छोटे से अंतराल पर जाने का। बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए विविध भारती।

अंतराल के बाद एक बार फिर से जय माला कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम का अगला गीत है किशोर कुमार की आवाज में, नगमा निगार है मजरू सुल्तानपुरी, संगीत है राहुल देवबर्मन का, फिल्म का नाम है बुढ़ा मिल गया।

0: उनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो

0: आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: हर जाई इस फिल्म का गीत सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में। नगमा निगार है निदा फाजली, धुन है राहुल देव बर्मन की।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: साथियों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जयमाला।

ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम इंद्रधनुष के अंतर्गत आज पॉप एक्सप्रेस में सुनिए कुछ पॉप गीत। आइए सुनते हैं के और महालक्ष्मी की आवाजों में विशाल ददलानी का लिखा गीत। संगीत है विशाल शेखर का, फिल्म का नाम है पॉपकॉर्न खाओ।

जीवन की चाबी है। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे इंद्रधनुष के अंतर्गत पॉप एक्सप्रेस में कुछ पॉप गीत।

0: आज के हवा महल में सुनवा रहे हैं नाटिका उनके महबूब। लेखिका हैं विमला रैना, निर्देशक लोचन बख्शी।
1: मंजू, ओ मंजू, अरे मंजू कहाँ हो भाई, जल्दी आओ।
2: क्या है शील, बस जब आती है तो आंधी की तरह आती है और तूफान की तरह चली जाती है।
1: आखिर ऐसी क्या बात हुई जो आज तेरी आंखों में बिजलियाँ कौंध रही है?
2: अरे बिजली बिजली कहाँ कौंधी, मैं क्या जानू रे, जानू तो जानू बस इतना कि बहुत मजा आया।
1: तू इतना ही जान कर रुक जा, नहीं तो
2: नहीं तो
1: नहीं तो मजे में दर्द भर जाएगा। अब तेरी शादी हो जाएगी।
2: शादी वादी बच्चे बच्चे मैं क्या जानू रे, जानू तो जानू बस इतना कि लाइफ इज वंडरफुल फॉर मी।
1: बात सुनो, तुम्हारी तो शादी हो चुकी है लेकिन मैं तो अभी इंडिपेंडेंट हूँ। तुम दोनों को बारी बारी एक दूसरे का हुक्म मानना पड़ता है, पर मुझ पर कोई हुक्म नहीं चला सकता।
2: हाँ मेरा हुक्म मेरा राजा जरूर मानता है।
1: राजा? कौन राजा?
2: है एक राजा। हाय काश तुम भी चलती मेरे साथ टेनिस मैच में, इतना मजा आया कि।
1: मैं तो चाहती हूँ तू अब जल्दी से जल्दी अपना मैच बना ले। कितने रिश्ते आए पर तू अभी अकेली ही घूमती है। मैं पूछती हूँ आखिर तुझे कैसा लड़का चाहिए?
2: लड़का कैसा लड़का? जैसा मेरा राजा है।
1: अरे रे रे, ये किस राजा महाराजा के सपने देख रही है तू?
2: अपने राजा के। ओ मंजू हाउ ही लव्स मी।
1: कौन? हु लव्स यू? कौन है, कहाँ से आया, क्यों आया, क्या करता है, किसका बोटा है, किसका पोता है?
2: ओफो, तुम्हारे सवालों की तो बढ़ बढ़ती ही जा रही है, मेरे दिमाग में फ्लड आ गया। तो पहले किस बात का जवाब दूं? मुझे बताओ नहीं तो डूब जाऊंगी।
1: ओहो, उसके खानदान का भी कुछ पता है?
2: अरे मंजू जी जी, उसका खानदान पानदान तीखदान सबका पता है। मेरा राजा ऐसा वैसा नहीं है, भगवान कसम वो तो अकेला कमरे में दरवाजे पर टकटकी लगाए मेरे इंतजार में बैठा होगा।
1: टकटकी लगाए? उसे अपने साथ नहीं ले गई थी? किसका मैच देखने गई थी?
2: दीपक का। बहुत अच्छा खेला, वो यूनिवर्सिटी का चैंपियन बन गया है।
1: दीपक? कौन दीपक?

0: कौन सा दीपक है, किसका दीपक है, ये मैं क्या जानू। वहाँ सब बकअप दीपक, वेल डन दीपक, लवली शॉट दीपक कह रहे थे, तो मैं जान गई उसका नाम दीपक है। बस
1: सुन, कहीं हमारा दीपक तो नहीं है?
0: ये तो मैं नहीं जानती कि वो किसका दीपक है,
1: पर आपका घर रोशन करते कभी नहीं देखा उसे?
0: नहीं देखा तो क्या हुआ।
1: सुन, वो कुछ गोरा गोरा सा, कुछ लंबा सा, हंसोड़ सा था।
0: अब मैंने गोरा वोरा लंबा उम्बा हंसोड़ सोड़ की बात तो ठीक से देखी नहीं, पर हाँ टेनिस बहुत अच्छा खेलता है।
1: तो क्या आंखें बंद करके टेनिस मैच देख रही
0: थी? नहीं, आंखें तो खुली थी पर उसके खेल पर लगी थी।
1: अभी याद करती हूँ,
0: हाँ कुछ गोरा गोरा लंबा सा ही है, पर आपके घर तो शायद मैंने कभी नहीं देखा उसे।
1: तुझे मेरे पास आए अभी कौन ज्यादा दिन हुए हैं, और फिर तुझे अपने राजा से फुर्सत कहाँ है, आता है तीज त्योहार पर।
0: अच्छा, मुझे क्या मालूम, जहाँ भी जाऊँ दिखते तो रहते हैं पर ठीक से कभी बात नहीं हुई, नहीं तो ये तो पता चल ही जाता कि वो आपके दीपक हैं। अच्छा मंजू, राजा बेचारा इंतजार करता होगा, बाय बाय।
1: कर दिया।
2: भाभी भाभी भाभी, वो मतलब भाभी,
1: हाँ।
2: वो आपकी बहन है ना?
1: हाँ।
2: उससे मिलना चाहता हूँ।
1: क्यों, टेनिस चैंपियन हो गया है इसलिए?
2: अरे तुम्हें कैसे मालूम भाभी?
1: अरे वही बता रही थी, तुम्हारे खेल की बहुत तारीफ कर रही थी।
2: कौन? वो मेरे खेल की तारीफ?
1: हाँ हाँ, कह रही थी दीपक बहुत अच्छा खेला।
2: वो मेरा नाम जानती है?
1: क्या तुम उसका नाम नहीं जानते?
2: नहीं, मतलब हाँ, मतलब मैं उनका नाम जानता हूँ। दरअसल मंजू भाभी, बात यह है भाभी कि मैं उनके करीब से जब भी गुजरा बहुत चाह कि एक बार शील जी कहकर उन्हें पुकारूं, पर जाने क्या हो जाता है भाभी, मुंह से आवाज ही नहीं निकलती, जुबान को जैसे लकवा मार जाता है। और फिर भाभी, अगर सबके सामने वो मेरी तरफ अजनबी निगाहों से देखकर मुंह मोड़ लेती है तो मेरा कलेजा फ्लैट हो जाता है। और भाभी, फिर पता चला वो तुम्हारे पास रहने लगी है तो
1: के बच्चे, तो तुझे भाभी की याद आई, चल कुछ कहेगा भी?
2: जरूर कहूंगा।
1: तो कहना।
2: कहूं क्या तू भाभी? भाभी असल में बात यह है भाभी, भाभी मैं उनसे
1: हाँ?
2: शादी करना चाहता हूँ। कह दिया,
1: हाँ, कह दिया भाभी, कह दिया। अब जब अपने राजा के गुनगाया करती है।
2: राजा के? कहाँ के राजा के?
1: अब ये तो तुम उसी से पूछो, और अगर पूछने की हिम्मत ना हो तो दुम दबा के चले जाओ। डरपोक कहीं के, कब से मैंने सोच रखा था कि एक दिन शील और दीपक की सगाई करवाऊंगी, मगर वो निर्लज्ज शील चाचा ने कहा से एक राजा नाम की लड़की को पकड़ लाई है और उसे अपने ही पास ठहराया हुआ है। निर्लज्ज कहीं की, छोड़ इसका ख्याल।
2: भाभी ये सब तुम किसके लिए कह रही हो? भाभी वो तो देवी है, देवी, कभी उसे किसी लड़के से हंसी मजाक करते हुए नहीं देखा, इतने कोमल गंभीरता, इतने आत्म गौरव से आती जाती है, तभी तो मेरी हिम्मत नहीं पड़ी बात करने
1: की। अब मैं क्या करूं, जिसकी हिम्मत पड़ी वो आ गया, अब शील से मिलकर कौन सी पहलवानी दिखाओगे?
2: पर भाभी ये राजा है कौन, कब से उसके साथ रहता है?
1: मैं क्या जानू कौन राजा है निगोड़ा, ये बात तो अभी मालूम हुई जब वो तुम्हारा टेनिस मैच देख के लौटी।
2: ओ भाभी, शील जी मुझसे कभी नहीं बोली तो क्या, बरसों साथ एक ही कॉलेज में पढ़ी है, एक बार तुम मुझे मिलवा दो, प्लीज भाभी एक बार मिलवा दो मुझे, मैं अकेले में कुछ बातें कर लूं। भाभी आखिर मैं इंसान हूँ, कोई उल्लू तो नहीं हूँ, उन्हें मालूम तो हो जाए कि मैं भी उन्हें चाहता हूँ, फिर देखूं उनका राजा मेरे सामने कैसा लगता है।
1: अच्छा सुन दीपक, मुझे ख्याल आया।
2: क्या?
1: मैं शील को बुलाती हूँ, और सुन उसे शेर शायरी का बहुत शौक है, जब वो आए तो तू उसे बेखबर सा बनकर कोई गजल वजल सुना लेगा।
2: तुम फिक्र ना करो भाभी, एक से एक बढ़िया शेर मुझे याद है, देखो तो सही उनका राजा मेरे आगे कैसे ठहरता है। भाभी ये राजा का नाम सुनकर तो मुझ में बजरंग बली का बल आ गया है, पर भाभी शील जी से मिलने से पहले मुझे एक झलक उनके महबूब की दिखा तो दो, आखिर मुझे मालूम तो हो जाए मुझे मुकाबला किससे करना है।
1: उस दरवाजे के पीछे शील का कमरा है। अरे उधर कहाँ जा रहा है? इधर आ। देख मैं नौकर को भेजकर उसे अभी बुलवाती हूँ।
2: अच्छा,
1: तू शेर शायरी का ध्यान रखना। अरे नंदू, ओ नंदू, जा शील से कह मैंने बुलाया है, जरूरी काम है, जल्दी आए। अच्छा सुन, इधर आ, उधर पीठ कर ऐसे खड़े होकर कोई फड़कती हुई गजल गुनगुनाना शुरू कर दे।
2: अच्छा।
1: जैसे तुझे मालूम ही नहीं कि वो आ रही है। मैं तो छुपे जाती
2: हूँ। तू छुपा भाभी।

0: क्या हुआ?
1: शॉक लग गया बिजली का।
0: माफ करिएगा, मुझे नहीं मालूम था कि आप आ रही हैं।
1: वरना आप मेन स्विच शायद ऑफ कर देते।
0: जी
1: नहीं तो कयामत आ जाती।
0: जी जी मैं आपका मतलब समझा नहीं शील जी।
1: शील सुन तो, ये वही हमारा दीपक है कि वो कोई दूसरा दीपक था? मैं क्या जानू, पर हाँ शायद यही थे। ये मेरी बहन शील है दीपक।
0: जी जानता हूँ। हाँ? जी, जी, जी मतलब ये जानता तो नहीं था पर भाभी अब जान गया।
1: मैं अभी कॉफी को कहा।
0: हाँ भाभी तुम कॉफी लेने जाओ। मंजू भाभी से सुना आपको टेनिस मैच बहुत पसंद आया।
1: जी
0: हजार हजार धन्यवाद शील जी।
1: हजार हजार किस बात के?
0: अरे हजार हजार बातों के।
1: पर मैंने तो आपसे पहले कभी बात नहीं की।
0: ओ शील जी पर मैंने तो आपसे हजारों बातें की हैं, बहुत ख्वाब देखे हैं जिनमें आप शरीक थी।
1: ओ
0: न जाने क्या क्या कहा मैंने, न जाने आपने मुझसे क्या क्या कहा, हजारों बातें।
1: हो सकता है पर ख्वाबों का क्या?
0: एक शेर कहा है सुना दूं?
1: जरूर।
0: हमें गिला न होता हकीकत से, ख्वाबों का अगर जरिया होता वो सामने होते साहिल पर, जज्बातों का मैं दरिया होता कभी मेरी तमन्ना भी सज कर।

0: ओहो तो
1: वाह वाह
0: पसंद आया?
1: आह क्या शेर है जी, बहुत अच्छा।
0: आपको मेरा खेल पसंद आया, मेरे शेर पसंद आए, बस मैं ही पसंद नहीं आया। सुना है कोई राजा साहब है जिन पर आपकी बड़ी इनायत है, क्या ये सच है शील जी?
1: जी जी हाँ सच तो है।
0: सच है तो क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ?
1: उनसे मिलकर क्या करेंगे, आप तो शायद मुझसे मिलना चाहते
0: हैं। शील जी प्लीज मजाक मत करिए, असल में बात यह है कि मैं आपसे।
1: जी जी जी क्या?
0: देखिए शील जी, अगर आप बीच में यूं ही टोकते रहें तो मैं आपसे जो आज कहने का फैसला करके आया हूँ कह ना पाऊंगा। मुझे यूं ही ये बात कहने की हिम्मत बटोरने में इतने दिन लग गए, साय के समान आपका पीछा करता रहा पर आपसे बोल न सका। अब आप प्लीज उधर को मुंह कर लीजिए ना, जिससे मैं एक बार आपसे कहकर अपना जी तो हल्का कर लूं।
1: जी बहुत भारी है क्या?
0: शील जी प्लीज, शील जी प्लीज आप उधर देखिए ना। खैर कोई बात नहीं, आप नहीं देखती तो मैं ही इधर देख लेता हूँ और कहता हूँ शील जी मैं मतलब आई मतलब मैं मतलब आई लव यू।
1: लेकिन क्यों
0: क्यों क्यों क्या राजा आपको क्यों लव करता है जी?
1: पता नहीं
0: तो आप उसे क्यों लव करती है जी?
1: क्योंकि वो मुझे बहुत लव करता है।
0: तो मैं भी तो आपको बहुत बहुत मतलब वेरी वेरी मच लव करता हूँ।
1: वो बहुत बहादुर है।
0: आपको मेरी बहादुरी पे शक है क्या?
1: पर वो बहुत वफादार बहुत लॉयल है।
0: और मैं वफादार नहीं, मेरी लॉयल्टी पे शक है आपको, तो इम्तहान ले लीजिए, अपने राजा से एक बार मिलवा तो दीजिए, जरा मैं भी तो देखूं मैं उससे किस बात में कम हूँ।
1: वो मेरा हर हुक्म मानता है।
0: आप मुझे भी कोई हुक्म देकर देखिए।
1: देखो
0: देखिए।
1: अच्छा देखूंगी।
0: शील जी आपके महबूब आपके कमरे में है क्या, मैं उनसे मिलने जा सकता हूँ?
1: शौक से जाइए, मगर जरा संभल के जाइएगा, बड़े बड़े पहलवान भी उनसे डरते हैं।
0: हाँ, फिकर न करिए शील जी, वो कट लगाऊंगा कि मेरी गेंद उठाए ना उठेगी। और फिर शील जी अगर मैं मर भी जाऊँ तो क्या, कम से कम आपको मेरी बहादुरी का यकीन तो आ जाएगा।
1: तो जाइए, कमरा खुला है।
0: कमरा खुला है लेकिन लेकिन आप साथ नहीं चलेंगी क्या?
1: हाय राम, आपको मेरे साथ उसने देख लिया तो आपकी जान पर बन आएगी। वो बहुत जेलस है। अच्छा। वैसे मेरी जरूरत पड़ी तो आ जाऊंगी।
0: कोई बात नहीं बहुत अच्छा, तो मैं ही जाता हूँ। आपके कमरे में जाने की इजाजत तो है ना?
1: मेरे कमरे में जाने की इजाजत तो राजा ही दे सकता है।
0: ये बात है तो हो जाए आज फैसला।
2: मेरी महबूबा के महबूब ने ललकारा है,

0: जिंदगी न मारा है अरे शील जी मैं जाता हूँ।
1: जाइए
0: माय गॉड ये राजा इनका महबूब सच में शील जी ये कुत्ता तो बहुत हैंडसम है बहुत ही हैंडसम मुझसे भी ज्यादा बहुत बहादुर है बहुत वफादार है। शील जी आपने एक काम बड़ा अच्छा किया जो इसे चेन में बांध रखा था नहीं तो ये तो सचमुच मेरे भाई
1: राजा राजा बी क्वाइट चुप हो जा मेरे राजा। हाँ तो आपने देख लिया मेरे राजा को
0: देख तो आया आपके राजा को पर शील जी मतलब आप मतलब समझ गई ना
1: समझ तो गई पर आप मेरे राजा को मुझसे अलग तो नहीं कर
0: कभी नहीं कभी नहीं तुम मेरी महबूबा हो वो तुम्हारा महबूब सही खुशी महबूबा की अपनी खुशी बना दूंगा उनके महबूब के यानी कुत्ते के कदमों पे सर झुका
2: उनके महबूब। अभी आपने विमला रैना की लिखी ये नाटिका सुनी। निर्देशक थे लोचन बख्शी। आकाशवाणी दिल्ली की इस प्रस्तुति के साथ ही आज का हवा महल कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

विविध भारती से प्रस्तुत है नए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रलोक। सभी सुनने वालों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार। लीजिए सुनिए सलमान खान श्रेया घोषाल की आवाजों में उस गीत को जिसे लिखा है कुमार ने। संगीत है मीत ब्रदर्स अनजान का और फिल्म का नाम है किक।

0: बिलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
0: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को

चित्रलोक कार्यक्रम की अगली पेशकश आपको सुनवाते हैं मोहित चौहान, तरन्नुम मलिक और साथियों की आवाजों में। नगमा निगार है कौसर मुनीर, संगीत है सोहिल सेन का और फिल्म का नाम है एक था टाइगर।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूलें कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: चित्रलोक कार्यक्रम में अब हम लेंगे एक छोटा सा अंतराल। बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। साथियों, आइए सुने शान और श्रेया घोषाल की आवाजों में स्वानंद किरकिरे का लिखा गीत। संगीत है शांतनु मोइत्रा का, फिल्म का नाम है पीके।

कार्यक्रम में आइए सुनिए अगला गीत अरिजीत सिंह की आवाज में। गीत है AM तुरास का, संगीत है संजय लीला भंसाली का, फिल्म का नाम है पद्मावत। नाम एक बार फिर सुनिए, इस गीत को लिखा है AM तुरास ने।

साथियों, चित्रलोक कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश आपको सुनवाते हैं सिद्धार्थ महादेवन और शिल्पा राव की आवाजों में। गीत को लिखा है समीर अंजान ने और फिल्म का नाम है धूम 3।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: साथियों, इसके साथ ही कार्यक्रम चित्रलोक अब समाप्त होता है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 कल से लागू होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, विद्यार्थियों को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए। रेलवे ने संचार और परिचालन प्रणाली में सुधार के लिए 1100 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी। गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिक सेवाओं में सुधार के लिए विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2.0 पोर्टल और इलेक्ट्रॉनिक प्रवासी भारतीय नागरिक कार्ड का शुभारंभ किया। दिल्ली, झारखंड, मेघालय, कर्नाटक और महाराष्ट्र में मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया शुरू। मॉनसून के अगले 2 से 3 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब की ओर बढ़ने की संभावना। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात टेक्सस में आइवरी कोस्ट का मुकाबला नॉर्वे से। अब समाचार विस्तार से। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी अधिनियम 2025 कल से पूरे ग्रामीण भारत में लागू हो जाएगा। इसके राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन की पूर्व संध्या पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोई भी पात्र ग्रामीण श्रमिक एक दिन भी बेरोजगार नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध करा दिए गए हैं, कार्यान्वयन प्रणालियां पूरी तरह से तैयार हैं और चल रहे कार्य बिना किसी रुकावट के जारी रहेंगे। श्री चौहान ने कहा कि 125 दिनों के वेतन भोगी रोजगार की बढ़ी हुई गारंटी से ग्रामीण आजीविका मजबूत होगी। ये अधिनियम प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार के लिए वैधानिक वेतन भोगी रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विद्यार्थियों से शिक्षा के माध्यम से समान और समावेशी समाज के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया है। वे आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थी। राष्ट्रपति ने कहा कि विद्यार्थियों को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए। उन्होंने
1: जनजातीय विश्वविद्यालय से विशेष रूप से ये अपेक्षा भी की जाती है कि वे जनजातीय भाषा बोलियां के संरक्षण पर मिशन मोड में काम करेंगे। मुझे

0: बताया गया है कि संस्था के ट्राइबल स्टडीज विभाग द्वारा कुई और सांवरा समेत अनेक जनजातीय बोलियों के डॉक्यूमेंटेशन को लेकर के इसी प्रकार से जमीनी कार्य किया जा रहा है।
1: भारतीय रेलवे ने संचार और परिचालन प्रणाली में सुधार के लिए 1100 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। रेलवे ने दक्षिण पूर्वी रेलवे में लगभग 200

0: पूर्वी रेलवे में लगभग 200 करोड़ रुपए की लागत से शेष 48 फाइबर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने की मंजूरी दी है। इससे देश में रेलवे नेटवर्क की डिजिटल संचार व्यवस्था मजबूत होगी। ये परियोजना दक्षिण पूर्वी रेलवे के चार प्रमुख डिवीजनों में 1600 किलोमीटर से अधिक मार्ग पर फाइबर ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। पूर्वी रेलवे के आसनसोल डिवीजन के हाई डेंसिटी नेटवर्क और हाईली यूटिलाइज्ड नेटवर्क मार्गों पर स्थित 27 स्टेशनों या डिब्बों में रिले आधारित इंटरलॉकिंग को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग से बदलने की परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। स्वीकृत कार्य में 28 रिले आधारित इंटरलॉकिंग को अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रणालियों से बदला जाएगा। परियोजना की लागत 400 करोड़ रुपए से अधिक है। इसके अलावा रेलवे ने करीब 500 करोड़ रुपए की लागत से पूर्वी मध्य रेलवे के 44 किलोमीटर से अधिक लंबे मानसी सहरसा खंड के दोहरीकरण को भी स्वीकृति दी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम FCRA 2.0 पोर्टल और इलेक्ट्रॉनिक प्रवासी भारतीय नागरिक यानी EOCI कार्ड सेवा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इन दोनों पहलों से नागरिक सेवाएं बेहतर होंगी और FCRA पोर्टल के माध्यम से विदेशी चंदा प्राप्त करने वाली संस्थाओं को होने वाली कठिनाइयां दूर होंगी। उन्होंने कहा कि सख्त निगरानी व्यवस्था से देश की सुरक्षा और मजबूत होती है। गृह मंत्री ने बताया कि नई EOCI व्यवस्था में पहले की कई समस्याओं का समाधान किया गया है। इससे 50 लाख से अधिक OCI कार्ड धारकों को सुविधा मिलेगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत ने 26 से अधिक देशों के साथ प्रवासन और आवागमन संबंधी 28 साझेदारी समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि अवैध प्रवासन, मानव तस्करी, धोखाधड़ी करने वाले बिचौलियों और शोषण जैसी चुनौतियों से निपटना सभी देशों की साझा जिम्मेदारी है। वे आज नई दिल्ली में मानव संसाधन आवागमन मंच को संबोधित कर रहे थे। विदेश मंत्री ने कहा कि सुरक्षित और कानूनी प्रवासन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता e-migrate platform से साफ दिखाई देती है।
1: One key pillar which has brought about a transformation
2: प्रवासन से जुड़े प्रबंधन में बहुत बड़ा बदलाव डिजिटल व्यवस्था और प्रणालियों से आया है। सुरक्षित और कानूनी आवाजाही के प्रति भारत की प्रतिबद्धता e-migrate platform में दिखती है। इसकी शुरुआत के बाद से ही 50 लाख से ज्यादा लोगों को विदेश जाने की मंजूरी दी जा चुकी है। यह डिजिटल तंत्र लोगों की आवाजाही को आसान बनाने के साथ साथ प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने का एक वैश्विक उदाहरण बन गया है।
0: विदेश मंत्री ने आज आयरलैंड की विदेश मंत्री हेलेन मैकेंटे को यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभालने पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि उन्होंने व्यापार और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने पर भी चर्चा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि मजबूत अर्थव्यवस्था से ही देश की रक्षा क्षमता मजबूत होती है। वे आज गुजरात के वडोदरा में वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे। रक्षा मंत्री ने कहा कि रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है।
3: 2014 में हमारा डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन अप्रोक्सीमेटली 46,000 करोड़ था, लेकिन आज हमारा डिफेंस प्रोडक्शन बढ़कर 1,78,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। इसके अलावा भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट अप्रोक्सीमेटली 39,000 करोड़ का कर लिया है और आत्मनिर्भरता के इस लक्ष्य को प्राप्त करने में गुजरात अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकता है।
0: रक्षा मंत्री ने कहा कि वडोदरा अब देश की निजी क्षेत्र की पहली सैन्य विमान निर्माण इकाई का केंद्र बन गया है। ये टाटा समूह और एयरबस मिलकर C-295 परिवहन विमान बना रहे हैं। जनरल धीरज सेठ ने आज देश के 31वें सेना प्रमुख के रूप में पदभार संभाल लिया है। उन्होंने जनरल उपेंद्र द्विवेदी का स्थान लिया है। जनरल धीरज सेठ पुणे स्थित खड़कवासला की राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र हैं। उन्हें दिसंबर 1986 में बख्तरबंद कोर में कमीशन मिला था। इससे पहले जनरल द्विवेदी ने कहा कि भारतीय सेना ने पिछले 2 वर्षों में हर मोर्चे पर अपनी तत्परता, संतुलन और सतर्कता को लगातार बनाए रखा है।
4: 4 दशक से अधिक समय भारतीय सेना में सेवारत रहना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है। भारतीय सेना किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि अपने सैनिकों, कमांडरों, पूर्व सैनिकों, परिवार

0: परिजनों और देशवासियों के अटूट विश्वास से शक्ति प्राप्त करती। सर्वप्रथम मैं भारतीय सेना के हर सैनिक शामिल वीर गति प्राप्त बलिदानियों को नमन करता हूँ।
1: दिल्ली और चार राज्यों कर्नाटक, झारखंड, मेघालय तथा महाराष्ट्र में मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत दिल्ली में 13,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी 29 जुलाई तक घर घर जाकर सभी मौजूदा मतदाताओं को पूर्व मुद्रित गणना प्रपत्रों की 2 प्रतियां वितरित करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पहले दिन 1,68,200 से अधिक गणना प्रपत्र मतदाताओं को वितरित किए गए। वहीं 7,600 से अधिक गणना प्रपत्रों का डिजिटलीकरण किया गया। दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दाखिल की जा सकेंगी। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। मतदाता अपना गणना प्रपत्र ऑनलाइन भी voters.eci.gov.in पर भर सकते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज अपना गणना प्रपत्र जमा किया और राष्ट्रीय राजधानी के सभी पात्र मतदाताओं से मतदाता सूची के चल रहे इस अभियान में भाग लेने की अपील की। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उधर महाराष्ट्र में भी बूथ स्तरीय अधिकारियों ने घर घर जाकर मतदाता रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए सत्यापन अभियान शुरू किया है।
3: ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 5 अगस्त को जारी की जाएगी, जबकि अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। जिन वोटरों का नाम पिछली SIR की मतदाता सूची में शामिल था, उन्हें आम तौर पर कोई नया दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होगी। बाकी वोटरों को निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित 12 दस्तावेजों में से कोई एक जमा करना पड़ सकता है। आयोग का कहना है कि इस अभियान का मकसद ये सुनिश्चित करना है कि जिसका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए उसका नाम जरूर शामिल हो और जो इसके लिए योग्य नहीं है उसका नाम सूची में ना हो। देवप्रिय भट्टाचार्य, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: उत्तराखंड में मदरसा शिक्षा व्यवस्था में कल से बड़ा बदलाव लागू होगा। नई व्यवस्था के तहत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। अब राज्य के सभी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान नए ढांचे के तहत संचालित होंगे। नई व्यवस्था के तहत उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को मान्यता देने, उनकी कार्य प्रणाली की निगरानी करने और शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का काम करेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों से बातचीत की। चर्चा 2 प्रमुख विषयों पर केंद्रित रही। पहला विषय था व्यापार और जीवन यापन में सुगमता के लिए विनियमन में ढील और अन्य सुधार, जबकि दूसरा विषय था आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने समग्र सरकारी दृष्टिकोण अपनाने और विभागीय अलगाव को तोड़ने के महत्व पर बल दिया। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने जन्मजात नागरिकता को समाप्त करने के उद्देश्य से जारी किए गए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकारी आदेश को रद्द कर दिया है और इस बात की पुष्टि की है कि अमेरिका में जन्म लेने वाले लगभग हर व्यक्ति को स्वतः ही अमेरिकी नागरिकता प्राप्त हो जाती है। न्यायालय ने 6-3 के बहुमत से कार्यकारी आदेश को गैर कानूनी घोषित किया। पश्चिम एशिया संघर्ष को देखते हुए सरकार ने महत्वपूर्ण पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर सीमा शुल्क में पूर्ण छूट 15 जुलाई 2026 तक बढ़ा दी है। इससे पहले वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में उत्पन्न व्यवधानों के कारण अस्थायी और लक्षित राहत के रूप में केंद्र ने आज तक पूर्ण सीमा शुल्क में छूट प्रदान की थी। संयुक्त राष्ट्र में अफगानिस्तान के स्थायी मिशन ने पक्तिया, पक्तिका और कुनार प्रांतों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। मिशन ने कहा है कि इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित कई अफगान नागरिक मारे गए और घायल हुए। वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा व्यवस्था और 55,000 तीर्थयात्रियों के ठहरने के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष उपराज्यपाल मनोज सिन्हा पहले जत्थे को रवाना करेंगे। 3,880 मीटर की ऊंचाई पर स्थित अमरनाथ गुफा की 57 दिनों की तीर्थयात्रा की शुरुआत 3 जुलाई से होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हूल दिवस पर सिधो कान्हू, चंद भैरव, फूलो झानो सहित विदेशी शासन के अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने वाले सभी वीर आदिवासी योद्धाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की है। हूल दिवस के अवसर पर झारखंड में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। दक्षिण पश्चिम मॉनसून के अगले 2-3 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में आगे बढ़ने की संभावना है। इस दौरान उत्तरी अरब सागर

0: गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, दमनदीव तथा राजस्थान में भी मॉनसून के आगे बढ़ने की संभावना है। बृहस्पतिवार तक बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, मध्य प्रदेश, केरल, माहे, कोंकण, गोवा, ओडिशा में मूसलाधार बारिश की आशंका है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में आज आइवरी कोस्ट का सामना नॉर्वे से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 10:30 बजे से अमेरिका के टेक्सस में खेला जाएगा। वहीं देर रात 2:30 बजे फ्रांस और स्वीडन आमने सामने होंगे। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कल से जयपुर में आयोजित किया जाएगा। 2 दिन तक चलने वाला ये सम्मेलन राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यापार और जीवन यापन में सुगमता के लिए विनियमन पर सचिवों से बातचीत की। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 कल से लागू होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, विद्यार्थियों को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए। रेलवे ने संचार और परिचालन प्रणाली में सुधार के लिए 1100 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी। गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिक सेवाओं में सुधार के लिए विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2.0 पोर्टल और इलेक्ट्रॉनिक प्रवासी भारतीय नागरिक कार्ड का शुभारंभ किया। दिल्ली, झारखंड, मेघालय, कर्नाटक और महाराष्ट्र में मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया शुरू। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम आपके लिए मैं सभी सुनने वालों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, कार्यक्रम का पहला गीत हम लाए हैं आपके लिए मोहम्मद रफी की आवाज में। गीतकार हैं शैलेंद्र, संगीत है शंकर जय किशन का, फिल्म का नाम है राजकुमार।

आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में अगला गीत। गीत है नीरज का, संगीत सचिन देव बर्मन का, फिल्म का नाम है गैम्बलर।

0: ताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
1: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
0: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है।
1: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
0: हम लोग बम्बई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
1: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत है लता मंगेशकर की आवाज में। गीत के बोल हैं आनंद बख्शी के, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। फिल्म का नाम है आन मिलो सजना।

आइए सुनते हैं आशा भोसले की आवाज में वो नगमा जिसे लिखा है शिवांद रिजवी ने। तर्ज है ओपी नैयर की, फिल्म का नाम है हम साया।

0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
1: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
1: तेरा जवाब नहीं।
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
1: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
1: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये विविध भारती है और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए। तो अगला गीत है आपके लिए मोहम्मद रफी की आवाज में। गीतकार हैं हसरत जयपुरी, संगीत है सचिन देव बर्मन का, फिल्म का नाम है तेरे घर के सामने।

अगला गीत है लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाजों में. नगमा निगार है राजा मेहंदी अली खां. संगीत है मदन मोहन का. फिल्म का नाम है वो कौन थी.

साथियों कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में। नगमा निगार है साहिर लुधियानवी, संगीत है रोशन का और फिल्म का नाम है बहू बेगम।

साथियों, कार्यक्रम आपके लिए अब समाप्त होता है। सलमा सैयद को दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी की संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट हैं वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखे सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित या मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुंह हाथ धोना है, काम काज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया, तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती,

लेकिन कल्याण जी और आनंद जी की जोड़ी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। इसीलिए आज के इस कार्यक्रम में ज्यादा जिक्र तो कल्याण जी का होगा, लेकिन कुल मिलाकर ये बात कल्याण जी और आनंद जी पर केंद्रित रहेगी। यानी जोड़ी कल्याण जी आनंद जी की बातें होंगी आज के इस प्रोग्राम में।

कल्याण जी भाई दोनों भाइयों में सबसे बड़े हैं। 1929 में उनका जन्म हुआ था, जबकि आनंद जी का जन्म कच्छ में सन 1933 में हुआ था। मजे की बात यह है कि आनंद जी तो बचपन में कच्छ गुजरात में रहे, लेकिन कल्याण जी मुंबई में बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने चले आए। आगे चलकर इनका परिवार मुंबई आ गया। दोनों भाई चाल के अपने घर में पड़ोसियों के घरों में रेडियो सुना करते थे, क्योंकि रेडियो तब एक लग्जरी हुआ करता था और सबके घरों में रेडियो नहीं होता था। जब घर में ग्रामोफोन आया तो दोनों भाई मिलकर सुरेंद्र, शांता आप्टे, कुंदनलाल सहगल और पंकज मलिक के गीतों को बड़े चाव से सुना करते थे। सन 1954 अचानक कल्याण जी वीरजी शाह शोहरत की ऊंचाई पर पहुंच गए। दरअसल शशधर मुखर्जी की फिल्म नागिन में उन्होंने संगीतकार हेमंत कुमार के निर्देशन में क्ले वॉयलिन पर बीन की आवाज निकाली थी। ये अपने आप में एक करिश्मा था, क्योंकि इससे पहले फिल्म संगीत में जब भी बीन के सुर सुनाई पड़ते थे तो वो असली बीन होते थे, लेकिन इस बार वाद्य बदल गया था और सुर कुछ तरोताजा हो गए थे।

इस गाने के वादक, जी हाँ वादक यानी म्यूजिशियन कल्याण जी को बड़ी प्रसिद्धि मिली। कल्याण जी वीरजी शाह ने बतौर अकेले संगीतकार फिल्म सट्टा बाजार में भी संगीत दिया था। अभी तक आनंद जी उनके साथ नहीं आए थे।

0: हमको भी तुमसे है प्यार, रुमाल हमें दे के जाना।
1: सन 1958 में निर्माता निर्देशक कीकू भाई देसाई ने दोनों भाइयों को सम्राट चंद्रगुप्त नामक फिल्म में बतौर स्वतंत्र जोड़ी पहला मौका दिया। हम आपको बता दें कि कीकू भाई मनमोहन देसाई के पिता थे।

दिलचस्प बात यह है कि मनमोहन देसाई ने सन 1960 में जब छलिया फिल्म बनाई तो भी कल्याण जी आनंद जी को मौका दिया। छलिया का संगीत बड़ा ही लोकप्रिय हुआ।

सन 1964 की बात है। मनोज कुमार फिल्म उपकार बना रहे थे। उनकी इच्छा थी कि इसका संगीत शंकर जयकिशन दें, लेकिन इस जानी मानी जोड़ी के बीच तनाव चल रहा था, इसलिए बात कुछ बनी नहीं। लेकिन जयकिशन ने कल्याण जी आनंद जी के नाम की सिफारिश मनोज कुमार से की।

कार वो फिल्म है जिसने कल्याण जी आनंद जी को शंकर जयकिशन के प्रभाव से मुक्त किया। यहाँ से वो संगीत आया जिसमें रिदम का अनूठा पैटर्न था।

सिने संगीत के कद्रदान केवल रिदम और अरेंजमेंट को सुनकर कल्याण जी आनंद जी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी का फर्क समझ लेते हैं।

ढोल ताशे और बांसुरी और साथ में ग्रुप वायलिन, सब कुछ कल्याण जी आनंद जी के संगीत में अनूठा और निराला है।

0: वफा था।
1: कसमे वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। ये गाना मेरे छोटे भाई आनंद जी ने कई सालों पहले इंदिरा जी का लिखा हुआ वो तैयार करके रखा हुआ था। तो मनोज जी नए नए डायरेक्टर हुए थे, उपकार पिक्चर बना रहे थे, तो उनको ये गाना बहुत पसंद आ गया। उन्होंने बोला कि कल्याण जी भाई ये गाना मेरे लिए रख लीजिए, मैं उपकार फिल्म में प्राण जी के पास गाऊंगा। तो हमने सोचा कि ये उनको उस टाइम प्राण जी फिल्मों में गाया नहीं करते थे, तो हमने सोचा कि ये बिल्कुल नए डायरेक्टर हैं और शायद हमें भी नए कर देंगे। लेकिन मनोज जी ने उपकार फिल्म में वो गाना प्राण जी से इतना अच्छा गवाया और प्राण जी ने भी इतना अच्छा गाया है कि जब अपन फिल्म देखते हैं तो लगता नहीं है कि किसी प्लेबैक सिंगर ने ये गाना गाया होगा। बिल्कुल प्राण जी इसी तरह गा रहे हैं कि जैसे वो ही गा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली गाना मना डीजी ने गाया हुआ है।

मुकेश और कल्याण जी आनंद जी की जोड़ी ने कुछ बड़े अद्भुत नगमे दिए हैं। दरअसल शंकर जयकिशन के बाद अगर मुकेश की प्रतिभा को किसी ने पहचाना तो वो कल्याण जी आनंद जी ही थे।

ख्वाब हूँ, इस ख्वाब से तू प्यार न कर। आपको शायद मालूम होगा कि ये गाने के लिए हम लोगों को सिने म्यूजिक डायरेक्टर का फर्स्ट टाइम अवार्ड मिला था। और मुझे एक बड़ा प्रॉब्लम होता है कि कोई भी गाना मैं जब अनाउंस करता हूँ तो सब लोग चाहते हैं कि इसके साथ कोई हंसी मजाक जरूर होनी चाहिए। तो इसमें तो सही वाक्या हो गया था वो मैं आपको सुनाता हूँ। क्योंकि मुझे एक दिन एक ये गाना रिकॉर्ड होने के बाद किसी एक लड़की का फोन आया कि भाई हमें आपका मैं तो एक ख्वाब हूँ ये गाना बहुत पसंद आया और मैं चाहूंगी कि आपके मुंह से ये गाना सुनूं। तो हमने उनको म्यूजिक हॉल पे बुला लिया तो एक दफे सुनाया। उसके बाद फिर वो दो चार दिन के बाद आई कि मुझे हमें ये फिर गाना सुनाइए। तो तीन चार दफे उन्होंने जब हमसे सुना तो मैं उनके सामने देख रहा था। तो बाद में चौथी दफे जब मैंने ये गाना सुनाया तो मैंने ये गाना बोला कि मैं तो एक बाप हूँ, इस बाप से तो प्यार न कर, क्योंकि उसकी निगाहों से लग रहा था कि इसमें और कुछ चक्कर है।

कल्याण जी आनंद जी की जोड़ी ने भारतीय शास्त्रीय संगीत और पाश्चात्य संगीत को मिला दिया। वे प्रगतिशील संगीतकार थे। प्रगतिशील इस मायने में कि उन्होंने संगीत के बने बनाए ढर्रे को तोड़ा, लगातार नए प्रयोग किए, नई ध्वनियां अपने संगीत में पिरोई और बनाया अद्भुत संगीत। ढोल बजा

चाहे उदास नगमा हो या ढमाढम संगीत, कल्याण जी आनंद जी की कोई सानी नहीं। आइए कुछ उदास नगमे सुने जाएं इस संगीतकार जोड़ी के।

0: फिल्म समझौता। समझौता हमों से कर लो
1: जिंदगी में, समझौता हमों से कर लो जिंदगी में गम भी मिलते हैं। ये गाना मेरे एक डॉक्टर दोस्त हैं, उन्होंने एक दिन मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन दिया। मैं बोला किस बात की कॉन्ग्रेचुलेशन दे रहे हैं आप? बोले भाई आपका मैं गाना लेके गया था और उससे मेरा एक पेशेंट बहुत अच्छा हो गया। मतलब गाने से पेशेंट अच्छा हो गया? बोले आपके गाने के कुछ वर्ड्स ऐसे थे कि उसकी लाइफ में कुछ चेंज आ गया। तो अरे सही वाक्य है कि अगर इस गाने को करेक्ट कोई मीनिंग समझे तो जिंदगी की काफी उलझने कम हो जाती है।

को ये जानकर अचरज होगा कि कल्याण जी आनंद जी की इस सदाबहार और सुपरहिट जोड़ी को जीवन में केवल एक बार फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सन 1974 में ये फिल्म थी कोरा कागज। कल्याण जी आनंद जी की संगीत यात्रा इतनी लंबी है कि आधे घंटे के सीमित समय में हम सिर्फ ऊपर ऊपर से उनके सफर पर नजर डाल सकते हैं। कुल मिलाकर ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि ये जोड़ी लगातार हिट संगीत देती रही, लगातार लोगों के दिलों पर राज करती रही।

कल्याण जी आनंद जी की ये जोड़ी टूट गई है। टूटना शायद आपको सही शब्द ना लगे, ये जोड़ी एक दूसरे से बिछड़ गई है। आज कल्याण जी नहीं है लेकिन आनंद जी हैं, और है इस जोड़ी का अनूठा

0: के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था संगीतकार जोड़ी कल्याण जी आनंद जी के कल्याण जी पर। शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: छाया गीत के श्रोताओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। कभी कभी जिंदगी में कोई चेहरा यूं ही सामने आ जाता है और फिर वो चेहरा एक आदत, एक दुआ, एक धड़कन बन जाता है। उसे देखते ही मन अनायास कह उठता है, तुझे देखा, लगता है तुझे चाहा। और शायद यही तो प्रेम की सच्ची और मासूम परिभाषा होती है। प्रेम को हमेशा शब्दों की जरूरत नहीं होती, कई बार एक नजर, एक मुस्कान और एक अनकही सी चाहत ही दिल की पूरी कहानी कह देती है। किसी को चाहना उसके साथ होने का नाम नहीं, बल्कि उसके ख्याल से ही मन का महक उठना है।
1: तो

चलो एक ऐसा संसार बुने जहां सिर्फ प्यार की बारिश होती हो, झीलों पर एक हाउस बोट हो जहां गुजर जाए पूरी जिंदगी, जहां सुबह सुबह हाउस बोट की खिड़की पर कोई धर जाए फूलों की टोकरी, एक ऐसा जहां हो जहां सुबह खिले मुस्कानों के साथ, जहां प्यार भरी गुफ्तगू से नरम धूप खिल जाए, जहां सपनीली आंखों से आसमान की ओर देखें तो शाम खुशगवार हो जाए, मुस्कुराएं तो चांद खिल उठे।

जरा सी बात कहनी थी कि प्यार है तुमसे, पर सदी बीत गई, जुबान से शब्द नहीं फूटे, नहीं कह पाए प्यार है तुम्ही से। पलकों की पंखड़ी में ही बंद रही प्यार की पोटली, शायद सच्चे प्यार की यही है परिभाषा। वो प्यार ही क्या जिसका बार बार बखान किया जाए, वो याद ही क्या जिससे प्यार ना हो, वो याद ही क्या जो हर वक्त दिल के करीब ना हो।

छाया गीत कार्यक्रम का शेष भाग आपको सुनवाएंगे छोटे से अंतराल के बाद।

दोस्तों, विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छाया गीत। बंद लिफाफे की तरह है सच्चा प्यार, लिफाफा खुलते ही आंखों को दिख जाती है कागज पर लिखी इबारत। मन की किवाड़ का सांकल खटखटाते ही खुद को खबर हो जाती है कि मन प्यार की गिरफ्त में है। प्यार का वही जमाना भला था जब चुपके से होता था प्यार, पलकों के भीतर रेशमी ख्वाब की तरह बंद, छुई मुई की तरह नाजुक होता था प्यार का वो जमाना। जमाना कोई भी हो, प्यार में इंतजार, समर्पण, किसी के लिए मर मिटने की तड़प हमेशा बाकी रहती है। प्यार में इंतजार बड़ा ही मीठा लगता है।

ढलती हुई रात से गुफ्तगू, चांद का सफर जारी है। चांद का मुस्कुराना उस रोज भी कुछ ऐसा ही था जब हुई थी मुलाकात उनसे। तारों की ओढ़नी पहनकर रात निकल पड़ी थी सैर पर। खूबसूरत हो रात, मनमीत हो साथ, तो बस जिंदगी में और क्या चाहिए।

आंसू और मुस्कान से मिलकर बनती है जिंदगी, पर दिल नहीं मानता। मुस्कानों को अपना हमसफर बनाकर उसी के गले लगना चाहता है, पर कभी कभी आंसू की लड़ियां भी दिल को सहलाती हैं। कई बार ये यादों की घाटी में ले जाकर खुली हवा में छोड़ देती हैं, जहां लम्हों के बेहिसाब फूल होते हैं, जिन्हें छूकर हम हौले से मुस्कुरा देते हैं। आंसू और मुस्कान से बनी जिंदगी से फिर से बे इंतहा मोहब्बत कर बैठते हैं।

0: अभी आप सुन रहे थे ढलती जाए रात। हम आकाशवाणी जोधपुर के एफएम सन सिटी चैनल से बोल रहे हैं 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 11 बजे हैं। आइए अब सुनते हैं पहले हिंदी में समाचार और रात 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से इसे हम रिले करेंगे।
1: समाचार पहले हिंदी में, फिर नमस्कार। आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसूद पजश्कियन से टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति पजश्कियन ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम और आगामी कदमों की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने ईरान की अमेरिका के साथ बनी सहमति का स्वागत किया और भारत के स्थापित रुख को दोहराया कि सभी मुद्दों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से होना चाहिए। क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने और नौवहन तथा व्यापारिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए निरंतर प्रयास की आवश्यकता पर बल दिया। पश्चिम एशिया संघर्ष को देखते हुए सरकार ने महत्वपूर्ण पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर सीमा शुल्क में पूर्ण छूट 15 जुलाई तक बढ़ा दी है। इससे पहले वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में उत्पन्न व्यवधानों के कारण अस्थायी और लक्षित राहत के रूप में केंद्र ने आज तक पूर्ण सीमा शुल्क में छूट प्रदान की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने आज नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों से बातचीत की। चर्चा दो प्रमुख विषयों पर केंद्रित रही। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने समग्र सरकारी दृष्टिकोण अपनाने और विभागीय अलगाव को तोड़ने के महत्व पर बल दिया। उन्होंने अंतर विभागीय समन्वय और सूचित निर्णय लेने के लिए एक प्रभावी मंच के रूप में पीएम गति शक्ति के व्यापक उपयोग को प्रोत्साहित किया। इस दौरान सचिवों ने दो प्रमुख विषयों के अनुरूप अपने मंत्रालयों और विभागों द्वारा उठाए जा रहे प्रमुख कदमों की रूपरेखा प्रस्तुत की। पहला विषय था व्यापार और जीवन यापन में सुगमता के लिए विनियमन में ढील तथा अन्य सुधार, जबकि दूसरा विषय था आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी अधिनियम 2025 कल से पूरे ग्रामीण भारत में लागू हो जाएगा। इसके राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन की पूर्व संध्या पर ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोई भी पात्र ग्रामीण श्रमिक एक दिन भी बेरोजगार नहीं रहना चाहिए। श्री चौहान ने कहा कि 125 दिनों के वेतन भोगी रोजगार की बढ़ी हुई गारंटी से ग्रामीण आजीविका मजबूत होगी। ये अधिनियम प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार के लिए वैधानिक वेतन भोगी रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विद्यार्थियों से शिक्षा के माध्यम से समान और समावेशी समाज के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया है। वे आज आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थीं। राष्ट्रपति ने कहा कि विद्यार्थियों को कमजोर वर्गों के उत्थान और राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए।
2: जनजातीय विश्वविद्यालय से विशेष रूप से ये अपेक्षा भी की जाती है कि वे जनजातीय भाषा बोलियां के संरक्षण पर मिशन मोड में काम करेंगे। मुझे बताया गया है कि संस्था के ट्राइबल स्टडीज विभाग द्वारा कुई और सावरा समेत अनेक जनजातीय बोलियों के डॉक्यूमेंटेशन को लेकर के इसी प्रकार से जमीनी कार्य किया जा रहा है।
1: भारतीय रेलवे ने संचार और परिचालन प्रणाली में सुधार के लिए 1100 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इसके अलावा रेलवे ने करीब 500 करोड़ रुपए की लागत से पूर्वी मध्य रेलवे के 44 किलोमीटर से अधिक लंबे मानसी सहरसा खंड के दोहरीकरण को भी स्वीकृति दे दी है। ये खंड वर्तमान में मानसी साढ़ागढ़ मार्ग पर एक सिंगल लाइन कॉरिडोर है। दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2-3 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में आगे बढ़ने की संभावना है। इस दौरान उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख